प्रेम लक्षणा भक्ति में साधक को एक बात याद रखना होगा। पूछो क्या? संपूर्ण समर्पण अपने प्रभु के प्रति रखना होगा। परमात्मा के अलावा भगत को कहीं अन्यत्र समर्पण की आवश्यकता नहीं। पुष्कर के पागलों, एक बात तुम याद रखना, चरण के बल से हम मंदिर तक जा सकते पर आचरण के बल से हम परमात्मा तक जा सकते। भगवान तक जाने का सर्वोत्तम साधन आचरण है। देखो हम लोग हैं जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा। हनुमान जी हैं महात्मा, साधु संत के तुम रखवारे, और राम जी हैं परमात्मा। तो जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कौन करा सकता है? महात्मा, गुरु। गुरु के अलावा गोविंद से कोई नहीं मिला सकता। जयपुर में दो तीन स्थान बड़े दिव्य हैं। एक तो गोविंद देव जी, एक खोले के हनुमान जी, एक जयपुर के ही बीच में एक जगह है चांदी की टकसाल वाले काले हनुमान जी, बड़े दिव्य। भैया गोविंद देव जी ठाकुर जी के यहां पर एक महात्मा जी कथा सुनाने आए, भक्तमाल जी की। बीच में उन्हें काम आ गया तो घर चले गए, तो फिर लौट कर आए तो श्रोताओं से पूछा कि हमने कहां तक भक्तमाल जी सुनाई बताओ। तो श्रोता इधर उधर देखने लगे, किसी को याद ही नहीं था। तो पंडित जी बोले कि जब तुम्हें याद नहीं है तो कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही जाने लगे वैसे ही गोविंद देव जी मंदिर से बोले, व्यास जी भक्त नामदेव तक का चरित्र सुना दिया, इसके आगे की कथा सुनाई जावे। इस कथा की घटना का आशय हम कहना चाह रहे, यदि हमारा भगवान के प्रति समर्पण पक्का होगा तो परमात्मा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। समर्पण पक्का हो तो कौन कौन भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण करना चाहता? पक्का? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। तो एक सूत्र याद रखो, हमें चरण के बल से मंदिर नहीं जाना, आचरण के बल से परमात्मा तक जाना है। और सही बात बोले अंत में, कह दो बोलो, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, और जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती। तो संस्कार रहेंगे, आचरण रहेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। हनुमान जी महाराज की। प्रेम लक्षणा भक्ति में निष्काम भाव, अहर्निश ध्यान, तीसरा संपूर्ण समर्पण, और चौथा भाव प्रधान। देखो किसी को अपना आप बना सकते हो तो दो मार्ग हैं। कितने? दो। पूछो कौन कौन, जोर से पूछो। एक है प्रभाव, दूसरा है स्वभाव। या तो किसी को अपना प्रभाव से बना सकते या अपना स्वभाव से। पर प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका प्रभाव रहेगा, पर किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे। भगवान को ना प्रभाव से अपना बना सकते ना स्वभाव से। भगवान

का चौथा चौथी बात ध्यान रखने योग्य है, वो भाव है। भगवान को भाव से भजो। किससे भजो? अरे बोलो जम के, भाव से भजो। पूछो कैसे, जोर से पूछो। एक लास्ट बात सुनो। एक गांव का चरवाहा था, गायें चराता था, सीधा साधा, पढ़ा लिखा था नहीं। एक दिन एक महात्मा के पास गया, बोला महाराज हमें कोई मंत्र दे दो, हम जिसे जपें। तो महात्मा ने मंत्र दिया, ओम गोविंदाय नमः नमः, इस मंत्र का जप करो। अच्छा वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो थोड़ी देर तो याद रहा, ओम गोविंदाय नमः, बाद में भूल गया। अब रात भर खुजली करके सोचे कि मंत्र क्या था। अब गोविंदाय तो भूल गया, इतना भर ध्यान रहा कि गा से है, पर ये नहीं है कि है क्या। तो गा से सोचते सोचते सोचते रात हो गई, तो एक मंत्र याद आया, ओम गप्पू नमः। गोविंदाय भूल गया, गप्पू जी याद आ गया। उसे लगा यही मंत्र है, उसने ली माला, आ गया आ गया आ गया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पत्नी बोली भोजन कर लो, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, भूल जाएंगे मंत्र, चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप। तो पत्नी बोली मंत्र जप कर लो पर भोजन तो पालो। ना ना ना ना, हट एक तरफ, दिमाग डिस्टर्ब ना कर, मंत्र भूल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से याद आया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पत्नी बोली बताओ बड़ी मुसीबत, तो इसका मतलब तुम भोजन नहीं करोगे, तुम नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे। बोले तो उपाय क्या है? पत्नी बोली एक काम करो, जब तक तुम भोजन करो हम जप रहे। सो पत्नी रोटी लावे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, सब्जी गप्पू जी गप्पू जी, सब्जी गप्पू जी गप्पू, मिर्चा गप्पू जी मिर्ची गप्पू जी गप्पू जी गप। अब जब पति ने भोजन कर लिया तो पत्नी बोली लो अपना मंत्र लो तुम जपो गप्पू जी। तो इसने भैंसियां ली, गाय ली, चराने गया, लाठी ले बे, गाता जाए बोलता जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसी समय भगवान कृष्ण रुक्मणी जी घूमने निकले, ये एक पत्थर पे बैठा हुआ माला लेके जोर जोर से बोलने लगा कि भूल ना जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा ये किसका जप कर रहा? भगवान बोले हमारा। तो रुक्मणी जी बोली हमने आपके बहुत नाम पढ़े, कृष्ण पढ़ा, गोविंद पढ़ा, मुरारी पढ़ा, माधव पढ़ा, चित चोर माखन चोर, कृष्ण कन्हैया कान्हा, गोवर्धन नाथ, श्याम सुंदर, पर हमने गप्पू जी नहीं पढ़ा। भगवान बोले ये हमारा गोपनीय नाम है। तो बोले हमने नहीं पढ़ा, आप झूठ बोल रहे। तो भगवान बोले ज्यादा भरोसा नहीं है तो जाके पूछिए, आओ जो नाम जप रहा वो बता देगा। तो रुक्मणी जी ने दूसरा रूप बनाया, दूसरी स्त्री का, और पहुंच गई, भैया किसका नाम जप कर रहे हो? और वो कर रहा था गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसने सोचा बात करेंगे और फिर भूल जाए, बड़ी मुश्किल से तो याद आया। उसने इशारा किया, खिसक लो। और वो अब तो रुक्मणी जी तो खड़ी, इशारा समझ ना पाई, अरे भाई क्या कह रहे हो, किसका नाम जप रहे हो, बता तो दो भैया कौन भगवान का नाम है। अब वो जोर जोर से गए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। लेकिन रुक्मणी जी ने फिर पूछा, इस बार उसको गुस्सा आ गई, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप, भैया किसका नाम है? तेरे खसम का। अरे रुक्मणी जी भागी भागी गई भगवान के पास, उसने तो गुस्सा में बोला, रुक्मणी जी भागी भागी गई। भगवान बोले क्या हुआ? पीछे छिपे भगवान खड़े थे। रुक्मणी जी बोली प्रभु वो तो हमें पहचान गया। क्या पहचान गया? हमने पूछा कि किसका नाम जप रहे, तो दो बार तो बोला नहीं, तीसरी बार जब हमने पूछा किसका जप रहे बताओ तो गुस्सा होके बोला तेरे खसम, बताओ पहचान। भगवान बोले देखो हमने पहले ही कहा था हमारा नाम जप है, ये हमारा मंत्र।
तो भगवान से रुक्मणी जी बोली, प्रभु एक बात बताओ, क्या आपका ये नाम कब पड़ा? भगवान बोले, जब हम छोटे थे ना, यशोदा मैया की गोद में बैठे थे, तब माँ माखन को लौंदा लेके आई, मैया विराजमान है गई, बाने माखन को लौंदा सामने धर दयो, मैया मोरो करवे सिंगार, रुक्मणी बाई समय मैंने मैया को इधर उधर बातन में फंसा के कटोरी ते वो माखन को लौंदा लेके एक ही बार में गप उड़ाए लाओ, तो हमारो नाम उसी दिन से गप्पू जी पड़ गो। अरे ये तो कथा कहने की है, अर्थ ये है

भजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से ही प्रेम भाव पूरत पुकार ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान को क्या प्रिय है? बोलो बोलो बोलो, भाव प्रिय है। तुलसीदास जी ने भी ये बात कही एक जगह और, पूछो क्या।

का नाम लेकर ब्रह्म के समान हो गए, बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन सुनो, नाम जपना बड़ी बात नहीं है, कहां से जप रहा है, जीव है जीव से कि दिल से, ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान भाव प्रधान भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, पदार्थ या दिखावा की भक्ति को स्वीकार। तो प्रेम लक्षणा भक्ति का चौथा लक्षण है भाव से भगवान को भजे। किसको, कहां से, जिभा से, दिमाग से कि दिल से, हाँ किसको। और अंतिम बात है प्रेम लक्षणा भक्ति में, पांचवी जो बात है वो बहुत अद्भुत है, पूछो क्या। अनन्य भाव रखें। कौन सा भाव, अनन्य। ये अनन्य क्या है, है? बताओ। अनन्य का मतलब है उनके अलावा अन्य कोई नहीं, एक के अलावा अन्य, इसी को कहते हैं अनन्य। क्या कहते हैं, हमने एक महात्मा से कहा, महाराज जी एक संत थे, हमने कहा भगवान के अनन्य भक्त बन जा, बोले हम अनन्य के नहीं है फनन्य के। तो हमने कहा ये फनन्य क्या है, बोले अनन्य में तो ये भी है कि कोई और है, फनन्य में तो कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं है। भगवान के अलावा किसी को भजने की आवश्यकता, ये प्रेम लक्षणा भक्ति के पांच लक्षण हैं। कितने, अनन्य भाव, प्रेम पूर्वक भाव, अहर्निश निष्काम भाव, अहर्निश ध्यान भाव और संपूर्ण समर्पण भाव। इन पांच भाव के साथ जो भक्ति करता है उसकी प्रेममयी भक्ति होती है। ऐसी भक्ति के भगत मीराबाई, प्रहलाद, सूरदास, तुलसीदास, कर्माबाई, जनाबाई और उड़ीसा के संत माधवदास, ये सब ऐसी भक्ति के मार्ग के पथ प्रदर्शक हुए। इसलिए भैया इनको भगवान की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय जय हनुमान।

को पीटता, पीटता कि नहीं, बोलो हाँ जी या ना जी, पीटता ना, तो काहे पीटता। एक दिन मिट्टी ने कुम्हार से कहा, हमसे ही पैसा कमाते हो, हमको ही पीटते हो, शर्म नहीं आती ठटरी के भरे। कुम्हार ने कहा, मिट्टी तुम मटका बन रही हो, मटका बनना है तो पिटना जरूरी है, यदि हम लकड़ी के थपेड़े से पीटेंगे नहीं तो सुराग रह जाएगा, कम कीमत में बिकोगे और पानी तुम्हारे अंदर से रिसाव करेगा, इसीलिए हम पीटते हैं। पर एक बात याद रखना, बाहर से पीटते हैं, अंदर से हाथ लगा लेते हैं। तो मिट्टी ने कहा कि अंदर से हाथ क्यों लगा लेते? कुम्हार बोला, बाहर से पीटते इसलिए हैं कि तुम कमजोर ना रह जाओ, और अंदर से हाथ इसलिए लगाते हैं कि तुम टूट ना जाओ। गुरु भी ऐसा ही होता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान को मिटाने वाला गुरु यही तो करता, अपनी वाणी की कठोरता से शिष्य को समझाता, लेकिन प्रेम की समर्पण से शिष्य को सहानुभूति भी देता कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, और मेरे पागलो, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। लेकिन आज का जमाना, हनुमान जी ही बचाए, लोग गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। आजकल तो उल्टा जमाना है, गुरु जी

दोनों चक्कर में फंसे। आजकल के गुरु भी कम नहीं है। गुरु कहते बाहर में गया गड्डी चढ़ जाए, चेला का चाहे जो हो, और चेला भी कहते फोटो आ जाए, कथा चाहे जैसी हो। बोलो सीतारा, जोर से बोलो। एक बात और बोले, कन्फू

0: हाँ।
1: क्या है गणेश प्रतिमा विसर्जन की महिमा? क्या है अनंत चतुर्दशी के पर्व का महत्व? क्या है पूजा विधान और कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरों भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजिए तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम भी जरूर लिखकर भेजिए। इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव का पर्व मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के जिला मंडला से आई महाराजपुर के पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणेश उत्सव की यह अनूठी तस्वीर। यहाँ पर छात्राओं ने अपनी प्रतिमा से बप्पा की शानदार प्रतिमा बनाई और बुद्धि और वैभव का प्रदर्शन किया। तो वहीं बुद्धि और वैभव का वरदान देने वाले भगवान गजानन को स्कूल की छात्राओं ने पढ़ाई में इस्तेमाल हो चुकी चीजों का उपयोग कर आकार दिया। तो वहीं यूज पेन और उनके कैप का इस्तेमाल कर बप्पा की एक खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई जिसकी खूब चर्चा हुई। छात्राओं की मेहनत और उनके आइडियाज और नवाचार की लोगों ने जमकर तारीफ की है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: देश भर में मनाया जा रहा है अनंत चतुर्दशी का पर्व। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के जय घोष के साथ आज बप्पा की विदाई का दिन। गया जी में आज पितृपक्ष मेले का होगा शुभारंभ। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। 10 अक्टूबर तक चलेगा मेला, उससे पहले लेजर शो से जगमग हुआ देवघाट। एशियन गेम्स का छठा दिन भारत के लिए एथलेटिक्स में 6 और शूटिंग में 3 गोल्ड। दांव पर मेंस और विमेंस कबड्डी के सेमीफाइनल पर होगी नजर। फिल्मी फ्राइडे में आज दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। थिएटर्स में सिद्धार्थ और तमन्ना की द विवान से लेकर ओटीटी पर आलिया की डोन भी शायद दस्तक देगी। बार्सिलोना में ह्यूमन टावर का रोमांचक नजारा। ला मार्से उत्सव में कास्टेलर्स ने शानदार प्रदर्शन किया, तो वहीं सिटी हॉल के सामने 9 मंजिल तक बनी ऊंची मीनारें।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: आज देश भर में मनाया जा रहा है अनंत चतुर्दशी का पर्व। गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस तो जल्दी आके जय घोष के साथ बप्पा की विदाई का दिन। अनंत चतुर्दशी पर आज देश भर में गणपति विसर्जन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा के बाद श्रद्धालु देते हैं बप्पा को श्रद्धापूर्वक विदाई। अनंत चतुर्दशी पर की जाती है भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना। श्रद्धालु अनंत व्रत रखते हैं। पूजा के बाद श्रद्धालु परंपरा के अनुसार अनंत सूत्र धारण करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर ही होता है 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। गणपति विसर्जन से पहले करें भगवान गणेश की विधिवत पूजा और आरती। पापा को फूल माला सिंदूर अक्षत मोदक फल और मिठाई अर्पित करें। राजकोट के गणेश पंडाल में अनोखा श्रृंगार बना आकर्षण। 100 से ज्यादा अमेरिकी डॉलर्स की माला से सजी पापा की प्रतिमा। पंडाल में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बप्पा के श्रृंगार में दिखा अमेरिकी डॉलर। फूलों और आभूषणों से अलग इस बार डॉलर की माला, तो वहीं श्रद्धालुओं को खींच रही है प्रतिमा। राजकोट में गणपति दर्शन का अलग नजारा देखने को मिला। डॉलर की माला पहनकर विराजे गणपति बप्पा। बप्पा के इस अलग स्वरूप को देखने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गणपति पंडाल में श्रद्धालु कर रहे हैं बप्पा की पूजा अर्चना। शांति और सुख समृद्धि की कर रहे हैं कामना। गणपति विसर्जन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पंडाल के आयोजकों ने श्रद्धालुओं के लिए खास योजना बनाई। गणपति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को भेंट के रूप में वितरित किए जाएंगे ये विदेशी नोट। मुंबई की घाट कोपर में स्थित द्वारा मित्र मंडल के बप्पा के दर्शन करना वाकई अद्भुत और दिव्य अनुभव है। यहाँ की गणेश प्रतिमा में नजर आ रही है लाल बागचा राजा की मनमोहक झलक। भव्य स्वरूप, मनमोहक सजावट और बप्पा की अलौकिक आभा हर किसी का मन मोह रही है। बप्पा के दरबार में देखने को मिल रहा है आस्था और भक्ति का संगम। बप्पा का दिव्य स्वरूप, सुंदर आभूषण और मनमोहक झांकी दर्शन को बना रही है खास और यादगार। बप्पा के दर्शन के लिए घाट कोपर में भक्तों की उमड़ रही है आस्था। बप्पा का दर्शन करने के लिए आई स्पेशल चाइल्ड की टीम ने खींचा सभी का ध्यान। गणेश नाम के दिव्यांग बच्चे ने अपने स्टाइल में गाया रैप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के जवानों ने गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की। गणेश आरती से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। बीएमसी ने श्री गणेश गौरव पुरस्कार 2026 का किया ऐलान। अंधेरी पश्चिम के स्व प्राक्षय मित्र मंडल को पहला स्थान मिला, तो वहीं मंडल को 75,000 रुपए का मिलेगा पुरस्कार। गणेश पंडाल में पेड़ को आईसीयू में भर्ती दिखाया गया। थीम के जरिए पेड़ बचाने का संदेश दिया जा रहा। एलईडी पर पेड़ की व्यथा दिखाती 3 मिनट की फिल्म दिखाई जा रही है। अंत में लोगों से एक पेड़ लगाने की अपील की गई है। पंडाल में गणेश जी की मूर्ति कागज से बनाई गई है। विसर्जन के बाद मूर्ति पानी में आसानी से घुल जाती है। कागज से बनी गणेश प्रतिमा पानी में घुलने के बाद मछलियों का आहार बनेगी। पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया जा रहा है। मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने की पूजा अर्चना। बप्पा से सुख शांति और समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। भगवान के प्रिय मोदक का ग्रहण किया प्रसाद। उदयपुर में मशहूर गणपति मन्नत वाले राजा का भव्य श्रृंगार। बप्पा को धारण कराई गई 2,51,00,000 रुपए के नोटों से बनी अनोखी आंगी। इस अनोखे श्रृंगार में 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। अकोला में कलाकार की अनोखी भक्ति ने जीता सभी का दिल। 35,000 मोतियों से बनाई गणपति की सुंदर प्रतिमा। 25 दिन 20 रात की मेहनत से तैयार हुई 7 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली प्रतिमा देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। अकोला में गणपति विसर्जन के लिए खास इंतजाम किया गया। मोरना नदी घाट पर बनाए गए विशेष विसर्जन कुंड। कम बारिश के चलते नदी और तालाबों में कम पानी। घरों और 5 फीट तक की गणपति प्रतिमाओं के लिए तैयार किए गए कुंड। गणेश घाट को रंग रोगन और सजावट के साथ किया गया तैयार। भक्तों की आस्था के साथ साथ विसर्जन के दौरान पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। 36 साल बाद श्रीनगर के ऐतिहासिक शीतलनाथ मंदिर में फिर गूंजी घंटियां। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद कश्मीरी पंडितों ने पूजा अर्चना की। हब्बा कदल का शीतलनाथ मंदिर अब नए रूप में तैयार है। मंदिर के पुनर्निर्माण में श्रीनगर स्मार्ट सिटी और संस्कृति विभाग की अहम भूमिका है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी है रिकॉर्ड तोड़ भीड़। अब तक 15,35,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ धाम में चारों ओर नजर आ रही है श्रद्धालुओं की कतारें। हर हर महादेव और जय केदार के जयकारों से गूंजी पूरी घाटी। बाबा केदार के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं भक्त। कठिन पहाड़ी सफर पूरा कर श्रद्धालु बाबा के दरबार में टेक रहे हैं मत्था। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक सुरक्षा और सुविधाओं पर खास नजर रखी जा रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक यात्रा के दौरान पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुविधा का भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रसिद्ध अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट यानी कि जिमी डोनाल्डसन ताजमहल पहुंचे। पत्नी थिया ब्यूसन के साथ ताजमहल की खूबसूरती का दीदार किया। मिस्टर बीस्ट के साथ पर्यटकों में फोटो लेने की होड़ मची। मिस्टर बीस्ट को फैन ने खास तोहफा दिया। युवा फैन भेंट की युवान गौरव ने अपनी स्केचबुक। पुंछ में युवाओं के लिए काउंसलिंग सेशन का आयोजन। स्टार्टअप आईडिया और बिजनेस अवसरों पर हुई चर्चा। युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जानकारी दी गई। युवाओं ने सीखे स्टार्टअप के गुण। नए बिजनेस आइडियाज को लेकर युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया। स्वरोजगार और कारोबार की संभावनाओं से कराया गया परिचय। फिल्म पूजा समारोह से पहले मदुरई पहुंचे साउथ के सुपरस्टार धनुष। फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। धनुष की नई फिल्म का जल्द होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1498 से ज्यादा स्मृति चिन्हों की हो रही है ऑनलाइन नीलामी। दिल्ली की नेशनल गैलरी में इन खास वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। नीलामी में मूर्तियां, पेंटिंग्स और पारंपरिक हस्तशिल्प शामिल हैं। इन स्मृति चिन्हों में देश के अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति दिखाई जा रही। हर स्मृति चिन्ह की एक बेस प्राइस तय की गई है। इसके बाद ऑनलाइन बोली के जरिए लोग पसंदीदा वस्तु अपने नाम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को देश विदेश के अलग अलग मौकों पर मिले स्मृति चिन्ह भी नीलामी में रखे गए हैं। लोगों को इन खास वस्तुओं को खरीदने का मौका मिल रहा है। ई नीलामी से मिलने वाली रकम नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए दी जाएगी, यानी इन उपहारों की नीलामी से कला संस्कृति के साथ गंगा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में चीता पुनर्वास परियोजना में 4 साल कर लिए गए पूरे। अब देश में कुल 55 चीते हैं, 51 कूनू और 4 गांधी सागर में हैं। कूनू नेशनल पार्क में 18 चीते खुले जंगल में घूम रहे हैं, जबकि बाकी बाड़ों में हैं। चीतों की मौजूदगी से श्योपुर में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिला है। मध्य प्रदेश के नौरादेही और गुजरात के बन्नी में चीतों को बसाने की तैयारी चल रही है। नौरादेही में 4 बड़े बाड़ों का निर्माण अंतिम दौर में। गुजरात के बन्नी घास मैदान में 600 हेक्टेयर में बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। योजना के मुताबिक 2027 की शुरुआत में यहां करीब 6 चीते भेजे जा सकते हैं। 2026 में बोत्सवाना में भारत लाए गए सभी 9 चीते जीवित हैं। भारत में जन्मे 44 शावकों में 32 अभी जीवित हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: क्या है गणेश प्रतिमा विसर्जन की महिमा, क्या है अनंत चतुर्दशी के पर्व का महत्व, क्या है पूजा विधान और कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेशोत्सव का पर्व मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर से पहली तस्वीर हमें तरुशिखा सुमन ने भेजी है, जिसमें बप्पा को सुंदर तरीके से सजाया गया है, फूल मालाओं के साथ ये सजावट की गई है। दूसरी तस्वीर अपर्णा ने मध्य प्रदेश के बैतूल से हमें भेजी है, जहां पर बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया और पूजा अर्चना की गई है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे गणपति प्रतिमा के विसर्जन की और अनंत चतुर्दशी की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गणपति प्रतिमा के विसर्जन के बारे में। तो गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और गणपति प्रतिमा के विसर्जन की महिमा क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश महोत्सव या गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश जी के प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और गणपति प्रतिमा का विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। कुल मिलाकर 9 दिन जितने दिन गणपति महोत्सव होता है इसको गणेश नवरात्रि भी कहते हैं। माना जाता है कि जब आप गणपति प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो भगवान गणेश सूक्ष्म रूप से वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। गणपति प्रतिमा की स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा है और विसर्जन वाले दिन पूजा उपासना प्रार्थना करके अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ विशेष उपाय अगर इस दिन आप करें तो जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। अब ये जानते हैं कि जब आप गणपति की मूर्ति का प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो उसका तरीका क्या है। विसर्जन वाले दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है या विसर्जन हो जाने तक केवल फलाहार करिए। घर में जो आपने मूर्ति स्थापित की है इसका विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। इसके बाद गणपति की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइएगा। अगर मूर्ति या प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रख कर ले जाइए, अन्यथा लोगों की सहायता से ले जाइए। प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को अक्षत अर्पित किया था उस अक्षत को अपने घर में बिखेर दीजिए। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के स्ट्रैप वाली घड़ी या चमड़े का बना हुआ पर्स अपने पास में मत रखिए और जब मूर्ति को विसर्जित करने ले जा रहे हैं तो नंगे पैर मूर्ति ले जाइए और इसका विसर्जन करिए। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र न तो स्थापित करिए और न इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की मूर्ति स्थापित करना भी अच्छा है और विसर्जन करना भी अच्छा है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की प्रार्थना करिएगा। चतुर्दशी तिथि को केवल गणपति प्रतिमा का विसर्जन ही नहीं होता, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक अनंत सूत्र हाथ में बांधा जाता है और व्रत समाप्त करने के समय इसको खोल दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी में नमक का सेवन नहीं करते। जब शाम को पूजा के बाद व्रत समाप्त करते हैं, पारायण करते हैं, तो उसमें मीठी चीजें जैसे सिवैया या खीर खाई जाती है। अनंत चतुर्दशी पर अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। और जैसा आपको आरंभ में बताया कि अनंत चतुर्दशी पर दान करने से और शुभ कार्य करने से इसका अनंत फल आपको प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और आप अलग अलग समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो विसर्जन के समय में क्या उपाय करें कि इससे मुक्ति मिले? एक भोजपत्र या एक पीला कागज ले लीजिएगा। अष्टगंध की स्याही से या नई लाल स्याही की कलम ले लें। भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाइए। उसके बाद स्वस्तिक के नीचे ओम गं गणपतये नमः ये मंत्र लिखिए। इसके बाद एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखिएगा और जो लिखावट करेंगे उसमें काट पीट मत करिएगा और कागज के पीछे कुछ मत लिखिएगा। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र दोबारा लिखें, ओम गं गणपतये नमः। सबसे अंत में स्वस्तिक बना दें। इसके बाद कागज को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध लें और गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दें। जब गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे उसी के साथ अपने इच्छा लिखे हुए कागज का भी विसर्जन कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो समस्याएं आपने लिखी हैं धीरे धीरे आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अनंत चतुर्दशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र धन जो भी संभव हो दान करिए। ऐसा करने से आपको दान का अनंत शुभ फल जीवन में प्राप्त होगा। कि गणेश प्रतिमा के विसर्जन के अवसर पर तमाम समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं, हरे धागे में गूंथ करके दूरवा की या दूब की एक माला बना लीजिए। इस माला को सामने रख कर 108 बार ओम विघ्न हर्त्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और इसके बाद ये माला गणेश जी को पहना दीजिएगा। जब आप मूर्ति का विसर्जन करेंगे तो उसके साथ माला का विसर्जन भी कर दीजिएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: देशभर में मनाया जा रहा है अनंत चतुर्दशी का पर्व। गणपति बप्पा मोरे, अगले इस बरस तू जल्दी आ के जय घोष के साथ आज बप्पा की विदाई का दिन। गया जी में आज पितृपक्ष मेले का होगा शुभारंभ। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। 10 अक्टूबर तक चलेगा मेला, उससे पहले लेजर शो से जगमग हुआ देवघाट। एशियन गेम्स का छठा दिन, भारत के लिए एथलेटिक्स में 6 और शूटिंग में 3 गोल्ड मेडल्स दांव पर। मेंस और विमेंस कबड्डी के सेमीफाइनल पर भी होगी नजर। फिल्मी फ्राइडे में आज दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। थिएटर्स में सिद्धार्थ और तमन्ना की द व्यान से लेकर ओटीटी पर आलिया की डोन भी शायद देगी दस्तक। बार्सिलोना में ह्यूमन टावर का रोमांचक नजारा। ला मर्से उत्सव में कार्टेल्सर्स ने शानदार प्रदर्शन किया, तो वहीं सिटी हॉल के सामने 9 मंजिल तक बनी ऊंची मीनारें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
5: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में और गणेश प्रतिमा के विसर्जन के बारे में। क्यों करते हैं लोग गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान करने के बाद उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा और जानेंगे इसका महत्व भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अनंत चतुर्दशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र धन जो भी संभव हो दान करिए। ऐसा करने से आपको दान का अनंत शुभ फल जीवन में प्राप्त होगा।
5: और आइए अब जान लेते हैं 25 सितंबर 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या कहता है।
0: दिनांक 25 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 11:06 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 11:22 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से ही कि क्या है गणेश चतुर्थी का ये पर्व और विसर्जन की महिमा।
0: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गणपति प्रतिमा के विसर्जन के बारे में। तो गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और गणपति प्रतिमा के विसर्जन की महिमा क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश महोत्सव या गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश जी के प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और गणपति प्रतिमा का विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। कुल मिलाकर 9 दिन जितने दिन गणपति महोत्सव होता है इसको गणेश नवरात्रि भी कहते हैं। माना जाता है कि जब आप गणपति प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो भगवान गणेश सूक्ष्म रूप से वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। गणपति प्रतिमा की स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा है और विसर्जन वाले दिन पूजा उपासना प्रार्थना करके अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ विशेष उपाय अगर इस दिन आप करें तो जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है।
5: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, मन बेहतर होगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% बेहतर भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गणपति बप्पा की प्रतिमाओं के विसर्जन के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि क्या तरीका है विसर्जन का।
0: अब ये जानते हैं कि जब आप गणपति की मूर्ति का, प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो उसका तरीका क्या है। विसर्जन वाले दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है या विसर्जन हो जाने तक केवल फलाहार करिए। घर में जो आपने मूर्ति स्थापित की है इसका विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। इसके बाद गणपति की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइएगा। अगर मूर्ति या प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रख कर ले जाइए, अन्यथा लोगों की सहायता से ले जाइए। प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को अक्षत अर्पित किया था उस अक्षत को अपने घर में बिखेर दीजिए। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के स्ट्रेप वाली घड़ी या चमड़े का बना हुआ पर्स अपने पास में मत रखिए। और जब मूर्ति को विसर्जित करने ले जा रहे हैं तो नंगे पैर मूर्ति ले जाइए और इसका विसर्जन करिए। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र ना तो स्थापित करिए और ना इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की मूर्ति स्थापित करना भी अच्छा है और विसर्जन करना भी अच्छा है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की प्रार्थना करिएगा।
5: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय आपको हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, पारिवारिक जीवन का ध्यान दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न नीलिमा जी ने हमें लिखा है और नीलिमा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 29 अप्रैल 1980 का जन्म है, रात में 10:35, जन्म का स्थान है बलिया उत्तर प्रदेश। नीलिमा कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बेहतर नहीं है और तमाम दवाइयों तमाम चीजों के करने के बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा है, क्या उपाय करना चाहिए। नीलिमा जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ज्यादातर समस्याएं आपकी मानसिक हैं, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। और कुंडली के हिसाब से अभी एक सवा महीने बाद नवंबर के महीने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। किसी अच्छे मनोचिकित्सक को जरूर दिखा लें, उससे आपको लाभ होगा। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6-8 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
5: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न दिव्या अग्रवाल ने हमें लिखा है, पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1988, जन्म का समय शाम के 7:30, जन्म स्थान है आगरा। दिव्या कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी बदलना चाहती हूं काफी समय से, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दिव्या आपकी नौकरी बदलने का समय नवंबर के महीने से शुरू हो जाएगा। इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में आप नौकरी बदल सकती हैं और नौकरी बदलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उसका प्रयास अभी से करिए। अक्टूबर के बाद आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक मोती पहने। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें।

0: का विसर्जन ही नहीं होता। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक अनंत सूत्र हाथ में बांधा जाता है और व्रत समाप्त करने के समय इसको खोल दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी में नमक का सेवन नहीं करते। जब शाम को पूजा के बाद व्रत समाप्त करते हैं, पारायण करते हैं, तो उसमें मीठी चीजें जैसे सिवैयां या खीर खाई जाती है। अनंत चतुर्दशी पर अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। और जैसा आपको आरंभ में बताया कि अनंत चतुर्दशी पर दान करने से और शुभ कार्य करने से इसका अनंत फल आपको प्राप्त होता है।
1: और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, मानसिक तनाव आपका अब कम होता दिख रहा है। धन का आगमन होता रहेगा। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: क्या विशेष कर सकते हैं विसर्जन के समय ताकि जीवन की तमाम समस्याओं से हमें मुक्ति मिले?
0: अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और आप अलग अलग समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो विसर्जन के समय में क्या उपाय करें कि इससे मुक्ति मिले? एक भोज पत्र या एक पीला कागज ले लीजिएगा। अष्टगंध की स्याही से या नई लाल स्याही

0: की कलम ले लें, भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाइए, उसके बाद स्वस्तिक के नीचे ओम गं गणपतये नमः ये मंत्र लिखिए, इसके बाद एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखिएगा और जो लिखावट करेंगे उसमें काट पीट मत करिएगा और कागज के पीछे कुछ मत लिखिएगा। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र दोबारा लिखें, ओम गं गणपतये नमः, सबसे अंत में स्वस्तिक बना दें, इसके बाद कागज को मोड़ कर रक्षा सूत्र से बांध लें और गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दें। जब गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे उसी के साथ अपने इच्छा लिखे हुए कागज का भी विसर्जन कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो समस्याएं आपने लिखी हैं धीरे धीरे आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग दिख रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, अभी धैर्य बनाए रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और वक्त हो गया आज के तीसरे प्रश्न का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा प्रश्न, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न सचिन जी ने हमें लिखा है, नासिक महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जनवरी 1983, जन्म का समय शाम के 6:15, जन्म स्थान है नासिक महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरा पत्नी के साथ डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, काफी समय हो गया है और अभी सेपरेशन नहीं हो पाया है, मामला लटकता जा रहा है, तो कब तक मुझे सेपरेशन मिलेगा और मुझे उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। सचिन, आपकी कुंडली में सेपरेशन की संभावना साल 2027 में दिख रही है। साल 2027 के जून के पहले आपसी सुलह समझौते से सेपरेशन होगा और उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है, लेकिन मामला सरलता से हल हो जाएगा। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का चौथा और अंतिम प्रश्न वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न नितिन जी ने हमें लिखा है। नितिन जी गुड़गांव से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1993, शाम के 7:35, जन्म का स्थान है पानीपत। नितिन कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर रहेगा। नितिन, आपकी कुंडली के हिसाब से 2 साल अभी वेट करिए। 2028 के सितंबर के बाद अगर आप व्यापार में जाते हैं तो सफलता मिलेगी, उसके पहले व्यापार में जाना आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। करियर और जीवन आपका बेहतर हो इसके लिए सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 25 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में परिवर्तन के बाद सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें, ओम केम केतवे नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि पूजा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। देखिए, वैसे तो हर समय ईश्वर की पूजा उपासना आप कर सकते हैं, किसी समय की मनाही नहीं है, लेकिन मध्य रात्रि में, मिड नाइट में अगर आप पूजा करें, प्रार्थना करें, तो वो विशेष है। इस समय ध्यान करना, इस समय पूजा करना या इस समय प्रार्थना करना जरूर सफल होता है।
1: और अब जानेंगे 25 सितंबर 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 25 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीला फूल अर्पित करिएगा, ऐसा करने से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 सितंबर शुक्रवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुड लक में अब जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पूजा में किस चीज का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है तुला, इनको पूजा में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से इनकी मानसिक स्थिति और इनकी एकाग्रता ठीक रहेगी।
1: और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि इस खास अवसर पर गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर क्या है महा उपाय।
0: आज के महा उपाय में बताते हैं कि गणेश प्रतिमा के विसर्जन के अवसर पर तमाम समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं। हरे धागे में गूंथ करके दूर्वा की या दूब की एक माला बना लीजिए। इस माला को सामने रख कर 108 बार ओम विघ्न हर्त्रै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और इसके बाद ये माला गणेश जी को पहना दीजिएगा। जब आप मूर्ति का विसर्जन करेंगे तो उसके साथ माला का विसर्जन भी कर दीजिएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव के इस खास पर्व को मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली रूपाली राठौर ने अपने गणपति की ये सुंदर सी तस्वीर हमारे साथ शेयर की है। किस तरह से लाइटों से सजाया गया है, उन्होंने खुद के घर पर भगवान गणपति की मूर्ति बनाई और घर में स्थापित की और विधि विधान से पूजा पाठ किया है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले आकाश बालकृष्ण ठोंबरे ने भेजी है, जहां गेंदे के फूल माला और प्यारी सी पगड़ी यानी कि फेटा पहने बप्पा बेहद आकर्षक लग रहे हैं। भगवान गजानन का ये स्वरूप दिल को लुभा रहा है और यही वजह रही कि उनके इस निराले स्वरूप को आकाश ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर हमें भेजा है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव के इस पर्व को मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं, दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले शरद शुक्ला ने हमें अपने बप्पा की सुंदर तस्वीरें भेजी है। इसमें बप्पा के अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। जहां तस्वीर में बप्पा को लाल पगड़ी पहनाई गई है और साथ ही बप्पा का रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार किया गया है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। दूसरी तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले देव कोरी ने भेजी। इस तस्वीर में पापा की शानदार प्रतिमा स्थापित की गई है और साथ ही पंडाल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पापा को फूलों की माला भी पहनाई गई है। सड़क चौड़ीकरण के बीच मंदिर का ढांचा भले ही हट गया, लेकिन खड़े हनुमान जी की प्रतिमा आज भी उसी जगह पर विराजमान है। और अब इस जगह की तस्वीर बदल चुकी है। जहां कभी सड़क चौड़ीकरण की चर्चा थी, वहीं पर अब फूल मालाओं की दुकानें सजी हुई हैं, भजन कीर्तन हो रहा है और आरती में भक्त उमड़ रहे हैं और दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं।
2: उज्जैन की धरती जहां महाकाल की भक्ति है, जहां हर गली में आस्था की कहानी है, और अब इसी उज्जैन में खड़े हनुमान जी का दरबार भी श्रद्धा का बड़ा केंद्र बन गया है। सड़क चौड़ीकरण के बीच मंदिर का ढांचा जरूर हट गया, लेकिन खड़े हनुमान जी की प्रतिमा आज भी अपने मूल स्थान पर विराजमान है। और अब यहां का नजारा कुछ ऐसा है मानो सड़क किनारे बजरंगबली का कोई भव्य दरबार सजा हो।
3: देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये जो भीड़ है, हम आपको बताएं कि आमतौर पर इस मंदिर में रोजाना जो है मुश्किल से 150 लोग जो है वो आते थे, क्योंकि एक छोटा सा मंदिर था, 4x4 फुट के चबूतरे पे बना हुआ ये एक मंदिर था जो सड़क के बीच में था। और खासतौर से जो स्थानीय लोग हैं, जो उज्जैन के रहने वाले हैं, जिन्हें इस मंदिर के बारे में जानकारी थी, वो लोग तो यहाँ आते थे, दर्शन करते थे, आशीर्वाद लेते थे। लेकिन जैसे ही 4 सितंबर को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची और मंदिर को हटाने की कोशिश शुरू हुई और उसके बाद जो विरोध हुआ और ये मंदिर सुर्खियों में आया सोशल मीडिया की खास तौर से, तो उसके बाद यहाँ पे अब जो है उज्जैन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब इन सब के बीच में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँच रहे हैं इस मंदिर में। और अब धीरे धीरे इस मंदिर के ठीक आसपास की जो दुकानें हैं, जो सामने की दुकानें हैं, उन्होंने अपने पुराने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ करके अब हार फूल बेचना, प्रसाद बेचना शुरू कर दिया है, तस्वीर बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे इस मंदिर में दर्शन करने के साथ ही प्रसाद पाने वालों की और इस तस्वीर को अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों में अपने घर ले जाने की होड़ सी लग गई है।
2: सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार, हाथों में फूल माला, जुबान पर हनुमान चालीसा और हर तरफ गूंजता जय श्री राम और बजरंग बली का जय घोष। अब यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। महाकाल की नगरी आने वाले भक्त भी अब खड़े हनुमान जी के दर्शन को अपनी यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं। भीड़ इतनी बढ़ी कि दर्शन के लिए लंबी कतार लगने लगी है।
3: आपको क्या बदलाव दिखा यहाँ पे?
4: 20 दिन में ये बदलाव साहब के देखिए, आप दुकानों पे भी तस्वीरें बिकने लगी है और भीड़ ज्यादा ही, मतलब इंटरनेशनल लेवल का मंदिर हो गया है और बाबा के बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
5: कल मैंने बाबा का महाकाल का दर्शन किया, आज मैं लोकल घूमता हूँ तो ये मैंने देखने आया।
2: कभी सड़क चौड़ीकरण की वजह से चर्चा में आया ये स्थान अब आस्था के सैलाब की वजह से सुर्खियों में है। प्रतिमा के आसपास फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के बीच दर्शन कराए जा रहे हैं, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। जैसे जैसे खड़े हनुमान जी की प्रतिमा के नहीं हटने की खबर फैली, वैसे वैसे यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। सुबह की आरती से लेकर शाम की आरती तक पूरा इलाका भक्तिमय नजर आता है। इस बदलते माहौल का असर सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं, सड़क किनारे फूल माला की दुकानें भी सज गई हैं।
3: 4 सितंबर को पहली बार यहां पे प्रशासन की टीम पहुंची थी, 20 दिन अब हो चुके हैं, लेकिन 20 दिनों में क्या कुछ बदला उसकी एक छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दुकान, ये पुरानी दुकान थी काफी जूतों की, जो यहाँ पे पिछले कई सालों से थी, लेकिन अब जब ये मंदिर सुर्खियों में आया और यहाँ पे लोग पहुँचना शुरू हुए, श्रद्धालु पहुँचना शुरू हुए, तो यहाँ पे उन्होंने अब जूतों की दुकान की जगह है हार फूल प्रसाद नारियल अगरबत्ती इसकी दुकान यहाँ पे डाली है। और इसके साथ ही उस प्रतिमा की, जो प्रतिमा देश भर की सुर्खियों में इस वक्त खड़े हनुमान की प्रतिमा, तो उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पे इन्होंने बेचनी शुरू कर दी है।
2: बजरंग बली को चढ़ाने के लिए फूल माला सिंदूर प्रसाद सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, खड़े हनुमान जी की तस्वीरें भी अब श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। यानी सड़क चौड़ीकरण की वजह से जिस मंदिर को हटाई जाने की चर्चा थी, वही अब आस्था और भक्ति का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है।
6: हार फूल की दुकान शुरू कर दी है भगवान ने अपने खड़े हनुमान जी की, ये भी शुरू कर दी है और भगवान का आस्था बढ़ रहा है और जनसैलाब चल रहा है और धंधा भी चल रहा है थोड़ा।
7: बहुत अच्छा खासा चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा। बहुत बाहर के पब्लिक बहुत अच्छी खासी आ रही है।
3: फोटो की कितनी डिमांड आ रही है?
7: फोटो की डिमांड भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिक रहा है यहाँ, बहुत अच्छा लोगों ने आ रहे और पसंद भी कर रहे, बहुत ले जा रहे।
2: इस पूरे मामले में प्रशासन का पक्ष भी बेहद अहम है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रतिमा को हटाने के प्रयासों को लेकर कई भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। उज्जैन प्रशासन ने साफ किया है कि विशेषज्ञों की वैज्ञानिक और तकनीकी राय लिए बिना प्रतिमा के विस्थापन को लेकर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रतिमा की संरचना, उसके आधार और जमीन के भीतर उसकी स्थिति की जांच के बाद ही आगे का फैसला होगा। उज्जैन से रविश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: केरला के तिरुवनंतपुरम में मौजूद श्री पद्मनाभ स्वामी आस्था का ऐसा धाम है जिसकी वास्तुकला सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। लेकिन 23 सितंबर को यहां जो नजारा दिखाई दिया वो वाकई अद्भुत था। डूबता हुआ सूरज मंदिर की खिड़कियों से एक के बाद एक गुजरता हुआ नजर आया और ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यदेव खुद भगवान पद्मनाभ के दरबार में पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। दरअसल विश्व और यानी कि इक्विनॉक्स के मौके पर सूर्य और मंदिर की वास्तुकला का एक खास अलाइनमेंट एक अद्भुत नजारा पेश करता है। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि हमारे पूर्वजों को खगोल शास्त्र की कितनी बारीकी से समझ थी।

0: देश के मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि सदियों पुरानी ऐसी वास्तुकला के गवाह भी हैं, जिसे देखकर आज भी विज्ञान और श्रद्धा दोनों हैरान रह जाते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम का मशहूर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी इसका शानदार उदाहरण है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 23 सितंबर को अनोखा नजारा देखने को मिला। डूबता हुआ सूरज एक एक करके मंदिर की सभी 5 खिड़कियों से होकर गुजरा। ऐसा दृश्य साल में सिर्फ 2 बार दिखाई देता है। इस अद्भुत नजारे का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। सबसे पहले सूर्य मंदिर की सबसे ऊपरी खिड़की में नजर आता है और फिर धीरे धीरे नीचे वाली खिड़कियों से होकर गुजरता है। जब डूबता सूरज तीसरी खिड़की में प्रवेश करता है, दृश्य अद्भुत हो जाता है। धीरे धीरे सूर्य बाकी 2 खिड़कियों से गुजरता है और फिर दिन छिप जाता है। मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि साल में 2 दिन ऐसा दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है। दरअसल ये नजारा विषुव यानी इक्विनॉक्स के आसपास दिखाई देता है, जब सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि मंदिर की खिड़कियों और अस्त होते सूरज के बीच एक खास अलाइनमेंट बनता है। मंदिर की मीनार का निर्माण सूर्य की इक्वेटर मोशन के बिल्कुल अनुरूप है, ताकि अस्त होते समय सूर्य मंदिर की सभी मीनारों की खिड़कियों से होकर गुजरे, क्योंकि बाकी दिनों में सूर्यास्त या तो दक्षिण या टावर के उत्तर में होता है। इसी वजह से इस मंदिर को मंदिर वास्तुकला का अनूठा नमूना कहा जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि विषुव क्या है। विषुव साल का वो समय है जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर ठीक वर्टिकल पड़ती हैं। इसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगातार बराबर होती है। पहला विषुव 21 मार्च को होता है, जो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, जबकि दूसरा विषुव 23 सितंबर को होता है, जो शरद ऋतु का संकेत देता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। निर्माण कार्य 18वीं शताब्दी में अनिजम थिरुनल मार्तंड वर्मा के शासन काल के दौरान पूरा हुआ था, जिन्हें आधुनिक त्रावणकोर के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अपने बहुमूल्य खजाने और स्थापत्य चमत्कारों के साथ मंदिर दुनिया भर से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। आस्था के इस धाम में जब डूबता सूरज मंदिर की खिड़कियों से होकर गुजरता है, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद भगवान पद्मनाभ के दरबार में अपनी रोशनी का अर्घ्य चढ़ा रही हो। और यही है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वो खूबसूरती, जहां आस्था, वास्तुकला और खगोल विज्ञान एक ही तस्वीर में दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इस महीने की शुरुआत में गुड न्यूज टुडे आपके सामने एक अनोखी यात्रा की कहानी लेकर आया था। हमने आपको बताया था कि कैसे एक अनोखी आर्टकार राजस्थानी कला, संस्कृति, शिल्प और लोक परंपराओं की कहानियों को सुनाने के लिए निकली है, और इस अनोखी अलबेली आर्टकार की राजस्थान यात्रा का अध्याय संपन्न हो चुका है। 4 सितंबर को निकली ये आर्टकार 23 सितंबर को वापस जयपुर पहुंच चुकी है। कैसी रही ये यात्रा, किन किन पड़ावों से होकर गुजरी और राजस्थान की संस्कृति और विरासत की क्या क्या कहानियां आपके लिए लेकर आई है, देखिए स्टोरी में।

0: राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता को करीब से जानने समझने के लिए जयपुर से निकली ये अनोखी अलबेली कार अपने मकसद को पूरा कर वापस जयपुर पहुंच चुकी है। कार्टिस्ट और स्टोरीज ऑफ इंडिया सिटीज के फाउंडर हिमांशु जांगिड़ की अगुवाई में 4 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा 20 दिनों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से गुजरी। करीब 3,500 किलोमीटर का सफर तय किया। 45 से ज्यादा जगहों पर पहुंचकर स्थानीय जीवन को अपने कैमरे में कैद किया।
1: The Stories of Indian Cities, ये एक ऐसा सफ़र है जो बहुत ही खास रहा है। 20 दिन 4 सितंबर से ये शुरू हुआ और 23 सितंबर को वापस से ये सफ़र जयपुर में ख़त्म हुआ है। मंडावा से ये सफ़र शुरू हुआ था, जिसमें इस गाड़ी ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत सजी हुई है, बहुत ही अच्छी कलाकारी इसमें की हुई है, हमने आपको पहले भी जैसे इसकी तस्वीरें दिखाई हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे पैचवर्क का काम हुआ हुआ है, एप्लीक वर्क का काम हुआ हुआ है, ये सजी हुई गाड़ी गई है राजस्थान के भ्रमण पर। 20 दिन का ये सफ़र था, जिसमें करीब 45 दिन की इनकी आइटनरी थी।
0: राजस्थान की समृद्ध विरासत को जन जन तक पहुँचाने की इस पहल की शुरुआत 4 सितम्बर को जयपुर से हुई। ये कार शेखावटी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर समेत राजस्थान के कई प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों से होकर गुजरी और 23 सितंबर को वापस जयपुर में राजस्थान चैप्टर का समापन हुआ।
2: हमारे साथ एक छोटी टीम चलती थी 6 जनों की, हमारे साथ 2 गाड़ियां थी। हमारा दिन, हम जल्दी स्टार्ट करते थे करीब सुबह 5 बजे और हम कोशिश करते थे कि हम मॉर्निंग में तो शहर के आर्किटेक्चर और उसको सिटी के जो सुबह का माहौल होता है उसको कवर करें, और उसके बाद हम लोग ना आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन्स और जो लोग हैं इम्पोर्टेंट उनसे मिलना शुरू करते थे और हमारा दिन शाम को 7 बजे तक ख़त्म करते थे और फिर रात में वापस प्रोडक्शन टीम अपना डेटा कलेक्ट करती थी और अपना एडिटिंग पे लग जाती थी, तो बड़ा ही रोमांचक रहा।
0: यात्रा के दौरान हिमांशु की टीम को राजस्थान के अलग अलग इलाकों के पारंपरिक खान पान को जानने समझने का मौका मिला, तो बांसवाड़ा के ट्राइबल लोगों की जीवन शैली को उनकी अनकही कहानी की देश के सामने लेकर आई है, जैसा कि इस यात्रा का एक मकसद भी है।
2: बांसवाड़ा की ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल आर्ट नहीं, ट्राइबल लोगों की कहानियाँ, जो ट्राइबल वहाँ पर रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, उनका पहनने का तरीका, उनकी परंपराएं, उनके उनके साथ में रह के एक दिन पूरा हमने समझा। और जो खास एक परंपरा उनके साथ में है कि वो लोग आज भी एक कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। अगर किसी के साथ में कोई, किसी के घर में शादी ब्याह या कोई दुख आ जाता है, तो वो लोग अपने यहाँ पर एक ना कम्युनिटी भोज रखते हैं और उसमें लोगों को बुलाते हैं और वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं।
0: दरअसल सैलानी जब भी राजस्थान आते हैं तो यहाँ के ऐतिहासिक किले, बावड़ी या महल देखते हैं, लेकिन ये रंग बिरंगी आर्ट कार राजस्थान की लोक कला, परंपरा, शिल्प और खान पान की अनकही कहानियों को ढूंढने ही निकली थी। जहां जहां ये कार गुजरी, अपने अनोखे इंटीरियर और एक्सटीरियर रंग रूप की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र रही।
1: इंटीरियर हमने इस गाड़ी का देखा है, किस तरीके से पैचवर्क का, बाड़मेर का जो काम है, एप्लिक वर्क का, बहुत खूबसूरत किया है। पिंक सिटी से इस सफ़र की जो शुरुआत हुई है, जो सबसे पहले मंडावा जाके गाड़ी रुकी है, तो पिंक सिटी का ये गुलाबी रंग इस गाड़ी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से झलक रहा है। और ये गाड़ी सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है, जहाँ अंदर पूरा कपड़ा, एक एक सिलाई बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ की हुई है, पैचवर्क का काम है, वैसे ही बाहर का एक बार मैं इसका रंग रूप दिखाऊंगी, किस तरीके से ब्लू कलर से और अलग अलग कठपुतलियों से, जो राजस्थान की शान है, राजस्थान की पहचान है, उससे इसको सजाया गया है। हम दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा काम इस गाड़ी पे किया गया है। और अगर हम सामने की तरफ आएंगे इस गाड़ी के, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसकी जो पहचान है, इस पूरे टूर का जो इन्होंने नाम दिया है, जो कि है स्टोरीज ऑफ इंडियन सिटीज, यानी कि सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश के अलग अलग कोने में जाएगी।
0: कार्टिस्ट की इस अनोखी यात्रा का पहला चैप्टर अब पूरा हो चुका है। राजस्थान से जुटाई गई इन कहानियों को फोटोग्राफी, वीडियो और डिजिटल स्टोरी टेलिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। यात्रा का दूसरा अध्याय अब दिल्ली और गुजरात चैप्टर के साथ जल्द ही शुरू होगा और तब मुमकिन है कि कुछ और अनकही, अनसुनी कहानियां आर्ट कार अपने साथ लेकर आए। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी वायरल वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, और क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं, कुछ इमोशनल कर देने वाले हैं।
4: बिना शर्त प्यार और भरोसे का रिश्ता कैसा होता है, ये नजारा उसकी खूबसूरत मिसाल है, जहां हाथी और इंसान के बीच का अपनापन साफ नजर आ रहा है। हाथी अपनी सूंड से इंसान को प्यार करता दिख रहा है, तो इंसान भी उसे बड़े प्यार से पकड़कर दुलार रहा है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, और हाथी इंसान के सनों की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं। माँ जैसा प्यार और सुकून दुनिया में कहीं नहीं मिलता, और ये नन्हा बच्चा तो जैसे माँ की गोद में अपना पूरा संसार पा गया है। देखिए कैसे पूरे शरीर पर साबुन लगा है, लेकिन जनाब को नहाने की कोई जल्दी नहीं। माँ के पैरों पर बैठकर बड़े आराम से पूरे ठाट में नहा रहे हैं। माँ भी अपने नन्हे को प्यार से नहला रही है। माँ और बच्चे का ये प्यारा पल कैमरे में कैद हुआ, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उम्र छोटी है, लेकिन महादेव के प्रति आस्था और श्रद्धा बेहद गहरी है। इस नन्हे भक्त की भक्ति देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। बहती गंगा के किनारे भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, और ये बच्चा पूरी निष्ठा के साथ महादेव की प्रतिमा को साफ करता नजर आ रहा है। छोटे छोटे हाथों से भोलेनाथ की सेवा करते इस बच्चे की तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है। नन्हे भक्त की ये श्रद्धा सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद की जा रही है। जीवन जो शेष है वही तो विशेष है, और जब यारों की महफिल सज जाए तो फिर डांस तो बनता है। उम्र भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन दिल आज भी बच्चा है। कुछ ऐसा ही नजारा इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों की टोली एक साथ जमकर डांस करती नजर आ रही है। हर कोई अपने ही अंदाज में थिरक रहा है। दोस्तों की ये मस्ती देखकर आसपास मौजूद लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। भविष्य का ड्राइवर तैयार है। छोटे छोटे हाथ और सामने बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील। नन्ही गुड़िया का ये अंदाज बेहद प्यारा है। पापा के साथ कार में बैठकर ड्राइविंग का मजा लेती ये बच्ची स्टीयरिंग संभालती नजर आ रही है। पापा के साथ बिताया ये पल बच्ची के लिए किसी खास याद से कम नहीं। वीडियो में बच्ची का उत्साह और मासूमियत साफ दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर ये प्यारा वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर आज विधि विधान से बप्पा की विदाई की तैयारी, प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम, क्राउड कंट्रोल के लिए एआई कैमरे से होगी निगरानी। मुंबई में बप्पा की विदाई से पहले लालबाग चौराहे के दरबार में पहुंचे अनंत अंबानी, पूजा करके गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया, गजानन के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। गया जी में आज पितृपक्ष मेले का होगा शुभारंभ, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन, 10 अक्टूबर तक चलेगा मेला, उससे पहले लेजर शो से जगमग हुआ देवघाट। कुल्लू में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा की तैयारियां, इस बार एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति, 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव का रोमांच। एआई और एडवांस कंप्यूटिंग में भारत की बड़ी छलांग, आईआईटी दिल्ली ने बनाया स्वदेशी माइक्रो जीपीयू, घटेगी विदेशी निर्भरता। एशियन गेम्स का छठा दिन टेबल और स्क्वाश के मिक्स डबल्स में भारत के मेडल पक्के, एथलेटिक्स में 6 और शूटिंग में 3 गोल्ड मेडल्स दांव पर, मेंस और वुमेन्स कबड्डी के सेमीफाइनल पर होगी सभी की नजर। फिल्मी फ्राइडे में आज दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, थिएटर्स में सिद्धार्थ तमन्ना की द वन से लेकर ओटीटी पर आलिया की डोंट बी शाय देगी दस्तक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख।
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
3: शुभ समाचार की शुरुआत अनंत चतुर्दशी के महापर्व के साथ होगी। देश भर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर उत्सव और उल्लास का माहौल है, ढोल नगाड़े और जयकारों के बीच आज बप्पा को भावभीनी विदाई दी जा रही है। गणपति विसर्जन को लेकर घाटों से लेकर सड़कों और समुद्री तटों तक खास तैयारियां की गई है।
4: मुंबई में भी विसर्जन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज लालबाग चौराहे की शाही सवारी निकलेगी और भक्त अपने आराध्य को अंतिम विदाई देंगे। मुंबई की सड़कों पर भक्तों की भीड़, ढोल ताशों की गूंज और गणपति बप्पा मोरिया की जय घोष सुनने को मिल रहा है।
3: तो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, बप्पा को अगले बरस फिर आने का न्योता दिया जा रहा है। खास बात यह है कि भक्तों के बीच से बप्पा गुजरेंगे, ऐसे में भक्त बप्पा से आशीर्वाद लेने और उनकी आखिरी झलक देखने के लिए बेहद उत्साहित है, क्योंकि कोई रंगोली बना रहा है तो कोई बप्पा के लिए माला तैयार कर रहा है तो कोई बप्पा के लिए भोग भी तैयार कर रहा है।
4: उधर गुजरात के राजकोट में बप्पा का डॉलर से श्रृंगार किया गया, गणपति पंडाल भी पूरे गणेश उत्सव के दौरान छाया रहा और यहां पर विराजमान बप्पा की प्रतिमा न सिर्फ बहुत मनोहारी थी बल्कि विघ्नहर्ता के श्रृंगार में डॉलर का इस्तेमाल किया गया था।
3: इसके अलावा गणेशोत्सव के रंग दिल्ली में भी खूब बिखरे, यहां गोविंदपुरी में दिल्ली का महाराजा राम से भगवान गणेश विराजित किए गए, जिनको यहां सालों से रह रहे महाराष्ट्रीय समाज ने ही पंडाल में स्थापित किया है। ये लोग पिछले 34 सालों से गणेशोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाते आए हैं, तो ये सभी रंग आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
4: आज देश भर में अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। आज बप्पा की विदाई का दिन है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस तो जल्दी आगे जय घोष गूंज रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक विसर्जन के इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पर कृत्रिम कुंज भी बनाए गए हैं। तो वहीं भगवान गणेश की पूजा के बाद श्रद्धालु बप्पा को विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक विदाई दे रहे हैं।
3: डीएमसी ने श्री गणेश गौरव पुरस्कार 2026 का ऐलान किया है। अंधेरी पश्चिम के स्वप्नाक्षय मित्र मंडल को पहला स्थान मिला है। मंडल को 75,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। गणेश पंडाल में पेड़ को आईसीयू में भर्ती दिखाया गया है। थीम के जरिए पेड़ बचाने का संदेश यहां दिया जा रहा है।
4: नैनीताल में आस्था का जन सैलाब उमड़ गया है। मां नंदा और मां सुनंदा के जयकारों से सरोवर नगरी गूंज उठी। 124वीं नंदा देवी महोत्सव में हजारों श्रद्धालु नगर भ्रमण में शामिल हुए। फूलों की बारिश के बीच मां नंदा और सुनंदा कैलाश के लिए रवाना हुई। तो वहीं भक्तों ने नम आंखों से विदाई दी और मां का आशीर्वाद लिया।
3: केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी है। अब तक 15,35,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक सुरक्षा और सुविधा पर नजर रखी जा रही है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1498 से ज्यादा स्मृति चिन्हों की ऑनलाइन नीलामी हो रही है। दिल्ली की नेशनल गैलरी में इन खास वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। नीलामी में मूर्तियां, पेंटिंग्स और पारंपरिक हस्तशिल्प शामिल हैं। हर स्मृति चिन्ह की एक बेस प्राइस तय की गई है और उसके बाद ऑनलाइन बोली के जरिए लोग पसंदीदा वस्तु अपने नाम कर सकते हैं।
3: प्रसिद्ध अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन ताजमहल पहुंचे। पत्नी थिया बुसेन संग किया ताजमहल की खूबसूरती का दीदार। मिस्टर बीस्ट के साथ पर्यटकों ने फोटो लेने की होड़ मच गई। मिस्टर बीस्ट को फैन ने खास तोहफा भी दिया। युवा फैन युवान गौरव ने अपनी स्केचबुक उन्हें भेंट की।
4: 46वें FIDE चेस ओलंपियाड के 7वें राउंड में मेंस टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया। बुधवार को समरकंद में खेले गए मुकाबले में प्रज्ञानंद ने टॉप बोर्ड और गुकेश के चौथे बोर्ड पर जीत दर्ज की। प्रज्ञानंद ने इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ी निकिता वुत्योगोव को हराया। वहीं वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने चौथे बोर्ड पर डैनियल हावर्ड फर्नांडिस को हराया।
3: संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर से रणबीर कपूर का पहला लुक सामने आ गया है। पोस्टर में रणबीर विंटेज कार की ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हैं। रेट्रो अंदाज, चश्मा और घायल हाथ उनके किरदार की झलक दिख रहा है। फिल्म में रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी अहम भूमिकाओं में हैं। भंसाली के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को हिंदी, तमिल, तेलुगु में दुनिया भर में रिलीज होगी।
4: बार्सिलोना में ह्यूमन टावर का रोमांचक नजारा देखने को मिला। ला मर्से उत्सव में कार्स्टेलर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। तो वहीं 8 स्थानीय समूहों ने मिलकर 25 कार्स्टेल्स बनाए। और आपको बता दें सिटी हॉल के सामने 9 मंजिल तक ऊंची मीनारें बनी। बच्चों ने सबसे ऊपर पहुंचकर कास्टल पूरा किया।

0: तो गणपति बप्पा मोरया अगले बरसू जल्दिया। आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व है। देशभर में गणपति विसर्जन को लेकर उत्सव और उल्लास का माहौल है। ढोल नगाड़े और जयकारों के बीच आज बप्पा को भावभीनी विदाई दी जा रही है। गणपति विसर्जन को लेकर घाटों से लेकर सड़कों और समुद्र तटों तक खास तैयारियां की गई हैं। मुंबई में भी गणेश विसर्जन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आज लालबाग के राजा की शाही सवारी निकलेगी और भक्त अपने आराध्य को अंतिम विदाई देंगे। मुंबई की सड़कों पर उमड़ने वाली भक्तों की भीड़, ढोल ताशों की गूंज और गणपति बप्पा मोरया के जय घोष के बीच बप्पा को अगले बरस फिर आने का न्योता दिया जाएगा। खास बात यह है कि बप्पा भक्तों के बीच से गुजरेंगे। ऐसे में भक्त बप्पा से आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी आखिरी झलक देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। कोई रंगोली बना रहा है तो कोई बप्पा के लिए माला तैयार कर रहा है तो कोई बप्पा के लिए भोग भी तैयार कर रहा है। बप्पा की विदाई के इस खास मौके पर मुंबई में सुरक्षा से लेकर यातायात और विसर्जन स्थलों तक व्यापक तैयारियां की गई हैं।
1: मौका है बप्पा के आखिरी दर्शन और पूजन का। दो बप्पा के भक्त इस वक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मुंबई के लालबाग चौराहा के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर बप्पा का आशीर्वाद मांग रहा है तो कोई अपने मोबाइल कैमरे में बप्पा के आखिरी दर्शन को संजो रहा है। दरबार में भक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा है। आज बप्पा की विदाई है लेकिन भक्तों का विश्वास यही है कि बप्पा अगले बरस फिर आएंगे और अपने साथ खुशियां और आशीर्वाद लेकर आएंगे। बप्पा को आज भावभीनी विदाई दी जा रही है। लोग यहां पर भावुक नजर आ रहे हैं। लालबाग चौराहा के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। गणेश उत्सव में बहुत धूमधाम से यहां पर इसे मनाया गया, इस पर्व को। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, कई सेलिब्रिटीज़ भी यहां पर पहुंचे हुए दिखाई दिए तो कई बिजनेस टाइकून्स की भी यहां पर मौजूदगी रही लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए।
0: राजा की विदाई भी बेहद भव्य और धूमधाम से होती है। बप्पा की शाही सवारी के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिन रास्तों से बप्पा की सवारी गुजरेगी वहां खास सजावट की जा रही है। रास्तों पर भव्य रंगोलियां भी बनाई जा रही हैं। तो अब देखिए किस तरह से सड़कों पर छोटी मोटी नहीं, बहुत ही भव्य तरीके से रंगोली बनाई जाती है और उसमें एक दो नहीं कई लोग लगते हैं उस रंगोली को बनाने के लिए। और जहां जहां से लालबाग चौराहा की सवारी निकलती है वहां वहां रास्तों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है।
2: कहेंगे आज विसर्जन है, क्या लग रहा है, कैसी भावना है?
3: अच्छी भावना है पर दुख भी लग रहा है थोड़ा, क्योंकि गणपति बप्पा जा रहे हैं। अभी हमारे मंडल ने इस साल अच्छा अभी रंगोली का स्वागत के लिए बप्पा के लिए किया है। 70 किलो ना, 70 किलो फूलों की अभी गौशाला होगी गणपति बप्पा के ऊपर। तो अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है।
2: कैसा लग रहा है, आपकी क्या फीलिंग है, क्या कहेंगे?
4: बहुत अच्छा लग रहा है। इस दिन के लिए हम लोग सब वेट करते रहते और लालबाग बोले तो हम सब प्यार है इधर का, आप देख सकते हो।
2: क्या कहेंगे, आपकी क्या फीलिंग
5: है? अभी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है पर ये दिन हमारे लिए बहुत भावनिक रहता है क्योंकि बप्पा का हम इंतजार पूरा एक साल करते हैं और वो आज जाता है तो थोड़ा बुरा तो लग रहा है पर वो जब जाते हैं तो उसको जो जल्लोष के साथ उसको विदा करते हैं हम लोग।
2: बिल्कुल। तो आज का जो दिन होता है वो गम और खुशी दोनों के मेलजोल वाला दिन होता है क्योंकि एक तरफ जो है बप्पा का साल भर इंतजार करने के बाद जब बप्पा आते हैं तो उसकी खुशी होती है लेकिन आज का दिन उनकी विदाई का दिन होता है, विसर्जन का दिन होता है और इसीलिए जो भक्त होते हैं उनकी खुशी और दुख दोनों का तालमेल जो है वो देखने को मिलता है उनकी भावनाओं में।
1: तो आज गणपति बप्पा का विसर्जन होने जा रहा है और लोग इसी मौके पर बेहद भावुक भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। देखिए आज गणेश विसर्जन होने जा रहा है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या
6: है। सबसे पहले गणेश और अनंत चतुर्दशी के आपको
1: तो
0: तो ये छह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से शहर शहर बप्पा के जयकारों की गूंज है। हर गली हर मोहल्ले में आज विसर्जन की तैयारियां की जा रही हैं। बप्पा की प्रतिमा का आज विसर्जन होगा और उसी के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए मुंबई की, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लालबाग चौराहा की सवारी जो है, शोभा यात्रा जो है, उसकी तैयारियां की जा रही है।

जा रही है ताकि जब बप्पा की सवारी यहाँ से गुजरे तो वो रंगोली से होकर गुजरे और इसके लिए कई लोग लगते हैं इन रंगोलियों को बनाने के लिए। वहीं सड़कों पर, दुकानों पर भव्य तरीके से फूल मालाओं से सजावट की जा रही है। भक्त जितना उनके अंदर जोश है उतने वो उदास भी हैं, क्योंकि 10 दिन का ये जो समारोह चल रहा था, 10 दिन का जो महा उत्सव चल रहा था, महापर्व चल रहा था, उसका आज बप्पा की विदाई के साथ समापन हो जाएगा और बप्पा को अगले बरस आने का न्योता भी इसी के साथ दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो 10 दिन के गणेशोत्सव के बाद आज वो घड़ी आ गई है, वो दिन आ गया है जब बप्पा की प्रतिमा की विदाई होगी। तो 12 दिनों तक चले गणेशोत्सव का आज समापन हो रहा है। शहर शहर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो चुका है। चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर कोई और राज्य या शहर, बप्पा की विदाई धूमधाम से की जा रही है हर ओर, और खासकर मुंबई में जहां पर प्रशासन के सामने विसर्जन को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए गिरगांव चौपाटी पर खास इंतजाम किए गए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।

0: हमारे देश में गणेश प्रतिमा विसर्जन जो न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा रही है बल्कि आस्था, आपसी प्रेम और भावनाओं का भी उत्सव है। गणेश चतुर्थी से 10 दिन घर में विराजे गणपति बप्पा को जब नम आंखों से विदाई दी जाती है तो पूरा माहौल ही गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ जैसे जयकारों से गूंज उठता है। आज बप्पा की विदाई की बेला है। आज अनंत चतुर्दशी पर गौरी पुत्र की मूर्ति का विसर्जन है। एक भक्त का अपने आराध्य को विदा करने का ये वो भावुक पल है जब 10 दिन घर पंडाल में विराजित रही भगवान की मूर्ति को आज जल में विराजा जाएगा, जल में समर्पित किया जाएगा। इस विनती के साथ कि अगले बरस बाप्पा तू जल्दी आना।
1: किसी भी देवता को जिस प्रकार हम बुलाते हैं, अतिथि मान के हम बुलाते हैं, तो विदाई के समय भी हमारे मन में वही भाव होना चाहिए कि जिस स्वरूप में हमने उनका आदर किया, पाद्य अर्घ्य आचमनी दे करके पूजन करके, उसी क्रम में देवता को हम प्रणाम करें और कामना करें, हे प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना कि आप हर साल मेरे पास आते रहो। हाँ, अगर इस पूजन के क्रम में मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया हो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से कोई त्रुटि हो हो, तो हे गणनाथ मुझे क्षमा करें और पुनः अगले वर्ष मेरे घर पधारने की आप कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके भगवान गणपति को विसर्जित करें।
0: सनातनी परंपरा भी कहती है कि गणपति भगवान की जितने दिनों के लिए घर या पंडालों में स्थापना होती है उसी के अनुसार मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। यानी 1.5 दिन, 3, 5, 7 और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित करने की परंपरा रही है। पंचांग के अनुसार इस बार चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात 11:18 से शुरू हो गई है, जिसका समापन 25 सितंबर को रात 11:06 पर है। इसलिए गणेश विसर्जन 25 सितंबर की सुबह से शुरू हो गया है। ऐसे में मूर्ति विसर्जन का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से आरंभ हो गया है, जो सुबह 10:42 तक निर्धारित है। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 1:43 तक है। यानी हर साल बाप्पा की मूर्ति का विसर्जन हमें ये संदेश देता है कि जीवन में आने वाली हर चीज की एक समय पर विदाई निश्चित है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और प्रेम एक इंसान के अंदर जीवित रहे इसकी प्रेरणा गौरी पुत्र हमेशा देते रहे हैं। ऐसे में अनंत चतुर्दशी पर बप्पा उसी प्रेरणा को बरकरार रखने का आशीर्वाद देते हैं।
1: चतुर्दशी तिथि को हमारे यहाँ भगवान विष्णु के साथ संबंध है। 14 भुवन 1 पति हुई, चतुर्दश भुवनान विश्वा, ऐसा वेदों में उल्लेख आता है। तो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के 10 स्वामी होते हैं और गणपति को हमारे यहाँ गणाध्यक्ष माना गया। तो 10 दिशाओं से हम मंगल की कामना करें, 10 दिशाओं से समाज के लिए, परिवार के लिए उत्तम अवस्थाएं आए, इसलिए भगवान गणपति का 10 दिन का महोत्सव होता है और अनंत चतुर्थी

0: अष्टमी के दिन भगवान गणपति को प्रणाम करके उनको हम विश्राम देते हैं, विसर्जन करते हैं, इसलिए इस तिथि का बहुत ही महत्व है।
1: महाराष्ट्र समेत देश भर में आज गणपति मूर्ति विसर्जन का वो भावुक दिन है जब भक्त विदाई के साथ बप्पा के आशीर्वाद, सुख समृद्धि और नई उम्मीदों को अपने साथ लेकर लौटते हैं। यानी उस विदाई में भी भक्त विश्वास, भावना और उम्मीदों से भरी एक नई शुरुआत है और यही अनंत चतुर्दशी पर गणेश मूर्ति विसर्जन का सबसे सुंदर संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
2: तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज अनंत चतुर्दशी के दिन जब बप्पा की मूर्ति का हम विसर्जन करें तो विधि क्या होनी चाहिए, शुभ मुहूर्त कौन सा होना चाहिए और किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो बप्पा की मूर्ति के विसर्जन के वक्त।
3: जी, सबसे पहले आप सबको और जो जीएनटी को देख रहे हैं उन सबको जो है गणेश चतुर्दशी की शुभकामनाएं। और कहा जाता है, एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा, गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम होमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि
4: कंपेरेबल।
3: कहा जाता है कि गणेश चतुर्दशी के 10 दिन होते हैं और कहा जाता है इस बार जो है 12 दिन।
2: तो देखिए, संजय शर्मा जी से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसी बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो देश भर से निकलकर सामने आ रही है, खासतौर से महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से आज धूमधाम से विदाई की जा रही है और लोग भावुक हैं एक तरफ, दूसरी ओर कह रहे हैं गणपति बप्पा अगले बरस तो जल्दी आना, और कुछ इस तरह से ढोल ताशों के साथ, गीत के साथ, बाजे के साथ बप्पा की विदाई की जा रही है। जी संजय जी बोलिए।
3: गणेश जी को जो है इस बार हमने 12 दिन तक स्थापना किया क्योंकि तिथि जो है बढ़ गई और आज जो गणेश जी का विसर्जन है, कहते हैं कि प्रेम और श्रद्धा के साथ सबसे पहले जो है उनकी पूजा करें, अच्छे से आरती करें, दूर्वा चढ़ाएं, उनको प्रसन्न मुद्रा से जल इत्यादि देकर धूप दीप दें, मोदक चढ़ाएं और बिल्कुल जो है जैसे आप अपने बच्चे को ख्याल रखते हैं उस तरीके से भगवान जी का ध्यान रखें। और ध्यान रखने के पश्चात जो है ये भी कहें कि आपको अगले वर्ष भी हमारे यहाँ पर विराजमान होना है और गणेश जी की जो है आराधना करते रहें जिससे कि गणेश जी आपके घर में सदा विराजमान रहें। तो आज का दिन बड़ा विशेष है और आज के दिन जो शुभ मुहूर्त भी है, अभी दूसरा मुहूर्त जो है, अभी पहला मुहूर्त 10:42 तक है और उसके पश्चात जो है 12:13 से 1:43 तक है, फिर शाम को भी मुहूर्त रहेगा 5 से 11 तक। तो आज का दिन भगवान गणेश का दिन है और आज के दिन गणपति का ध्यान करें, भगवान विष्णु की भी पूजा करें और कहा जाता है कि ओम यश समृण मातृण जन संसार बंदना तो मुझे तस्मय विष्णु प्रभो विष्णु, भगवान विष्णु का भी ध्यान किया जाए, गणेश जी का भी और लक्ष्मी जी का भी ध्यान जो है आज के दिन किया जाए। और विसर्जन के वक्त जो है खास ख्याल रखा जाए कि भगवान को जो है धीरे धीरे करके जो है पानी में विसर्जित करें क्योंकि विसर्जन का अर्थ होता है विश्राम देना, तो भगवान जी को जो है विश्राम आप दें और ये भी न्योता दे के आए कि आप जो है फिर से अगले वर्ष जो है इन्हीं दिनों में जो है हमारे घर पर पधारें और हमारे घर के अंदर रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, धन प्रदान करें, लक्ष्मी प्रदान करें और हमारे दुखों को, क्योंकि विघ्नहर्ता है सभी दुखों को ही गणेश जी महाराज आप जो है हर लें। और कहा जाता है कि जो 10 दिन होते हैं जिनमें हम पूजा करते हैं तो इसमें क्या है कि हमें ज्ञानेन्द्री कर्मेंद्री प्राण महाभूत और मन जीवात्मा इन सब का भी जो है आपके शरीर को जो है उत्तमता देता है जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी के जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम होमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि इंग्लेश्वराय पाद पंकजम। और इस आज के दिन गणेश महापंच रत्नम का भी पाठ करें, मुदाकरात मोदिकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुना सुनाशकम नमामितम विनायकम। इस प्रकार से गणेश जी की आराधना करें और गणेश जी को खुशी खुशी जो है अपने घर से जो है विदाई दें और अपने जीवन में सुख शांति रहे, ये सब जो है प्रार्थना करें, पूरे विश्व का कल्याण हो इस तरह से जो है गणेश जी की पूजा करें। और गणों के ईश जो है गणेश है, तो इसी जो हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं उसके देवता हैं गणेश जी। और कहा जाता है कि गणेश के जो है कई रूप होते हैं, बाल गणपति जो है, तरुण गणपति, वीर गणपति, शक्ति गणपति, द्विज गणपति, ऋण मुक्ति दाता, की इनके जो स्वरूप है हर स्वरूप जो है कुछ ना कुछ देने वाले है, गजानन जो है बुद्धि देने वाले हैं। तो हमें क्या है कि भगवान का ध्यान करके और उनके मूल रूप को पूछना है और पूछने के पश्चात जो है उनको अंत में विदाई करें और उनको जो प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का उच्चारण करें।
2: जी बिल्कुल संजय जी, और कई सारी बातें हैं जो विसर्जन को लेकर आपसे जानकारी हमें लेनी है, आपके पास लौटेंगे कुछ ही क्षणों में। इसी बीच दर्शकों को बता दें जरा, इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने भी बड़े धूमधाम के साथ गणेश उत्सव के इस पर्व को मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियोज शेयर किए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से शीला वर्मा जी ने अपने गणपति की ये सुंदर सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके गौरी पुत्र की ये तस्वीर बेहद लूनी है। विघ्नहर्ता का ये छोटे लेकिन निराले स्वरूप को शीला जी ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर हमें भेजा है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से समृद्ध सापरे ने भेजी है, जिसमें उन्होंने अपने गणपति महाराज को विराजित किया। फूलों की सजावट और रंग बिरंगी रोशनी के बीच बप्पा का ये स्वरूप काफी आकर्षक लग रहा है। गजानन की इसी प्यारी सी तस्वीर को समृद्ध ने JNT के साथ शेयर किया है।
4: ओम गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं।
5: और चलिए वक्त हो गया एक शानदार खबर का। जापान में चल रहे एशियन गेम्स से डबल खुशखबरी आई है भारत के लिए, शानदार खबर आ रही है। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। कमलजीत और सुरुचि इंदर सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण अपने नाम किया। वहीं APS सोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार की तिकड़ी ने मेन्स 50 मीटर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही अब भारत के 19 मेडल हो गए हैं। छठे दिन भारत को अब तक 2 मेडल मिल गए हैं।

0: और चलिए बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जा रही है गणेश उत्सव, अगले बरस तो जल्दी है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स के छठवें दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर आज विधि विधान से बप्पा की विदाई की तैयारी, प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम, क्राउड कंट्रोल के लिए एआई कैमरा से होगी निगरानी। मुंबई में बप्पा की विदाई से पहले लालबाग चराजा के दरबार में पहुंचे अनंत अंबानी, पूजा करके लिया गणपति का आशीर्वाद, गजानन के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। गया जी में आज पितृपक्ष मेले का होगा शुभारंभ, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन, 10 अक्टूबर तक चलेगा मेला, उससे पहले लेजर शो से जगमग हुआ देवघाट। कुल्लू में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा की तैयारियां, इस बार एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति, 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव का रोमांच। एआई और एडवांस कंप्यूटिंग में भारत की बड़ी छलांग, आईआईटी दिल्ली ने बनाया स्वदेशी माइक्रो जीपीयू, घटेगी विदेशी निर्भरता।

0: तुझको अपना जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। 10 दिनों के महापर्व के समापन का दिन आ गया है। आज पूरे देश में गणपति बप्पा की विदाई की तैयारियां हैं। बप्पा के भक्त भावुक हैं। 10 दिनों तक श्रद्धालुओं के पूरे उत्साह के साथ बप्पा की सेवा की है। अब बप्पा की विदाई का समय आ गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विसर्जन की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में गणपति प्रतिमा विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल कुंड बनाए गए हैं। सरकार ने ये पहल की है ताकि विसर्जन के साथ पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम। मुंबई में आज सुबह से ही विसर्जन की चहल पहल दिख रही है। विसर्जन स्थलों पर बैरिगेटिंग की गई है और हर पंडाल के विसर्जन के लिए समय तय किया गया है। प्रशासन विसर्जन के सारे इंतजामों पर नजर बनाए हुए है ताकि विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। विसर्जन के दौरान भारी भीड़ भी जुटती है, ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए किस तरह से मुंबई में विसर्जन की तैयारियां की गई हैं। आर्टिफिशियल कुंड बनाए जा रहे हैं ताकि बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन अच्छे से हो सके। कई समुद्र में भी लोग बप्पा का विसर्जन करते हैं, तो आज के दिन गिरगांव चौपाटी हो, जुहू बीच हो, वहां भी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का, मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो छोटे छोटे पंडाल होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल कुंड बनाए जाते हैं ताकि लोगों को इतनी दूर ना जाना पड़े और ज्यादा भीड़ ना हो, ताकि भीड़ को नियंत्रण करने में भी प्रशासन को कोई दिक्कत ना आए। तो छोटे छोटे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनाए जाते हैं ताकि जो लोग घर में बप्पा को स्थापित करते हैं, जो छोटे छोटे पंडाल होते हैं, उनका विसर्जन हो सके।
1: बारह दिनों तक चले गणेश उत्सव का आज समापन हो रहा है। शहर शहर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो चुका है। चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर कोई और राज्य या शहर, बप्पा की विदाई धूमधाम से की जा रही है। खासकर मुंबई में, जहां पर प्रशासन के सामने विसर्जन को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से करने की बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए गिरगांव चौपाटी पर खास इंतजाम किए गए हैं। दिखाते हैं आपको।
2: जिस उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ बप्पा का आगमन हुआ था, उसी जोश और उत्साह के साथ बप्पा की विदाई भी हो रही है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है, जहां लोग बप्पा की मूर्तियों को विसर्जित करने से पहले उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आए। पूजा खत्म हुई तो इन गणेश भक्तों ने आर्टिफिशियल तालाब में बप्पा की मूर्तियों को बारी बारी से गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष के साथ विसर्जित कर दिया। बप्पा को विदा करते इन भक्तों की आंखों में बिछड़ने का भावुक पल था, लेकिन दिल में एक ही विश्वास था कि विघ्नहर्ता गणेश अगले बरस फिर आएंगे और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगे।
3: गणपति बप्पा उठला,
4: गणपति बप्पा
3: मोरिया,
4: एक लाडू फूटला,
3: गणपति बप्पा उठला।
5: 10 तारीख को हमारे गणपति जी का आगमन हुआ था बहुत हर्षोल्लास के साथ, और एकादशी के बाद जिस हर तरीके से इस बार भी हमने गणपति विसर्जन के लिए आए, बहुत जोरों से बरसात है, लेकिन बच्चों में और सब में हमें उतना ही हर्षोल्लास है कि इतने ही जोर शोर से अगली बार भी गणपति जी हमारे यहाँ आगमन होंगे।
2: गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई की सड़कों पर भी आज आस्था और भक्ति का सैलाब नजर आने वाला है। तमाम छोटे बड़े गणपति पंडाल अपनी अपनी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए धूमधाम से निकलेंगे। लाल बाग चा राजा हो या गणेश गली के मुंबई चा राजा, अंधेरी चा राजा हो या फिर घाटकोपर के महाराजा हो, सभी मंडल बप्पा को विदाई देने के लिए तैयार हैं, और तैयार है बीएमसी और मुंबई पुलिस भी। बीएमसी और मुंबई पुलिस की ये तैयारी गिरगांव चौपाटी पर देखने को भी मिल रही है, जहां बीएमसी का विशाल मंच बनकर तैयार है।
6: एक बहुत बड़ा योगदान इस सफल महापर्व में बीएमसी को भी जाता है। बीएमसी आने के बृहन मुंबई महानगर पालिका हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के गिरगांव चौपाटी पे देखिए एक बहुत ही ज्यादा भव्य मंच बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाया गया है। खास बात यह है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने यहां आने वाले वो सारे रास्ते जहां से गणपति बप्पा अपने हुजूम के साथ जुलूस के साथ अपने श्रद्धालुओं के साथ उतरेंगे, आसपास के झाड़ों की जो टहनियां हैं उसे काट दी गई है, सड़कों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और साथ ही साथ ये जहां मौजूद है गिरगांव चौपाटी है इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया गया है ताकि सभी यहां पर आकर के अपने गणपति बप्पा का विसर्जन बड़े ही खुशी खुशी कर सकें।
2: विसर्जन के रूट पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस के 22,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद 6 ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, 9 एडिशनल सीपी, 38 डीसीपी और 66 एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी संभालेंगे। आरएएफ, एसआरपीएफ, क्विक रिस्पांस टीम और फोर्स वन को भी तैनात किया गया है। साथ ही हर हलचल पर नजर रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और ड्रोन कैमरा का सहारा भी लिया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने लोगों से विसर्जन के दौरान संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है।
6: मुंबई पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त है। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं, वो रास्ता दिखाऊं जहां से मुंबई में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं जिनमें लालबाग के राजा, चिंतामणि, तेजुका का राजा, गणेश गली, परेल का महाराजा, परेल का राजा विघ्नहर्ता, लंबोदर, तमाम बड़े पंडालों के ऊंची ऊंची गणेश जी की प्रतिमाएं यहीं से होकर के सीधे गिरगांव चौपाटी में विसर्जन करने के लिए चले जाएंगे। आपको बताएं कि साउथ मुंबई का ये गिरगांव चौपाटी है जहां पर तमाम बड़ी ऊंची गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है।
7: उसके हिसाब से बीएमसी ने पूरे पैमाने पे कोशिश करके तैयारी की है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो समंदर में जो अपनी रेत है, रेत पे कोई गाड़ियाँ वगैरह ना फंसे, इसके लिए हम लोग ने एक 1200 के लगभग हम लोग ने लोखंड के प्लेटें बिछाई है जिससे कि ट्रॉली या वगैरह ना फंसे और विसर्जन स्मूथली हो सके। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो 6 फुट के नीचे की मूर्ति है उसके लिए विसर्जन के लिए हम लोग ने आर्टिफिशियल पौंड बनाया है। 10 के आसपास वो पौंड की यहाँ पे हम लोग ने व्यवस्था की है। उसके अलावा यहाँ पे छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ, उनकी पार्किंग की भी भरपूर मात्रा में हम लोग ने प्रोविजन करके रखी है।
2: उधर महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी गणेश विसर्जन को लेकर जोरदार तैयारी है, जिसकी एक तस्वीर जामनगर से सामने आई जहाँ महानगर पालिका की ओर से बनाए गए आर्टिफिशियल कुंड में गणेश प्रतिमाओं के सुरक्षित विसर्जन के लिए स्थानीय तैराकों की टीम तैनात की गई है जो लोगों से गणेश प्रतिमाओं को लेकर कुंड में सुरक्षित तरीके से विसर्जित कर रही हैं। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी बीच गणपति बप्पा के विसर्जन को लेकर तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों के बीच बहुत भक्ति आस्था उनके मन में होती है, गणपति बप्पा को लेकर प्रेम उनके मन में होता है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ गलतियां हो जाती हैं गणपति विसर्जन के दौरान, तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है।
8: देखो, गणेश जी की जब स्थापना करते हैं, स्थापना से लेकर के और अंतिम दिन विदाई तक का जो समय होता है उसमें सबसे पहले आप प्रेम से जो है गणेश जी को रखें और उनके ऊपर दूर्वा जरूर चढ़ाएं और चावल पीले कर करके रखें, मोदक चढ़ाएं और जब घर से गणेश जी निकलें तो उसमें से थोड़ा सा चावल, पीला वाला चावल अपने पास बांध करके रख लें और गणेश जी को सुपारी, जनेऊ ये सब जो है जरूर अर्पित किया जाता है। पान के पत्ते पे लौंग, इलायची और सुपारी रख करके और प्रणाम करें और जब विसर्जन करें तो उसके बाद जो थोड़ा सा जल का छींटा दे दें और गणेश जी को जो धूमधाम से माला वाला पहना करके रक्षे से लेके जाएं और आरती जरूर करें और आरती कर करके और पूरा श्रृंगार कर करके जिस तरीके से विदाई होती है पूरे श्रृंगार करके और आरती को अच्छे से करें और अच्छे मंत्रों द्वारा सुख और चैन से अंदर से खुशी रहे। मतलब कहते हैं कि जब गणेश जी विदाई ले रहे होते हैं तो व्यक्ति का मन जो है दुखी हो जाता है कि इतने दिन घर पर रहने के पश्चात जो हम उनको विदा कर देते हैं, तो आरती करें, जय

0: या इस प्रकार से आरती करें अच्छे से विधि विधान से, और खुशी होकर के जो है गणपति को विसर्जित करें। और कहते हैं कि गलती होने की तो संभावना नहीं होती, और एक बार क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूज्यम चेव न जानामि क्षम्यांतम परमेश्वरा। तो कहते हैं कि जब भी आप विदा करते हैं तो क्षमा प्रार्थना करें और आशीर्वाद लें उनका, और एक बार फिर से बोलें कि हे गणपति महाराज, आपकी जो प्रतिमा है वो जो है हमने विसर्जित कर दी, और आप कहते हैं गणेश जी कहीं जाते नहीं है, उनकी प्रतिमा को आप विसर्जित कर दें और आप दोबारा अगले साल हमारे घर में इसी प्रकार से विराजमान हो और हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, परिवार का कल्याण हो और रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी और सब कुछ हमारे जीवन में प्राप्त हो, जिस प्रकार से आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त है। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो मूर्ति है ज्यादातर जो है बैठी हुई गणपति की जो प्रतिमा होती है वो ही घर में स्थापित करें, उससे जीवन में सुख शांति आती है और प्रसन्न चित्त होकर के गणेश जी को जो है ढोल और नगाड़ों के साथ ले जा करके विसर्जित करें और खुशी खुशी विसर्जन करके और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, जिससे कि आपके जीवन में शुभता सफलता और सम्मान की प्राप्ति हो और गणेश जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर जीवन में बनी रहे। और आज जैसे अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ही ना हो, तो ऐसा समय जब आप विसर्जन करते हैं, और कहा जाता है कि इसमें 14 गांठ का जो है धागा जो है बांधकर भगवान विष्णु को चढ़ा करके और उनको उनको टच करके आप अगर अपने हाथ में बांधते हैं तो उससे भी आपके जीवन में सभी कष्टों से आपको निवृत्ति होती है। ये आज एक बहुत बड़ा दिन होता है, इसमें भगवान विष्णु की गणपति की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा और गणपति विसर्जन भी सब किया जाता है। तो ये आज का दिन हमें सुख देने वाला है, और गणेश का अर्थ होता है गणों के ईश ही हैं ये, और इनकी पूजा से आपके
1: जी
0: जीवन में वो सफलता सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है, जिस प्रकार से उनकी आंखें छोटी हैं आपको फोकस होने की शक्ति देती हैं, सूंड लंबी है कि आपको हमेशा सोच विचार करके काम कार्य करना
1: जी
0: चाहिए, कान बड़े हैं सूख कान हैं तो इसलिए आप जो है हमेशा भद्र सुने, अच्छा सुने, बुराई को कभी भी ना सुने। तो इस प्रकार से जो गणेश की शिक्षा है हमारे जीवन में, बुद्धि के प्रदाता हैं, हमें जो ज्ञान और बुद्धि देते हैं, तो हमें उनका स्मरण करते रहना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि रहे। कहा जाता है लर्निंग मोर अर्निंग, जीवन
1: जी
0: के अंदर अगर आप लर्न अच्छा करोगे तो आपका अर्न भी अच्छा अपने आप हो जाएगा।
1: संजय जी,
0: गणेश जी का
1: अनंत
0: संदेश अच्छा प्राप्त।
1: चतुर्दशी का दिन है आज, जिसे बेहद शुभ माना जा रहा है, और आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब बप्पा की प्रतिमा का हम विसर्जन करें तो क्या उत्तर पूजा उद्धासन पूजा करना जरूरी है? इसका महत्व क्या है, जरा इसके बारे में बताइए।
0: जी देखो, बहुत महत्व है इसका, और क्योंकि कहा जाता है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें पूर्णता का प्रतीक, अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी भी अंत ना हो, तो अनंत शब्द हम कहते हैं ओम अनंताय नमः, ओम वासुकाय नमः, ओम शेष नागाय नमः, ओम पद्माय नमः, महापद्माय नमः। तो ये क्या है कि हमारे जीवन के अंदर सुख और आनंद देने वाला है, और इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा भी अवश्य करें, पंचामृत से भगवान विष्णु को भोग लगाएं, और आज के दिन विशेष करके गणेश जी को दूर्वा सबसे ज्यादा प्रिय है, मोदक सबसे ज्यादा प्रिय है, वो सब चढ़ा करके और गणेश जी को धीरे धीरे जो है विसर्जित करें, और आज का दिन जीवन में सुख और आनंद देने वाला है। कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो आज के दिन अगर आप उसका प्रारंभ करते हैं, कहते हैं जिस दिन का अंत ही नहीं है अनंत है, और उस दिन प्रारंभ किया जाए तो वो जीवन में शुभता देता है। और आज का दिन इस तरीके से पूरे विधान के साथ जो है
1: जी
0: मंत्रों को उच्चारण करें, और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र।

0: भगवान का जितना आप ध्यान करेंगे, जितने आप बिल्कुल लाइट होकर के चलेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करते
1: बिल्कुल
0: रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो भगवान आपके मन की बात पहले से ही जानते हैं। तो मैं उनका स्मरण मात्र करने से ही
1: बिल्कुल,
0: सारी चीजें हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती हैं।
1: बहुत
0: इस
1: शुक्रिया
0: प्रकार से
1: संजय जी
0: ध्यान
1: आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहां भी गणेश विसर्जन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी के अलग अलग इलाकों में 81 कृत्रिम विसर्जन कुंड तैयार किए गए हैं। इन कुंडों को बनाने का उद्देश्य श्रद्धालुओं को प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि यमुना को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और इन कृत्रिम कुंडों में गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही पूजा सामग्री के निस्तारण की भी व्यवस्था की जा रही है। और इसी पर हमारे सहयोगी मनीषा लड्डा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: आस्था भी बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए खास तौर पर कृत्रिम घाट जो है वो बनाए हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। इस वक्त हम आस्था कुंज पार्क में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बड़ा सा कृत्रिम घाट जो है वो नजर आ जाएगा, ताकि लोगों की आस्था जो है वो पूरी तरीके से बनी रहे और वो गणपति विसर्जन जो है वो अच्छे से शांति के साथ जो है वो कर सके। दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी में अलग अलग इलाकों में कुल 81 के करीब जो है इस तरीके के कुंड जो है वो तैयार किए गए, ताकि श्रद्धालु जितने भी है वो गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन इन्हीं स्थानों पर आकर जो है वो कर सके, किसी को किसी तरीके की असुविधा ना हो उस चीज का ध्यान रखा गया है। इसलिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है इस तरीके के कुंड जो है वो बनाए गए हैं, ताकि लोग जो है गणपति जी की जो प्रतिमा है उसका जो विसर्जन है वो सीधा जाकर यमुना में ना कर सके, क्योंकि यमुना को भी हर तरीके से बचाना है। जिस तरीके से हमारी यमुना पोल्यूटेड हो रही है उसको भी बचाना है, तो उसी चीज को देखते हुए जो है दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है और दिल्ली के अलग अलग 81 इलाकों में इस तरीके के कुंड जो है वो बनाए गए हैं। 10 दिन तक गणपति जी को जो है लोगों ने घर में विराज उनकी स्थापना करी है और अब बारी है गणपति बप्पा की विदाई की, तो विदाई भी अच्छे से और सुख समृद्धि के साथ शांति के साथ हो सके इस बात का दिल्ली सरकार ने ध्यान रखा है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है इस तरीके के कृत्रिम घाट जो है वो बनाए गए, ताकि यमुना नदी के पास यमुना घाटों पर जो है कोई भी जाकर जो है गणपति विसर्जन ना कर पाए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
1: तो इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए। महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले मयूर निकुम ने अपने गणपति की सुंदर सी तस्वीर हमसे शेयर की है, जिसमें बप्पा को लाल, पीले और गुलाबी फूल अर्पित किए गए हैं। लाल रंग की पगड़ी बप्पा पर खूब जच रही है, ये तस्वीर संजना बंसल ने भेजी है। बप्पा को बड़े ही प्रेम भाव से मोदक भोग के तौर पर चढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले प्रशांत धापोड़कर ने भेजी है, जिसमें उन्होंने अपने गणपति महाराज के साथ 1980 के दशक को दर्शाया है। विघ्नहर्ता का ये छोटा सा स्वरूप बेहद निराला लग रहा है। प्रशांत ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर हमें ये वीडियो भेजा है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लात।
8: एशियन गेम्स के छठे दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर आज विधि विधान से बप्पा की विदाई की तैयारी, प्रशासन की ओर से किए गए हैं पुख्ता इंतजाम, क्राउड कंट्रोल के लिए AI कैमरों से होगी निगरानी। मुंबई में बप्पा की विदाई से पहले लालबाग चौराहे के दरबार में पहुंचे अनंत अंबानी, पूजा करके गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया, गजानन के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। गया जी में आज पितृपक्ष मेले का होगा शुभारंभ, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन, 10 अक्टूबर तक चलेगा मेला, उससे पहले लेजर शो से जगमग हुआ देवघाट। कुल्लू में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा की तैयारियां, इस बार एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति, 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव का रोमांच। AI और एडवांस कंप्यूटिंग में भारत की बड़ी छलांग, IIT दिल्ली ने बनाया स्वदेशी माइक्रो GPU, घटेगी विदेशी निर्भरता।
6: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क BLDC फैंस।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे गणपति प्रतिमा के विसर्जन की और अनंत चतुर्दशी की, 12 राशियों की बात करेंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात के 11:06 तक नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 11:22 तक चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गणपति प्रतिमा के विसर्जन के बारे में। तो गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और गणपति प्रतिमा के विसर्जन की महिमा क्या है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश महोत्सव या गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश जी के प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और गणपति प्रतिमा का विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। कुल मिलाकर 9 दिन जितने दिन गणपति महोत्सव होता है इसको गणेश नवरात्रि भी कहते हैं। माना जाता है कि जब आप गणपति प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो भगवान गणेश सूक्ष्म रूप से वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। गणपति प्रतिमा की स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा है और विसर्जन वाले दिन पूजा उपासना प्रार्थना करके अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ विशेष उपाय अगर इस दिन आप करें तो जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, मन बेहतर होगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय आपको हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, पारिवारिक जीवन का ध्यान दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब आप गणपति की मूर्ति का, प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो उसका तरीका क्या है। विसर्जन वाले दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है या विसर्जन हो जाने तक केवल फलाहार करिए। घर में जो आपने मूर्ति स्थापित की है इसका विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब अर्पित करें। इसके बाद गणपति की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइएगा। अगर मूर्ति या प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रख कर ले जाइए, अन्यथा लोगों की सहायता से ले जाइए। प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को अक्षत अर्पित किया था उस अक्षत को अपने घर में बिखेर दीजिए। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के स्ट्रैप वाली घड़ी या चमड़े का बना हुआ पर्स अपने पास में मत रखिए। और जब मूर्ति को विसर्जित करने ले जा रहे हैं तो नंगे पैर मूर्ति ले जाइए और इसका विसर्जन करिए। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र न तो स्थापित करिए और न इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की मूर्ति स्थापित करना भी अच्छा है और विसर्जन करना भी अच्छा है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की प्रार्थना करिएगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक तनाव आपका अब कम होता दिख रहा है, धन का आगमन होता रहेगा, संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। चतुर्दशी तिथि को केवल गणपति प्रतिमा का विसर्जन ही नहीं होता, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक अनंत सूत्र हाथ में बांधा जाता है और व्रत समाप्त करने के समय इसको खोल दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी में नमक का सेवन नहीं करते। जब शाम को पूजा के बाद व्रत समाप्त करते हैं, पारायण करते हैं, तो उसमें मीठी चीजें जैसे सिवैयां या खीर खाई जाती है। अनंत चतुर्दशी पर अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। और जैसा आपको आरंभ में बताया कि अनंत चतुर्दशी पर दान करने से और शुभ कार्य करने से इसका अनंत फल आपको प्राप्त होता है। धनु राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग दिख रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, अभी धैर्य बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और आप अलग अलग समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो विसर्जन के समय में क्या उपाय करें कि इससे मुक्ति मिले? एक भोज पत्र या एक पीला कागज ले लीजिएगा, अष्टगंध की स्याही से या नई लाल स्याही की कलम ले लें, भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाइए, उसके बाद स्वस्तिक के नीचे ओम गं गणपतये नमः ये मंत्र लिखिए। इसके बाद एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखिएगा और जो लिखावट करेंगे उसमें काट पीट मत करिएगा और कागज के पीछे कुछ मत लिखिएगा। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र दोबारा लिखें, ओम गं गणपतये नमः, सबसे अंत में स्वस्तिक बना दें। इसके बाद कागज को मोड़ कर रक्षा सूत्र से बांध लें और गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दें। जब गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे उसी के साथ अप

अनंत चतुर्दशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र धन जो भी संभव हो दान करिए। ऐसा करने से आपको दान का अनंत शुभ फल जीवन में प्राप्त होगा। कि गणेश प्रतिमा के विसर्जन के अवसर पर तमाम समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं? हरे धागे में गूंथ करके दूरवा की या दूब की एक माला बना लीजिए। इस माला को सामने रख कर 108 बार ओम विघ्न हर्त्रय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और इसके बाद ये माला गणेश जी को पहना दीजिएगा। जब आप मूर्ति का विसर्जन करेंगे तो उसके साथ माला का विसर्जन भी कर दीजिएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेशोत्सव के पर्व को मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले आचार्य अंजू भल्ला ने अपने गणपति की ये सुंदर सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें बप्पा को लाल, पीले और गुलाबी फूल अर्पित किए गए हैं। लाल रंग की पग बप्पा पर खूब जच रही है। वही दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले अमर खन्ना ने भेजी है, जहां पर गोल्डन रंग की

0: बप्पा की मनमोहक प्रतिमा विराजमान है। कलश स्थापना के साथ साथ गणपति को फल और मिठाई का भोग लगाया गया है। विघ्नहर्ता का ये छोटे लेकिन निराले स्वरूप को अमर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर हमें भेजा है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेम लक्षणा भक्ति में साधक को एक बात याद रखना होगा, पूछो क्या? संपूर्ण समर्पण अपने प्रभु के प्रति रखना होगा। परमात्मा के अलावा भगत को कहीं अन्यत्र समर्पण की आवश्यकता नहीं। पुष्कर के पागलों, एक बात तुम याद रखना, चरण के बल से हम मंदिर तक जा सकते, पर आचरण के बल से हम परमात्मा तक जा सकते। भगवान तक जाने का सर्वोत्तम साधन आचरण है। देखो, हम लोग हैं जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा। हनुमान जी हैं महात्मा, साधु संत के तुम रखवारे, और राम जी हैं परमात्मा। तो जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कौन करा सकता है? महात्मा, गुरु। गुरु के अलावा गोविंद से कोई नहीं मिला सकता। जयपुर में दो तीन स्थान बड़े दिव्य हैं। एक तो गोविंद देव जी, एक खोले के हनुमान जी, एक जयपुर के ही बीच में एक जगह है चांदी की टकसाल वाले काले हनुमान जी, बड़े दिव्य। भैया, गोविंद देव जी ठाकुर जी के यहां पर एक महात्मा जी कथा सुनाने आए, भक्तमाल जी की। बीच में उन्हें काम आ गया तो घर चले गए, तो फिर लौट कर आए, तो श्रोताओं से पूछा कि हमने कहां तक भक्तमाल जी सुनाई, बताओ। तो श्रोता इधर उधर देखने लगे, किसी को याद ही नहीं था। तो पंडित जी बोले कि जब तुम्हें याद नहीं है तो कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही जाने लगे, वैसे ही गोविंद देव जी मंदिर से बोले, व्यास जी, भक्त नामदेव तक का चरित्र सुना दिया, इसके आगे की कथा सुनाई जावे। इस कथा की घटना का आशय हम कहना चाह रहे, यदि हमारा भगवान के प्रति समर्पण पक्का होगा तो परमात्मा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। समर्पण पक्का हो तो कौन कौन भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण करना चाहता? पक्का? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। तो एक सूत्र याद रखो, हमें चरण के बल से मंदिर नहीं जाना, आचरण के बल से परमात्मा तक जाना है। तो सही बात बोले अंत में, कह दो बोलो। जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, और जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती। तो संस्कार रहेंगे, आचरण रहेंगे, तो भगवान अवश्य मिलेंगे। हनुमान जी महाराज की। प्रेम लक्षणा भक्ति में निष्काम भाव, अहर्निश ध्यान, तीसरा संपूर्ण समर्पण, और चौथा भाव प्रधान। देखो, किसी को अपना आप बना सकते हो तो दो मार्ग हैं। कितने? दो। पूछो कौन कौन, जोर से पूछो। एक है प्रभाव, दूसरा है स्वभाव। या तो किसी को अपना प्रभाव से बना सकते या अपना स्वभाव से। पर प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका प्रभाव रहेगा, पर किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे। भगवान को ना प्रभाव से अपना बना सकते ना स्वभाव से। भगवान को

विलक्षणा भक्ति का चौथा चौथी बात ध्यान रखने योग्य है, वो भाव है, भगवान को भाव से भजो। किससे भजो? अरे बोलो जम के, भाव से भजो। पूछो कैसे, जोर से पूछो। एक लास्ट बात सुनो। एक गांव का चरवाहा था, गायें चराता था, सीधा साधा, पढ़ा लिखा था नहीं। एक दिन एक महात्मा के पास गया, बोला महाराज हमें कोई मंत्र दे दो, हम जिसे जपें। तो महात्मा ने मंत्र दिया, ओम गोविंदाय नमः नमः, इस मंत्र का जप करो। अच्छा वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो थोड़ी देर तो याद रहा, ओम गोविंदाय नमः, बाद में भूल गया। अब रात भर खुजली करके सोचे कि मंत्र क्या था। अब गोविंदाय तो भूल गया, इतना भर ध्यान रहा कि गा से है, पर ये नहीं है कि है क्या। तो गा से सोचते सोचते सोचते रात हो गई, तो एक मंत्र याद आया, ओम गप्पू नमः। गोविंदाय भूल गया, गप्पू जी याद आ गया। उसे लगा यही मंत्र है, उसने ली माला, आ गया आ गया आ गया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पत्नी बोली भोजन कर लो, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, भूल जाएंगे मंत्र, चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप। तो पत्नी बोली मंत्र जप कर लो पर भोजन तो पा लो। ना ना ना ना हट, एक तरफ दिमाग डिस्टर्ब ना कर, मंत्र भूल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से याद आया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पत्नी बोली बताओ बड़ी मुसीबत, तो इसका मतलब तुम भोजन नहीं करोगे, तुम नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे। बोले तो उपाय क्या है? पत्नी बोली एक काम करो, जब तक तुम भोजन करो हम जप रहे। सो पत्नी रोटी लावे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप, सब्जी गप्पू जी गप्पू जी सब्जी गप्पू जी गप्पू मिर्चा गप्पू जी मिर्ची गप्पू जी गप्पू जी गप। अब जब पति ने भोजन कर लिया तो पत्नी बोली लो अपना मंत्र लो तुम जपो गप्पू जी। तो इसने भैंसियां ली गाय ली चराने गया, लाठी लेवे गाता जाए बोलता जाए गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसी समय भगवान कृष्ण रुक्मणी जी घूमने निकले, ये एक पत्थर पे बैठा हुआ माला लेके जोर जोर से बोलने लगा कि भूल ना जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा ये किसका जप कर रहा? भगवान बोले हमारा। तो रुक्मणी जी बोली हमने आपके बहुत नाम पढ़े, कृष्ण पढ़ा, गोविंद पढ़ा, मुरारी पढ़ा, माधव पढ़ा, चित चोर, माखन चोर, कृष्ण कन्हैया, कान्हा, गोवर्धन नाथ, श्याम सुंदर, पर हमने गप्पू जी नहीं पढ़ा। भगवान बोले ये हमारा गोपनीय नाम है। तो बोले हमने नहीं पढ़ा, आप झूठ बोल रहे। तो भगवान बोले ज्यादा भरोसा नहीं है तो जाके पूछ आओ, जो नाम जप रहा वो बता देगा। तो रुक्मणी जी ने दूसरा रूप बनाया दूसरी स्त्री का और पहुंच गई, भैया किसका नाम जप कर रहे हो? और वो कर रहा था गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसने सोचा बात करेंगे और फिर भूल जाए, बड़ी मुश्किल से तो याद आया। उसने इशारा किया खिसक लो, और वो अब तो रुक्मणी जी तो खड़ी इशारा समझ ना पाई, अरे भाई क्या कह रहे हो, किसका नाम जप रहे हो, बताते हो तो भैया कौन भगवान का नाम है। अब वो जोर जोर से गए गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। लेकिन रुक्मणी जी ने फिर पूछा, इस बार उसको गुस्सा आ गई, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप, भैया किसका नाम है? तेरे खसम का। अरे रुक्मणी जी भागी भागी गई भगवान के पास, उसने तो गुस्सा में बोला। रुक्मणी जी भागी भागी गई, भगवान बोले क्या हुआ? पीछे छिपे भगवान खड़े थे। रुक्मणी जी बोली प्रभु वो तो हमें पहचान गया। क्या पहचान गया? हमने पूछा कि किसका नाम जप रहे, तो दो बार तो बोला नहीं, तीसरी बार जब हमने पूछा किसका जप रहे बताओ तो गुस्सा होके बोला तेरे खसम।
बताओ वो पहचान। भगवान बोले देखो हमने पहले ही कहा था हमारा नाम जप है ये हमारा मंत्र। तो भगवान से रुक्मणी जी बोली प्रभु एक बात बताओ क्या आपका ये नाम कब पड़ा। भगवान बोले जब हम छोटे थे ना यशोदा मैया की गोद में बैठे थे तब माँ माखन को लौंदा लेके आई। मैया विराजमान है गई बाने माखन को लौंदा सामने धर दयो। मैया मोरो करवे सिंगार रुक्मणी बाई समय मैंने मैया को इधर उधर बातन में फंसा के कटोरी ते वो माखन को लौंदा लेके एक ही बार में गप्पुड़ा लाओ। तो हमारा नाम उसी दिन से गप्पू जी पड़ गो। अरे ये तो कथा कहने की है अर्थ ये है

भजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से ही प्रेम भाव पूरत पुकार ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान को क्या प्रिय है? बोलो बोलो बोलो, भाव प्रिय है। तुलसीदास जी ने भी ये बात कही एक जगह और, पूछो क्या।

वाल्मीकि जी उल्टा नाम लेकर ब्रह्म के समान हो गए, बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन सुनो, नाम जपना बड़ी बात नहीं है, कहां से जप रहा है, जीव है जीव से कि दिल से, ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान भाव प्रधान भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, पदार्थ या दिखावा की भक्ति को स्वीकार। तो प्रेम लक्षणा भक्ति का चौथा लक्षण है भाव से भगवान को भजे। किसको, कहां से, जिभा से, दिमाग से कि दिल से, हाँ किसको। और अंतिम बात है प्रेम लक्षणा भक्ति में पांचवी जो बात है वो बहुत अद्भुत है, पूछो क्या। अनन्य भाव रखें। कौन सा भाव, अनन्य। ये अनन्य क्या है, है? बताओ। अनन्य का मतलब है उनके अलावा अन्य कोई नहीं, एक के अलावा अन्य, इसी को कहते हैं अनन्य। क्या कहते हैं, हमने एक महात्मा से कहा, महाराज जी एक संत थे, हमने कहा भगवान के अनन्य भक्त बन जा, बोले हम अनन्य के नहीं है फनन्य के। तो हमने कहा ये फनन्य क्या है, बोले अनन्य में तो ये भी है कि कोई और है, फनन्य में तो कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं है। भगवान के अलावा किसी को भजने की आवश्यकता, ये प्रेम लक्षणा भक्ति के पांच लक्षण हैं। कितने, अनन्य भाव, प्रेम पूर्वक भाव, अहर्निश निष्काम भाव, अहर्निश ध्यान भाव और संपूर्ण समर्पण भाव। इन पांच भाव के साथ जो भक्ति करता है उसकी प्रेममयी भक्ति होती है। ऐसी भक्ति के भगत मीराबाई, प्रहलाद, सूरदास, तुलसीदास, कर्माबाई, जनाबाई और उड़ीसा के संत माधवदास, ये सब ऐसी भक्ति के मार्ग के पथ प्रदर्शक हुए। इसलिए भैया इनको भगवान की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी। जय जय जय हनुमान। कृपा करो गुरुदेव की। अच्छा, गुरु की तरह कृपा क्यों करें, क्योंकि गुरु की एक आदत होती है। पूछो क्या। तुमने कुम्हार देखा, कुम्हार जो मटका बनाता, भैया जो कुम्हार मटका बनाता, जब मटका कच्चा रहता तो लकड़ी के थपेड़े से मटके को पीटता, पीटता कि नहीं, बोलो हाँ जी या ना जी, पीटता ना, तो काहे पीटता। एक दिन मिट्टी ने कुम्हार से कहा, हमसे ही पैसा कमाते हो, हमको ही पीटते हो, शर्म नहीं आती ठटरी के भरे। कुम्हार ने कहा, मिट्टी तुम मटका बन रही हो, मटका बनना है तो पिटना जरूरी है, यदि हम लकड़ी के थपेड़े से पीटेंगे नहीं तो सुराग रह जाएगा, कम कीमत में बिकोगे और पानी तुम्हारे अंदर से रिसाव करेगा, इसीलिए हम पीटते हैं।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था, अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
18: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
19: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
20: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
21: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
22: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेशोत्सव के इस पर्व को मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले अर्पित दिवाकर ने अपने गणपति की ये सुंदर सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें बप्पा के पंडाल को लाल, पीले और गुलाबी फूलों से सजाया गया है और साथ ही बप्पा को भोग लगाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली भवानी सिंह ने भेजी। यहां पर बप्पा की सफेद रंग की प्रतिमा का कई लाइटों से श्रृंगार किया गया है और साथ ही बप्पा को मनमोहक माला भी पहनाई गई है।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है
13: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
11: एशियन गेम्स के 6th दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर।

पूजा के पंडाल के बाहर बनाई गई रंगोली, उमड़ा श्रद्धा का समंदर। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। कुल्लू में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा की तैयारियां। इस बार एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव का रोमांच। एआई और एडवांस कंप्यूटिंग में भारत की बड़ी छलांग। आईआईटी दिल्ली ने बनाया स्वदेशी माइक्रो जीपीयू, घटेगी विदेशी निर्भरता। पहाड़ों पर बदला मौसम, सिक्किम में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: एशियन गेम्स में आज भारत का शानदार आगाज, शूटिंग में देश को मिले दो मेडल, भारतीय एथलीट्स ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल नाम किया। कमल जी सुरुचि की जोड़ी ने रचा इतिहास, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम जीता गोल्ड। कमलजीत और सुरुचि सिंह ने दक्षिण कोरिया की मजबूत जोड़ी को एक तरफा अंदाज में पछाड़ा, एशियन गेम्स में भारत का यह दूसरा गोल्ड मेडल। पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन टीम इवेंट में भारतीय तिकड़ी ने भी किया कमाल, शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने सटीक निशानेबाजी का किया प्रदर्शन, इन्होंने कुल 1762 अंक के साथ जीता रजत पदक। आज देश भर में मनाया जा रहा है अनंत चतुर्दशी का पर्व, गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस तू जल्द ही आ के जय घोष के साथ बप्पा की विदाई के दिन। अनंत चतुर्दशी पर आज देश भर में मूर्ति विसर्जन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा के बाद श्रद्धालु देते हैं बप्पा को श्रद्धापूर्वक विदाई। अनंत चतुर्दशी पर की जाती है भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा, पूजा के बाद श्रद्धालु परंपरा के अनुसार अनंत सूत्र करते हैं धारण। अनंत चतुर्दशी पर होता है गणेश उत्सव का समापन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति की मूर्तियों का करते हैं विसर्जन। गणपति विसर्जन से पहले करें भगवान गणेश की विधिवत पूजा और आरती, बप्पा को फूल माला सिंदूर अक्षत मोदक फल और मिठाई अर्पित करें। मुंबई में आज गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जगह जगह निकल रहे हैं जुलूस, भक्तिभाव से बप्पा की पूजा के बाद आज गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं भक्त। ढोल ताशों के बीच बप्पा को विदाई देने के लिए जुटे भक्त, अगले साल जल्द ही आने की कामना। जलगांव में बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए भारी संख्या में जुटे भक्त, अपने प्रिय गणपति को दे रहे भक्त भक्तिपूर्ण विदाई। अकोला में विसर्जन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, 3000 पुलिसकर्मी तैनात, 200 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। जालना में भी जगह जगह मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था, प्रशासन सभी प्रबंधों का ले रहा है जायजा। राजकोट के गणेश पंडाल में अनोखा श्रृंगार बना आकर्षण का केंद्र, 100 से ज्यादा अमेरिकी डॉलर की माला से सजी बप्पा की प्रतिमा, पंडाल में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बप्पा के श्रृंगार में दिखा अमेरिकी डॉलर, फूलों और आभूषणों से अलग इस बार डॉलर की माला, श्रद्धालु को खींच रहा भगवान गणेश प्रतिमा का अनोखा रूप। राजकोट में गणपति दर्शन का अलग नजारा, डॉलर की माला पहनकर विराजे गणपति बप्पा, बप्पा के इस अलग स्वरूप को देखने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। गणपति पंडाल में श्रद्धालु कर रहे बप्पा की पूजा अर्चना, शांति और सुख समृद्धि की कर रहे कामना, गणपति विसर्जन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पंडाल आयोजकों ने श्रद्धालु के लिए खास योजना बनाई, गणपति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं को भेंट के रूप में वितरित किए जाएंगे ये विदेशी नोट। बीएमसी ने श्री गणेश गौरव पुरस्कार 2026 का ऐलान किया, अंधेरी पश्चिम के स्वप्रश्चाय मित्र मंडल को पहला स्थान, मंडल को 75,000 रुपए का मिलेगा पुरस्कार। गणेश पंडाल में पेड़ को आईसीयू में भर्ती दिखाया गया है और थीम के जरिए पेड़ बचाने का संदेश दिया गया। एलईडी पर पेड़ की व्यवस्था दिखाती 3 मिनट की फिल्म दिखाई जा रही है, अंत में लोगों से एक पेड़ लगाने की अपील भी की गई। पंडाल में गणेश जी की मूर्ति कागज से बनाई गई है, विसर्जन के बाद मूर्ति पानी में आसानी से घुल जाती है। कागज से बनी गणेश प्रतिमा पानी में घुलने के बाद मछलियों का आहार बनेगी, पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया जा रहा। मुंबई में लालबाग चौराहे के दरबार में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने की पूजा अर्चना, बप्पा से सुख शांति और समृद्धि का मांगा आशीर्वाद, भगवान के प्रिय मोदक का ग्रहण किया प्रसाद। उदयपुर में मशहूर गणपति मन्नत वाले राजा का भव्य श्रृंगार, बप्पा को धारण कराई गई 2,51,00,000 रुपए के नोटों से बनी अनोखी आंगी। इस अनोखे श्रृंगार में 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल, इस सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। अकोला में कलाकार की अनोखी भक्ति में जीता दिल, 35,000 मोतियों से बनाए गए गणपति की सुंदर प्रतिमा। 25 दिन 20 रात की मेहनत से तैयार हुई 7 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली प्रतिमा, देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। गया जी में आज पितृपक्ष मेले का शुभारंभ, 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों पिंडदानों के आने की उम्मीद। मेले से पहले लेजर शो से जगमग हुआ देवघाट, गया जी की धार्मिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को किया गया प्रदर्शित। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन, मेले की सभी तैयारियों का लेंगे जायजा, 10 अक्टूबर तक चलेगा मेला। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की 5 दिन की पिकनिक, इस दौरान हाथियों की होगी खास खातिरदारी। इन 5 दिनों में हाथियों से नहीं लिया जाएगा कोई भी काम और उन्हें नहलाने, मालिश करने, स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ साथ उनके पसंदीदा व्यंजन की मिल रही है ट्रीट। हिमाचल प्रदेश के नाहन में लॉन्च की गई मोबाइल कंप्यूटर वैन, स्कूली बच्चों को दी जाएगी डिजिटल और AI शिक्षा। हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई मोबाइल कंप्यूटर वैन, दूर दराज के इलाकों के बच्चों तक भी पहुंच सकेगी शिक्षा। कुल्लू में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा को लेकर बैठक, विश्व प्रसिद्ध मेले को लेकर सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। मेले के दौरान दिखेगी हिमाचल की परंपरा और संस्कृति की झलक, इस बार 300 से ज्यादा स्थानीय देवी देवताओं को भेजा गया है आधिकारिक निमंत्रण। 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा ये फेस्टिवल, देशभर के अलावा विदेशों से भी इस मेले को देखने आते हैं सैलानी। जयपुर दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, अल्बर्ट हॉल में सफाई अभियान में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ओपन जेल की शुरुआत, सेंट्रल जेल में 50 अच्छे आचरण वाले बंदी जेल से बाहर जाकर कर सकेंगे काम। बाहर करने वाले कैदियों को तय समय पर लौटना होगा वापस, कैदियों को मानसिक तनाव से मुक्त करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना मकसद। IIT दिल्ली की बड़ी उपलब्धि, रिसर्चर्स ने पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया माइक्रो GPU किया विकसित। इस तकनीक से आयात पर देश की निर्भरता होगी कम, ई रिक्शा डैशबोर्ड से लेकर शैक्षिक ई बुक रीडर जैसे एम्बेडेड एप्लीकेशन में होगा इस्तेमाल। प्रसिद्ध अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट यानी कि जिमी डोनाल्डसन ताजमहल पहुंचे, पत्नी थिया संग किया ताजमहल की खूबसूरती का दीदार। मिस्टर बीस्ट के साथ पर्यटकों में फोटो लेने की मची होड़, मिस्टर बीस्ट को फैन ने दिया खास तोहफा, युवा फैन भेंट की युवान गौरव से ने अपनी स्केचबुक। पुंछ में युवाओं के लिए काउंसलिंग सेशन, स्टार्टअप आइडिया और बिजनेस अवसरों पर हुई चर्चा, युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की जानकारी दी। युवाओं ने सीखे स्टार्टअप के गुण, नए बिजनेस आइडिया को लेकर युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया, स्वरोजगार और कारोबार की संभावनाओं से कराया गया परिचय। फिल्म पूजा समारोह से पहले मदुरई पहुंचे साउथ सुपरस्टार धनुष, फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह, धनुष की नई फिल्म का जल्द होगा शुभारंभ। आज फिल्मी फ्राइडे में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच महासंग्राम, थिएटर से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक दर्शकों को मिलेगा मनोरंजन का डबल डोज। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की द विवान सिनेमाघरों में देगी दस्तक, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की कहानी पर आधारित। पौराणिक ड्रामा श्री रामायण कथा भी आज थिएटर्स में रिलीज होगी, फिल्म में रामायण से जुड़े प्रसंगों को बड़े पर्दे पर पेश किया गया। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित लव लॉटरी की बॉक्स ऑफिस पर होगी एंट्री, कहानी में कानूनी दावपेच के साथ रिश्तों का पहलू भी देखने को मिलेगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले

कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं।
सेलेनियम

0: पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो भी शेयर किए हैं। दिल्ली के रहने वाले दीपक ने अपने गणपति की सुंदर सी तस्वीर शेयर की है। तस्वीर आप देखें, इसमें बप्पा के पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है, साथ ही बप्पा को पीले रंग की पगड़ी पहनाई गई है जो देखने में बेहद आकर्षक लग रही है। दूसरी तस्वीर हमें कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले धनश्री ने भेजी है। यहां पर बप्पा को फूलों से श्रृंगार किया गया, साथ ही बप्पा को मनमोहक माला भी पहनाई गई। गणपति को केला और लड्डू का भोग लगाया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स के छठे दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। दस दिन के गणेश उत्सव के बाद आई गणपति की विदाई की वेला, मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल के बाहर बनाई गई रंगोली, उमड़ा श्रद्धा का समंदर। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। पिछले 10 दिनों में गणेश उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है देश भर में। शहर शहर अलग अलग रूपों में बप्पा विराजे हैं, लेकिन अब बप्पा को विदा करने की घड़ी आ चुकी है। आज अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है और अब धूमधाम से बप्पा की विदाई होगी। शहर शहर गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। मूर्त माटी से बनी, भावों ने प्राण भरे और आस्था ने दिखाया ईश्वर। अगर देखा जाए तो गणपति कहीं नहीं जाते, वो हमेशा हमारे बीच रहते हैं। प्रतिमा का विसर्जन एक प्रतीक भर है और एक चक्र के अंत और आरंभ का भी। अब जब आप भी इस रस्म को निभाएंगे तो गणपति विसर्जन के साथ आप अपने भीतर और आसपास मौजूद तमाम नेगेटिविटी और बुराइयों को बप्पा के साथ विदा कर सकते हैं। वो आदतें और विचार जिन्हें छोड़कर जिंदगी को बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। गणपति के विसर्जन के साथ उन अवगुणों के विसर्जन का भी मौका है, ताकि जिंदगी में नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाई जा सके।
1: अनुहार और धूमधाम के साथ लाए थे बापा को। 10 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अब बापा विदा होने वाले हैं। भक्तों के मन में मिला जुला भाव है। धूमधाम से बापा का विसर्जन तो करना है, लेकिन बापा के जाने का दुख भी है। खैर, बापा आए थे तो जाएंगे ही, लेकिन अब की बार बापा को अकेले मत भेजिए, बल्कि बापा के साथ विदा कीजिए वो सब कुछ जिसे आप अपनी जिंदगी से विदा करना चाहते हैं। वो हर आदत, वो हर विचार जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। मसलन ऐसी ही एक आदत है सोशल मीडिया की लत। थक जाता है वो बेचारा अंगूठा कई 100 मीटर तक स्क्रॉल करते करते। लेकिन बिना वजह स्क्रीन टाइम बढ़ाने की ये आदत महामारी की तरह फैल गई है। वास्तव में दुनिया आपकी मोबाइल स्क्रीन से बहुत बड़ी है। ये बात जितनी सरल है उतनी भयावह भी, क्योंकि 2020 के बाद से हमने बस एक नया इंटरनेट नहीं अपनाया, बल्कि अपनी धारणा का एक प्राइवेट कारखाना अपनी जेब में रख लिया। एल्गोरिदम ने हमें पढ़ा, हमारे क्लिक, हमारा गुस्सा, हमारी जिज्ञासा, डर, बेचैनी, सब कुछ। फिर उसने हमें वही देना शुरू किया जिस पर हमारा दिमाग सबसे तेज प्रतिक्रिया देता था, क्योंकि दिमाग को वास्तव में सत्य नहीं संगति पसंद है, साथ पसंद है। उसे अच्छा लगता है जब दुनिया उसकी पहले से बनी कहानी सही साबित करती है। इसे मनोविज्ञान कॉन्फर्मेशन बायस कहता है। एल्गोरिदम ने बस इस पुराने स्वभाव को एक नई सुपर पावर दे दी। अब हर सुबह करोड़ों लोग उठते हैं और अपनी ही धारणाओं की नई नई पुष्टि देखते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। यही चक्र रोज चलता है। हो सके तो अपनी फीड से बाहर निकल कर देखिए, क्योंकि एल्गोरिदम के आगे जहां और भी है। सो गणपति के साथ अब की बार इस आदत को भी विसर्जित कर दीजिए। ऐसी ही एक आदत है हर चीज की तुलना दूसरों से करना। यूं ही नहीं कहते कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। सोशल मीडिया की छाओ में कुछ और फैली यह बीमारी वास्तव में आपके सेल्फ एस्टीम के लिए बेहद घातक है। खुशी और संतोष कम होगा, जलन और कड़वाहट बढ़ती जाएगी। सेल्फ ग्रोथ की गाड़ी को अगर आगे बढ़ाना है तो इस आदत का तुरंत विसर्जन करना अच्छा ऑप्शन है। ऐसी ही एक आदत है बिना जाने राय बनाने की, बिना जाने लोगों को जज करने की। न सामने वाले व्यक्ति को जानते हैं, न उसकी परिस्थिति को समझते हैं, बस जज बनकर तुरंत उसके बारे में फैसला सुना देते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? इस आदत का विसर्जन कर दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसी लिस्ट में शामिल है बात बात पर शिकायत करने की आदत। ये आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को नेगेटिव सोच के लिए प्रोग्राम कर देती है। तनाव और एंजाइटी आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसलिए इस नेगेटिविटी को गणपति के साथ विसर्जित कीजिए और बप्पा से मांगिए दिमाग की रीवायरिंग का आशीर्वाद, ताकि आपकी सोच पॉजिटिव हो सके। और आखिर में विसर्जित कीजिए उस आदत को जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। हेल्थ को इग्नोर करने की आदत अपने आप में एक बीमारी है। बीमारी भी ऐसी जो कई और बीमारियों को न्योता देती है। उठिए, दौड़ लगाइए, कसरत कीजिए, स्नूज बटन कल को कभी आने नहीं देगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप, डाइट में नमक चीनी तेल पर कंजूसी, जंक फूड और नशे की लत से दूरी, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो जिंदगी बदल सकती हैं। बापा यहाँ कुछ नहीं करेंगे। सब जानते हुए भी न मानने की आदत आपकी है, तो विसर्जित भी आपको ही करनी पड़ेगी। अमंगल वाली इन आदतों का विसर्जन करेंगे, तभी जीवन में सही मायनों में मंगल स्थापित हो पाएगा। गणपति यही सिखाते हैं, यही विसर्जन का विज्ञान है, क्योंकि वास्तव में विसर्जन एक प्रतीक है। क्योंकि असल में बाप्पा कहीं जाते नहीं, वे हमेशा रहते हैं। उनका आना और उनका जाना वास्तव में प्रतीक भर है। हर साल बाप्पा मौका देने आते हैं, एक नई शुरुआत का। पिछले साल भी दिया था, फिर से दे रहे हैं। और चिंता की बात नहीं अगर छूट जाए अब की बार भी, क्योंकि अगली बार फिर मिलेगा मौका। हर साल मिलता है, क्योंकि श्री गणेश से बेहतर ये कौन सिखा सकता है कि अच्छे काम का श्री गणेश करने में कभी देर नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अवगुण तो गजानन की प्रतिमा के साथ विसर्जित हो जाएंगे, लेकिन पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएंगे वो गुण जिनके सूत्रधार खुद गुणनायक हैं। गणपति ऐसे देवता हैं जिनसे जुड़े प्रसंगों को लेकर उनके शरीर के हर अंग तक हर किसी में एक सबक छुपा है, जिंदगी को बदलने वाला एक पाठ छुपा है। बस जरूरत है तो उसे जानने और समझने की, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की, ताकि मूर्ति भले ही विसर्जित हो जाए लेकिन जीवन में मंगल बना रहे। और आपको ये भी बताते हैं कि गणपति के अंगों से और महाकाय की काया से आप क्या सीख सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।

सनातन धर्म में गणपति न केवल प्रथम पूज्य हैं, बल्कि वे अकेले ऐसे देव हैं जिनके हर अंग से लेकर उनसे जुड़े हर प्रसंग तक उनके हर रूप और स्वरूप में कोई न कोई सीख छुपी है। जिंदगी को बदलने वाला एक सबक, एक पाठ छुपा है। विशेष रूप से भगवान गणेश के अंग ज्ञान की वो पाठशाला हैं, जिनसे जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने का सबक लिया जा सकता है।

सबसे पहले बात गणपति के सिर की। गणपति का सिर बड़ा और माथा चौड़ा है। मान्यता है कि गणपति का बड़ा और चौड़ा माथा नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। बड़ा सिर से यहाँ मतलब है बड़ी सोच। माना जाता है कि अगर किसी इंसान की सोच बड़ी है तो वो नेतृत्व करने में सक्षम होता है। बड़े सिर से यहाँ एक मतलब बुद्धिमता और समझदारी में बड़ा होना भी है। गणेश जी का बड़ा माथा बड़ी सोच रखने की सीख देता है।

जब भी इंसान बेहद गौर करके और ध्यान लगाकर किसी चीज को देखने या परखने की कोशिश करता है तो हमेशा आंखें सिकुड़ जाती हैं। गणेश जी की आंखें छोटी हैं, गजानन की छोटी आंखें भी ध्यान लगाने की सीख देती हैं, देख परख कर फैसला लेने का सबक देती हैं। गौरी नंदन की ये सीख आपके भी बड़ी काम आ सकती है।

गणेश का सिर चाहे बहुत बड़ा हो लेकिन उनका मुंह छोटा सा है। गजानन का छोटा मुंह कम और नाप तोल कर बोलने की सीख देता है। सोच कर बोलने, कम बोलने और मीठा बोलने से कभी हानि नहीं होती।

इसी तरह गणपति के बड़े कानों में भी गहरा संदेश छिपा है। भगवान गणेश के कान सूपा के आकार के हैं, जैसे सूपा अनाज रख लेता है और भूसा उड़ा देता है, उसी तरह गणपति के कान भी सिखाते हैं कि सार सार को गही लिए और थोथा दे ही उड़ाए, यानी ध्यान से सुनो सबकी, लेकिन अपने अंतर मन में मत कर, केवल सत्य को उतारो।

0: इसी तरह महादेव के लाडले गजानन की लंबी और बड़ी नाक यानी सूंड दक्षता और क्षमता का प्रतीक है। आप इससे ये सीख ले सकते हैं कि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिल सकती, उसके लिए लचीला और अनुकूल होना जरूरी है। जो परिस्थितियों के हिसाब से ढलता है जीवन में सफलता जरूर पाता है। साथ ही ये दूर से गंध यानी विपदा को पहचान लेने की क्षमता का भी प्रतीक है।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: इसी क्रम में गणपति का एक नाम है लंबोदर यानी बड़े उदर वाला। भगवान लंबोदर का बड़ा पेट ये सीख देता है कि चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, सब कुछ अपने पेट में यानी अपने भीतर शांति से पचाएं।

0: तो वहीं भगवान गणेश की चार भुजाएं मन, बुद्धि, स्वाभिमान और विवेक का प्रतीक हैं, जो सिखाती हैं कि इन चार विशेषताओं को अपने साथ रखने से जीवन में सफलता मिलना आसान हो जाता है।
1: भगवान गणेश का बड़ा सिर नेतृत्व क्षमता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्रचुरता का प्रतीक है, नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है, मनोबल का प्रतीक है, विचारों के उन्नति का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है, लंबी नाक सम्मान का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। छोटी आंखें एकाग्र भाव से एकांत होकर ध्यान लगाकर सीखने का प्रतीक है। प्रत्येक फैसले के पहले क्या निर्णय लेना है इसका सीख है, इसका विचार है कि ध्यान से उस विषय पर अध्ययन करना छोटी आंख का प्रतीक है।
0: गणपति सिखाते हैं कि आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। गणपति का शीर्ष हाथी का है, लेकिन उन्होंने कभी खुद के आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वर्तमान में लोग बॉडी शेमिंग को लेकर कई बार परेशान हो जाते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो रंग रूप और काया दी है उसका सम्मान करना जरूरी है। लोगों की बातों को अनदेखा कर खुद पर फोकस करना जरूरी है। भगवान गणेश के ये अंग किसी पाठशाला की तरह जीवन के ये अहम सबक सिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ये तो बात हुई गणपति के अंग की, अब आते हैं प्रसंग पर। सनातन धर्म के ग्रंथों में गणपति से जुड़े असंख्य प्रसंग भी हैं और ये सभी प्रसंग कोई ना कोई सबक समेटे हुए हैं। यानी गणपति का सिर्फ अंग नहीं बल्कि उनका हर प्रसंग भी जीवन की राह दिखाता है, सफलता पाने का सबक सिखाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे भगवान गणेश की इन कहानियों से सीखकर आप भी अपने जीवन में कामयाबी की कहानी लिख सकते हैं।

0: गणपति है ही इतने अनोखे, उनके सिर्फ तन ही नहीं बल्कि जीवन में भी सफलता के कई सूत्र छुपे हैं। परिवार के लिए प्रतिबद्धता, कर्तव्य निष्ठा, आत्मनियंत्रण, क्षमाशीलता, ये गणनायक के ऐसे गुण हैं जो उन्हें गुणनायक भी बनाते हैं। गणपति से जुड़े प्रसंगों को ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो एक सफल, सुखी और शांति भरे जीवन का फलसफा आपको बातों बातों में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं उनके परिवार से। गणपति सिखाते हैं कि परिवार ही जीवन का आधार होता है। सभी देवताओं में भगवान गणेश ही ऐसे हैं जिनका भरा पूरा परिवार है, यानी भक्त के घर गणपति अकेले नहीं आते बल्कि उनका पूरा परिवार आता है। माता पिता शिव पार्वती, भाई कार्तिकेय, पत्नियां रिद्धि सिद्धि, दो पुत्र शुभ और लाभ। इसलिए कहा जाता है कि गणपति वहीं विराजते हैं जहां परिवार एक है। मतभेद भले ही हो लेकिन मनभेद न हो, यानी सीख यहां पर ये है कि जहां परिवार में प्रेम है, एकता है, सामूहिकता है, वहां गणपति अपनी शुभता समेत हमेशा वास करते हैं।
1: तो भगवान शिव को हमारे यहाँ आत्मा का प्रतीक माना गया और भगवती पार्वती शक्ति की प्रतीक मानी गई। भगवान गणपति बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं और भगवान कार्तिकेय साहस के प्रतीक हैं। भगवान शिव का वाहन नंदी, भगवती पार्वती का वाहन शेर, गणपति का वाहन मूषक और कार्तिकेय का वाहन मयूर। भगवान शिव के गले में सर्प लटका हुआ है। एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी भगवान गणपति का यह जो परिवार है दिखाता है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां हों लेकिन आप उसमें सामंजस्य बैठा करके रहें, यह भगवान गणपति का जो परिवार है पूर्ण दर्शन दिखाता है।
0: इसी तरह गणपति की सीख है कि किसी भी कीमत पर कर्तव्य से न डगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण की गणेश खंड में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कहानी के मुताबिक एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु महादेव के दर्शन के लिए कैलाश गए। महादेव तपस्या में थे और गणपति पहरे पर। उन्होंने परशुराम को रोका लेकिन वे नहीं माने। विवाद बढ़ा और परशुराम ने अपने पर्से से गणपति के दांत पर प्रहार कर दिया। दांत टूट गया लेकिन गणपति ने फिर भी परशुराम जी को जाने नहीं दिया। हम अक्सर शक्तिशाली के प्रभाव में झुक जाते हैं। लोग अपने कर्तव्यों से समझौता कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई तो डर कर समर्पण भी कर देते हैं। गणपति सिखाते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी शक्ति हो, कभी उसके सामने झुककर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
1: एक बार भगवान शिव ध्यानावस्थित थे, ध्यान मग्न थे। भगवान शिव अक्सर समाधि में चले जाते हैं तो उनके शिष्य परशुराम जी उनसे मिलने आए तो भगवान गणपति ने उन्हें रोका कि इस समय महादेव हमारे पिता तपस्यारत हैं, आप इस समय मुलाकात नहीं कर सकते। परशुराम जी को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने अपना परशु चलाया जिससे भगवान गणपति का एक दांत कट गया, लेकिन भगवान गणपति अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगे।
0: इसी तरह गणपति सिखाते हैं कि सुंदरता विचारों और व्यवहार में होती है, चेहरे में नहीं। शिवपुराण में वर्णित गणपति की कथा के मुताबिक जब भगवान शिव ने बालक गणेश के ऊपर हाथी का सिर जोड़ा तो सभी देवताओं और गणों के मन में ये सवाल था कि अब ये बालक पहले की तरह सुंदर दिखेगा या नहीं। लेकिन हाथी का सिर लगने पर बाल गणेश जीवित हुए तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, अपने हठ के लिए क्षमा मांगी और फिर अपनी माँ पार्वती की गोद में गए। यहाँ गणपति सीख देते हैं कि चेहरे या शरीर के दूसरे हिस्सों की सुंदरता के कोई मायने नहीं बल्कि वास्तव में हमारे विचार और व्यवहार हमें सुंदर बनाते हैं।
2: इसकी सीख हमें भगवान गणपति से लेनी चाहिए। क्योंकि हाथी का सिर लेकर के भी भगवान गणेश अपने विचारों, अपने कर्तव्यों, अपने सहनशीलता, अपने धर्म निष्ठा के कारण प्रथम पूज्य बन गए। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचारों से निर्धारित होता है, मात्र शारीरिक सौंदर्य उसके व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं हो सकता।
0: गणपति की ऐसी ही एक सीख है कि सफलता यदि खरी हो तो संपन्नता भी मिलती है। भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता और सिद्धि यानी सफलता। दोनों बहनें हैं, दोनों ने एक साथ गणपति को अपना पति चुना था और दोनों साथ ही रहती हैं। इसमें सीख ये है कि अगर आपने मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाई है तो उसके पीछे संपन्नता का आना भी तय है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। संपन्नता की इच्छा रखते हैं, लेकिन परिश्रम से बचने का प्रयास करते हैं। इसके कारण न सफलता पूरी मिलती है और न मन माफिक संपन्नता ही आती है। इसी क्रम में भगवान गणेश बताते हैं कि मन और जीवन पर नियंत्रण जरूरी है। गणपति का अस्त्र है अंकुश, वो ही अंकुश जिससे महावत हाथियों को कंट्रोल करते हैं। अंकुश का अर्थ ही होता है रोक लगाना। अगर हमारा मन, इच्छाएं, विचार अनियंत्रित हैं, तो विवाद होंगे, अशांति बढ़ेगी, और जहां विवाद होते हैं भगवान वहां कभी नहीं रहते।
3: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियाँ तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली दिव्या चौहान ने अपने गणपति की सुंदर सी तस्वीर शेयर की, जिसमें बप्पा के पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया। साथ ही बप्पा को सफेद रंग की पगड़ी पहनाई गई, जो कि देखने में बेहद आकर्षक लग रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमें हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले गुंजन अग्रवाल ने भेजी है। यहाँ पर बप्पा के पंडाल को रामायण थीम पर बनाया गया। पंडाल में गणपति के साथ साथ राम से जुड़ी कहानियों को दर्शाया गया, साथ ही पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
6: एशियन गेम्स के छठे दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। दस दिन के गणेशोत्सव के बाद आई गणपति की विदाई की वेला, मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल के बाहर बनाई गई रंगोली उमड़ा श्रद्धा का समंदर। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

0: दर्शन कुल्लू दशहरा की तैयारियां इस बार एक मंच पर दिखेगी कई देशों की संस्कृति। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ड्रोन और लेजर शो बढ़ाएंगे उत्सव का रोमांच।
1: नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज। ऑस्ट्रिया, जापान समेत कई देश बने साझेदार। व्यापार, निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे मौके।
0: बदला मौसम का मिजाज। सिक्किम में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली
1: सर गई है। खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। आज हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर के बारे में दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: मुंबई में आज गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जगह जगह निकल रहे जुलूस। भक्तिभाव से बप्पा की पूजा के बाद आज गणपति बप्पा को विदाई देने का वक्त। ढोल ताशों के बीच में बप्पा को विदाई देने के लिए जुटे हैं भक्त। अगले साल जल्दी आने की कामना कर रहे। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। जलगांव में बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए भारी संख्या में जुटे भक्त अपने प्रिय गणपति को दे रहे भक्तिपूर्ण विदाई। अकोला में विसर्जन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। 200 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही।
0: गया जी में आज पितृपक्ष मेले का शुभारंभ। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों पिंडदानियों के आने की उम्मीद है। कुल्लू में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा को लेकर बैठक, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध मेले को लेकर सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में लॉन्च की गई मोबाइल कंप्यूटर वैन, स्कूली बच्चों को दी जाएगी डिजिटल और एआई की शिक्षा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ओपन जेल की शुरुआत। सेंट्रल जेल में 50 अच्छे आचरण वाले बंदी जेल से बाहर जाकर कर सकेंगे काम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की 5 दिनों की पिकनिक, इस दौरान हाथियों की होगी खास खातिरदारी।
1: एशियन गेम्स में आज भारत का शानदार आगाज। शूटिंग में देश को मिले 2 मेडल। भारतीय एथलीट्स ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कमलजीत सुरुचि की जोड़ी ने रचा इतिहास। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में जीता गोल्ड। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारतीय तिकड़ी ने किया कमाल। शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फाइनल में पहुंची भारतीय महिला कबड्डी टीम। सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 से हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह। जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने स्क्वाश के मिक्स डबल्स में सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत का मेडल किया पक्का। फिलीपींस की जोड़ी को 11-3 11-5 से शिकस्त दी।
0: आज फिल्मी फ्राइडे में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच महासंग्राम देखने को मिलेगा। थिएटर से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक दर्शकों को मिलेगा मनोरंजन का डबल डोज। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द विवान सिनेमा घरों में देगी दस्तक, तो वहीं फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट कहानी पर आधारित है ये फिल्म। पौराणिक ड्रामा श्री रामायण कथा भी आज थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म में रामायण से जुड़े प्रसंगों को बड़े पर्दे पर पेश किया गया है। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित लव स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर होगी एंट्री। कहानी में कानूनी दांवपेच के साथ रिश्तों का पहलू भी देखने को मिलेगा। एवेंजर्स एंड गेम एनकोर की फिर बड़े पर्दे पर वापसी। तो वहीं मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म आज दोबारा भारत समेत दुनिया भर के थिएटर्स में दस्तक देगी।
1: बार्सिलोना में ह्यूमन टार का रोमांचक नजारा। लामर से उत्सव में कास्टेलर्स ने किया शानदार प्रदर्शन। सिटी हॉल के सामने 9 मंजिल तक बनी ऊंची मीनारें। हांगकांग में रोशन हुआ 67 मीटर लंबा फायर ड्रैगन। ताई हैंग की गलियों में सदियों पुरानी परंपरा का शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में वॉलंटियर्स ने चौक में फूलों से विशाल कलाकृति तैयार की। ड्रोन कैमरा से दिखाई ये शानदार नजारा। एथलीट शी हाइलिन ने यूनान की टाइगर लिपिंग गॉर्ज में 200 मीटर लंबी स्लैक लाइन पर करतब दिखाया। उफनती नदी और तेज हवाओं के बीच में उन्होंने 100 मीटर तक आगे बढ़कर नया रोमांच दिखाया। शंघाई में 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता शुरू। चीन के शुगर हॉर्स ने बिखेरा चलता।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। दस दिनों के गणेशोत्सव के बाद आई गणपति की विदाई की वेला। मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल के बाहर बनाई गई रंगोली। उमड़ा श्रद्धा का समंदर।
1: पुणे में 5 पनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन। शोभा यात्रा का शुभारंभ। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।
0: एशियन गेम्स के 6वें दिन भारत की शुभ शुरुआत। शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल। 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर मेडल।
1: नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज। ऑस्ट्रिया जापान समेत कई देश बने साझेदार। व्यापार निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे मौके।
0: पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। सिक्किम में सीजन की पहली बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर।

0: तो गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, पुढ़े वर्षी लवकरिया। आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व है। देशभर में गणपति विसर्जन को लेकर उत्सव और उल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। ढोल ताशों और जयकारों के बीच में आज बप्पा को भावभीनी विदाई दी जा रही है। गणपति विसर्जन को लेकर घाटों से लेकर सड़कों और समुद्र तटों तक ऐसी ही तैयारियां आपको नजर आएंगी। मुंबई में भी गणेश विसर्जन को लेकर जबरदस्त तैयारी है। अब से थोड़ी ही देर में लाल बादशाह राजा की शाही सवारी निकलेगी और भक्त अपने आराध्य को अंतिम विदाई देने के लिए साथ में जुटेंगे।
1: तो आपको बता दें, आज सुबह से ही वहां पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मुंबई के गणेश गली में राजा, जिन्हें मुंबई का राजा भी कहा जाता है, विसर्जन की यात्रा शुरू हो चुकी है। देर रात प्रतिमा को गिरगांव चौपाटी पर विसर्जित किया जाने वाला है। परेल के राजा की भी विसर्जन यात्रा शुरू हो चुकी है। मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे में भी गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा गाजे बाजे, ढोल ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम से, श्रद्धा से निकाली जा रही है। जहां जहां से ये शोभा यात्रा निकल रही है, बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

0: तो मौका है बप्पा के आखिरी दर्शन और पूजन का। तो बप्पा के भक्त इस वक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मुंबई के लालबाग चौराहा के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर बप्पा का आशीर्वाद मांग रहा है तो कोई अपने मोबाइल कैमरे में बप्पा के आखिरी दर्शन को संजो कर रखना चाहता है।
1: और देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको, उत्साह की ये तस्वीरें देखिए। हर दरबार में आपको ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी, भक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बनता है। आज बप्पा की विदाई का दिन है, लेकिन भक्तों का विश्वास यही है कि बप्पा अगले बरस फिर से आएंगे और अपने साथ खुशियां और आशीर्वाद भी हम सब के लिए लेकर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं मुंबई के लाल बादशाह राजा के दरबार की, जहां पर बप्पा के श्रृंगार की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें, दिन में 3 से 4 बार बप्पा का दिव्य और भव्य श्रृंगार किया जाता है। बप्पा को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। सुबह से ही सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सिलसिला चलता है शाम तक। अब जैसे ही बप्पा का यहां से प्रस्थान करवाया जाएगा, आपको बता दें पूरा दिन लग जाता है और बप्पा की विदाई जब होगी तो आंखें नम होंगी, लेकिन मन में यही भाव कि अगले बरस फिर से बप्पा हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए लौटेंगे।
0: राजा की विदाई भी बेहद भव्य और धूमधाम से होती है। बप्पा की शाही सवारी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर में विसर्जन यात्रा शुरू होने वाली है। जिन रास्तों से बप्पा की सवारी गुजरेगी वहां खास सजावट की गई है और रास्ते पर भव्य रंगोलियां भी बनाई गई हैं। आज भव्य जुलूस यहां पर निकाला जाने वाला है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर गणपति विसर्जन यहां पर शुरू हो चुका है, भव्य जुलूस निकाला जाने वाला है। आपको बता दें लंबे समय तक ये जुलूस चलता है। गिरगांव चौपाटी में यहां पर विसर्जन किया जाता है लाल बागचा राजा का, जो कि भव्य रूप से उन्हें सजाया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। और आज गणपति उत्सव का आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी, और आज भावभीनी विदाई दी जाने वाली है गणपति बप्पा को। लोग यहां पर भावुक नजर आ रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर सड़कें, यहां पर किस तरह से लोगों से गुलजार नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं गणपति उत्सव में शामिल होने के लिए। लाल बागचा राजा के दरबार के दर्शन आप कर लीजिए। यहां पर भी अभी श्रृंगार चल रहा है, यहां पर विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जुलूस जब निकलेगा तो बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी रहेगा, लोगों का हुजूम उमड़ने वाला है।
1: और देखिए सुबह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इस यात्रा के बारे में खास बात यह है कि बप्पा जहां भी जिस भी मुंबई के इलाके से होकर गुजरते हैं, बप्पा को वहां पर कुछ देर के लिए रोका जाता है। बप्पा लोगों को आशीर्वाद देते हैं क्योंकि लोग कतारों में लगते हैं बप्पा के दर्शन पाने के लिए। जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वो लाल बादशाह राजा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन एक बार पा सकते हैं, तो जो भी रास्ता इनके लिए बनाया जाता है, जो भी एक तय रूट इनके लिए डिसाइड किया जाता है, वहां से बप्पा निकलते हैं और अपने तमाम भक्तों को और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे लोकप्रिय हैं ये गणपति क्योंकि मुंबई में ये प्रसिद्ध हैं। लाल बादशाह राजा इनको कहते हैं, मन्नतों के राजा भी इनको कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इस दरबार में अगर आपने जीवन में एक बार हाजिरी लगा ली तो जो भी मनोकामना आपकी दिल से आप मांगते हैं बप्पा के सामने सच्चे मन से और सच्चे भाव से, आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। सेवादारों को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बप्पा के श्रृंगार में लगे हुए हैं। तमाम प्रक्रिया को सम्पन्न किया जा रहा है। पूरा दिन लगता है बप्पा को गिरगांव चौपाटी तक पहुंचाने के लिए और लोग इस कारवां के साथ लगातार आगे बढ़ते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं, धनंजय साबले हैं अकोला से। और सबसे पहले जो मेरा दिल कर रहा है जहां जाने का वो है मुंबई की तस्वीरें, क्योंकि देखिए आज के दिन मुंबई की रौनक ही अलग होती है। किस हिस्से में धर्मेंद्र इस वक्त मौजूद है? देखिए हम सबकी निगाहें टिकी हुई है कि लाल बादशाह राजा की सवारी कब निकलेगी, कहां से होकर गुजरेगी, क्या रूट मैप रहेगा और कब इनको विदाई दी जाएगी, क्या है तैयारी?
2: बिल्कुल देखिए, फाइनली वो समय आ गया है जब लोग खुश भी हैं और कहीं ना कहीं दुखी भी हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि बहुत ही सही सलामत से ये जो महापर्व है महाराष्ट्र का गणेश उत्सव वो अब संपूर्ण हो गया है। दुख इसलिए हैं क्योंकि पूरे 12 दिन उन्होंने बप्पा के साथ समय बिताया है, मेहमान की तरह आते हैं और परिवार का सदस्य बन जाते हैं और अब उनका विसर्जन है। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में और देखिए किस तरीके से एक लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं लालबाग के राजा के दरबार में पहुंच चुके हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है बप्पा की आखिरी झलक देखने का। हालांकि बप्पा का जो काफिला है वो अपने मंदिर से बाहर निकल करके पूरी तरह से श्रद्धालुओं का हो जाने वाला है और बप्पा अब निकल भी चुके हैं, आधे रास्ते तक हैं। बस ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे में मुख्य द्वार तक पहुंच जाएंगे और फाइनली वो सारे लोग जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक झलक देखने के लिए बप्पा के बैठे हुए हैं, आप देखें बालकनी हो, मंच हो, घर हो, ब्रिज हो या फिर बीच का मिडल रास्ता हो, आप बैरिकेड्स के उस तरफ देखें, जहां तक भी नजर जाएं सिर्फ और सिर्फ गणेश भक्त ही नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप थोड़ा सा बाईं तरफ देखें, ये वो बांस द्वारा बनाए गए टेंट हैं जहां पर कभी पोस्टर बैनर लगे हुए थे, अब वो निकल गए हैं और यहां पे भी जो गणेश भक्त हैं वो एक बड़ी तादाद में देखिए कैसे सब जुटे हुए हैं। तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय लालबाग के राजा के दरबार में है। हर कोई अपने तरीके से जो है जश्न मना रहा है, हर कोई अपने ग्रुप को लेकर यहाँ पहुंचा हुआ है। ढोल ताशे नगाड़े नासिक ढोल हर वो तमाम चीजें जो गणेश उत्सव में खुशी के तौर पर साथ रखी जाती है यहाँ मौजूद है। हर एक अलग दृश्य है, गुलाल की तरह परेल इलाके का, चिंसपोकली इलाके का, करी रोड का, भाईखल्ला का, लालबाग का राजा के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देखिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहाँ एक तरफ

0: यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल ना हो, उन्हें चीजों का ख्याल रखते हुए बड़े अफसर से लेके छोटे अफसर तक तमाम वो जवान जो मुंबई की रक्षा करते हैं पुलिस के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मुंबई की सुरक्षा में लगे हुए हैं और जिसमें से 1,000 के ऊपर प्रशिक्षण सैनिक भी तैनात किए गए हैं। आज यहां पर स्थानीय डीसीपी, एसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर, यहां तक कि कुछ देर में कमिश्नर का भी आना होगा और सारे वो सीनियर इंस्पेक्टर, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, सब यहां पर मौजूद हैं और सभी ने पैनी नजर पैनी निगाह लगाए रखी है लालबाग के राजा के इस दरबार में। देखिए इस बार एआई कैमरे का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ कई तरह के सीसीटीवी कैमरे भी यहां लगाए गए हैं। खास बात यह है कि ये जो आप परिसर देख रहे हैं ये सिर्फ एक लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए ही नहीं है, बल्कि पास की गणेश गली के अलावा चिंतामणि के राजा, परेल के राजा, परेल के महाराजा, लंबोधर, विघ्नहर्ता और यहाँ तक के चिंतामणि के राजा, काला चौकी के राजा। और जानकारी के मुताबिक अभी कुछ देर पहले तेजुका महाराज के जो राजा हैं उनका काफिला विसर्जन की तरफ निकल चुका है और उनके साथ भी 1,000 की तादाद में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। साथ ही साथ ठीक उनके पीछे काला चौकी के जो महाराजा हैं उनकी भी विसर्जन यात्रा निकल गई है। अब एक बार इंतजार है लालबाग के राजा का, जिनके दर्शन के लिए तमाम लोग मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से आते हैं। जहां तक भी आपकी निगाहें जाए, आपकी नजरें जाए,
1: आप दिखा रहे हैं और साल में एक बार देखने को मिलती है। धनंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र, धनंजय के पास एक बार अकोला लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। धनंजय, अकोला में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जरा दिखाइएगा।
2: देखिए दीपाली जी, अकोला में जो है वो पूरे माहौल और शिद्दत के साथ जो है भक्त जो है बप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए गणपति बप्पा मोरिया पुरजा वर्षी लौकरिया, और ये झांकी जो है गणपति बप्पा के रूप में मानो ये हाथी पर जो है ये आर्टिफिशियल हाथी है वहां पर जो है बप्पा की मूर्ति यहाँ पर बैठाई गई और भक्तों में इतना आनंद है, उतने ही भाव विभोर है क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी है पुरजा वर्षी तू लौकरिया, इसी गुंज के साथ जो है बप्पा के हर भक्त जो है वो आज झूमते नाचते अपने बप्पा को जो है आखिरी विदाई देते नजर आ रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे क्या कहेंगे, आज बड़े भाव विभोर होकर बप्पा को आखिरी संदेशा दे रहे हैं, विसर्जन हो रहा है। हाँ।
1: धनंजय, ऑडियो नहीं आ रहा, लौटती हूँ आपके पास एक बार फिर से। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर नितीशा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। नितीशा जी, आपके पास आते हुए, नितीशा जी देखिए मन में ना भाव यही है कि बप्पा जो हैं हम सबके विघ्नों को हरेंगे और अगले बरस फिर से आएंगे। आंखें नम है लेकिन ये भाव जो है कि बप्पा हम सबको ब्लेस करें। और कहते हैं ना कि इस दौरान आपको मैनिफेस्टेशन जरूर करनी चाहिए, कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे तो बप्पा उसको सुनते जरूर हैं। कितना सत्य है और आज के दिन की खासियत क्या है, उससे शुरुआत करते हैं।
3: थैंक यू शगुप्ता जी और जीएनपी के सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय माता तांद्रा। और गणेश जी जा रहे हैं, इसका दुख भी है लेकिन उनके अगले साल आने का हमें बहुत ज्यादा इंतजार और प्यार भी रहेगा। और साथ ही साथ आज अनंत चतुर्दशी भी है, अनंत चतुर्दशी के दिन किया गया हमारा हर कार्य हमें अनंत फल प्रदान करने वाला होता है, इसलिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गणेश जी का विसर्जन होगा, उनको हम भेजेंगे वापस उनकी माता पिता के पास, लेकिन साथ ही साथ इनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा क्योंकि जाते जाते वो अपने भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद ब्लेसिंग देके जाएंगे और प्रॉमिस भी करके जाएंगे कि वो अगले साल हमारे घर फिर से वापस आएंगे। तो आज के दिन का वो महत्व है। और आज के दिन 14 गांठों का एक धागा बांधा जाता है सदिता जी, जो कहा जाता है कि 14 लोकों को दर्शाता है, जो पृथ्वी तल के नीचे 7 लोक है और पृथ्वी तल के ऊपर जो 7 लोक है, ताकि हमारे जीवन में जो भी उन लोकों से जुड़ी हुई जितने भी कर्मास है उनका हमें बेस्ट फल मिल सके। इसलिए आज के दिन ब्लेसिंग को प्राप्त करने का है, हमारे बुरे कर्मों को समाप्त करने का, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद कहा जाता है कि आज के दिन हम जो भी कार्य करते हैं स्पेशली दान, पूजा, मंत्र जाप, इन सब का हमें बहुत ज्यादा अनंत फल प्राप्त होता है जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं की जा सकती। कई बार हम पूजा के समय 10 गुना फल की बात करते हैं लेकिन आज तो अनंत फलों की प्राप्ति हो रही है शरदता जी, इसलिए। और आज के दिन योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, रवि योग आज के दिन बन रहा है।

0: शुक्र का मालव योग बना हुआ है, बुध और सूर्य का बुद्ध आदित्य राजयोग बना हुआ है, और गुरु और मंगल की युक्ति के कारण परिजात नामक योग भी आज के दिन बना हुआ है। तो आज का दिन और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। और गणेश जी को जब हम विसर्जित करते हैं, जब वो जाते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि वेद व्यास जी ने उनके उनसे 10 दिन तक महाभारत का काव्य लिखवाया। जब वो महाभारत काव्य लिख रहे थे, तब उन्होंने ये प्रॉमिस किया वेद व्यास जी से कि मैं आपका ये काव्य तो लिखूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको रुकना नहीं है, मैं बिना रुके ही लिखूंगा। तब वेद व्यास जी ने उनसे प्रॉमिस किया कि हाँ, आप बिना रुके लिखें, लेकिन आपको मेरे श्लोकों का विद मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो 10 दिन के बाद जब वेद व्यास जी ने आंख खोली, तो उस ऊर्जा ने उनको गणेश जी को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया था, जिसके कारण उनको 3 बार इन्होंने पानी में, जल में डुबकी लगाई, ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर था वो शिथिल किया जाए, उनको थोड़ा सा ठंडक प्रदान की जाए। ये विसर्जन इस तरह से भी किया जाता है। और इससे गणेश दुर्गा भी कहते हैं, ये 9 दिन बहुत विशेष है। जैसे नव दुर्गा आती है, वैसे ये 9 दिन गणेश जी के माने जाते हैं। और इस दिन तो सुभक्ता जी बहुत स्पेशल योग बना कि हमारे गणेश जी हमारे साथ 12 दिनों तक रहे हैं, और उन्होंने भक्तों को अपने सुंदर दर्शन के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी है। तो आज गणेश जी को जब आप वापस भेजे, तो उनके साथ एक पोटली जरूर बनाए, एक पोटली जो पीले या लाल रंग की हो, उसमें अपने 9 चीजें रखनी है, स्पेशली शमी पत्र रखने हैं, 21 गाजे दूर्वा की रखनी है, गुड़ रखना है, केले यानी फल रखने हैं, लड्डू, उसके साथ आपके मोदक, और साथ ही साथ आपने सुपारी, कुछ दक्षिणा, कुछ सिक्के रखने हैं, और साथ ही साथ आपने उसमें इलायची रखनी है, और उनसे जिसे हम पान भी बोलते हैं, मीठा पान, जिसमें हम पान, इलायची और लौंग रखते हैं, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, अगले साल फिर आइए और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, हमारे जीवन में दुख दरिद्रता दूर हो, कष्ट दूर हो, सभी विघ्न दूर हो, और अगले साल आने से पहले जो भी हमने आपसे मांगा है वो आप हमें देने का आशीर्वाद।
1: बिल्कुल नितीशा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ डीपी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। आज गणेश विसर्जन का दिन है, हमारी पूजा, हमारी भक्ति सफल हो, इसके लिए हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, जरा इस बारे में बताइएगा।
2: देखिए, लंबोदर नमस्तुभ्यम सततम मोदकम प्रियम निर्विघ्नम कुरु महादेव सर्वकायेषु सर्वदा। भगवान के चतुर्थी का जन्मोत्सव है और अनंत चतुर्दशी के भगवान का विसर्जन है, बल्कि भगवान बुद्धि स्वरूप में है, तो बुद्धि के जीवन में कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। ब्रह्मांड के हम जितने लोग देवता हैं, मानव हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, जितनी प्रजाति के सब लोग हैं, सब भगवान गणपति के वंदना करते हैं, उसके एक फल बुद्धि है। तो बुद्धि सदैव व्यक्ति के मित्र है, सखा है, इनका विसर्जन नहीं होता है। भगवान के विग्रह का विसर्जन होने जा रहा है। अभिसर्जन करते समय ओम एकदंताय विधवहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री के मंत्र के जप करें, पीला चावल, पान के पत्ते, सुपारी और उसमें साबुत हल्दी रखते हुए कुछ पाइन सिक्का रख के पीला पोटली बनाएं और भगवान के मूर्ति से स्पर्श करें, इस मंत्र को जप करें और पोटली को लेकर के अपने घर में, व्यापार स्थल में, या अपने शिवालय, देवालय, खजाना, जहाँ भी आपके पास पर्याप्त जगह है वहाँ रखें, और बाबा से कामना करें कि मेरा घर सदैव मंगलमय हो, सुखी हो, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, धन यश वैभव की प्राप्ति हो, बच्चों की बुद्धि की प्राप्ति हो, बड़े लोगों को कारोबार में वृद्धि हो, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति हो, और सबसे बड़ा सुख निरोगी जीवन। हे गणपति महाराज, हमको प्रदान करें। गणपति सदैव सबके जीवन में मंगल के देवता है। कोई भी जीवन में किसी का मंगल हो जाए, जब तक गणपति पूजन नहीं होता तब तक वहाँ मंगल नहीं होता है। अमंगल के ऊपर भी मंगल करने वाले गणपति है, यानी जीवन का कोई भी अनहोनी भी कई परिवार में, राष्ट्र में है, तो आ गणपति पूजन, शांति पाठ, गणपति नवग्रह हवन इत्यादि करके ही मंगल किया जाता है। तो आज भी अनंत चतुर्दशी है, आज नाग का भी पूजन है। नौ कुल्लाय विद्महे 20 दंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। ये 9 कुल जो नाग देवता है, जो भगवान शिव के गले में है, भगवान विष्णु के सैया है या नागलोक में नाग देवता है, उनका भी चतुर्दशी में पूजन किया जाता है। ये भगवान विष्णु के साथ आज इनका पूजन किया जाता है कि मेरे घर में मेरे जीवन में कोई भी सांतक दोष ना लगे, मैंने विष के कारण अन्यथा कोई व्यक्ति सुसाइड जहर खान पान की कोई ऐसी वस्तु जो लोग खा लेते हैं, ये सब चीज से मेरा परिवार बचे, मेरा घर बचे, मेरा राष्ट्र बचे, आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है इस दोष से हमारी युवा पीढ़ी को हटने के लिए। क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी, हमारे राष्ट्र के कुछ प्रदेश लोग इस विष के शिकार होते जा रहे हैं।
1: पंडित जी लौटती हूँ आपके पास, शास्त्री जी लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मुंबई के राजा कहे जाने वाले गणेश गली के गणपति बप्पा के विदाई की बेला करीब आ गई है। आज सुबह गणपति चा राजा की विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकली। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दिया के जयकारों और ढोल ताशों के साथ ही यात्रा आज दिन भर मुंबई की अलग अलग गलियों रास्तों से उनको गुजरेगी। 22 फीट की ऊंची प्रतिमा का आज देर रात गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन होगा। देखिए हमारी सहयोगी दीपेश त्रिपाठी की ये खास।
3: गणेश विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है मुंबई से। मुंबई का राजा कहे जाने वाले गणेश गली के गणपति थोड़ी ही देर में इस मंडप से बाहर निकलेंगे और विसर्जन के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो जोश और उत्साह है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बड़ी रंगोलियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं गणेश विसर्जन के लिए, आप देख सकते हैं। ऐसे ही रंगोलियाँ हर 10 कदम की दूरी पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरी तरफ जो भक्तगण है उनका उत्साह अपने चरम पर है। यहाँ पर ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये खुशी गणपति बप्पा के आने की और पिछले 11 दिन जो उनके श्रद्धा में ये लोग थे उसकी खुशी है। लेकिन इसके साथ ही बप्पा के जाने का दुख भी है, लेकिन इस उम्मीद से बप्पा को आज विदाई दी जाएगी कि अगले साल वो जल्दी आए। लेकिन फिलहाल जो है पिछले 11 दिन जो बप्पा भक्तगणों के साथ थे, जो पूजा अर्चना थी, एक परिवार के सदस्य के रूप में गणपति बप्पा साथ थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र का कोई तकाजा नहीं है, हर उम्र के हर वर्ग के लोग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं, लोगों का उत्साह अपने चरम पर है और खुशी एक तरीके से मनाई जा रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे, बूढ़े हैं, नौजवान है यहाँ पे। सर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे?
4: बहुत ही बढ़िया फीलिंग है, इसी दिन का हम लोग वेट करते हैं क्योंकि अगले साल बापा को जोरों शोरों से लाना है। सो व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट कि खाली मिरावड़ुक नहीं है, हम लोग कम से कम 4,000 कार्यकर्ता है। वी एंश्योर कि ये मिरावड़ुक है मुंबई का राजा की, सबके लिए दर्शन के लिए अच्छा हो, एंश्योर करते हैं सबकी सेफ्टी। और उसी के साथ आप पूरा जल्लोष दे सकते हैं, पूरा मुंबई इधर ही इकट्ठा होता है क्योंकि ये मिरावड़ुक मुंबई की राजा की है। गणपति बाप्पा मोरया।
3: बिल्कुल, जैसे देख सकते हैं युवा भी यहाँ पे बड़ी तादाद में शामिल है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है?
5: मुंबई चा राजा चा विजय असो, 22 फुट वाले की जय, मुंबई चा राजा विजय असो।
3: बिल्कुल, तो मुंबई के राजा की मिरवणूक है, मुंबई के राजा के नाम से प्रसिद्ध गणेश गली के लालबाग के राजा की मिरवणूक है। और उसी तरीके से ये जो प्रोसेशन है, जो बप्पा की विसर्जन की यात्रा है, वो यहाँ पर निकल रही है। देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्तगण है, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शायद गिनती कम पड़ जाए, इतने लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और वैसा ही कुछ माहौल, वैसा ही कुछ नजारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पारंपरिक पद्धति से ये प्रोसेशन जो है, ये विसर्जन की यात्रा जो है वो शुरू है और आज देर रात तक बप्पा का विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर किया जाएगा। कैमरामैन मंदार के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
1: और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव के इस पर्व को मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले काव्य सुधीर मानू समारे ने हम अपने गणपति की ये सुंदर सी तस्वीर हमारे साथ शेयर की है, जहाँ भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया गया है। और देखिए साथ ही बप्पा के पीछे आप देख सकते हैं भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले मनीष कुमार त्रिपाठी की। यहाँ बप्पा के पंडाल को सजाया गया, बप्पा को फूलों की माला पहनाई गई, साथ ही बप्पा को फलों का विशेष भोग भी लगाया गया।

और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। दिन भर आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। गणपति बप्पा मोरया, पुढ़या वर्षी लवकरिया, जल्द लौटते हैं।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: एशियन गेम्स के 6th दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर।
9: दस दिन के गणेश उत्सव के बाद आई गणपति की विदाई की वेला, मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल के बाहर बनाई गई रंगोली उमड़ा श्रद्धा का समंदर।

पुणे में पांच माह नाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज। ऑस्ट्रिया, जापान सहित कई देश बने साझेदार। व्यापार, निवेश और रोजगार पर जोर। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। सिक्किम में सीजन की पहली बर्फबारी। चारों तरफ बिछी नजर आ रही बर्फ की सफेद चादर। ब्रिटेन में पहली बार दिखा बेल्जियम की मशहूर फ्लावर कार्पेट का अनोखा रूप। ब्रेडफोर्ड में फूलों से सजा विशाल फ्लावर कार्पेट। 3 लाख से ज्यादा डेलिया फूलों का किया गया इस्तेमाल।

0: ब्रेक के बाद लंच टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में भव्य रूप से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। आज अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जा रहा है। जगह जगह पर शोभा यात्रा निकल रही है। नागपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर राजा के विसर्जन जुलूस की शुरुआत हो गई है। गणपति बप्पा की आरती के बाद विसर्जन यात्रा शुरू हो गई है। नागपुर के राजा को भावपूर्ण विदाई देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है।
1: और देखिए, पारंपरिक ढोल ताशों की गूंज और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आके जय घोष के बीच में विसर्जन यात्रा आगे बढ़ रही है। विसर्जन यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस यात्रा के मार्ग पर पुलिस बंदोबस्त के साथ यात्रा भी आगे बढ़ रही है। यातायात को भी संभाला जा रहा है।
0: देखिए, आज के दिन पूरे महाराष्ट्र से भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग एक ओर भावुक हैं, दूसरी ओर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। आज गणपति बप्पा को विदाई दी जाने वाली है और भावपूर्ण विदाई होने वाली है। ये कुछ इस तरह से आज उनकी विदाई है। सबसे पहले जैसे स्वागत किया गया था वो तस्वीरें दिखाई थी और अब ये तस्वीरें।
1: चलिए, देश के अलग अलग हिस्सों से बप्पा की विदाई की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। विदर्भ में सबसे बड़ी गणपति बप्पा के विसर्जन शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। गणपति की प्रतिमा का विसर्जन पालकी, ढोल ताशे और डिंडी के पारंपरिक वादन के साथ निकला। गणपति बप्पा अपने गांव चले। गणपति बप्पा मोरया, पुढ़िया, वर्षी, लौकरिया या इसी जय घोष के साथ आज बप्पा को आखिरी नम विदाई दी जा रही है। देखें हमारे सहयोगी धनंजय साहब ने की रिपोर्ट।
2: लौकरिया यही उनके साथ जो है पप्पा की सवारी निकली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पप्पा की ये सवारी जो है वो बड़ी धूम से और बड़े जल्लोष के साथ यहाँ पर निकली है। पप्पा की ये सुंदर प्रतिमा की बारा भाई गणपति की है, फूलों से उनका स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हो कि पप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए जो है यहाँ पर पप्पा के भक्त जो है घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो पप्पा के जो भक्त है बड़े ढोलों के साथ जो है ढोल के साथ नाचते नजर आ रहे हैं। पप्पा को दरबिन के बाद जो है यहाँ पर फिर से अगले बरस तू जल्दिया ये कहकर जो है पप्पा के आखिरी संदेशा उनके विदाई देने का काम अब शुरू हुआ है। धनंजय साहब ने गुड न्यूज सुने अकोला।
0: देखिए, धनंजय ने तस्वीरें तो दिखा दी, अब लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा तस्वीरें देख लेते हैं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, गणपति विसर्जन कहां तक पहुंचा है, कौन से पंडाल मौजूद हैं और कितना उत्साह लोगों के बीच इस बार।
3: बिल्कुल दीपाली जी, उत्साह इतना है क्योंकि देखिए यहां पर जो है महिला भी जो है वो कम नहीं है। महिलाओं जो है ये बप्पा की जो सवारी निकली है हाथी पर, ये हाथी पर निकली सवारी जो है ये महिलाएं यहाँ पर खींचती नजर आ रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर महिला जो है वो ये सवारी खींचती नजर आ रही है। मानो गणपति बप्पा के भक्त जो है वो बड़े भक्त होते हैं और महिलाएं भी जो है वो कम नहीं है, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से हम जिस पंडाल में खड़े हैं, ये तीसरे नंबर का पंडाल है जो मान का पंडाल है, जो जागेश्वर बप्पा का पंडाल है, और यहाँ पर जो है इस वक्त ये बहुत ही अच्छी झांकी यहाँ पर की गई है। और ये झांकी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो झांकी में जो हाथी पर गणपति बप्पा की सवारी जो है वो सवारी और गणपति बप्पा की ये जो पूरी प्रतिकृति बनाई है, मानो ये पूरी तरीके से हाथी पर बनाई गई है। और ये यहाँ पर सभी का जो है इस पूरे विसर्जन पंडाल में या विसर्जन शोभा यात्रा में जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने वाली चीज और देखने वाली और इसको आकर्षण यहाँ पर सभी का है। दीपाली जी
1: जी, जी। चलिए धनंजय जी, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीशा जी, आपके पास आते हुए अगला सवाल लेते हुए। नीतीशा जी, मुझे ये बताइए, कहते हैं कि किसी भी त्यौहार का जब भी हम जिक्र करते हैं, हम बहुत सारे शो साथ में कर चुके हैं, आज के दिन स्पेसिफिकली कहा जाता है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके अराउंड है, आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी है या आपकी सराउंडिंग्स में ऐसी चीजें हैं तो उससे भी आप दूर हो सकते हैं, तमाम बुराइयों से आप परहेज कर सकते हैं। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो आज का ही दिन है जब आप मैनिफेस्ट करेंगे और ये सब चीजें आप अपने अंदर ग्रहण भी कर सकते हैं। कितना सत्य है ये और कैसे किया जाए?
4: गुप्ता जी, जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा प्रश्न किया शगुफ्ता जी। देखिए, मैनिफेस्टिंग का तो दिन है क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है। भगवान गणेश अपने माता पिता के पास दोबारा पुनः लौट जाएंगे और उनसे उनका मिलन होगा, तो आज के दिन उनके अंदर भी खुशी है अपने माता पिता से मिलने की और उनको कहीं ना कहीं अपने भक्तों से दूर जाने का दुख भी है, तो ये दोनों ही चीजें साथ चल रही है। लेकिन आज का दिन मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो अनंत चतुर्दशी का दिन है, यानी जिस दिन हम अपनी अनंत मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो जब अनंत मनोकामनाएं आज के दिन पूर्ण की जा सकती है तो ये क्लियर है कि आज के दिन जो भी हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। तो आज के दिन मैनिफेस्ट करिए। सबसे पहले सुबह उठ के जब आप नहाने जाए, स्नान करें, तो गंगा जल का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन दोपहर का समय हो चुका है, अगर अभी भी आपने ये नहीं किया तो गंगा जल से अभी भी आप अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा भाव है जिससे आपका मन कहीं ना कहीं अप्रसन्न हो रहा है या दुख आपको है या दुख कोई दरिद्रता आपको परेशान कर रही है, तो मैं आपसे बस इतना बोलूंगी, आज के दिन गणेश जी से बोलिए आप सभी विघ्नों के हर्ता हैं, आप ऋण हर्ता हैं। आप सिर्फ पैसे का ऋण नहीं होता, हमारे कर्मों का भी ऋण होता है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ऐसे बहुत देव ऋण, ऐसे बहुत से ऋण शास्त्रों में मेंशन किए गए हैं, या जो भी हमारी कष्ट है उन्हें दूर करिए। और शगुप्ता जी, जब हम गणेश जी की आरती करते हैं तो भी मैनिफेस्टेशन ही कर रहे होते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूरी आरती ही मैनिफेस्टेशन है। गणेश अथर्वशीष जरूर पढ़े आज के दिन, गणेश अथर्वशीष से हमारे डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है और साथ ही साथ वो भी एक मैनिफेस्टेशन का रूप है। जिस दिन हम अपने दुख दरिद्रता को खत्म करके अपने जीवन में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं, आज के दिन अपने सारे ब्रेसलेट, अंगूठियां, आपकी जो मालाएं हैं इनको भी आप चैंट कर सकते हैं, इनको भी आप गंगा जल से स्नान करवा के चैंट करके दोबारा धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज गणेश जी के जब वो जाएंगे, जब उनका विसर्जन होगा, जब हम उनको वापस भेजेंगे, उस समय भी अगर हम तेज पत्ते या किसी कागज पर पीले रंग के पेन या लाल रंग के पेन से अपनी मैनिफेस्टेशन लिखते हैं, मंत्र जाप लिखते हैं, तब वो जो कागज है हम उनके साथ विदा कर देते हैं तो भी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण।
0: बिल्कुल बिल्कुल नितीशा जी, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच डीपी शास्त्री जी आपके पास भी हम आएंगे, लेकिन इसी बीच मुंबई से लाल बागचा राजा के विसर्जन की तस्वीरें धर्मेंद्र हमें दिखाएंगे। धर्मेंद्र, किस तरह का उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है? आप एक ऐतिहासिक भीड़ में मौजूद हैं, यहाँ पर इस भीड़ को ही देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और आज लाल बागचा राजा का विसर्जन होने जा रहा है। जिस तरह से सेलिब्रिटीज दरबार में पहुंचे थे, यहाँ पर तांता लगा हुआ था, आज किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि कितनी भी देख लो मन नहीं भर रहा है।
1: बिल्कुल, एक और छोटी सी चीज धर्मेंद्र इसके साथ ऐड करना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि 1 बजे प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे लाल बागचा राजा की सवारी, फिर आगे बढ़ेगी। तय कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रहा है पूरा प्रक्रिया?
5: बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि बहुत से बॉलीवुड सेलेब जो हैं लाल बागचा राजा का दर्शन करने के लिए दरबार में पहुंचे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में लाल बाग के राजा का आखिरी दर्शन करने के लिए और सिर्फ एक झलक देखने के लिए यहां मौजूद हुए हैं, इतने ज्यादा लोग यहां पर पहुंच चुके हैं कि जो इस समय यहां मौजूद हैं खुद आज की तारीख में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, क्योंकि वो पप्पा को अपनी आंखों से कुछ ही देर में देखने वाले हैं। कल रात से ही ये जो श्रद्धालुओं की संख्या है यहां पर लगातार बढ़ती ही चली गई। लालबाग के राजा के लिए आने के लिए परेल से भी आया जा सकता है, करी रोड, चिंस, कोकली, भाई खल्ला, ये 4-5 स्टेशन है यहां से आया जा सकता है। सारे ही रेलवे स्टेशन रात भर चले हैं और अभी भी वहां उतरने वाले जो लोग हैं वो लगातार इसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि न केवल लालबाग के राजा बल्कि इनके आसपास ही गणेश गली के राजा, विघ्नहर्ता के राजा, चिंस कोकली के राजा, चिंतामणि के राजा, बहुत तमाम दरबार जो धर्मस्थल में लगातार 12 दिन तब्दील हो गया था, उन सभी के राजा भी एक के बाद एक लालबाग के राजा के इसी सड़क से ही गुजरने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं जो अपने परिवार संग पहुंचे हैं और मुझे लगता है कल रात से ही अपनी अपनी जगह बना करके जो कोई खड़े हो नहीं पा रहा है वो खड़ा है, जिसे बैठने की जगह मिली है वो बैठ गया है। जहां इस समय आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं, इसके ऊपर फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के ठीक नीचे भी देखिए तमाम श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पे मौजूद है। ये जो तस्वीरें हैं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जहां तक भी आपकी नजरें जाएं सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। यहां तक के लालबाग के राजा से सटा हुआ ये जो पंप सेट है, बैनर और पोस्टर्स भी यहां लगाए गए थे कुछ देर पहले तक, उन्हें हटा करके भी जितने बप्पा को चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, तमाम लोग यहां पे मौजूद हो गए हैं। जहां एक तरफ मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु लालबाग के राजा को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तारीफ जो है, बहुत बड़ी तारीफ मुंबई पुलिस बंदोबस्त की भी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा देखें मेरे पीछे जिस तरीके से आप पहले मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा काफिला, एक बहुत बड़ी संख्या देखने वाले हैं, ऐसे मालूम पड़ता है कि लालबाग के राजा की जो निगरानी है और उन्हें दर्शन करने आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा का जो ख्याल है किस तरीके से मुंबई पुलिस रख रही है। मुझे बॉलीवुड के फिल्म अजय देवगन की सिंघम की याद आ रही है। कुछ इस तरीके का कई माहौल, कई तरह की तस्वीरें मुंबई पुलिस की उस फिल्म में भी दिखाई गई है और वही माहौल ठीक तरीके से आज लालबाग के राजा की तरफ भी दिखाई दे रहा है। मुंबई पुलिस की सारी ही निगाहें सीधे लालबाग के राजा के उस मुख्य द्वार पे है जहां तमाम श्रद्धालु इस समय मौजूद हैं और अपने अपने तरह से जश्न मना रहे हैं। कभी मराठी संस्कृति से जुड़ा गाना यहां बजाया जाता है तो कभी कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग्स बजा दिए जाते हैं, लेकिन स्पेशली लालबाग के राजा की जो थीम बनाई गई है उसके जो शॉर्ट्स हैं वो दिखाते हैं। थोड़ा करीब ले चलते हैं लालबाग के राजा का मुख्य द्वार। कुछ अभी समय पहले, मिनट पहले ही पूरी तरह से सजा हुआ था। इस बार शिवजी की थीम लालबाग के राजा को दी गई थी और उस रूप में, उस अवतार में लालबाग के राजा का हर किसी ने दर्शन किया। 24 घंटे उनका द्वार यहां पर खुला रहता था। 8 से 10 घंटे लगातार कतार में खड़े होने के बाद लोग उनके पैर छूने का उन्हें मौका मिलता था। 4 से 5 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद दूर से देखने का मौका मिलता था, लेकिन लालबाग के राजा के विसर्जन के एक दिन पहले से ही वीआईपी और वीवीआईपीओ का जो गेट है उसे बंद कर दिया गया और आम लोगों के लिए सारा का सारा दरबार छोड़ दिया गया। 24 घंटे से 48 घंटों के बीच तमाम लोग मुंबई से और अलग अलग कोने से अपने परिवार संग, दोस्तों संग, फैमिली संग, अपने स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड सारे यहां पर आए और आकर के लालबाग के राजा का दर्शन लिया। जिसका जी नहीं भरा है वो फिर से इतना साहस रखता है कि इतने ज्यादा भीड़ में खुद को संभाल पाए लगातार 8-10 घंटे, शायद पानी भी उसे नसीब ना हो इस भीड़ में। लेकिन दूसरी बार लोग दर्शन करने आए हैं, तीसरी बार करने आए हैं और कई लोग जो नहीं कर पाए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ आसपास रहने वाले जितने भी स्थानीय हैं, रहीवासी हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन सभी के साथ उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मुंबई पुलिस एक बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। 22,000 से ज्यादा मुंबई पुलिस इस समय मुंबई की सुरक्षा कर रही है, जिसमें तकरीबन 6 ज्वाइंट सीपी हैं, 38 डीसीपी हैं और 66 जो है वो एसीपी हैं। 3,000 से ज्यादा सीनियर पीआई का ख्याल है, इसमें निगरानी वो रखेंगे। साथ ही साथ तमाम वो पुलिसकर्मी जो अपने अपने सफल योगदान से आज ये बारहवें दिन का विसर्जन सफलतापूर्वक सही समय पर ले चल रहे हैं। अब कुछ ही देर में लालबाग के राजा का आगमन हो जाएगा, हर किसी की आंखें भर आएंगी दो तरहों से, खुशी से भी और दुख से भी। खुशी से इसलिए क्योंकि फाइनली पप्पा को आज विसर्जन का समय है। देखिए फिर से एक बार किस तरीके से लालबाग के राजा के मुख्य द्वार पर 15-15 मिनट पर इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। कहीं ना कहीं अब ये प्रतीत हो रहा है कि बस कुछ देर में ही लालबाग के राजा इस तरीके से चहल पहल बता रही है। आसपास जो लोग भी खड़े हैं, जो श्रद्धालु खड़े हैं, जो सीधे लालबाग के राजा के मुख्य द्वार के सामने देख रहे हैं और कुछ देर में ही वो पूरी तरह से बप्पा का आशीर्वाद ले पाएंगे, उनका दर्शन ले पाएंगे। उनकी जो ये चहल पहल होती है उसी से पता चलता है कि बप्पा की एक उन्हें और देखने में बदल पा रहे हैं, करीब आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं और करीब आते ही जा रहे हैं लालबाग के राजा। देखिये लालबाग के राजा अब मुख्य द्वार पर आएंगे और दर्शन के लिए निकलेंगे, यू टर्न पर फिर 4-5 घंटे बाद शाम को फिर से अपने मुख्य द्वार पर आएंगे। खास बात यह है कि लालबाग के राजा के पीछे सामने में हर उस ऊंची प्रतिमाओं के मंडल अपने जुलूस के साथ, अपने लोगों के साथ उनके पीछे पीछे विसर्जन के लिए निकलेंगे, जिसमें तमाम नाम शामिल है, जिसमें गणेश गली का भी नाम शामिल है। फिलहाल ये जो लगातार बढ़ रही संख्या है, पता नहीं किस हद तक बढ़ेगी, कितनी देर तक यहाँ रहेगी। इतना तो जो है कि आज 8 से 9 बजे तक शाम तक यहाँ तक कोई भी यहाँ से नहीं हटने वाला है, क्योंकि लगभग 40 से 42 प्रतिमा।
1: बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, धर्मेंद्र मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो देखिए 21 से 22 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि लाल बादशाह राजा की सवारी जो है वो पहुंचेगी गिरेगांव चौपाटी तक। क्या ये अप्रोक्स टाइम है या आगे पीछे कुछ वक्त का बताया जा रहा है? निर्धारित वक्त के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है कार्यक्रम,
5: फिलहाल मुंबई में चल रही है और मैं लाल बाग के राजा के द्वार में इस वक्त कुछ ही समय में लाल बाग के राजा।
1: चलिए धर्मेंद्र, धनंजय, नितिशा जी और डीपी शास्त्री जी, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज का दिन इतना खास क्यों है और तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगियों का। और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ये खास कवरेज, महा कवरेज दिन भर जारी रहेगी, देखते रहिए जीएनटी।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: तो इस साल गुड न्यूज टुडे के दर्शकों ने बड़े धूमधाम के साथ जीएनटी के साथ गणेश उत्सव का पर्व बनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद के रहने वाले मेघनाथ साहू ने अपने गणपति की सुंदर सी तस्वीर शेयर की है। मेघनाथ ने अपने घर में भव्य गणपति की प्रतिमा स्थापित की है और साथ ही मूषक को भी स्थापित किया गया है।
1: तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले मोनू द्विवेदी ने भेजी है। यहां बप्पा को एक छोटे मंदिर में स्थापित किया गया जहां वो अपने परिवार के साथ पूजा करते हैं। विघ्नहर्ता का ये छोटा स्वरूप लेकिन निराला स्वरूप है। मोनू ने अपने कैमरा में इसको रिकॉर्ड किया जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको लाल बादशाह राजा के दर्शन करवाते हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स के छठे दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। दस दिन के गणेशोत्सव के बाद आई गणपति की विदाई की बेला, मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल के बाहर बनाई गई रंगोली, उमड़ा श्रद्धा का समंदर। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन, शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज, ऑस्ट्रिया जापान सहित कई देश बने साझेदार, व्यापार निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, सिक्किम में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। ब्रिटेन में पहली बार दिखा बेल्जियम के मशहूर फ्लावर कार्पेट का अनोखा रूप, ब्रेंटफोर्ड में फूलों से सजा विशाल फ्लावर कार्पेट, 3 लाख से ज्यादा डहलिया फूलों का किया गया इस्तेमाल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: गणेशोत्सव के बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए देश भर से जगह जगह से निकल रहे हैं जुलूस, मुंबई में लालबाग चौराहा को भी श्रद्धा भरी विदाई देने पहुंचे भक्त। ढोलताशों के बीच बप्पा को विदाई देने के लिए जुटे हैं भक्त, अगले साल जल्दी आने की कामना, उमड़ा श्रद्धा का समंदर। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन, शोभा यात्रा का शुभारंभ, पारंपरिक आरती के साथ हुई यात्रा आधिकारिक शुरुआत। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु, हर तरफ गूंज रहे हैं गणपति बप्पा मोरे और अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष। अनंत चतुर्दशी पर पुणे के श्रीमंत डगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर पहुंची डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, भक्तिभाव से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। नागपुर के राजा का विसर्जन जुलूस भी हुआ शुरू, भक्तों की भीड़ के बीच बप्पा को गाजे बाजे के साथ दी जा रही है विदाई। ढोल ताशों के बीच बड़ी संख्या में विसर्जन यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु, पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अकोला में निकली बार भाई मान के गणपति की विसर्जन पालकी, ढोल और डिंडी के पारंपरिक वादन के साथ निकली यात्रा। अकोला में विसर्जन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, 3000 पुलिसकर्मी तैनात, 200 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। जलगांव में बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए भारी संख्या में जुटे भक्त, अपने प्रिय गणपति को दे रहे हैं भक्तिपूर्ण विदाई। तेलंगाना में विश्व प्रसिद्ध खैरताबाद गणेश की शोभा यात्रा शुरू, भारी संख्या में गजानन को विदा करने उमड़े भक्त। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई खैरताबाद की गणपति की यात्रा, इस वर्ष स्थापित की गई है लगभग 69 फीट ऊंची प्रतिमा। तेलंगाना में रंगारेड्डी के प्रसिद्ध बालापुर गणेश की भी निकाली जा रही है भव्य शोभा यात्रा, ड्रोन तस्वीरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। पारंपरिक भजन उत्सव और गणपति बप्पा बोरिया के नारों के बीच शुरू हुई यात्रा, बप्पा को विदा करने जुटे श्रद्धालु। बालापुर गांव से शुरू की गई गणपति की भव्य शोभा यात्रा लगभग 16 से 22 किलोमीटर की दूरी करेगी तय। बीएमसी ने श्री गणेश गौरव पुरस्कार 2026 का किया ऐलान, अंधेरी पश्चिम के सर्वापाक्ष मित्र मंडल को पहला स्थान, मंडल को 75,000 रूपये का मिलेगा पुरस्कार। गणेश पंडाल में पेड़ की आईसीयू में भर्ती दिखाया गया है, थीम के जरिए पेड़ बचाने का संदेश दिया जा रहा है। एलईडी पर पेड़ की व्यथा दिखाती 3 मिनट की फिल्म दिखाई जा रही है, अंत में लोगों से एक पेड़ लगाने की अपील की गई। पंडाल में गणेश जी की मूर्ति कागज से बनाई गई, विसर्जन के बाद मूर्ति पानी में आसानी से घुल जाती है। कागज से बनी गणेश प्रतिमा पानी में घुलने के बाद मछलियों का आहार बनेगी, पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश यहां दिया जा रहा है। गया जी में आज पितृपक्ष मेले का शुभारंभ, 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों पिंडदानियों के आने की उम्मीद। मेले से पहले लेजर शो से जगमग हुआ देवघाट, गया जी की धार्मिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को किया गया प्रदर्शित। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन, मेले की सभी तैयारियों का लेंगे जायजा, 10 अक्टूबर तक चलेगा मेला। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की 5 दिन की पिकनिक, के दौरान हाथियों की होगी खास खातिरदारी। इन 5 दिनों में हाथियों से नहीं लिया जाएगा कोई काम, उन्हें नहलाने, मालिश करने और स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ साथ उनके पसंदीदा व्यंजन की मिल रही है ट्रीट। ग्रेटर नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज, अमित शाह ने किया शुभारंभ, सीएम योगी भी रहे मौजूद। यूपी ट्रेड शो में 2400 से ज्यादा प्रदर्शक, 6 लाख से अधिक B2B B2C विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद। 1,10,000 वर्ग मीटर में सजा कारोबार का महाकुंभ, जापान रूस समेत कई देशों की भागीदारी। ओडीओपी ईवी आईटी कृषि और स्टार्टअप समेत कई सेक्टर्स के उत्पादों को मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म। निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने पर फोकस, ट्रेड शो में यूपी की संस्कृति और विरासत की भी दिखेगी झलक। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दूसरे दिन सेवा यात्रियों से की बात, इस दौरान सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही है इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना, 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी यात्रा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के 2 रोलर हॉकी खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, वर्ल्ड स्केट गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ चुनाव। स्थानीय प्रतिभाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरने का इससे मिलेगा मौका। 2 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पराग्वे में होगा वर्ल्ड स्केट गेम्स का आयोजन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सरकार की अच्छी पहल, 26 सीमावर्ती गांवों में घर घर जाकर चला रही टीबी की जांच। हिमाचल प्रदेश के नाहन में लॉन्च की गई मोबाइल कंप्यूटर वैन, स्कूली बच्चों को दी जाएगी डिजिटल और एआई की शिक्षा। हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई मोबाइल कंप्यूटर वैन, दूर दराज के इलाकों से बच्चों तक भी पहुंच सकेगी शिक्षा। कुल्लू में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा को लेकर बैठक, विश्व प्रसिद्ध मेले को लेकर सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। मेले के दौरान दिखेगी हिमाचल की परंपरा और संस्कृति की झलक, इस बार 300 से ज्यादा स्थानीय देवी देवताओं को भेजा गया है आधिकारिक निमंत्रण। 21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा ये फेस्टिवल, देशभर के अलावा विदेशों से भी इस मेले को देखने के लिए आते हैं यहां सैलानी। जयपुर दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एल्बर्ट हॉल में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ओपन जेल की शुरुआत, सेंट्रल जेल में 50 अच्छे आचरण वाले बंदी जेल से बाहर जाकर कर सकेंगे काम। बाहर करने वाले कैदियों को तय समय पर लौटना होगा वापस, कैदियों को मानसिक तनाव से मुक्त करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इसका मकसद। आईआईटी दिल्ली को बड़ी उपलब्धि, रिसर्च ने पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया माइक्रो जीपीयू विकसित। इस तकनीक से आयात पर देश की निर्भरता होगी कम, ई रिक्शा डैशबोर्ड से लेकर शैक्षिक ई बुक रीडर जैसे एम्बेडेड एप्लीकेशंस में होगा इसका इस्तेमाल। प्रसिद्ध अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन ताजमहल पहुंचे, पत्नी थिया ब्यूसेन संग किया ताजमहल की खूबसूरती का दीदार। मिस्टर बीस्ट के साथ पर्यटकों में फोटो लेने की भी मची होड़, मिस्टर बीस्ट को फैन ने दिया खास तोहफा, युवा फैन ने भेंट की युवान गौरव को अपनी स्केचबुक। पुंछ में युवाओं के लिए काउंसलिंग सेशन, स्टार्टअप आइडिया और बिजनेस अवसरों पर हुई चर्चा, युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की जानकारी दी गई। युवाओं ने सीखे स्टार्टअप के गुर, नए बिजनेस आइडिया को लेकर युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया, स्वरोजगार और कारोबार की संभावनाओं से कराया गया परिचय। फिल्म पूजा समारोह से पहले मदुरई पहुंचे साउथ सुपरस्टार धनुष, फैंस में देखा जबरदस्त उत्साह, धनुष की नई फिल्म का जल्द होगा शुभारंभ। एशियन गेम्स में आज भारत का शानदार आगाज, शूटिंग में देश को मिले 2 मेडल, भारतीय एथलीट्स ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल किया अपने नाम। कमल जी सुरुचि की जोड़ी ने रचा इतिहास, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में जीता गोल्ड। कमलजीत और सुरुचि सिंह ने दक्षिण कोरिया की मजबूत जोड़ी को एक तरफा अंदाज में पछाड़ा, एशियन गेम्स में भारत का ही 2 गोल्ड मेडल। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारतीय तिकड़ी ने भी किया कमाल, शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल किया अपने नाम। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने सटीक निशानेबाजी का किया प्रदर्शन, उन्होंने कुल 1762 अंक के साथ जीता रजत पदक। आज फिल्मी फ्राइडे में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच महासंग्राम, थिएटर से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक दर्शकों को मिलेगा मनोरंजन का डबल डोज। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द विवान सिनेमाघरों में देगी दस्तक, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की कहानी पर आधारित। पौराणिक ड्रामा श्री रामायण कथा भी आज थिएटर्स में होगी रिलीज, फिल्म में रामायण से जुड़े प्रसंगों को बड़े पर्दे पर पेश किया गया। कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित लव लॉटरी की बॉक्स ऑफिस पर होगी एंट्री, कहानी में कानूनी दाव पेश के साथ रिश्तों का पहलू भी देखने को मिलेगा। एवेंजर्स एंड गेम एनकोर की फिर बड़े पर्दे पर वापसी, मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म आज दोबारा भारत समेत दुनिया भर के थिएटर्स में देगी दस्तक। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म डोंट बी शाय आज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। रोमांटिक कॉमेडी में आरुषि बजाज की भूमिका में आलिया। अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख की वेब सीरीज हूंकार आज जियो हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। इंसाफ के लिए लड़ती दिखेंगी एक्ट्रेस अनीत पड्डा। परिणीति चोपड़ा की सीरीज शक ट्रस्ट नो वन आज से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। एक माँ की अपने खोए हुए बच्चे की 9 साल की खोज के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। कल ओटीटी पर आएगा राइज एंड फॉल सीजन 2। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पहली बार ओटीटी पर होस्ट करेंगे भूमिका में नजर आएंगे। अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर होगा ये प्रीमियर। नीम करौरी बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी। 24 सितंबर को 4 करोड़ का किया कारोबार। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 377 करोड़ के पार। बार्सिलोना में ह्यूमनॉइड टॉप का रोमांचक नजारा। लामर से उत्सव में कास्टिलर्स ने किया शानदार प्रदर्शन। सिटी हॉल के सामने 9 मंजिल तक बनी ऊंची मीनारें। हवा में उठे इंसान बार्सिलोना में दिखा अनोखा उत्सव। 8 स्थानीय समूह ने मिलकर बनाए 25 कास्टेल्स। हजारों लोगों के सामने परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन। 9 मंजिल ऊंचे इंसानी मीनार ने चौंकाया। कैटलिन कास्टेल्स ने एक के ऊपर एक चढ़कर मीनार बनाई। ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन से गूंज उठा माहौल। लामोसी फेस्टिवल में देखिए कैथलिन परंपरा की ताकत। बच्चों ने सबसे ऊपर पहुंचकर पूरा किया कासिल। सबसे छोटे प्रतिभागियों में एनकास्टनेट्स भी रहे शामिल। कास्टेलर्स के प्रदर्शन में सुरक्षा का भी ध्यान। सबसे ऊपर चढ़ने वाले बच्चों को दिए गए हेलमेट। ग्रालेस और टिम्बल की धुन के बीच बनाए गए कास्टेल्स।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है

0: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की रहने वाली नम्रता तामरकार ने अपने गणपति की सुंदर सी तस्वीर शेयर की है। नम्रता ने अपने घर में भव्य गणपति की प्रतिमा स्थापित की है, साथ ही पंडाल को भव्य तरीके से भी सजाया है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली निशा ओझा ने भेजी है। यहां बप्पा को भव्य पंडाल में स्थापित किया गया है, साथ ही पंडाल के सफेद फूलों से सजाया गया है जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है। विघ्नहर्ता का ये छोटा लेकिन निराला स्वरूप निशा ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर हमें भेजा है, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक

0: की शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: 10 दिन के गणेशोत्सव के बाद आई गणपति की विदाई की वेला। मुंबई में लालबाग चौराहे के पंडाल के बाहर बनाई गई रंगोली, उमड़ा श्रद्धा का समंदर। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। एशियन गेम्स के 6th दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमल जीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज, ऑस्ट्रिया जापान सहित कई देश बने साझेदार, व्यापार निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, सिक्किम में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। ब्रिटेन में पहली बार दिखा बेल्जियम के मशहूर फ्लावर कार्पेट का अनोखा रूप, ब्रेंटफोर्ड में फूलों से सजा विशाल फ्लावर कार्पेट, 3 लाख से ज्यादा डेलिया फूलों का किया गया इस्तेमाल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
4: मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रिंकी भाभी और लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां। और सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, सरिता ताई की होगी एंट्री, दिखेगी अनुपमा की खुशी, शुरू होगा खाने का खजाना।

0: दो।
1: खाने को लेकर ऋषि और प्रतीक करेंगे बवाल, सूरज होगा परेशान। सीरियल मनाती सुंदर में मनाया जाएगा गणेशोत्सव, शगुन में होगा अपशगुन।

0: गायत्री के जन्मदिन पर घर में मचेगा नया बवाल।
1: ऐसी मूड मिलाओ, ऐसी शक्ल लेकर

से तुम तक की अनु यानी कि निहारिका जाएगी गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए, करेंगे अनु संग भक्ति भरा डे आउट सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में घर के अंदर खाने को लेकर भारी बवाल मच गया है। आरशी और कृति के शोर शराबे से सूरज का पारा चढ़ गया और घर में जोरदार तमाशा शुरू हो गया। आखिर क्यों भड़का सूरज? देखते हैं ये हाई वोल्टेज ड्रामा।
1: खाना दो,
2: ऋषि और कृति का नारा।
1: खाना दो।
2: परेशान हुआ सूरज।
3: खिड़की दरवाजे बंद कर रहा हूँ लेकिन बदबू तो तुझसे आ रही है। लास्ट टाइम कब आया?
4: वैसे तो हर ट्यूसडे आते हम लोग, पर इस बार शादी वादी के टेंशन के चक्कर में ना तो एक दो हफ्ते स्किप हो गया शायद। क्यों छोटे?
5: यस ब्रो।
4: अरे
2: घर में मचा हंगामा। जीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर देखिए कैसे ऋषि और कृति मांग रहे हैं खाना, थाली पीट रहे हैं और मचा रहे हैं खाने के लिए शोर। तभी वहां पर पहुंच जाते हैं सूरज, जो इन्हें डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन ये दोनों सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई ये ढेर सारा खाना ही नहीं खाते, बल्कि हफ्ते हफ्ते भर तक नहाते भी नहीं है। ऐसे में सूरज इनकी बातें सुनकर भौचक्का रह गया है और उन्हें दे देता है फरमान नहाने का। लेकिन ये दोनों कहाँ किसी के सुनने वाले हैं। ऐसे में चंदू भी अपने बच्चों को सुधार नहीं पाया है, इसी बात को लेकर शुरू हो गया है ये ड्रामा।
4: लेट क्यों छीनी हमारी?
3: अभी थोड़ी देर पहले कढ़ाई में मुंह मार रहे थे, अब दोबारा भूख लगी तुम लोगों को?
5: हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देन ब्रंच एंड देन लंच।
4: भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, खाना दो।
1: भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, खाना दो।
3: दरवाजे बंद कर रहा हूँ लेकिन बदबू तो तुझसे आ रही है। लास्ट टाइम कब आया?
4: वैसे तो हर ट्यूसडे आते हम लोग, पर इस बार शादी वादी के टेंशन के चक्कर में ना तो एक दो हफ्ते स्किप हो गया शायद। क्यों छोटे?
5: यस ब्रो।
4: अरे
6: एक बार भला कौन नहाता है?
5: हम, स्पेशली ऋषि भैया। वो क्या है ना, रोज रोज नहाने से माइंड का जो क्रिएटिव फ्लो होता है ना, वो पानी के साथ बह जाने का डर है।
3: तुम दोनों को खाना तभी मिलेगा जब तुम दोनों नहा के होंगे। चलो चलो नहाओ।
4: दिन में? अरे दिन में कौन आता है?
5: हम तो सिर्फ रात में आते हैं।
3: चुपचाप नहाने जाते हो या? बताओ।
7: ये दोनों हर मंगलवार की रात को नहाते हैं और बुधवार को सुबह कपड़े धोते हैं। रही बात भूख की, वो तो इन दोनों बेचारों की कमजोरी है। टाइम पर इन्हें खाना नहीं मिले तो इनके दिमाग में जिद और गुस्से का वायरस घुस जाता है और ये पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। हाँ
2: भाई, आखिर में सूरज भी हार मान लेता है और इन बच्चों की जिद के आगे किसी की एक नहीं चलती।
4: भूख लगी है, खाना दो, खाना दो, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो, मोनिका
8: इस तो ऋषि और कृति एक बहुत ही आई थिंक फन एलिमेंट बन चुके हैं शो के। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, हम घर में बेसिकली आई थिंक कल आ गए हैं, तो हमारी नखरेबाजी सारे, मतलब बेसिकली हम इन सबको परेशान कर रहे हैं। हम ऐसे थोड़े वो नहीं होते बदतमीज बच्चे जो मतलब कुछ ना कुछ कांड कर रहे होते हैं घर में, पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है, घर वालों को परेशान कर रखा है। सो बेसिकली आज के सीन में जो हो रहा है, हम यहाँ पे मॉर्निंग हो चुके हैं, नाश्ता भी कर चुके हैं, बहुत तगड़ा वाला हलवा वगैरह वगैरह सब खा लिया है, बट फिर भी हम इतने भुक्खड़ इंसान है क्योंकि हमने जीवन में मतलब इतना अच्छा खाना देखा ही नहीं, सारा फ्री का माल खाया है हमने, भंडारे का एंड ऑल। सो यहाँ पे मोनिका भाभी जो है वो खाना बना रही होती है, तो हम उन्हें एक तो हमने बहुत ही देखा था तो इनफ खा लिया होता है, बट फिर भी नहीं, भाभी बनाओ बनाओ बनाओ, तो एकदम ऐसे नारेबाजी होती है ना बच्चे करते हैं, भूख लगी है खाना दो खाना दो, तो हम लोग वो कर रहे हैं। एंड उसी के बीच आप देखते हैं सूरज भी आ जाते हैं, वो भड़क जाते हैं, एक तो वैसे ही वो हमको देख के भड़के हुए हैं कि भाई ये लोग क्यों आए घर में, एक तो हमारा पूरा सत्यानाश कर रखा है देखा जाए तो, सारा घर को तहस नहस, तो वो थोड़ा मिक्स मसाला टाइप्स चल रहा है, मतलब कुछ खुलासा नहीं हो रहा है, बट हमारी नारेबाजी चल रही है और हमारी डिमांड्स। ट्यूसडे को नहाते हैं, वेनसडे को कपड़े धोते हैं, पूरे हफ्ते नहाते नहीं और शादी के टेंशन में दो हफ्ते से नहाया नहीं है, मतलब गंदे जो कपड़े मिल रहे हैं वो बस उठा के पहन लिए हैं। सो बेसिकली ये तो हम लोग कर रहे हैं, मतलब लाइक ऋषि एंड कृति, आई थिंक नॉर्मल रियल लाइफ में ऐसे कोई करेगा नहीं।
2: वहीं दूसरी तरफ मोनिका हो रही है परेशान क्योंकि उसे इन दोनों यानी कि ऋषि और कृति के लिए ढेर सारा खाना जो बनाना पड़ रहा है, और खाना बना बना कर मोनिका का हाल बेहाल हो चुका है।
9: घर में शैतान आए हैं और वो इतने शैतान हैं, वो दोनों बच्चे तो इतना खाते हैं कि आज मैंने कम से कम 50 पराठे बनाए होंगे, 25 रोटियां बनाई होंगी, और इतना मैं थक गई थी, तो जो सूरज है देवर जी हैं वो बेचारे देख के मुझे, हमने सारे तीतम बितम भिड़ा दिए, मिर्च डाल दी, करेला डाल दिया कि उनको तीखा लगे और खाना कम करें, लेकिन वो राक्षस हैं, उन्होंने खाना कम नहीं किया एंड दे वो इंजॉइंग। तो आई थिंक ये सब देख के आप लोग को बहुत मज़ा आएगा कि वो लोग घर वालों को कितना परेशान कर रहे हैं।
2: खैर इनकी ये मुश्किलें तो चलती ही रहेंगी। वहाँ शुरू हो गया है ताईजी और चंदू का रोमांस, जहाँ चंदू ताईजी के लिए मूवी टिकट्स लेकर आए हैं। ऐसे में देखिए कैसे ईशा और बाकी के घर वाले भी आ गए हैं, जहाँ ईशा चंदू और ताईजी को मूवी देखने जाने के लिए कहती है। ऐसे में इस बात पर नाराज हो गए हैं सूरज और पूरन।
3: साथ हमारे परिवार का हिस्सा, हमें अपने परिवार का, अपने बच्चों का, उनके मान सम्मान, उनकी मर्यादा संस्कार का ध्यान रखना
7: चाहिए। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा प्रमेस। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मूवी टिकट्स।
5: चुपके चुपके मूवी देखने का प्लान बन रहा है, मैं भी चलूंगी आपको
7: उनके साथ,
5: बड़ा मजा आएगा।
7: लेकिन हम
3: दोनों नहीं नहीं कोई मूवी देखते नहीं जा रहे, तुम्हें तो पता है ना चंदू की आदत है मजाक करते रहे।
7: मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच में टिकट बुक किए हैं, तो देखो देखो
5: हाउ स्वीट ताइवा, चंदू अंकल इतने प्यार से आपके लिए टिकट लेकर आए और आप एक ही इनकार कर रही है। ताइमा हम है ना, हम कर लेंगे घर का काम, आप जाइए चंदू अंकल के साथ मूवी देखिए और कोई नहीं जाएगा साथ में।
2: तो भाई फैमिली बढ़ी जरूर है लेकिन उसके साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ी हैं। अब देखना होगा सूरज और ईशा मिलकर इन सिचुएशंस का कैसे सामना करते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सीरियल जगधात्री में खतरे में है जगधात्री की जान, क्योंकि रुद्र ने बहरूपिया बनकर अपना भेष बदल लिया है और वो पहुंच गया है जगधात्री की जान लेने के लिए। क्या जगधात्री अपनी जान बचा पाएगी या रुद्र कामयाब होगा, चलिए देखते हैं।
2: रुद्र ने बदला भेष, रुद्र और शिवाय का हिट एंड मिस। पकड़ी गई जगधात्री, जी
10: टीवी के सीरियल जगधात्री में रुद्र ने बदल लिया है अपना भेष और पहुंच गया है अपने परिवारजनों से मिलने के लिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वहां पर नकाब ओढ़े शिवाय और जानवी दोनों पहुंच गए क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है कुछ अनहोनी होने की। ऐसे में भीड़ का फायदा उठाते हुए देखिए कैसे रुद्र वहां से भाग निकलता है, लेकिन जाते जाते शिवाय से टकरा भी जाता है। ऐसे में न शिवाय रुद्र को पहचान पाता है न ही रुद्र शिवाय को, क्योंकि उसे तो अब तक पता ही नहीं है कि शिवाय स्पेशल फोर्स में है। भाई यहाँ तो दोनों का सच एक दूसरे के सामने आते आते रह गया, तो वहीं दूसरी ओर जगधात्री भी घर वालों की जासूसी में लगी हुई है। जरा देखिए कैसे वो पहुंच जाती है तपस्या के कमरे में और आरती तपस्या को बहाना कर कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है ताकि उसे मौका मिल जाए, और तो और वो मौके का फायदा भी उठाती है, करने लगती है छानबीन। जरा देखिए कैसे छानबीन करते वक्त वो सिर्फ सबूत इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन कहानी में आ जाता है ट्विस्ट क्योंकि वहां पर पहुंच जाती है तपस्या और पकड़ी जाती है जगधात्री।
11: मैडम वो हम आपका ना बॉडी मसाज ऑयल कल यहीं पर ही रखा था, अब पता नहीं कहाँ है। I'm so sorry, आपसे बिना पूछ के देख रहा था, पर आप चेक कर सकते हैं सारा सामान है। मैं एक्चुअली आपका मसाज करना चाहता था।
12: मैंने कहा कि मुझे मसाज चाहिए,
11: पर मैडम आप इतना ज्यादा स्ट्रेस था तो मैंने सोचा मसाज देगा तो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक बार ट्राई करके तो देखो। सीरियसली ये लिली के हाथ में ना मैजिक है।
10: फिलहाल तो जगधात्री ने बहाना कर तपस्या को गुमराह कर दिया है, और तो और मजबूरी में आकर अब तपस्या की उसे तेल मालिश भी करनी पड़ रही है। जरा देखिए कैसे तपस्या चुपचाप बैठी है और जगधात्री उसको मसाज दे रही है, और ये मसाज कहीं ना कहीं तपस्या को रास भी आ रहा है। भाई तपस्या को मसाज में इतना मजा आया कि वो ना कहने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में जगधात्री को जानबूझकर मसाज में प्रेशर देना पड़ रहा है, जिसके चलते तपस्या परेशान हो रही है, और तो और उसे परेशानी के चलते उसने जगधात्री को जाने के लिए कह दिया है। ऐसे में जगधात्री चली तो जाती है, लेकिन तपस्या वो डर जाती है क्योंकि जिस ड्रॉअर से जगधात्री कुछ सबूत ढूंढ रही थी उस ड्रॉअर में तपस्या के पास रुद्र के कुछ सबूत रखे हुए हैं। ऐसे में झटपट जाकर वो ड्रॉअर देखती है और उसे मिल जाता है अपना पेन ड्राइव, जिसे पाकर तपस्या हो जाती है खुश। अब देखना होगा कि जगधात्री को पता चल पाएगा कि तपस्या और रुद्र की जान इस पेन ड्राइव में बसी हुई है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
11: आग पॉकेट में लेके घूम रहा है क्या? जा।
13: कुछ तो ऑफ है ये लड़की।
11: जगन सर, पर आप बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा, यहाँ पर डस्टिंग हो रहा है ना, धूल उड़ेगा।
14: ये टेबल से दूर रहना, इम्पोर्टेंट फाइल्स है इसमें।
13: कुछ तो मुझे चाहिए दीदी के बैकग्राउंड के बारे में।
11: महेश काका का नाम इस अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ?
0: सीरियल मन अति सुंदर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। पूरा परिवार मिलकर बप्पा की आरती कर रहा है, लेकिन इस पावन मौके से राध्या पूरी तरह नदारद है। आखिर क्यों इस पूजा से गायब है राध्या, चलिए जानते हैं।

राध्या और प्रथम के घर गणपति बापा का आगमन, परिवार ने की बापा की पूजा, शगुन में हुआ अपशगुन, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज खुशियों का माहौल है क्योंकि गणपति बापा घर जो आए हैं, ऐसे में सभी लोग बापा को निहार रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं और परिवार वाले हो गए हैं विघ्नहर्ता की भक्ति में पूरी तरह से लीन। देखिए कैसे प्रथम राध्या और बाकी के घर वाले कर रहे हैं बापा की आरती। भाई इस खुशी के माहौल में मौजूद है अंतरा भी। भाई आज तो राध्या और प्रथम ट्विनिंग कर रहे हैं और दोनों सच्चे मन से बापा की आरती उतार रहे हैं।

लेकिन हम आपको बता दें कि ये तो है प्रथम का सपना। जी हाँ, राध्या इस त्योहार से नदारत है। गणेशोत्सव के मौके पर वो घर पर नहीं बल्कि आश्रम में है। ऐसे में प्रथम को आ रही है राध्या की याद और वो इमेजिन कर रहे हैं कि राध्या उनके साथ है, लेकिन असल में राध्या घर पर है ही नहीं।

0: इस मौके का भी फायदा उठाया दादी ने। देखिए कैसे दादी चाहती है कि प्रथम और अंतरा बापा की आरती साथ साथ करे, लेकिन इस बात से प्रथम साफ इनकार कर देता है।
1: प्रथम दादिया नहीं है तो क्या हो गया? अंतरा की गोद में तुम दोनों का अंश है, होने वाले बच्चे के साथ तुम दोनों पूजा रहा है।
2: नहीं दादी, मुझे जोड़े वाली कोई भी पूजा नहीं करती।
1: प्रथम दादी कोई दूध की बच्ची नहीं है कि मैंने उसे बोला और वो चली गई। उसकी खुद की इच्छा थी वहाँ पे आश्रम जाने की, इसीलिए वो गई है। और ये सब पे ध्यान देना छोड़ो और घर की पूजा पे ध्यान दो।
0: खैर राधिया तो नहीं है, लेकिन सभी घर वाले एक एक कर बापा की आरती उतार रहे हैं और उनकी सेवा भाव में लगे हुए हैं। तभी चलती है तूफानी हवा और ऐसे में हो जाता है प्रथम को अंदेशा कि राधिया खतरे में है, लेकिन देखिए वो दिया बुझने नहीं देता। ऐसे में अब प्रथम को राधिया से किसी भी तरह से मिलना है, इसीलिए वो जिद करता है आश्रम जाने की, लेकिन दादी उसे रोक रही है।
3: मेरी तो ना राधे से बात हो पा रही है, ना ही राधे के बारे में कुछ पता है, और आपको पता नहीं राधे को किस आश्रम में भेजती है। दादी देखिए प्लीज, मुझे राधे से मिलना है, मैं उसे मिलने जा रहा
1: हूँ। आज घर में गणपति जी आए हैं, उनकी सेवा पूजा छोड़कर तू अपनी दीदी के पीछे चल पड़ा। मां लेते दीदी, अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मैंने राधे को किसी आश्रम की जहन्नुम में भेज दिया जहाँ से वो कभी लौट कर ही नहीं आएगी।
3: एग्जैक्टली दादी, आज घर में पूजा है, राधा को इधर होना चाहिए था, ना कि किसी आश्रम में। देखिए दादी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, मैं राधा को लेकर ही आऊंगा।
4: प्रथम बेटा, जहाँ तक हमें पता है ना, उस आश्रम के नियम कायदे कानून बहुत सख्त हैं।
0: ऐसे में प्रथम आश्रम में फोन लगाकर उन्हें धमकी दे रहा है कि जैसे तैसे प्रथम को राधा से मिलना ही है।
3: देखिए मैंने कल भी कॉल किया था, प्लीज मेरी पति से मेरी बात करवा दीजिए। अगर आप मेरी अभी के अभी मेरी पति से बात नहीं करवाएंगे ना, तो मैं अभी के अभी आपके आश्रम में आ जाऊंगा। ऐसे कैसे नियम है आपके आश्रम के, हा? ना बात कर सकते हैं, ना मिलने आ सकते हैं, आपका आश्रम ही है जेल। देखिए मैं मिलने आ रहा हूँ, अगर आपने मुझे मिलने नहीं दिया ना, तो मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। मैं बिल्कुल आ सकता हूँ, इनफैक्ट मैं अभी के अभी अपनी पति से मिलने आ रहा हूँ, और आप मुझे रोक भी नहीं सकती।
0: तो भाई अब जब प्रथम आश्रम जाएगा तब सच का खुलासा होगा। अब देखना होगा कि क्या वाकई राध्या की जान खतरे में है या नहीं, क्योंकि बापा तो हैं राध्या की रक्षा करने के लिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में गायत्री के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस पार्टी में सिर्फ मस्ती और धमाल ही नहीं बल्कि एक जबरदस्त ड्रामा और बवाल भी होने वाला है। देखिए बर्थडे पार्टी में हुए इस ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी।
6: गायत्री देवी का बर्थडे सेलिब्रेशन।
7: हैप्पी बर्थडे टू यू, नाचरे गुट्टू टमकू आलू कचालू खा लड्डू दुर्गा बोला टुकड़ू टू। हैप्पी बर्थडे टू
8: यू। ऐसी भूत बिलाओ ऐसी शक्ल लेकर ना, तेरी का पता नहीं के बारे में आप बात नहीं करें तो ये अच्छा।
6: सेलिब्रेशन में बहू की बगावत।
8: को शॉर्टेज कुत्तों की प्लेट में खाना है तो बताइए, केक सर्व कर दूं आपको?
9: बस
6: बदमाशों की एंट्री से घर में आई आफत। दंगल टीवी के सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में आज गायत्री देवी का घर जगमगा रहा है, और जगमगाए भी क्यों ना, गायत्री देवी का जन्मदिन जो है। ऐसे में गायत्री देवी तो अपना टशन दिखा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बहुरानी कजरी को भी अपना रौब दिखा रही है, और तो और आंखों ही आंखों में जता रही है कि आज वो कजरी को हरा ही देंगी। लेकिन कजरी उसने भी हार नहीं मानी। तभी तो देखिए कैसे वो गायत्री के हर टशन को बर्दाश्त कर रही है। जब गायत्री अपने जन्मदिन सेलिब्रेशन में अपने पूरे परिवार के साथ सिद्धार्थ को भी ले गई, और बेचारी पूरे परिवार के बीच कजरी को गिना ही नहीं गया, क्योंकि वो तो नीचे ही खड़ी रह गई। खैर पूरे परिवार ने मिलकर गायत्री का जन्मदिन सेलिब्रेट किया।

0: भाई गायत्री ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर केक काटा, साथ ही साथ कजरी को उन्होंने दूसरा टशन भी दे दिया, वो भी ट्विस्ट के साथ। जरा देखिए कैसे उन्होंने अपने नौकर से कुत्ते की थाली मंगा ली, और तो और वो थाली किसी और के लिए नहीं बल्कि आकाश के लिए चुनी गई है, जिसे देखकर कजरी हैरान हो रही है। इतना ही नहीं, उस नौकर ने जाकर आकाश को वो थाली पकड़ा दी और लेकर आ गया केक ताकि वो आकाश को दे सके। लेकिन गायत्री ने यहाँ पर गेम खेल दिया, नौकर के बजाय कजरी को बोल दिया आकाश को वो केक परोसने के लिए। ऐसे में कजरी ना चाहते हुए भी आकाश के पास चली तो गई और उसने कोशिश भी की थाली में केक परोसने की, लेकिन उससे हो ना सका, और तो उसने कर दी बगावत भी।
1: ऐसी वफादारी तो मैंने सिर्फ जानवरों के बीच में देखी है, या उन लोगों के बीच में जिनके बीच दोस्ती संबंध और चोर भी हो।
2: ऐसी मूड बिलाव, ऐसी शक्ल नहीं करना। तेरी वफादारी के बारे में आप बात नहीं करें तो ही अच्छा है। अगर आकाश जी की जगह यहाँ पे आप भी होते तो भी मैं यही करती। लेकिन हाँ, अगर आपको खुद को शौक है कुत्तों की प्लेट में खाना है तो बताइए, केक सर्व कर दूं आपको।
1: बस
0: भाई गायत्री की कोशिश तो नाकाम रही, और कजरी उसने न सिर्फ आकाश की थाली में केक परोसने से मना कर दिया बल्कि केक रखकर वो इस पार्टी से चली भी गई। लेकिन गायत्री को नहीं पता कि अगले ही पल आने वाला है एक और ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट है बदमाशों के रूप में, जिसने आते के साथ ही कर दिया गौरव पर हमला।

0: I'm sorry. मुझे माफ कर देना प्लीज।
1: और क्या कह रहे हो? कौन सी गलती? क्या क्या किया क्या है तुमने?
2: भाई इससे पहले गौरव कुछ बता पाता घर में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बाकी लोग हैरान रहते हैं, खुद गायत्री भी। और इसी बीच गौरव बताता है कि उसने मल्होत्रा से पैसे लिए थे फंड्स के तौर पर, लेकिन अब मल्होत्रा उसका फोन नहीं उठा रहा। ऐसे में आकाश लेकर आता है सभी के लिए सरप्राइज, और देखिए कैसे फाइल दिखाते हुए वो सभी को बताता है कि गौरव ने इस घर को मल्होत्रा को नहीं बल्कि आकाश को गिरवी रखा है।
3: गौरव मल्होत्रा नहीं आएगा, ना ही वो कोई पैसे देगा। मल्होत्रा मतलब एक्चुअली मैं तुमने ये घर मल्होत्रा के पास मेरे पास
2: भाई आकाश ने जो पैतरा आजमाया उससे तो गायत्री ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ भी हैरान है। अब देखना होगा जो रुतबा गायत्री आकाश को दिखा रही थी क्या आगे चलकर वो दिखा पाएंगी, और आकाश जो चाहता है यानी कि कजरी को, क्या उसे वो कजरी मिल पाएगी।
4: चलो मेरे साथ।
2: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं।
6: शुरू हो गया है Netflix पे।
7: वेलकम टू द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5।
8: हमारा ये सीजन जो है ये हमने त्योहारों को समर्पित किया है। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फोटो देख के पता चलता है कौन सा त्योहार है।
9: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। जल्द आने वाला है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। ऐसे में खास मेहमान बनकर आएंगे टीम दृश्य और वन की कास्ट। देख लीजिए इसकी खास झलक।
8: मैं हूँ थोड़ा खराब पर इतना नहीं, मतलब
10: आप शरीफ हो।
8: आज तक मैंने आपका नंबर मांगा। कितनी प्यारी लग रही है तमन्ना, आप साड़ी पे भी फूल, बालों में फूल, खुद भी आप एक फूल हैं।
11: कपिल मैंने अनारकली पहनी हुई है, साड़ी कैसे लग रही है?
8: अरे चेहरे से नजर हटे तो हम देखें।
12: चमन बेटा चाहिए मुझे। We are now Sona Mona 2.0.
13: Yes.
12: मृणाल कितनी बड़ी हो गई है ना। इससे एक्चुअली ना कभी पूछो वेर आर यू फ्रॉम तो बोलते हैं वाज बोर्न इन मुंबई बट ब्रॉट अप इन दृश्यम। थोड़ा आ गया एक मिनट, चलो अब्बा हजूर।
14: मैं तुम्हें काबू करने के लिए नहीं आया हूँ।
12: काबू करने नहीं आया तो क्या बाबू करने आए हैं?
8: कैसे प्रकट हुए आप धरती पे? हिंदुस्तान में कहाँ पैदा हुए आप? मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। 15 साल से अजय सर को जानता हूँ, मेरी 14 बातें हुई इनके साथ। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है?
15: हमारी पूरी फिल्म में भी यही बात हुई है।
8: मैं ठीक हूँ, तू कैसी है?
16: मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी पे भी भरोसा कर लीजिएगा, अपनी माँ पे मत करिए,
8: खास तौर पे जब वो बात बाप से छुपानी हो।
11: कुछ कुछ छेद है।
8: किसमें छेद है? अभिषेक सर, अगर आप पहले पार्ट में काजोल मैम को ले लेते, आपको लगता कि वो पहले पार्ट में उगलवा लेती सब कुछ?
17: अरे पहली भी नहीं बनती।
8: पहली भी नहीं।

की शाम हुआ स्पेशल प्रीमियर फिल्म डोंट बी शाय का, जिसमें खास मेहमान बनकर आई आलिया भट्ट, साथ थे रणबीर कपूर और आलिया की सासू माँ यानी नीतू कपूर। ऐसे में ये तीनों साथ साथ नजर आए, जहाँ पर आलिया ने ये फ्लावरी ड्रेस पहनी है। इसके अलावा कई और सितारे इस खास प्रीमियर में पहुँचे, जैसे कि अयान मुखर्जी, शाहिन भट्ट, करण जौहर, वरुण धवन और कई और सितारे जो इस स्पेशल प्रीमियर में नजर आए।

0: have some water? Yes. Wait, touch up, trap. सर ये हमारी ड्यूटी है।
1: कौन बनेगा करोड़पति की ये खास झलक देख लीजिए, जहाँ पर खास मेहमान बनकर आए हैं राजकुमार राव और वामिका गब्बी, और यहाँ पर तो वामिका का हो गया बिग बी संग फैन मोमेंट। देख लीजिए ये खास झलक।
0: हो गया,
2: थैंक यू,
0: ले लीजिए।
2: थैंक यू।
0: वापस। अब क्या बोल रहे हैं जी आप?
2: सर मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, कोशिश कर रही थी कि अच्छा काम करूँ, पर मेरे डैड हमेशा यही कहते थे, जब आपको पता है जब मैंने जया मैम के साथ काम किया तो उन्होंने मुझे तब बोला, कहते अब तुम काम कर रही हो, तो मैंने कहा अब मैं अमिताभ सर के घर के थोड़े से करीब पहुँच गई हूँ। तो ये जो मेरी पूरी जड़ है एक्टर बनने की,
0: वहाँ बैठी हुई है,
2: वहीं बैठे हुए पूरे।
0: सर आप चिंता मत कीजिए, इनकी ये बहुत बढ़िया कलाकार हैं, इनकी सारी रिपोर्ट हमको मिल चुकी है।
3: गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में है और बप्पा की विदाई का वक्त करीब है। इस बीच सीरियल तुमसे तुम तक की अनु यानी निहारिका चौकसे अपने पेरेंट्स के साथ परेलचा राजा के दरबार में बप्पा के दर्शन करने पहुंची। तो चलिए हम भी चलते हैं बप्पा के दरबार में

बापा के दर्शन करने पहुंची अनु। देखी निहारिका की भक्ति, शुरू हुआ सफर आस्था भरा। भाई मुंबई में जोरों शोरों से चल रहा है गणेशोत्सव और आज बापा जा भी रहे हैं, होने वाली है उनकी विदाई। लेकिन उससे पहले अनु यानी कि निहारिका चौकसी को मिल गया है मौका गणपति बापा के दर्शन करने का। सास बहू और बेटिया में निहारिका हमारी खास मेहमान है और आज वो जाएंगी परीलचा राजा करने विघ्नहर्ता के दर्शन, लेने उनका आशीर्वाद। और इस भक्ति भरे सफर में उनका हम सफर है सास बहू और बेटिया। तो चलिए चलते हैं सेट पर जहाँ अनु रेडी हो रही है, क्योंकि आज वो बापा के दर्शन भी करेंगी, अपने मम्मी पापा से भी मिलवाएंगी और लेंगी सुखकर्ता का आशीर्वाद। भाई शूटिंग खत्म कर पैकअप के बाद वो बापा के दर्शन के लिए जाने को तैयार हो रही है। वैसे तो अनु का लुक सिंपल है लेकिन आज वो बापा से मिलने जा रही है, इसीलिए आज अनु थोड़ी सजी धजी है। तो आइए देखते हैं कैसा है आज का इनका ये लुक। तो

0: हारिका सज धज गई है और तैयार है पापा के दर्शन के लिए। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं उनकी एक्साइटमेंट के बारे में।
1: सबको मैंने पहले भी बताया, मैं बप्पा में बहुत बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शूटिंग के दौरान मैं इतने सारे पंडाल नहीं जा पाई, पर अब जी टीवी के साथ जा रही हूँ मैं परेल चराजा।
2: सो मुंबई कर्स के लिए बप्पा का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, और चाहे कोई भी एक्टर हो या कोई भी हो, वो उनके आशीर्वाद के बिना आई थिंक नहीं रह पाएगा। कुछ वैसे ही निहारिका हमारे साथ है, जो कि अपने शूट को साइड में रखते हुए वहाँ से फ्री होते हुए आज बप्पा के दर्शन करने वाली है हमारे साथ।
1: मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बप्पा में बहुत मानती हूँ मैं, और मैंने अपने मोस्टली सारे फ्रेंड्स के यू नो घर जाने की कोशिश की, पर इतने पंडाल में नहीं जा पाई, और आज मैं जा रही हूँ विद जी टीवी, सो वेरी वेरी एक्साइटेड।
2: मतलब निहारिका, मुंबई में जिस तरह की धूम हम देखते हैं, आई थिंक हर तरफ शोर होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, बप्पा होते हैं, हर एक के घर में होते हैं, बड़े बड़े पंडाल्स लगते हैं, इस तरह की वाइब इन्जॉय की है आपने?
1: हमेशा इन्जॉय करती हूँ। एंड एक होता है ना, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल सिटी होती है। आई थिंक जो हमारे बप्पा का आगमन है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। जो यहाँ का वाइब है वो कुछ अलग ही होता है। जैसे कहते हैं ना, वृंदावन में होली सेलिब्रेट करो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज है ना टू सेलिब्रेट डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक मुंबई में बप्पा का आगमन सेलिब्रेट करना इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग।
2: तो पहले गए हैं आप, क्योंकि आज हम परेल चौराजा विजिट करने वाले।
1: बहुत बार मैं लास्ट ईयर भी विद जी गई थी, और मैं लालबाग चौराजा भी जाती रहती हूँ, वैसे भी हर साल गई हूँ, मोस्टली गई हूँ जब से मुंबई आई हूँ, बहुत मानती हूँ। एंड जितने मेरे सोसाइटी के बप्पा होते हैं, मोस्टली आई ट्राई टू कवर सारे बप्पा, क्योंकि सब लोग इतने यू नो प्यार से बनाते हैं, इतने ग्रैंड मूर्तिज़ होती हैं, इतनी डिफरेंट मूर्तिज़ होती हैं। पर मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा इको फ्रेंडली करते हैं हम इस चीज़ को। आजकल बहुत लोग इको फ्रेंडली बप्पा बना रहे हैं, आई फील दैट्स द राइट वे टू डू इट। आज एज अन्नू जा रही हूँ, बट अन्नू ये सब नहीं पहनती आपको पता है, पर आज मैंने थोड़ा सा चीटिंग कर लिया, क्योंकि कभी कभी तो चलता है। एंड ये तो नॉर्मल अन्नू वाली साड़ी है, एंड चलिए अब दर्शन के लिए चलते हैं, लेट हो रहा है।
0: तो भाई सफर अभी लंबा है, सेट से परेल के राजा गणपति पापा के दर्शन के लिए जाना है, बातें तो बहुत होंगी, तो चलिए करते हैं इस आस्था भरे सफर की शुरुआत।
1: मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मुंबई के ट्रैफिक के बारे में आपने जितना भी सुना है वो सब कुछ सच है, तो हम धीरे धीरे अभी हल्का हल्का सरक सरक कर आगे बढ़ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, बप्पा की भक्ति में लीन है, तो जितना टाइम लगेगा अब तो जाना ही है दर्शन के लिए।
0: तो भाई पापा के दर्शन के लिए अनु यानी निहारिका तैयार है। तो इस सफर के दौरान उन्होंने बताया अपना सफरनामा, कैसे वो इस एक्टिंग की दुनिया में आई, कैसे पापा ने निहारिका की मनोकामनाएं पूरी की, यानी कि निहारिका से ही जानते हैं उनकी ये स्टोरी।
1: देखिए, मेरा मैंने हमेशा से कहा है, मेरा बचपन से सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। समझ में नहीं आता था कैसे शुरुआत करूं। सारे जिनका भी यू नो कोई गॉडफादर नहीं है या कोई कनेक्शंस नहीं है, सब मुझसे रिलेट करेंगे। वी आर वेरी क्लूलेस, हमें पता ही नहीं है कौन सही है कौन गलत है, किसको अप्रोच करना है किसको नहीं। तो बुरहानपुर में बैठे बैठे वो छोटी सी निहारिका ने वो सब ड्रीम्स देखे थे हीरोइन बनने के, बट देन सूनर लेटर मैंने रियलाइज़ किया कि एकदम से हीरोइन तो नहीं बन जाऊँगी। फिर ना कुछ शोज आते थे जिसमें चाइल्ड एक्टर्स लीड थे, तो वहाँ से मेरा दिमाग चलने लगा, यार मैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ऑडिशंस ऑन फेसबुक, ये वो, कई फ्रॉड्स मिले, पैसे ले लिए, ब्लॉक कर दिया, कई बार लोगों ने मेरी बोलते हैं ना हौसला तोड़ने की कोशिश की, पर वो टूटा नहीं, मैं लगी रही। फिर एक बार मैंने समर वेकेशन में पापा को कहा कि मुझे मुंबई घूमने जाना है, पापा मान गए। हम खोपोली साइड गए थे घूमने के लिए, वहाँ के थीम पार्क्स वगैरह में। एंड देन मैंने और मम्मी ने जो जो थोड़े बहुत निकाले थे ना, आराम नगर, क्रिस्टल प्लाजा, हर जगह हम गए और हमने इंट्रो वीडियोस दिए, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि आपको हर प्रोडक्शन हाउस में जाके कहना है मेरा इंट्रो ले लो। मैंने इंट्रो वीडियोस दिए, कहीं कहीं ऑडिशंस दिए, फर्स्ट टाइम था, नर्वस थी, बट अपने ऊपर वो था कि एक कोशिश तो ज़रूर करूँगी। वो हो गया, एंड देन कुछ नहीं, घर आ गई वापस। सिक्स मंथ्स बाद आई गॉट दैट वन मैजिकल कॉल फॉर ये है मोहब्बतें। स्टार प्लस का शो था, एक छोटा सा कैमियो था, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इमेजिन, मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं, कुछ नहीं किया, एक इंट्रो दिया, आप कह सकते हो तुक्का लग गया। मेरा लक अच्छा था, बप्पा मेरे साथ थे, तो बप्पा मैं तो बहुत मानती हूँ। और मुंबई आके भी जब भी कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही है, काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है, कभी बहुत ज़्यादा काम था, कभी बिल्कुल काम नहीं था। तो जब जब मुश्किलों में थी, हमेशा पप्पा से मांगा है। लाल बागचा राजा जाके भी मैंने मांगा था कि मुझे एक सुपर डुपर हिट शो चाहिए, क्योंकि सारे शोज मेरे चलने के बावजूद भी उतने टाइम नहीं चले, या होता है ना कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी कि मेरा कोई शो इतना लंबा चल जाए। तो अभी तुमसे तुम तक हैपेंड, और आज तुमसे तुम तक मैं सेकेंड बार जा रही हूँ। जी के साथ ही मैं पप्पा के दर्शन के लिए दूसरे साल में भी जा रही हूँ, मतलब शो को ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस हो चुका है, एंड इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। आई होप बस ऐसे ही अच्छा चलता रहे शो, टच हो। थैंक यू पप्पा, 100% आई थिंक लाल बाग से राजा, और अगर आप दिल से मांग लो ना, अगर आपके घर की मूर्ति भी है तो वो भी आई थिंक उतना ही पावर रखती है। बट हाँ, वो एक तो बात है कि इतने लोगों की मान्यता है तो कुछ तो होगा सिद्धि विनायक में, लाल बख्चे राजा में, तो मैं तो ज़रूर मानती हूँ हमेशा की है। मैं वही कह रही हूँ ना, अभी शो चल रहा है तो मैं बिजी हो गई, वरना इसके पहले तक तो किसी फ्रेंड के घर के पप्पा मिस नहीं हुए होते थे। इस साल काफ़ी लोगों के हुए हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। पैकअप के बाद आप कितनी जगह ही जा सकते हो, फिर दूसरे दिन शूट है। बट जब शूट नहीं होता था, अरे ओ आई रिमेम्बर, मैं अंधेरी के सारे एक एक पंडाल मैंने माँ कैसे किए थे, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और मैं हर जगह होकर आई थी। इतने स्मूथली दर्शन हो गए मेरे, एंड मैं तो कई बार अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि हमें थोड़ा बहुत VIP मिल जाता है। लाल बाग चराजा बोल लो, कहीं और बोल दो, आज भी अगर मैं जी के साथ जा रही हूँ तो मेरे तुरंत तुरंत दर्शन हो जाएंगे। बट मुझे बहुत उन लोगों के लिए होता है कि उनकी भक्ति तो और कितनी रियल है, वो लोग कितने कितने घंटे लाइन में लग कर जाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। तो खाने को तो मतलब खाना तो ऐसा हो गया है जैसे कुछ लोगों को ऐसा ना किसी चीज़ से खुशी मिलती हो, मुझे फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद खाना खाने से बहुत खुशी मिलती है, आफ्टर एक्टिंग ऑब्वियसली। तो आई हैव तो एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, मतलब आई नो द बेस्ट सुशी प्लेस, आई नो जहाँ बेस्ट छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं, हर तरीके का क्यूजिन और हर लेवल का एक होता है ना। सुशी भी खा सकती हूँ मैं, छोले भटूरे भी खा सकती हूँ, पाव भाजी भी, पानी पूरी भी, आप मुझसे पूछो अगर कहीं किसी को मुंबई में खाना खाना है, यू शुड आस्क मी, आई नो द बेस्ट प्लेसेस हियर।
0: इसी के साथ निहारिका ने यानी अनु ने आर्य के बारे में भी कई बातें बताई, और साथ ही निहारिका ने ये भी बताया कि उन्हें रियल लाइफ में आर्य जैसा ही हमसफर चाहिए, और क्या है उनके शादी के प्लान्स ये भी बताया।

0: आर्यवर्धन अ पर्सन लाइक आर्यवर्धन, आई थिंक हर लड़की को ऐसा ही पार्टनर चाहिए एंड मुझे भी ऐसा ही चाहिए कोई. हाँ मतलब एज डिफरेंस थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, बट एज इज जस्ट नंबर. सो या अगर आर्यवर्धन जितना अच्छा इंसान हो, अभी आधे लोग लिखेंगे पैसे वाला भी, हाँ तो वाई नॉट, बट अच्छा इंसान भी, तो यस आर्यवर्धन. मैं भी चाहती हूँ, आपने वो म्यूजिक वीडियो देखा है तुमसे तुम तक का, क्या क्या नहीं किया आर्यवर्धन ने उस मेनू के लिए, भले ही शो में उतना नहीं करते हैं बट वैसा हर लड़की का ड्रीम होता है प्लीज़. सो यस कहाँ आर्यवर्धन मिला होता तो अभी क्या ही बात होती. कोई नहीं यार, बचपन से सिंगल ही हूँ और ऐसा नहीं कोई ऐसी रुकावट या कोई मनाही है, पर कोई अच्छा मिला ही नहीं. बप्पा अभी चलो मैं बप्पा से प्रे कर लूँगी, क्या कहते हैं बप्पा से हम अच्छा काम मांगेंगे. एक तो पहली बात, मेरी फर्स्ट विश हमेशा ये रहेगी कि मुझे एक बहुत बड़ी बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना है. अभी तो कुछ नहीं किया है, अभी बहुत कुछ करना है. और दूसरा अभी मैं आपके से मुझे आइडिया आ गया है तो मैं ये भी मांग लूँगी, क्योंकि एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. तो जस्ट शेयर थिंग्स. आई लिटरली हैव वेरी कम दोस्त, बहुत कम दोस्त हैं मेरे, और आधे इंडस्ट्री के हैं तो वो लोग भी बिजी रहते हैं. आधी मेरी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं तो वो लोग वहाँ बिजी रहती हैं, मुझे टाइम नहीं देती. तो मैं चाहती हूँ मेरा भी बॉयफ्रेंड बने और मैं भी सबको बोलूँ कि हेलो आई एम बिजी. तो वैसा यार पता तो चल जाएगा. देखो लव की फीलिंग तो अलग ही होती है. नॉट दैट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस, आई हैव बीन इन लव एक बार, बट वो उसमें मैंने देख लिया दैट मैं बहुत ज़्यादा बियॉन्ड और अबव चली जाती हूँ, मतलब एकदम ही फिर ना मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता. तो आई थिंक एट दिस पॉइंट फॉर माई करियर इट्स गुड दैट मैं ऐसी ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत अलग अलग चीज़ों पर फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है. तो अच्छी बात है दैट आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड, वरना फिर ना मैं बहुत ज़्यादा ही इधर बह जाती हूँ. सब लड़कियाँ मुझसे रिलेट करेंगी, इधर वी आर नॉट देयर और इधर वी आर 100% इन, तो वैसा वाला. तो अभी आई एम प्रीटी मच फाइन. अगर अच्छा होगा तभी बप्पा भेजो, वरना मुझे कोई जल्दी नहीं है. तो अभी हम मुद्दे पर आते हैं. हम जा रहे हैं बप्पा के दर्शन के लिए और अभी ऑलमोस्ट एक घंटा और है, और मेरे मम्मी पापा भी अपनी कार से वहाँ पहुँचते ही होंगे, दे विल जॉइन अस देयर. तो अभी एक घंटा है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नैप ले लूँ, बिकॉज वाई नॉट, सुबह से उठी हुई हूँ. तो विल सी यू गाइस देयर. टाटा.
1: तो भाई आज तो निहारिका गणपति बप्पा से कई सारी चीजें मांगने वाली है और उम्मीद है कि बप्पा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी करेंगे. ऐसे ही बातें करते करते फाइनली हम पहुंच गए हैं परेल चौराजा, जहां पर जी टीवी के सितारों के लिए एक अलग सा कमरा है. और देखिए कैसे निहारिका अपनी ही तस्वीर देखकर खुश हो रही है. इसी के साथ परेल चौराजा मंडल ने एक इनिशिएटिव भी किया है खास महिलाओं के लिए. क्या है वो, आइए निहारिका से ही जानते हैं.
0: So we are finally here after दो घंटे ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद हम आ गए हैं बप्पा के पास. और यहाँ मैंने एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज देखा, आप देख सकते हैं हमारे जी के सारे शोज के पोस्टर्स. सबसे ऊपर हमारे शो का पोस्टर है, जो कि फैक्ट है, हमारा शो बहुत अच्छा है एंड जी के बाकी सारे शोज भी बहुत अच्छे हैं. और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, रोकना मना है, रोको मत रुको मत. तो जितनी भी लेडीज़ को पंडाल के पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब यू नो इन जनरल भी लड़कियों को बहुत सोच समझ के निकलना पड़ता है पानी पीकर कि हम बाहर वॉशरूम कहाँ जाएंगे, तो जी का इनिशिएटिव आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जी ने ये इनिशिएटिव लिया.
1: वैसे परेल चौराजा गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच गए हैं अनु के मम्मी पापा भी. और आज अनु यानी कि निहारिका ने अपनी रियल लाइफ मम्मी से मिलाया.
2: सबसे बड़ी फैन हूँ उसकी, सबसे पहले देखती हूँ. मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब एक कभी छूट भी जाए किसी कारण से तो फिर G5 में देख लेती हूँ वापस से.
0: तो आप लोगों को भी यही करना है, जब एपिसोड छूट जाए तो उसको मिस नहीं करना है, उसको G5 पे देखना है.
2: हाँ मन्नत उसकी पूरी होती है, बस यही दुआ मांगूंगी भगवान से कि हमेशा खुश रहे और ऐसी तरक्की करती रहे.
0: मतलब जो नोकझोंक होती है टीनेज ईयर्स में, और अभी मैं अपने टीनेज में ही हूँ तो मम्मी के साथ थोड़े बहुत यू नो डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हर माँ बाप और बच्चे में बहुत प्यार होता है. मैं अपने पापा की भी बहुत क्लोज हूँ, मैं मम्मी की भी बहुत क्लोज हूँ, तो येस आई लव माई पेरेंट्स. एंड यहाँ पर भी एक अनु है, इफ यू कैन सी. देखो मैं सबका स्वागत कर रही हूँ लेडीज स्पेशल में. बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक ऐसे नेटवर्क के साथ काम करती हूँ जिसने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है. रोकना मना है, रुको मत, ये तो एक बहुत ही जेनरिक प्रॉब्लम है. मतलब हमको नॉर्मली भी घर से निकलने से पहले पानी सोच समझ कर पीना पड़ता है कि बाहर हम वॉशरूम का यूज़ करेंगे, और ऐसी और चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ जी कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड आई होप बहुत सारे लोग ऐसा इनिशिएटिव और लें, बिकॉज दिस इज़ मच मच मच नीडेड. बहुत प्यारी वाइब है और मैं इतनी खुश, मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि जगह जगह मेरे पोस्टर्स हैं. एज एन एक्टर यू ड्रीम फॉर दिस, वहाँ आई सॉ माई कट आउट, देयर इज़ माई कट आउट. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत सारे अपने फैंस से भी मिलूँगी यहाँ पर. आई एम श्योर आप लोग मुझे पहचान तो जाओगे जब मैं दर्शन के लिए जाऊँगी. तो वेरी वेरी एक्साइटेड.
1: तो दिल में आस्था और उम्मीद लिए निहारिका ने अपने मम्मी पापा संग गणपति बाप्पा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और अपने दिल की बात उनसे कही. देखिए कैसे पूरे परिवार ने साथ मिलकर परिलचा राजा गणपति बाप्पा के दर्शन किए और उनकी पूजा की.

0: बहुत अच्छा लग रहा है एंड टचवुड बहुत लकी फील करती हूँ कि इतने अच्छे से दर्शन हो पाए और सब बप्पा की कृपा है। बहुत प्यारी मूर्ति है, मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी और बप्पा के सामने तो एक अलग ही भक्ति होती है, मन में खुशी होती है, तो वही फील कर।
1: तो देखा आपने कैसे परिवार संग आज निहारिका के बापा के दर्शन हो गए। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है।
2: राजे ओ राजे, दिल में बिराजे।
0: बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतना अच्छा माहौल है और यहाँ का ना आपको अपने आप ही एक एनर्जी फील होने लगती है। सब भक्त हैं यहाँ पर, सबकी भक्ति की एनर्जी अब साथ में कंबाइन होती है ना, इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। यहाँ मेला लगा हुआ है, इतना ब्यूटीफुल सा मंदिर है मेरे पीछे, बप्पा के दर्शन हो गए इतने स्मूथली, और क्या चाहिए। पापा कैसा लग रहा है आपको?
3: बहुत अच्छा लग रहा है, जी टी वी और निहारिका के कारण इतने अच्छे दर्शन हो गए हैं और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। बप्पा से सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और आज बप्पा जा रहे हैं तो वो मन में थोड़ा सा दुख भी है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है।
4: हाँ, वो पापा की परी है ना, सही है
0: ये। मम्मी की भी परी हूँ मैं, पर अभी क्या है ना, मम्मी को नेशनल टेलीविजन पे मैंने मम्मी के साथ प्यार इजहार कर दिया है अपना, पापा को नहीं मिला है, तो अभी पापा की बारी। डेफिनेटली मिलता है, इसलिए मैं ऐसे मोमेंट्स पे ट्राई करती हूँ कि मम्मी पापा के साथ आऊँ ताकि उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर पाऊँ, क्योंकि वैसे तो नहीं मिलता।
3: हमारी बेटी हमको हर जगह ले जाती है, हर जगह शूट के बाद वो हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करती है।
0: सास बहू और बेटियों के सारी दर्शकों को मैं बहुत सारा प्यार दूंगी और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत सारा प्यार, और देखते रहिए तुमसे तुम।
1: तो भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बापा सारे विघ्न हर लें और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: तो आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर भी आ जाएगी एक हल्की सी मुस्कान। तो देखते हैं आज की रॉकिंग खबरें।
6: सेमीफिनाले में इट्स नाउ और नेवर। पूरी जान लगा दूंगा मैं, मुझे यहाँ से अब सीधा टिकट टू फिनाले चाहिए।
7: ये एडवांस छलक
6: सेमीफिनाले में इट्स नाउ और नेवर। पूरी जान लगा दूंगी मैं, मुझे यहाँ से अब सीधा टिकट टू फिनाले चाहिए।

स्टेज पर साथ साथ डांस करते नजर आए करिश्मा कपूर और जैकी श्रॉफ, जहां पर शुरू हुई इनकी डांस जुगलबंदी इंडियाज बेस्ट डांसर के मंच पर।

0: ब्रांच मैनेजर होता था इंश्योरेंस कंपनी में, अभी ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस पोर्टर का काम करता हूँ।
1: अनिल कपूर के नए शो इंडिया के टॉप 1% की ये खास झलक देख लीजिए, जहाँ पर कंटेस्टेंट्स के साथ बातें करते नजर आए अनिल कपूर।
2: जो कंपनी के मालिक सेल्स मैनेजर चाहते हैं तो आप शिव जी को जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए प्लीज।
1: आलिया और रणबीर नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है लव एंड वॉर, जिसका पोस्टर सामने आया है।

बीती शाम हुई स्क्रीनिंग आने वाली फिल्म वन की, और इस स्क्रीनिंग में पूरी कास्ट एंड क्रू नजर आई, जैसे कि श्वेता तिवारी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ निगम, मंजोत सिंह, अनूप सोनी, और बाकी के सभी सितारे जो स्क्रीनिंग में हुए शामिल।

वेलकम और कई और फिल्मों में नजर आ चुके मुश्ताक खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बीती शाम हुआ उनका निधन। वो लिवर कैंसर से जूझ रहे थे।

अनुपम खेर को अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें गवर्नर ऑफ जॉर्जिया ने उन्हें अवार्ड दिया। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वर्ल्ड सिनेमा में

हमारी राधा सेट के बाहर हुआ प्रोटेस्ट, जहां महिला मंडल पहुंच गई राधा को सपोर्ट करने के लिए। भाई ये तो है प्रमोशनल एक्टिविटी, ऐसे में राधा को ये सभी कर रहे हैं प्रमोट।

बीती शाम हुआ रेड कार्पेट, जहां रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग आने वाली सीरीज हुंकार की, जिसमें नजर आए रणवीर सिंह, जहान कपूर, मिनीषा लांबा, जोया अख्तर, प्रतीक गांधी, श्वेता त्रिपाठी और कई और सितारे जो स्क्रीनिंग में हुए शामिल।

सीरियल अनुपमा में सरिता ताई की वापसी से अनुपमा काफी खुश है और प्रेम राही उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। लेकिन असली मजा तब आया जब बा और ताईजी के बीच शुरू हो गया खाने का मजेदार मुकाबला। कैसे, चलिए देखते हैं।

स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा ने किया है इनवाइट अपने कैफे में सरिता ताई को, जो खास अनुपमा से मिलने आई है। और ऐसे में आज तो अनुपमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ऐसे में देखिए कैसे प्रेम और राही भी सरिता ताई और अनुपमा का अपने कैफे में कर रहे हैं स्वागत, और ये दोनों बनाकर लाए हैं सरिता ताई के लिए ढेर सारी डिशेस, जिसका मजा सरिता ताई तो ले ही रही है, साथ ही अनुपमा को भी काफी खुशी हो रही है।

0: स्पेशल खाना बनाया है।
1: अरे वाह,
0: आइए आइए,
1: प्यारा है।

0: यस अनीता ताई, आपके लिए फ्रेंच डिशेस, बर्गर एंड टैकोस। और खाइए, मैं और लेकर आता हूँ।
1: आराम करें, आराम से खाइए। ट्रेन ने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। और हाँ, मुंबई जाके हम क्या भी अलग ही जिंदगी क्या भी करने को ऐसा प्रमोशन करूंगे, ऐसा प्रमोशन करूंगे कि ये दोनों कैफे सब कॉफी का बाप बन जाएंगे।
0: इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता सरिता ताई।
2: फिर से अनुपमा में मेरा कमबैक हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। और ये तो अपना घर जैसा है, तो इसलिए वापस आने की खुशी आनंद बहुत एक अलग सी होती है। और ये गणपति के त्यौहार पे मैं यहाँ आ गई हूँ, अनुपमा को मिलने अहमदाबाद चली आई हूँ बम्बई से। अभी मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से मैं फिर से अनुपमा में एंटर हो गई हूँ। अभी देखते हैं कितने दिन आती जाती रहती हूँ, लेकिन आऊँगी ज़रूर, ये मेरा होप्स है और आप लोगों का प्यार है।
3: बहन की ये खाना खजाने वाली पार्टी चल ही रही होती है कि वहाँ बा भी आ जाती है और सरिता ताई को देखकर वो भी बैठ जाती है खाने की टेबल पर और करती है फरमाइश अलग अलग डिशेस की। इसी बात को लेकर सरिता ताई और बा में बहस छिड़ जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ तो कंपटीशन भी लग गया है कि कौन किससे ज्यादा खा सकता है। ऐसे में अनुपमा, प्रेम और राही इन दोनों की नोक झोंक देख हो गए हैं परेशान।
0: और भी खा।
4: तुमको क्या, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी।
5: पर मेरे मार्केट नहीं खा सकती। मैं जब खाने पे बैठती हूँ ना, तो पूरा पांडा खाली हो जाता है।
4: क्योंकि पांडा खाली होता है तो किसको पता कि तुम कितना खा सकती हो। मैं तो अब भी इधर सबके सामने खाऊंगी।
5: मेरे को क्या,
4: तुमको तो ये खाने की आदत भी नहीं होगी ना। पता भी है जो तुम खा रही है इसका नाम क्या है? ये समझा, कॉम्प्लीमेंटल है। कॉम्प्लीमेंटल
5: चाइनीज, इटालियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्रीय, खानदेशी, सब सब खिलाऊंगी। तुमने कभी खाया भी नहीं होगा। मुंबई में आके मैं आपको खिलाऊंगी। मैं
4: कॉम्पिटिशन, अब देखते हैं कौन कितना खा सकता है।
3: देखिए कैसे सरिता ताई और बा डिशेस पर डिशेस खाए जा रही हैं। ऐसे में अनुपमा को इन दोनों को रोकना पड़ता है, तब जाकर दोनों रुकते

0: आज मैं प्रेम के कैफे में आ गई हूँ, उसका नाम है अनुज कैफे और दूसरा है लव यू जिंदगी। वो तो अनुपमा का है, अनुपमा तो बड़ी होशियार है, बहुत चंट है सब खाना वाना बनाने में, तो उसका तो चलता ही है। लेकिन प्रेम भी एक शेफ अच्छा बन गया है, तो यहाँ मैं ढेर सारा खाना खाने को आई हूँ और वो मुझे बहुत प्यार से खिलाता है। और फिर ललिता लीला बेन और मेरी जो खाने के टाइम पे जो बनी है ना, मस्त कॉम्पिटिशन है वो, तुम्हाला बघून मजा येईल। मला तर खाताना मजा आली आहे, तुम्हाला बघून मजा येईल। थोडा बहुत वो मुझे मेरी खिस्ती है, मैं उसकी खिस्ती हूँ। और उसको लीला बेन बोलना पसंद है, लेकिन मुझे लीला बाई बोलना पसंद है। उसके लिए वो जरा थोड़ा सा मटक जाती है, बेन बाई नहीं, बाई बेन बोलो बेन, फिर भी मैं बाई बोलती हूँ। तो लेकिन थोड़ी सी नोक झोंक है, अनबन है, लेकिन चलता है प्यार से।
1: तो भाई अब सरिता ताई आ गई है तो कहानी में नया ट्विस्ट भी आएगा। अब देखना होगा कि अनुपमा की लाइफ में कौन कौन से नए मोड़ आते हैं और उनका सामना वो कैसे करती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: चंद्रिका के पति प्रभात के साथ हादसा हो गया है और वसुधा देवी हुकुम को समझने की कोशिश कर रही है, पर चंद्रिका इन सबका कसूरवार बिरजू और उसके परिवार को ही मानती है, इसलिए चंद्रिका और वसुधा के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। और वसुधा इस मुश्किल का हल कैसे निकालेगी और असली मुजरिम को कैसे ढूंढेगी?
3: बहुत अनर्थ हो जाएगा देवी हुकुम, आपने उन्हें क्यों निकाला?
4: वसुधा, अपने बहुत अजीब से लड़ रहे हैं और तुम्हें बुलवा वाले लोगों की फिक्र हो रही है।
1: शुरू हुई सास बहू की बहसबाजी।
3: उन्हें घर से निकालने की कारण ही उसने बुआ देवी हुकुम
1: दिया। वसुधा से नाराज हुई चंद्रिका।
4: इसे कह दो कि अगर इसे इन लोगों की इतनी परवाह है तो जाके उन लोगों के साथ रहे।
5: व्यक्ति ने प्रभात जी को धक्का दिया जिस वजह से वो जमीन पर गिर गए और सामने से आती ही गाड़ी से टकरा गए।
1: हुआ प्रभात के संग हादसे का खुलासा। जी टीवी के सीरियल वसुधा में प्रभात संग हो गया है हादसा, जिसे वसुधा लेकर आ गई है अस्पताल।

0: और साथ ही साथ उसने घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। बस फिर क्या, ये खबर मिलते ही सभी घर वाले अस्पताल में पहुंच जाते हैं और परेशान हो रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर आकर चंद्रिका को जानकारी भी देता है कि प्रभात की हालत नाजुक है। ऐसे में चंद्रिका हो रही है बेहद परेशान। लेकिन तभी वसुधा वहाँ से चली जाती है और परेशान होकर फिर से दौड़ती हुई आती है। इतना ही नहीं, आते के साथ ही वो देवी हुकुम पर ही नाराज होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब देवी हुकुम के फैसले की वजह से हुआ है, क्योंकि देवी हुकुम ने मुंडवा फैमिली को घर से बाहर का रास्ता जो दिखा दिया है।
1: देवी हुकुम, मैंने बोला था आपसे, मैंने आपको फोन भी किया था, मत निकालिए उन लोगों को घर से बाहर, लेकिन आपने फिर भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बहुत अनर्थ हो जाएगा देवी हुकुम, आपने उन्हें क्यों निकाला
2: था? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ साफ है जा, अपनी मौत का जिंदगी से लड़ रहे हैं और तुम्हें मुंडवा वाले लोगों की फिक्र हो रही है। इनके लिए प्रार्थना करने के बजाय तुम हमसे सवाल कर रही हो।
1: देवी हुकुम, उन्हें घर वापस लाना होगा, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। उन्हें घर से निकालने के कारण ही उसे हुआ। देवी हुकुम, उन्हें वापस ले आइए।
2: तुम जानती हो उस तीजन देवी ने क्या किया? उन्होंने साहब के फोटो पर चंदन का हार लगा दिया। और तुम चाहती हो कि ऐसे लोगों को हम वापस घर में लेकर आए?
1: अब यही एक रास्ता बचा है देवियों को, वरना बहुत
2: चुप, एकदम चुप। फिर हमारी नजरों से दूर करो देव, वरना हमारा सब्र टूट जाएगा और हम कुछ भी गलत कर देंगे।
1: आपने हमारे को मारना है तो मार लीजिए देवियों को, लेकिन मैं यू अनर्थ ना होने दूंगी।
2: देर से हमारे सामने से लेकर जाओ। इसे कह दो कि अगर इसे इन लोगों की इतनी परवाह है तो जाके उन लोगों के साथ रहे, और एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं हम।
3: हाँ, प्रभा जी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा खून बह गया है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। और फिर पुलिस आती है, बोलती है कि नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने किया है। सो ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आता है। और इस बीच में ऑलरेडी वसुधा कुछ भी बोल रही है कि उनकी फैमिली पे उसको ज़्यादा मतलब वो कॉन्सेंट्रेट करिए, तो ऑब्वियसली चंद्रिका को गुस्सा आ रहा है। वही मुंडवा फैमिली जो आई हुई है मुंडवा से, तो वसुधा बोल रही है कि उनको मैंने निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी, तो और मुझे गुस्सा आ रहा है कि अभी प्रभात की ऐसी हालत है और तुमको उनकी परवाह है, तो जाओ उनके साथ रहो।
0: भाई देव तो अपनी माँ के कहने पर वसुधा को वहाँ से ले जाता है और तो और वसुधा से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। ऐसे में वसुधा पूरी स्टोरी बताती है, क्योंकि ये तो उसे भी नहीं पता कि आखिर किसने प्रभात की ये हालत की है। इससे पहले कि कुछ और होता, वहाँ पर आ जाती है पुलिस, जो देव और वसुधा दोनों से जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन परिवार वालों में से किसी को नहीं पता कि दूर खड़ा बिरजू ताका झाकी कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पुलिस वसुधा और देव के बीच क्या बातें हो रही हैं। इसी बीच पुलिस भी देव और वसुधा को जानकारी देती है, जिसे सुनकर देव और वसुधा हो जाते हैं हैरान और चंद्रिका उसे लगता है झटका।
4: एक्सीडेंट साइट पर मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस वक्त प्रभात जी का किसी से झगड़ा चल रहा था और उसी व्यक्ति ने प्रभात जी को धक्का दिया, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गए और सामने से आती हुई गाड़ी से टकरा गया। मतलब साफ है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट केस नहीं है, आपको पहचान नहीं पा रहे, लेकिन ये किसी दुश्मन का काम है। बट डोंट वरी, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे।
2: अगर ये सच में किसी दुश्मन का काम है इंस्पेक्टर, तो उसे ये बहुत महंगा है। अगर आप उसे नहीं ढूंढ लेंगे तो हम उसे पाताल से भी ढूंढ लेंगे। चंद्रिका सिंह चौहान के सुहाग के साथ जिसने भी ऐसा किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं।
4: आप बेफिक्र रहिए, वो जो कोई भी है बहुत जल्द आपके सामने होगा।
3: पुलिस ने तो कहा यही है कि ये किसी ने किया है, एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। और डॉक्टर ने बोला है कि वो बहुत ज़्यादा खून बह गया है, वो कोमा में चले गए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि अगर मतलब जिसने चंद्रिका सिंह चौहान के सुहाग पर जिसने भी हाथ उठाया है, तो उसको अपनी जान देके कीमत चुकानी पड़ेगी।
0: फिलहाल तो सभी को इस बात की हैरानी हो रही है कि आखिर वो कौन है जिसका प्रभात के साथ झगड़ा हुआ था। लेकिन कहीं न कहीं चंद्रिका को डाउट हो गया है। अब देखना होगा कि प्रभात के साथ हुए हादसे का इल्जाम क्या बिरजू और उसके परिवार पर लगेगा और क्या फिर से गलतफहमियां बढ़ेंगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: प्रभात जी को अगर बचाना है तो उस परिवार के शाप से मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है।
0: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने को मिल रहा है रोमांस और ड्रामे का डबल तड़का। त्योहार के माहौल में अभीरा और अरमान जहां करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रामे का तड़का भी लग रहा है। कैसे देखने के लिए चलते हैं सीरियल के सेट पर।

0: अभीरा के घर गणेशोत्सव की धूम। झूम कर नाचे घर वाले,
1: मैंने और कबीर ने तय किया है।
0: शुरू हुआ नया तमाशा
1: कि हम दोनों शादी कर लेंगे।
0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गणेशोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में त्योहार में कुछ ट्विस्ट भी है, लेकिन सभी लोग डांस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि रिश्ते कैसे सुधारे जाएं।

0: बात हुई?
1: अभी मौका नहीं मिला।
0: अडल्ट मौकों का वेट नहीं करते मायरू, तुम सिर्फ बात को टाल रहे हो। बात को सीरियस लेना शुरू कर दो तो तुम ही सीरियस नहीं होगी तो बाकी लोग भी लाइट ले लेंगे। वाकई सीरियस हो और जाके भैया भाभी से बात करो।

क्यूटी, मैं तुम्हारी सारी टेंशन खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हें एक शॉर्ट ब्रेक दे सकती हो. तुम दोनों एंजॉय करो, मायरा पे नजर मैं रख लूंगी. ओके

0: मासा लगता है अरमान अबीर और मारा के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है।
1: अब तुम नजर मत लगाओ।
2: अरे मेरे बच्चे हैं, मेरी नजर थोड़ी लगेगी।
0: मासा लगता है अरमान अबीर और मारा के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है।
1: अब तुम नजर मत लगाओ।
2: अरे मेरे बच्चे हैं, मेरी नजर थोड़ी लगेगी।
3: यहाँ पर उसको रिजॉइस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट्स।
4: अगर हम दोनों डेट करते रहे तो आप दोनों को ही अच्छा नहीं लगेगा।
5: लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब मायरा जिद पर अड़ जाती है कि उसे कबीर से शादी करनी है। ऐसे में देखिए कैसे वो अपने मम्मी पापा की बेइज्जती करती है और गुस्से में अरमान मायरा को थप्पड़ जड़ देता है
4: कि हम दोनों शादी कर लेंगे।
6: तो कठपुतली चाहिए थी ना, अब मैं कठपुतली बन गई।
7: आप दोनों अब भी हैप्पी नहीं हो?
4: हमारी फैमिलीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आज खत्म होती हैं।
8: दोस्ती होगी, अपनापन होगा,
4: प्यारा सा रिश्ता होगा,
7: हमारे प्यार का रिश्ता।
9: बिग दादी, मैंने ये सब माय पेरेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं किया।
10: तो क्यों किया?
9: सॉरी टू से, पर मम्मा पापा हिपोक्रेट्स हो रहे हैं।
10: मैंने उन्हें इतने बार समझाया कि मैं।
5: लेकिन अरमान को इस बात का पछतावा है, उसने खुद को भी सजा दी है। इसी बात पर नया बवाल शुरू हो गया है जहां दादी सा और विद्या के बीच बहस छिड़ गई है कि बच्चों को सख्ती से रखना चाहिए या नहीं।
11: उसने कुछ खाया? बहुत थोड़ी हो गया, मेरी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती होगी।
12: तुम्हारा गिफ्ट कम हुआ नहीं ना, तुम चुपचाप चलो और चलो।

0: para a cabeça.
1: Mas isso é consciência. Mara ne bolo, que critica a mãe, nem que tora. Os netos do lugar dele, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o
2: तो ये मायरा की सजा, बाप का थप्पड़। अब इस घर का ये नया रूल है क्या? अगर बच्चा एक बार में बात नहीं मानेगा तो घर वाले उसे तमाचा मार देंगे।
1: एक बार अरमान, तुम दोनों ने उसके साथ 10 बार बात की है। बाप उस दोनों को, तुम दोनों ने 10 बार उसे बात करने की कोशिश की है, कोई फायदा? बच्चे नहीं होते कि उनके सामने सर झुका दो ताकि वो सर पे बैठ जाए और बिगड़ जाए। बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती जरूरी, हमने भी अपने बच्चों के साथ सख्ती की है।
3: और उसका नतीजा हम सब ने देखा है। सर
4: प्लीज
3: देख लीजिए मासा, आपकी सख्ती की वजह से खाजल अब तक आपके आसपास घबराई हुई सहमी सी घूमती रहती है। आपकी सख्ती की वजह से माधव जी अब बुढ़ापे में आकर अब जाकर आपके सामने खुले हैं। आपकी सख्ती की वजह से मनोज, जो बेचारा मन मार के आधे से ज्यादा जिंदगी अपनी वकालत करता रहा, वो आपकी वजह से कर नहीं पाया और उसे ज्यादा पैसा, ज्यादा रुतबा, ज्यादा शोहरत कुछ नहीं मिली। आपकी सख्ती की वजह से और अब जाकर जब उसने आपके खिलाफ जाकर बिजनेस किया तो तब जाकर उसे कामयाबी मिली। और आप कह रही हैं कि वो अब भी हमें सख्ती रखनी चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल रखनी चाहिए, वरना बच्चे बेलगाम हो जाते।
3: बच्चे कोई जानवर नहीं होते हैं मासा, जिन पे लगाम लगाई जाए।
1: बिल्कुल सही कहा, जानवर नहीं होते, इंसान होते, और इंसान को दिशा दिखाना जरूरी।
5: तो भाई अब देखना होगा कि घर वाले कैसे मायरा की इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और सब कुछ ठीक करते हैं। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी होती है सीरियल्स की दुनिया, और किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना होगा काफी मजेदार। चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में।
7: तुम देना साथ मेरा।
5: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर घर वालों को ये पता चल गया है कि पम्मी अपराजिता की ही डॉक्टर है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार अपराजिता को ऐसी क्या बीमारी है, लेकिन अपराजिता अपनी कोई भी बीमारी बताने को तैयार नहीं। वो तो कहती है कि वो डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए गई थी, लेकिन घर वाले उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे में अपराजिता चाहती है कि वो रक्षित को विश्वास दिलाए।
8: मेरी पेशेंट हो इसलिए कह रही हो, इस प्रॉब्लम से जूझने में तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है।
9: अप्पू आपकी पेशेंट है?
10: पेशेंट है ना ये तेरी, और तू वो गंदी बीमारी का इलाज करने वाली डॉक्टर। अपराजिता को वो वाली बीमारी तो नहीं? हे भगवान, अरे सुधा तेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं मतलब हमारे परिवार में ये वाली बहू आई है जो पम्मी की पेशेंट है।
8: हाँ, मैं डॉक्टर बंसल के पास काउंसलिंग के लिए जा रही थी, लेकिन वो मेरी पर्सनल बात है और कुछ चीजें मैं जिंदगी में पर्सनल रखना चाहती
10: हूँ। नहीं नहीं, ऐसा पर्सनल बर्सनल कुछ नहीं होता ससुराल में। बहू को क्या हुआ है ये परिवार के लोगों को जानने का अधिकार है।
8: मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी मुश्किल आई थी जिसके लिए मुझे मदद की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए मैं पम्मी आंटी के पास काउंसलिंग के लिए गई थी, और कुछ नहीं।
10: ये काउंसलिंग फाउंसलिंग क्या होता है हमें नहीं पता। और ये जो पम्मी है ना, वो डॉक्टर है, कोई टीचर थोड़ी ना है जो तो ये सब करेगी।
8: कभी कभी लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी उलझने आ जाती है जिनसे अकेले डील नहीं कर पाते हैं लोग, और इन उलझनों के बारे में आप किसी से बात नहीं कर पाते, अपने करीबी से नहीं, परिवार से नहीं, दोस्तों से नहीं। तब आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसे, जो आपको निजी तौर से नहीं जानता, जो प्रोफेशनल हो, जो आपको जज ना करे, जो आपकी बात सुने, समझे, आपको समझाए, आपको रास्ता दिखाए, आपको उस मुश्किल

0: से निकलने में मदद कर। उस घाव को भरने के लिए और उसे भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब वो घाव क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी को सफाई देना चाहती हूँ।
1: आज बहू और बेटियां में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली पाकी शर्मा ने अपने गणपति की ये सुंदर सी तस्वीर हमारे साथ शेयर की है। पाकी ने अपने घर में गुफा बनाकर भगवान गणपति को वहां पर स्थापित किया है। पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है, साथ ही शानदार लाइटिंग की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाली उन्नति ने भेजी है। यहाँ बप्पा को भव्य पंडाल में स्थापित किया गया है, साथ ही पंडाल को सफेद फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया है। भगवान को फलों का भोग लगाया गया है जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लाल बाग से राजा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा की विदाई के साथ इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में 5 मन आचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। एशियन गेम्स के 6 दिन भारत की शुभ शुरुआत। शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल। 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। बेल्जियम की तर्ज पर ब्रिटेन के ब्रैंडफोर्ड में फूलों से बनाया गया विशाल फ्लावर कारपेट। 3,00,000 से ज्यादा फूलों का हुआ इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको दिखा देते हैं मुंबई में बप्पा की विदाई की तस्वीरें। तो मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग से राजा की भव्य शोभा यात्रा अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर बेहद उत्साह और गाजे बाजे के साथ शुरू हो चुकी है। ये मनमोहक तस्वीरें हम गुड न्यूज टुडे पर सीधा तौर पर आपको दिखा रहे हैं। 10 दिनों तक चले गणेशोत्सव के समापन पर बप्पा को विदाई देने के लिए मुंबई के सड़कों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। लालबाग मार्केट से शुरू होकर ये यात्रा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, भारत माता सिनेमा, लालबाग पुलिस चौकी और चिंचपोकली ब्रिज होते हुए आगे बढ़ रही है। श्रद्धालु जमकर गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे लगा रहे हैं। शोभा यात्रा के बाद गिरगांव चौपाटी पर लालबाग के राजा को विदाई दी जाएगी। और आपको बता दें कि आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और 10 दिन बप्पा विराजमान होते हैं और उसके बाद बप्पा को अंतिम विदाई दी जाती है। और मुंबई के सबसे भव्य पंडालों में से एक जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है वो है लालबाग चर राजा, और उसी की खास तस्वीरें हम आपको GNT पर दिखा रहे हैं। एक लंबी शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है और उसके बाद ये जो लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता है, अंत में विसर्जन किया जाता है, बप्पा को अंतिम विदाई दी जाती है इस वादे के साथ कि अगले बरस तू जल्दी आना। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष जो है वो हर जगह सुनाई दे रहा है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। और देखिए, मौका ही ऐसा है क्योंकि लाल बाग चर राजा के अंतिम विदाई का दिन आज आ गया है।
4: लालबाग के राजा आखिरकार मुख्य द्वार से बाहर आ चुके हैं और यहाँ तमाम खड़े लाखों श्रद्धालुओं को अब वो मौका मिल गया है कि लालबाग के राजा का अंतिम दर्शन करें। विसर्जन के लिए गिरगांव की चौपाटी की तरफ लालबाग के राजा, ये देखिए, फाइनली बाहर निकल चुके हैं और किस जश्न उल्लास के साथ यहाँ तमाम वो गणेश भक्त जो मौजूद हैं, जो निहार रहे थे सुबह से ही घंटों से कि बस एक बार बप्पा की झलक देखने को मिल जाए, क्योंकि ये विसर्जन है, आज जी भर के बप्पा को देखेंगे और उसके बाद एक साल पूरा का पूरा इंतजार होगा। जी हाँ, देखिए कितने ज्यादा भव्य, कितने ज्यादा खूबसूरत इस समय लालबाग के राजा लग रहे हैं। दरबार खुशी से झूम उठा है। आप देखें, जिस तरफ भी आपकी नजरें जाएं, लालबाग के राजा को सिर्फ एक बार देखने के लिए खिड़कियों पर, गली पर, ब्रिज पर, ट्रैक पर, यहाँ तक के बांस बम्बू के जो टेंट है उस पर भी लोग चढ़ गए हैं। पत्थरों पर भी लोग चढ़कर बिना अपनी जान की परवाह किए लालबाग के राजा का एक दर्शन करने के लिए घंटों से गर्मी में यहाँ पर मौजूद हैं। हर किसी को प्यास भी लगी होगी, थकावट भी हुई होगी, लेकिन लालबाग के राजा को देखने के लिए जो उत्साह, जो एनर्जी शरीर में अपने आप आ रहा था, उसका नजरिया ये है, उसकी तस्वीर ये है कि फाइनली वो तमाम लोग जो यहाँ पर लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए घंटों से खड़े हुए थे, उन्हें बप्पा का दर्शन करने का मौका मिल गया। ये देखिए, लालबाग के राजा के साथ उनके इस काफिले में उनके तमाम पदाधिकारी तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो खास सेवादार हैं, जिन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है, वो पप्पा के आसपास उनकी मूर्ति को संभालते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ पप्पा की जो लोग ट्रॉली खींच रहे हैं, उन्हें भी एक खास प्रशिक्षण दिया गया है, बकायदा ट्रेनिंग दी गई है। और यहाँ अब पप्पा गिरगांव चौपाटी तक जिस तमाम वो रास्ते से जाएंगे, उस तमाम रास्तों को अब जाकर के जांच पड़ताल उनकी पहले ही कर दी गई थी। पप्पा यहाँ से अब जो निकले हैं, सीधे कल सुबह 8 बजे गिरगांव चौपाटी पहुंचेंगे और सबसे आखिरी में लालबाग के राजा का वहां विसर्जन कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि दोपहर से पप्पा का ये जो जुलूस निकला है, पप्पा के साथ ये जो लाखों के तमाम में जो श्रद्धालु इस समय चल रहे हैं, कितने देर तक पप्पा के साथ कल सुबह तक पहुंचेंगे, वो कौन कौन सी जगह होगी जहां लालबाग के राजा अपना दर्शन देते हुए आसपास के रहवासियों को लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। साउथ मुंबई के कई ऐसे पंडाल हैं जहां पर लालबाग के राजा का जाना है। फिलहाल इस समय लालबाग के राजा अपने मुख्य द्वार से बाहर निकले हैं और यहां से यू टर्न मारते हुए परेल तक जाएंगे। परेल से फिर से उनका यू टर्न होगा लालबाग की तरफ। इस बीच तमाम वो जो बड़े पंडाल हैं जिन्होंने गणेश की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की थी, उन सभी के जो सदस्य हैं वो लालबाग के राजा को हार पहनाएंगे, उनका सत्कार करेंगे, कोई मलखम लगाएगा तो कोई दही हंडी का जो पिरामिड है उसे बना करके पप्पा को सलामी देगा। तो कई बार ऐसा भी तस्वीर आएगा, ऐसा दृश्य आएगा कि पप्पा के आमने सामने दूसरे भी बड़े पंडालों के जो बड़े मूर्तियां हैं वो जाएंगी, यानी यहाँ के पदाधिकारी उनके पप्पा को हार माला चहनाएंगे और वहाँ के पदाधिकारी जो है वो लालबाग के राजा को हार माला पहनाएंगे। इस तरीके से एक लंबा सा बड़ा काफिला करते हुए फिर से एक बार शाम 5 बजे के आसपास लालबाग के राजा के मुख्य द्वार पर ही लालबाग के राजा फिर से पधारेंगे और तब तक यहाँ के लोग, यानी के पप्पा को चाहने वाले लोग, उनकी आस्था में डूबे हुआ जो लोग हैं और जो उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, जो जिन्होंने मांगे मांगी थी पप्पा ने उनकी पूरी की है, वो तमाम लोग अपने परिवार, दोस्त यार, संगठन, ग्रुप, कॉलेज और स्कूल के लोग आएंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया, पप्पा के सेवादार पप्पा के साथ लगातार उनकी सवारी पर है और एक खास म्यूजिक के साथ पप्पा का यहाँ पर आगमन। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, लालबाग के राजा की। आप बहुत ही ज्यादा करीब से इस समय लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर लालबाग के राजा की दरबारी में मुंबई पुलिस भी एक बड़ी संख्या में मौजूद है। 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे मुंबई को संभाल रहे हैं, बंदोबस्त कर रखा है। और आज 11वां दिन बहुत ही सफलता से पूर्वक मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा सहयोग योगदान के जरिए पूर्ण हुआ है। आज विसर्जन के दिन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर न केवल मौजूद हैं बल्कि लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं और अपने मोबाइल से उनकी तस्वीर भी खींच रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए, अब लालबाग के राजा का विसर्जन का समय फाइनली आ ही गया है, वो घड़ी आ ही गई है जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। दो तरह की खुशी लोगों के आंखों में देखी जा रही है, पहली तो खुशी के आंसू हैं, दूसरे दुख के आंसू हैं। खुशी के आंसू इसलिए हैं क्योंकि ये जो पर्व है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से हो गया। दुख के आंसू इसलिए है क्योंकि पप्पा फाइनली हम सबको विदा कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी रियलिटी है, सच्चाई है, वो तो यही है ना कि पप्पा जाएंगे नहीं तो आएंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि गणपति बप्पा मोरिया उर्चा वर्षी लोकरिया। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
3: तो देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मुंबई के सबसे लोकप्रिय पंडालों में से एक लालबाग चौराहे राजा, जहां पर आम हो या खास तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं 10 दिन के लिए। उन्हें स्थापित किया गया था, उसके बाद आज शोभा यात्रा निकाली गई और उसकी दिव्य तस्वीरें इस वक्त हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भगवान को किस तरीके से विसर्जन के लिए शोभा यात्रा में बाहर निकाला गया है, लोग उन्हें जमकर निहार रहे हैं क्योंकि अब समय आ गया है उन्हें अलविदा कहने का।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समझ

चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है, और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं, दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है, और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं, जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में

तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर। ये गंधपुरा पत्थर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है, जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है।
ये है

0: ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अभ्रक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देखिए इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं। और देखिए इसी क्रम में अभी हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हमारे दर्शकों द्वारा में भेजी गई है। गुजरात के सूरत के रहने वाले राज मिश्रा ने अपने गणपति की सुंदर सी तस्वीर हमें शेयर की है। पाखी ने अपने घर पर भव्य गणपति को स्थापित किया है, साथ ही बप्पा को एक शानदार पगड़ी भी पहनाई है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें राजस्थान के अजमेर के रहने वाले प्रीतम कुमार ने भेजी है। यहां बप्पा को भव्य पंडाल में स्थापित किया गया है, साथ ही पंडाल को फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया है। भगवान को फलों का यहां पर भोग लगाया गया है जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: है पितृपक्ष की महिमा,
8: क्या हैं पितृपक्ष के पूजा के नियम और क्या हैं पितृपक्ष की सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराहे की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बाप्पा मोरया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा की विदाई के साथ इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। एशियन गेम्स के 6 दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमल जीत, सुरुचि ने जीता गोल्ड मेडल, 50 मीटर राइफल में तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। बेल्जियम की तर्ज पर ब्रिटेन के ब्रैंडफोर्ट में फूलों से बनाया गया विशाल फ्लावर कारपेट, 3,00,000 से ज्यादा फूलों का हुआ इसमें इस्तेमाल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। अनंत चतुर्दशी के बाद से ही पितरों के सत्कार की परंपरा का आरंभ हो जाता है, जो एक पखवाड़ा तक माना जाता है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे पितृपक्ष की महिमा के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं अपने पूर्वजों को याद करने, उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा का पालन आखिरकार हमें क्यों करना चाहिए और कैसे आप पा सकते हैं अपने पितरों की अनुकंपा, देखिए हमारी इस खास पेशकश में।

0: पूर्णिमा तिथि पर होता है जिनका परलोक गमन। ऐसे पितरों का पूर्णिमा की तिथि पर होता है तर्पण। 15 दिवसीय महालय पक्ष का होने जा रहा है आगाज। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का है मोक्षदायिनी रिवाज। धर्मग्रंथ कहते हैं जो भी साधक विधि विधान के साथ इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों का सत्कार करता है वो जाने अनजाने हुए पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे कि 15 दिवसीय महालय पक्ष में पूर्वजों की आओ भगत कैसे करें। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा में किन पितरों के श्राद्ध की परंपरा रही है।
1: प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में आती हैं, लेकिन पूर्णिमा उसमें नहीं आती। तो जिन पितरों की तिथि पूर्णिमा होती है उनका श्राद्ध पूर्णिमा को आरंभ हो जाता है और उसी दिन से महालया का आरंभ होता है। या अज्ञात जो पितर हमारे हैं जिनका श्राद्ध तिथि पूर्णिमा को है उनका श्राद्ध किया जाए, इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व है।
0: पूर्वजों का कैसे करें तर्पण, कौन सा भोग करें अर्पण, श्राद्ध का क्या है विधिवत विधान, किस विधि से पूर्वज देंगे वरदान। माना जाता है कि पूर्वजों की तृप्ति होने से न सिर्फ सभी दोषों का अंत होता है बल्कि कुंडली से पितृदोष भी सदा के लिए मिट जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिन पितरों का विधिवत श्राद्ध नहीं होता उनकी मुक्ति अधूरी रहती है।
1: ये धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सब कार्य को छोड़ के जो पितरों के निमित्त कार्य बताए गए हैं, हम हमारे धर्म सिंधु में देख लीजिए, महाभारत के शांति पर्व में देख लीजिए, पद्म पुराण में देख लीजिए, सब जगह पितरों के बारे में बताया गया है, पितृपक्ष का महत्व बताया गया है। इसीलिए पितरों के लिए हम पितृपक्ष में विशेष करके उपाय करके उनके प्रसन्न होकर आशीर्वाद की कामना उनसे करते हैं।
0: पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष की क्या है महिमा। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातनी आस्था है कि जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके सत्कार से पितृ प्रसन्न हो गए तो आपके सभी कार्य निष्कंटक पूर्ण होते हैं।
1: हमारे यहाँ महाभारत के शांति पर्व में और जब तक पितरों की कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी तब तक जीवन में परिवार में विवाह है, नया भूमि भवन प्राप्त करना है, संतान वृद्धि, यह सब कर्म परिवार में नहीं होते।
0: ऐसा मानते हैं कि हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों पितृपक्ष की परंपराओं का पालन किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय ही पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। मान्यता तो यहाँ तक है कि जिसके पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं उस पर ईश्वर भी अनुकंपा नहीं करते हैं।
1: पितृपक्ष में नियमित रूप से तर्पण अवश्य करना चाहिए। किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, गंगा जी किनारे जाकर के और तिल ले करके तिल से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। और जिस तिथि पर जिस पितर का श्राद्ध हो उस दिन श्राद्ध करें, अपने पितरों के फोटो पर सुगंधित माला, जिस पुष्प में सुगंध हो ऐसी माला चढ़ावे, चंदन लगावे और सायंकाल के समय एक दीपक जलावे और पितृ स्तोत्र का पाठ करे। पितृ स्तोत्र का पाठ करने से जो रुचि ऋषि ने गाया है, कहा है, उसका पाठ करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।
0: पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उस तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। पितृपक्ष में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर पितर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की सावधानियां और साथ ही जानेंगे कि कौन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं। इनके कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है, लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम आखिर क्या है।
3: पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। माना जाता है कि श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि जो भी साधक महालय पक्ष में अपने पितरों की निमित विधिवत संस्कार करता है, उनको मन, कर्म और वचन से भोजन प्रदान करता है, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। उसके पूरे परिवार पर पितरों की कृपा बरसती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गौर से देखिए और कीजिए इन सावधानियों का पालन।
1: सबसे बड़ा नियम होता है कि सात्विक भोजन करना। जब तक पिता की तिथि न बीत जाए, माता की तिथि अगर हो तो तब तक छौर कर्म न करावे, दाढ़ी बाल न कटवावे, धोबी को कपड़ा न दे, किसी को अप्रिय वचन न बोले, क्योंकि पितृलोक के समय हमारे पितृ हमारे मृत्यु लोक में रहते हैं और आपके आस पास ही रहते हैं, और जो अखाद्य वस्तुएं हैं उनका परित्याग करें।
3: पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतब वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व होता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाली सफेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भागवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें।
1: सादा जीवन उच्च विचार, यह जो हमारे यहाँ भाषा बताई गई है कि अपने पितरों के निमित्त जो तिथि जिस दिन हो, प्रातः काल में या संध्या के समय या रात्रि के समय श्राद्ध न करे, तर्पण न करे। जो अपराह्न काल बताया गया है, 1 बजे के बाद वाला जो समय है, उस समय अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि करावे। गौ माता को, स्वान को माने कुत्ते को और कौए को बलि दे और भोजन करावे, लोगों को तृप्त करे, और अगर हो सके तो 15 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करे।
3: बहुत से लोगों को अपनी परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। कौन सही अर्थों में श्राद्ध करने का अधिकारी होता है?
1: अगर पिता नहीं है तो पुत्र करे, पुत्र नहीं है तो पौत्र करे, पौत्र नहीं है तो प्रपौत्र करे, वह भी नहीं है तो जो रिश्ते में बताया गया है वो लोग भी कर सकते हैं। या इन सब लोगों के लिए जिनके कोई नहीं था आपके परिवार में, किसी आपके चाचा को, किसी बड़े पिता जो कोई संतान नहीं थी, उनके निमित्त भी आप कर सकते हैं। वो भी आश्रित होते हैं कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए जल अर्पण करे, मेरे नाम पर भोजन करावे, दान करे, तो ऐसा अधिकार सबको दिया गया है।
3: घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य ना हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें। ये पितृपक्ष के 15 दिन अति शुभ फल देने वाले हैं। इन दिनों पितरों की आत्माएं मृत्यु लोक में आकर अपने वंशजों से भोग ग्रहण करती हैं, तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। तो आप भी पितरों को प्रसन्न करें और इस महाफलदायी पितृपक्ष का लाभ उठाएं। आगे हम आपको बताने वाले हैं नियमित रूप से पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करें और तिथि अनुसार आप किस तिथि पर कर सकते हैं श्राद्ध कर्म और तर्पण। आगे जानिए।
2: श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है। पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद जरूरी हैं। कैसे कुछ उपाय करके आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं वो भी जान लीजिए।
3: आने वाले हैं पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के दिन, जब आप तर्पण, पिंड दान और दान पुण्य करके पितरों की अनुकंपा पाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होंगे, जिसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ होगा। कल पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। पितृपक्ष की अवधि में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अलग अलग श्राद्ध तिथियां आती हैं। परिवार में जिस पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि पर होती है उसी तिथि के अनुसार श्राद्ध करने की परंपरा है। वैसे तो आप पंचांग में भी इन तिथियों को देख सकते हैं, लेकिन हम भी आपको ज्योतिषियों द्वारा बताई गई श्राद्ध की वो तिथियां बता देते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर को होगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर से किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 28 सितंबर को है। तृतीया तिथि का श्राद्ध कर्म 29 सितंबर को पूर्ण होगा। चतुर्थी और पंचमी तिथि के श्राद्ध का विधान 30 सितंबर को माना गया है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध कर्म 1 अक्टूबर को संपन्न होगा। सप्तमी तिथि का कर्म कांड की तिथि 2 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि के श्राद्ध की परंपराएं 3 अक्टूबर को निभाई जाएंगी। नवमी तिथि का श्राद्ध संस्कार 4 अक्टूबर को पूर्ण होगा। दशमी तिथि के श्राद्ध का अनुष्ठान 5 अक्टूबर को है। एकादशी तिथि के श्राद्ध की पूर्णता 6 अक्टूबर को की जाएगी। द्वादशी तिथि का श्राद्ध की परंपराओं का पालन 7 अक्टूबर को होगा। त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का कर्म कांड 8 अक्टूबर को है। चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का पालन की तारीख 9 अक्टूबर है, जबकि 10 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या है।
1: यह पितरों का पक्ष ही है। यह 15 दिन का जो पक्ष है, यह जो पितर जिस दिन जिनका निर्वाण हुआ है उस तिथि को उस पितरों का श्राद्ध करने का हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जय मुंडी तय पिंडी, अगर जितने पुत्र हैं अगर सबकी रसोई अगर अलग अलग बनती है तो हर व्यक्ति को अपने पिता के लिए अपने पितरों के लिए यह कार्य करना चाहिए, यह ग्रंथों में हमें बताया गया है।
3: पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके घर में हमेशा कोई न कोई समस्या रहती हो और शुभ कार्यों के पूर्ण होने में बार बार विघ्न होता हो तो इसके पीछे पूर्वजों की नाराजगी भी हो सकती है। तो चलिए आपको वो ज्योतिषीय महा उपाय भी बताते हैं जिसको करने से आपके घर में शुभता होगी और संपन्नता का वास होगा।
1: तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, तर्पण करें, ब्राह्मण को अन्न दान करें, भोजन करावे, गौ को खिलावे, कुत्ता को खिलावे, कौआ को खिलावे। इन 15 दिनों के भीतर अगर हमारे द्वारा कोई अपराध हुआ हो, परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर के जो रुके हुए कार्य हैं वह सब पूर्ण हो। ऐसा अमावस्या को करने से या पितृपक्ष में करने समापन के दिन सारे जीवन के रुके कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण हो जाते हैं।
3: दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं, रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, अमावस्या के दिन दान जरूर करें। माना जाता है कि तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है, साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना जहां बेहद अहम और आवश्यक कर्म है, वहीं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बेहद जरूरी हो जाती है। पितृपक्ष में किए गए ये उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़ी धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं, और देखिए इसी कड़ी में अब हम आपको दो वीडियोस जो है वो दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली रीना शर्मा ने अपने गणपति की सुंदर सी तस्वीर हमारे साथ शेयर की है। रीना ने अपने घर में भव्य भगवान गणपति को स्थापित किया है, जहाँ वो विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें, तो दूसरी तस्वीर हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले अमन ज्योति ने भेजी है। यहां बप्पा को भव्य पंडाल में स्थापित किया गया है, साथ ही पंडाल को सफेद फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया है। भगवान को कई तरह की मिठाई का भोग भी यहां पर लगाया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या है पितृपक्ष की महिमा, क्या है पितृपक्ष के पूजा के नियम और क्या है पितृपक्ष की सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा की विदाई के साथ ही इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर छिड़के श्रद्धालु।

एशियन गेम्स के छठे दिन भारत की शुभ शुरुआत, शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि ने जीता गोल्ड। 50 मीटर राइफल में तोमर रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने जीता सिल्वर। बेल्जियम की तर्ज पर ब्रिटेन के ब्रैनफोर्ड में फूलों से बनाया गया विशाल फ्लावर कारपेट, 3 लाख से ज्यादा फूलों का हुआ इस्तेमाल।

0: गणपति पप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, बस आज यही गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। आज है अनंत चतुर्दशी और गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं हमारी 8 घंटे की महा कवरेज। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है, लेकिन 10 दिन से चल रहे इस पर्व में आज ये पर्व अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। आज अनंत चतुर्दशी और इसी मौके पर मूर्ति विसर्जन हो रहा है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी पर्व का विशेष महत्व माना जाता है और ये पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन मूर्ति विसर्जन कर बप्पा को विदाई दी जाती है। आज मुंबई से लेकर हैदराबाद तक अलग अलग जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बप्पा के का विसर्जन हो रहा है, यानी कि बप्पा की विदाई की बेला और भक्तों का लगा मेला। हर तरफ आपको भक्तों का हुजूम नजर आएगा। गणपति चले अपने धाम, हर मुख पर उनका नाम, अगले बरस तू जल्दी आना, दुख संकट दूर भगाना। ये पर्व बहुत खास है। तो कैसे करें आज मूर्ति विसर्जन? अगर आज भी 10 दिन बाद आप आज के दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं तो किन खास बातों का आपको ख्याल रखना है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और कथावाचक मौजूद रहेंगे। तो आज अनंत चतुर्दशी पर महासयोग भी बन रहा है, पूजन विधि क्या रहेगी वो भी बताएंगे, क्या महत्व है आज के दिन का वो जानना बहुत जरूरी होगा, किन बातों का खास ख्याल रखना है, शुभ मुहूर्त क्या है ये भी आपको बताएंगे। और आज बप्पा की विदाई नमाकों के साथ हर कोई बप्पा को विदा कर रहा है। इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ अब आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में और कहें कि घर घर गणपति बप्पा की कृपा बरस रही है। अलग अलग जगहों पर बप्पा विराजे हैं, देश भर में आस्था उल्लास और परंपरा का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो करोड़ों दिलों को एक डोर में जोड़ देता है। मुंबई के लालबाग के राजा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, तो अकोला, नागपुर, पुणे, रंगारेड्डी, हैदराबाद समेत कई जगहों पर अनंत चतुर्दशी पर खास रौनक दिखाई दे रही है। देश भर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर एक तरीके से उत्सव सा माहौल है, उल्लास है, ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के साथ बप्पा को भाव भी विदाई दी जा रही है। गणपति विसर्जन को लेकर घाटों से लेकर सड़कों और समुद्री तटों तक खास तैयारियां की गई हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां पर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, विसर्जन को लेकर जबरदस्त तैयारी है। मुंबई की सड़कों पर भक्तों की भीड़ है, ढोल ताशों की गूंज है, गणपति बप्पा मोरया के जय घोष ही हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ, इस तरह बप्पा को अगले बरस फिर से जल्दी आने का न्योता भी दिया जा रहा है। तो हमारी 8 घंटे की महा कवरेज लगातार जारी है, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि गणेशोत्सव का आज आखिरी दिन है। आज अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा विसर्जन हो रहा है। 14 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये पर्व शुरू हुआ था। आज गणपति उत्सव का 12वां और आखिरी दिन है, तिथि बढ़ने की वजह से इस बार 12 दिन है। तो गणेशोत्सव में मुंबई समेत देश भर के गणपति पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। आज भी दिल्ली, हैदराबाद, सूरत, गली गली बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है। ये गणेशोत्सव की परंपरा दरअसल महाराष्ट्र में 1893 से चली आ रही है और गणपति जी जिनको बुद्धि, सुख, समृद्धि का दाता कहा जाता है और हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले बप्पा की ही पूजा होती है, इसीलिए इनको प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनका जन्म हुआ था, तो ऐसे में ये गणेशोत्सव मनाया जाता है और इस दौरान प्रतिमा विसर्जन का भी खास महत्व है। वैसे आमतौर पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को विसर्जन की परंपरा होती है, अनंत चतुर्दशी की तिथि अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। कई जगहों पर अनंत चतुर्दशी से पहले ही लोग विसर्जन कर देते, यानी कि अपने अपने हिसाब से, चाहे वो 1.5 दिन के बप्पा हो, 5 दिन के बप्पा हो, अपने हिसाब से लोग बप्पा को घर पे लाते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन जो परंपरा है वो है अनंत चतुर्दशी के दिन, जो कि आज का दिन है, तो आज भी विसर्जन की रस्म परंपरा ठीक उसी तरीके से निभाई जा रही है। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर गणेश उत्सव को लेकर रौनक एक अलग ही तरह की रौनक कहीं तो दिखाई दे रही है। अब से कुछ ही देर पहले लालबाग के राजा भी विसर्जन के लिए निकले हैं और रास्ते में उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं।
1: लालबाग के राजा आखिरकार मुख्य द्वार से बाहर आ चुके हैं और यहाँ तमाम खड़े लाखों श्रद्धालुओं को अब वो मौका मिल गया है कि लालबाग के राजा का अंतिम दर्शन करें। विसर्जन के लिए गिरगांव की चौपाटी की तरफ लालबाग के राजा ये देखिए फाइनली बाहर निकल चुके हैं और किस जश्न उल्लास के साथ यहाँ तमाम वो गणेश भक्त जो मौजूद हैं, जो निहार रहे थे सुबह से ही घंटों से कि बस एक बार बप्पा की झलक देखने को मिल जाए, क्योंकि ये विसर्जन है, आज जी भर के बप्पा को देखेंगे और उसके बाद एक साल पूरा का पूरा इंतजार होगा। जी हाँ, देखिए कितने ज्यादा भव्य, कितने ज्यादा खूबसूरत इस समय लालबाग के राजा लग रहे हैं। दरबार खुशी से झूम उठा है। आप देखें जिस तरफ भी आपकी नजरें जाएं, लालबाग के राजा को सिर्फ एक बार देखने के लिए खिड़कियों पर, गली पर, ब्रिज पर, ट्रैक पर, यहाँ तक के बांस बंबू के जो टेंट है उस पर भी लोग चढ़ गए हैं, पत्थरों पर भी लोग चढ़कर बिना अपनी जान की परवाह किए लालबाग के राजा का एक दर्शन करने के लिए घंटों से गर्मी में यहाँ पर मौजूद हैं। हर किसी को प्यास भी लगी होगी, थकावट भी हुई होगी, लेकिन लालबाग के राजा को देखने के लिए जो उत्साह, जो एनर्जी शरीर में अपने आप आ रहा था, उसका नजरिया ये है, उसकी तस्वीर ये है कि फाइनली वो तमाम लोग जो यहाँ पर लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए घंटों से खड़े हुए थे, उन्हें बप्पा का दर्शन करने का मौका मिल गया। ये देखिए लालबाग के राजा के साथ उनके इस काफिले में उनके तमाम पदाधिकारी तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो खास सेवादार हैं, जिन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है, वो पप्पा के आसपास उनकी मूर्ति को संभालते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ पप्पा की जो लोग ट्रॉली खींच रहे हैं, उन्हें भी एक खास प्रशिक्षण दिया गया है, बकायदा ट्रेनिंग दी गई है। और यहाँ अब पप्पा गिरगांव चौपाटी तक जिस तमाम वो रास्ते से जाएंगे, उस तमाम रास्तों को अब जाकर के जांच पड़ताल उनकी पहले ही कर दी गई थी। पप्पा यहाँ से अब जो निकले हैं सीधे कल सुबह 8 बजे गिरगांव चौपाटी पहुँचेंगे और सबसे आखिरी में लालबाग के राजा का वहाँ विसर्जन कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि दोपहर से पप्पा का ये जो जुलूस निकला है, बप्पा के साथ ये जो लाखों के तमाम में जो श्रद्धालु इस समय चल रहे हैं, कितने देर तक बप्पा के साथ कल सुबह तक पहुंचेंगे, वो कौन कौन सी जगह होगी जहां लालबाग के राजा अपना दर्शन देते हुए आसपास के रहवासियों को लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। साउथ मुंबई के कई ऐसे पंडाल हैं जहां पर लालबाग के राजा का जाना है। फिलहाल इस समय लालबाग के राजा अपने मुख्य द्वार से बाहर निकले हैं और यहां से यू टर्न मारते हुए परेल तक जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, बप्पा के सेवादार बप्पा के साथ लगातार उनकी सवारी पर है और एक खास म्यूजिक के साथ बप्पा का यहां पर आगमन। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, लालबाग के राजा की। आप बहुत ही ज्यादा करीब से इस समय लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर लालबाग के राजा की दरबारी में मुंबई पुलिस भी एक बड़ी संख्या में मौजूद है। 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे मुंबई को संभाल रहे हैं, बंदोबस्त कर रखा है। और आज 12वां दिन बहुत ही सफलता से पूर्वक मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा सहयोग योगदान के जरिए पूर्ण हुआ है। आज विसर्जन के दिन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर न केवल मौजूद है बल्कि लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं और अपने मोबाइल से उनकी तस्वीर भी खींच रहे हैं।
0: देखिए यही उत्साह है इस पर्व का, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, तो आज का दिन यकीनन उन तमाम लोगों के लिए जिनके घर बप्पा पधारे हैं या फिर जो बप्पा की आराधना में पूरी तरह से लीन हैं, उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। वैसे गुड न्यूज टुडे पर भी ये उत्सव लगातार जारी और आज खास तौर पर हम 8 घंटे की महा कवरेज लेकर आप तक आए हैं। एक भी तस्वीर छूट ना जाए, पूरे मुंबई में किस तरीके से रौनक है वो तमाम तस्वीरें हर एंगल से हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमें बताएंगे और साथ ही साथ आज के दिन की महिमा क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जब हम बप्पा को लेकर आते हैं, हम कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए बप्पा आए हैं, बप्पा पधारे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। नम आंखों से बप्पा की विदाई होती है, लेकिन वो ऐसी कौन सी मनोकामनाएं हैं जो बप्पा पूरी करेंगे? और बप्पा को मनाने के लिए जब बप्पा को हम विदा करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो बप्पा के साथ विदा की जाए ताकि हमारी मनोकामनाएं पूरी हों, घर में सुख समृद्धि आए? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, नंदिता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, आचार्य राज मिश्रा जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रांशु जी महाराज से आज हम कथा भी सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की, साथ ही साथ बप्पा की तमाम कथाएं भी हैं जो आज सुनेंगे। लेकिन आचार्य जी, राज मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। आज का दिन किन मायनों में खास है? और जब हम बप्पा को विदा करते हैं, वैसे देखिए बप्पा तो हर जगह हैं, ये एक कह सकते हैं कि हम सांकेतिक तौर पर ये एक विदाई होती है, लेकिन फिर भी जो उत्सव है, जो उल्लास है, जो भक्ति है, जिस तरीके से भावनाएं, एक तरीके से आप इन तस्वीरों में देखिए लोगों की भावनाएं किस तरीके से उमड़ रही है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
2: देखिए सबसे पहले नवजोत जी, मैं इस मूमेंट को बहुत खास कह सकता हूँ, इस समय को बहुत खास कह सकता हूँ, और मैं दोबारा ये शब्द कहूँ कि शायद सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो इस समय पर इस दृश्य को देख पा रहे हैं, और जो लोग अपने घरों में बैठ करके इस समय पर इस सुंदर दृश्य को, जहां पर कि हम टीवी के माध्यम से सुंदर भगवान गणेश जी का वो सुंदर दर्शन कर रहे हैं, जो शायद हमारे वास्तविकता में हमारे इंद्रियों को पवित्र करने वाला है, हमारी आत्मा को पवित्र करने वाला है, हमारे मन को शुद्ध करने वाला है, उसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि स्क्रीन पर हम लोगों की चर्चाओं के साथ साथ जो भगवान का दिव्य दर्शन आप लोग साथ में करवाते रहते हैं ना, वो वास्तविकता में इंद्रियों को तृप्त करता है। जिस दिन भी सुंदर कांड के अंतर्गत भगवान हनुमान जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय गयंग और तूल नताही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। उन्होंने कहा इस संसार के समस्त सुख को एक पलड़े पर उठाकर रख दिया जाए और एक जगह पर भगवान के दर्शन का, भगवान के स्मरण के सुख को रख दिया जाए, भगवान की चर्चाओं के श्रवण के सुख को रख दिया जाए, तो जहां परमात्मा के श्रवण स्मरण और उनके दर्शन का सुख है, वो दूसरे बाकी संसार के मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से बहुत ऊपर होगा। तो इस समय पर क्योंकि हम लोग परमात्मा का, विघ्न के हर्ता भगवान गणेश जी का साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ा और कोई विषय नहीं हो सकता है, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता है, इससे कोई और चीज नहीं हो सकता। और अगर आज के मैं समय को लेकर के बात करूं, वैसे तो मैं स्पष्ट दोबारा कहूं, श्री रामचरित मानस के अंतर्गत मेरे शब्द नहीं है, वो स्वामी तुलसीदास जी के वो सुंदर शब्द है जो वो कहते हैं कि सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, विघ्नों को प्रदान कर, विघ्नों को दूर करने वाले हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम दशानाम छंद सामति मंगलानाम चकरदारो वंदे वंदे वाणी विनायको, वो स्वामी जी कहते हैं कि जिनके स्मरण से जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करीवर वदन और करम अनुग्रह सोए बुद्धि राश शुभ गुण सदन, जिनके स्मरण से बुद्धि एक भारी मात्रा में प्राप्त हो जाती है, हमारी ज्ञान इंद्रियां जग जाती है, उन गणेश जी की जब हम विग्रह का स्मरण कर रहे हो तो उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं आज के दिन, आज जो करना भी चाहिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रभु अब आपका जो निवास है वो हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए, हमारे बुद्धि में होना चाहिए, हम इस मूर्ति को विसर्जित करके उनकी जगह हम अपना स्वयं का जो जीवन है, स्वयं का जो हृदय है, वो आपको स्थान के रूप में प्रदान कर रहे हैं। नवजोत जी, मैं कह सकता हूँ कि इस श्रद्धा इस भावना के साथ आज जो विदाई की जा रही है, उस विदाई से लोग निश्चित रूप से भावुक होते हैं, लेकिन भगवान हृदय में विराजमान होंगे, निश्चित कामना पूर्ण होगी। जी
0: देखिए, भारत जो है वो उत्सवों का देश है और GNT भी उत्सवों का चैनल है, इसीलिए हम हर उत्सव को मनाते हैं, हर उत्सव को जीते हैं, हर उत्सव के साथ हमारी भावनाएं भी, हम उसी के साथ जीते हैं। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं ही, लेकिन एक बार सीधा मुंबई चलते हैं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आज की तैयारी कैसी? वैसे तो आज देखिए तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, आज पूरा मुंबई एक तरीके से सड़कों पर है। आप इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ कहाँ किन किन बप्पा का विसर्जन होगा, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, समय क्या क्या रहने वाला है, ये भी बताते चलिए।
3: देखिए जैसे कि तकरीबन एक बजे के आसपास लालबाग के राजा जो है मुख्य द्वार से बाहर निकले विसर्जन के लिए और अब यूटर्न मार्कर के परे तक जाएंगे, क्योंकि परिस से लेकर के करी रोड, सिंह पोकली, खेतवाड़ी ये सब धर्मस्थल के रूप में तब्दील हो जाते हैं तब जब बड़ी बड़ी प्रतिमाएं इन सभी जगहों पर विराजमान और स्थापित की जाती हैं और हर उन दरबार के गेट पर लालबाग के राजा होते हुए निकलेंगे जहां उनका सत्कार किया जाएगा अलग अलग तरह से। कोई जो है दही हंडी का पिरामिड बना करके उन्हें सलामी देगा तो कोई अलग अलग तरीके के खेल उनके सामने करेगा, कोई अपनी संस्कृति दिखाएगा, जहां पर भजन कीर्तन भी होंगे। इस तरीके से हर उस जगह लालबाग के राजा दर्शन देते हुए फिर से एक बार शाम को ठीक 5 बजे के आसपास जो है पहुंच जाएंगे अपने उसी दरबार के मुख्य द्वार पर और उसके बाद गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़ पड़ेंगे। अभी तस्वीरें जो चल रही है वो गिरगांव चौपाटी की भी हम देख रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस सुरक्षा प्रशासन की निगरानी में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सेलिब्रेशन करते हुए अपने गणेश बप्पा को गिरगांव चौपाटी की तरफ ले जा रहे हैं। लालबाग के राजा के ठीक तुरंत बाद ही गणेश गली के राजा जो कि बहुत पुराने गणपति बप्पा हैं वो भी निकले हैं, 99 साल उनका मना रहे हैं। इस बार खास बात इन बप्पा को लेकर के ये है कि बहुत बड़ी जहाज लालबाग गिरगांव चौपाटी पर इंतजार कर रही है जिस जहाज में गणपति बप्पा को बिठाया जाएगा और फिर बहुत ही भीतर जाकर के गहराई में ट्रेन के द्वारा गणपति बप्पा यानी के गणेश गली की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिन्हें मुंबई के राजा के नाम से जाना जाता है उनका विसर्जन किया जाएगा। अगर ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से बखूबी तरीके से कामयाब हो गई तो अगले बार से बहन मुंबई महानगर गणेश प्रतिमाएं जो ऊँची बिठाते हैं उन्हें ये कहेगी कि इस तरीके से विसर्जन करें। फिलहाल इस समय साउथ मुंबई की सारे सड़कें श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है, हर तरफ गूंज बस एक ही है बप्पा की। हर कोई बहुत ज्यादा खुश भी है, बहुत लोग मायूस भी है, दुखी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं 12 दिन उनका उन्होंने बहुत ज्यादा सम्मान किया है, मेहमान की तरह आते हैं और घर के सदस्य बन जाते हैं और आंसू भी देखे जा रहे हैं कई आंखों में क्योंकि मिन्नतों के बप्पा होते हैं मुंबई शहर में जहां भी विराजमान है और हर कोई यही चाहता है कि फिर से एक बार बप्पा अगले साल आए, इसीलिए तो मराठी में यहां कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया उर्चा वर्षी लोकरिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल धर्म रहिए हमारे साथ और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और उस हिसाब से धर्म एक और बात बताते चलिए इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि विसर्जन की पूरी प्रक्रिया कल सुबह तक चलेगी।
3: गणेश गली का मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया है, इनका विसर्जन आज शाम को 8 बजे हो जाएगा, 8 बजे की पूरी तरह से तैयारी यहाँ पे लगी है और उसके बाद में और तमाम बप्पा का रात भर दर्शन होगा लेकिन जो आखिरी विसर्जन होगा रात भर विसर्जन चलने के बाद वो लालबाग के राजा का होता है। 7 बजे के आसपास लालबाग के राजा गिरगांव के चौपाटी में पहुंच जाते हैं और उसके बाद 8 बजे बिल्कुल सही साइज सही मौका सही समय देख करके लालबाग के राजा का विसर्जन कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो महापर्व है महागणपति उत्सव है इसकी समाप्ति हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। नंदा जी अभी मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ने एक शब्द का जिक्र किया कि मन्नतों के बप्पा। यकीनन बहुत कुछ हम लोग बप्पा से मांगते हैं और इंतजार रहता है हर साल और इसीलिए कहते हैं कि जल्दी आइएगा आप क्योंकि हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं। तो आज जब विदाई हो रही है ऐसी कौन सी चीज हमें बप्पा के साथ भेजनी चाहिए ताकि हमारी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, ऐसा कौन सा कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है?
4: देखिए गणपति बप्पा एक तो पहले सर्वप्रथम GNT के सभी दर्शकों को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की अनंत शुभकामनाएं और विघ्नहर्ता के समस्त विघ्नों को दूर करें हमारी प्रार्थना रहेगी हमेशा। और बहुत ही सुंदर दृश्य जैसे पंडित जी बोलते हैं हमें भी मिल रहे हैं और देख रहे हैं, हम भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब ये देखिए पप्पा जा रहे हैं तो उनकी विदाई जो होती है बिल्कुल एक तो इन्फॉर्मेशन के साथ करनी चाहिए कि आप जरूर आइएगा और आप इस एक फिजिकल फॉर्म में तो जा रहे हैं लेकिन मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल फॉर्म में आप जरूर हमारे साथ रहें। लेकिन जो उनको सबसे प्रिय चीज होती है ना वो यात्रा कर रहे हैं वापस कैलाश की, जो उसका संदर्भ है वो ये है। तो कैलाश की यात्रा कर रहे हैं तो जब कोई यात्रा में जाता है तो सबसे पहले क्या जाता है अपनी

0: कहाँ चले उनकी एनर्जी भी, और ईश्वर आपको एक यात्रा है सफल यात्रा करे, ताकि आप पूरी यात्राओं में जितने भी समर्थक लोग आए उन सबके विघ्नों का हटे रहें, और हमारे जीवन में जो सुख समृद्धि और हमारी जो छोटे छोटे अतीत इच्छाएं थी उनको मैनिफेस्ट करें और आपकी कृपा से सब लोग। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रहता है, और बहुत अच्छे ढोल नगाड़े गाजे वाशू के साथ आप उनकी विदाई करें। जैसे एक बराज जारी अगर आप उसी तरह से देखें तो कोलकाता में जब विदाई होती है देवी की, वो अपने मायके से ससुराल जारी होती है, तो जिस तरह से जश्न के साथ उनकी विदाई होती है उसी तरह से गणपति बप्पा की भी विदाई की जाती है, क्योंकि वो आतिथ्य स्वीकारते हैं आपके घर में आकर के आपका। और उसके बाद जब आप अतिथि जाता है तो उसको गिफ्ट भी दिए जाते हैं, तो उनको अच्छे वस्त्र दीजिए, उनकी चीजें दीजिए। हाँ, ये याद रखे कि कोई भी चीज सामग्री अगर साथ में दे रहे हैं या भेंट कर रहे हैं तो वो इको फ्रेंडली अगर होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि
1: इसी बात का नंदिता जी इस बार बहुत खास ख्याल बीएमसी ने भी रखा है, और इसीलिए जो बड़ी मूर्तियां हैं उनके लिए बाकायदा शिप वहां पर है, ताकि बिल्कुल डीप सी में जाकर उनको विसर्जित किया जाए। हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। चंद्रांशु जी महाराज, देखिए हर साल बप्पा आते हैं, बहुत सारी मन्नतें हम बप्पा से मांगते हैं, फिर भी कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, ऐसा क्यों, आप क्या मानते हैं?
2: बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले समस्त देशवासियों को अनंत चतुर्दशी की शुभकामना है। दूसरा, दिल से आभार है, धन्यवाद है तो जीएनटी चैनल का है। यहाँ पर बैठ करके भी पूरे देश के जितने भी गणेश भगवान के दिव्य विग्रह है उनको दिखाने का काम, उनसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब जुड़े हुए हैं। जहाँ तक आज बात है तो सच बताएं, स्क्रीन पर मैं भी देख रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बोला ही न जाए, केवल देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। हम इतना जानते हैं, जहाँ तक गणेश भगवान की बात है, राज भैया भी थोड़ी देर पहले कह ही रहे थे, इतनी बात भगवान भोले गणेश भगवान के लिए जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, इनका नाम ही विघ्नहर्ता है। हम लोग जब अपनी स्तुति में गाते हैं तो बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके गणपति बप्पा के सामने यही कहते हैं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये विघ्न के हर्ता हैं, शोक के हर्ता हैं, इनके स्मरण मात्र से ही कहीं ना कहीं विघ्न शोक अपने आप दूर हो जाता है। तो प्रथम पूज्य हैं, इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है,
1: बिल्कुल,
2: ये स्वयं परिपूर्ण है, अनंत है, भगवान है। इसलिए
1: आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगी, जरा अपने दर्शकों को बताते चले, ये भव्य तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लालबाग से राजा की सवारी निकल रही है, और यहाँ पर देखिए हर ओर अगर आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल आस्था और कहीं की आस्था का सैलाब नजर आएगा, गुलाल नजर आएगा, ढोल नगाड़े ताशे सब कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो ये भक्तिमय माहौल इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं मुंबई से। चंद्रांशु जी महाराज,
2: नवजोत जी, एक है कि तेरे आने से पहले तेरे जाने का गम सताने लगा। एक साल तक प्रतीक्षा होती है कि गणपति बप्पा आएंगे, तैयारी करते हैं और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, पर जैसे जैसे दिन अच्छे दिन सुख के दिन जल्दी ही जाते हैं और जैसे समय नजदीक आने लगता है, गणपति बप्पा कहीं ना कहीं कैलाश की ओर जब प्रस्थान करने लगते हैं तो उनसे बिछड़ने का जो गम होता है ना, वह दुख होता है और भी निरंतर विरह बढ़ता जाता है, वो कहीं ना कहीं और वेदना होती है। और हजारों मेरे आंखें भी कहीं ना कहीं नम है, ऐसे जितने भी दर्शक हैं, विदाई के समय में तो आंखें नम होती ही हैं ना, एक सब लोग जानते हैं कि अलविदा कह करके जब कोई आंखों से दूर जाता है तो आंखें देखती रहती हैं मगर दिल मजबूर होता है, कोई कहे या न कहे जुदा से पर दिल में दर्द जरूर होता है। तो जो यह सामंजस्य बनता है, जिस तरह से रोज पूजा करना, आरती में सम्मिलित होना, एक झलक पाने के लिए गणपति बप्पा का खड़े रहना घंटों घंटों, और जब विदाई का क्षण आता है तो फिर वो दर्द शब्दों में बयां नहीं हो सकता है ना, कि बिछड़त एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे ही। जब कोई अपना अपने से बिछड़ता है मानो अपने प्राण को लेकर के ही जा रहा हो, ऐसी वेदना अंतरात्मा में होती है। तो जब गणपति बप्पा के विदाई का जो क्षण है ना, हमारे मन में भी इतनी ही पीड़ा हो रही है, लग रहा है कोई जैसे प्राण निकाल के लेके जा रहा है, कोई कुछ छीन रहा है, ऐसी वेदना मन में होती है, इतना लगा होता है। और गणपति बप्पा की लीला भी, ये इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, इतने भोले भाले लगते हैं। आपको बात याद है ना, जिस समय ये हुआ कि प्रथम पूज्य कौन होगा, बात चलती है उस समय, कार्तिकेय जी उनका वाहन मोर है, तीव्रगामी है, और हमारे गणपति बप्पा का जो वाहन है वो मूसक है।

0: दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सो है मूछ की सवारी। अब चूहा कितना तेज चल सकता था, इतने बुद्धिमान है गणपति गणेश भगवान की वो शांति से खड़े रहे और एक बार हाथ में माता पिता की पूजा कर लिया, पूजा करके तीन बार चक्कर काट लिया, सामने खड़े हो गए। फिर पूछा मैया ने, तुम नहीं जाओगे? उन्होंने कहा, जाने की जरूरत क्या है, मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लिया। कैसे कर लिया? बोले, माता पिता में तो ब्रह्मांड समाहित है, माता पिता से अलग कुछ अलग थोड़ी है। प्रथम पूज्य बन करके बैठ गए, इसलिए इनके समान दूसरा कोई है नहीं। इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं कि कुछ शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि इनके जाने का जो एक वेदना है, इनको विदा करने का जो समय है ना, वो असह्य पीड़ा दे रहा है। और जिस तरह से इनके साथ सामंजस्य बना करके लगातार रहते हैं, जिस तरह से इनकी पूजा उपासना करते हैं, निरंतर इनके ध्यान भजन में रहते हैं, और उसके बाद में जब इनके विदाई का समय आता है, बहुत पीड़ा होती है, शब्दों में कह पाने में बहुत सक्षम नहीं हो पाता कोई व्यक्ति। बस इतना है कि गणपति बाप्पा के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी भूल चूक सुधारने की प्रार्थना करते हैं। और जैसे हमारे वैदिक ऋचाओं में या लौकिक ऋचाओं में वर्णन करते हैं कि यांत देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम, इष्ट काम सिद्धार्थम पुनरागमनाय च, इष्ट काम इस बार का पूर्ण हुआ है, पुनः प्रस्थान कर रहे हैं, पर एक साल बाद पुनः अच्छे आशीर्वाद देने के लिए, दर्शन देने के लिए आप आए, और तब तक हम सबको मंगल के आशीर्वाद देते रहें, जीवन में कल्याण करते रहें, जो हम सबकी मूलभूत अवधारणा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब आनंद मंगलमय रहें, ऐसा गणपति बप्पा पूरे देशवासियों को नहीं, पूरे विश्ववासियों को आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं और इन्हीं प्रार्थना के साथ विदा देते हैं।
1: आपने कहा कि शब्दों में बयां नहीं हो सकता, लेकिन आपकी भावनाएं यहाँ शब्दों में जिस तरीके से आपने बयां की है, वो हर कोई सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। राजभूषण जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, आज ही बप्पा का विसर्जन भी है, तो क्या अनंत बुद्धि पाने का दिन भी आज कहा जा सकता है, क्योंकि बप्पा को बुद्धि का देवता ही तो कहते हैं।
2: बिल्कुल नवजोत जी, कहा जा सकता है, और ये सच्चाई है कि बिना भगवान के बुद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती है। और वास्तविकता में आज ही वो दिन है जहां हम भगवान गणेश जी को अपनी आत्मा के अंदर समाहित करके और अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं। आज का दिन ही एक्चुअली में विसर्जन का तात्पर्य ये है कि हम उनकी विग्रह विसर्जन करते हैं। मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूँ कि हम उनकी विग्रह का विसर्जन करते हैं। परमात्मा का जो वास्तविक स्थान है भगवान गणेश जी का, वो हमारे बुद्धि के अंदर ही है, वो हमारे शरीर के अंदर ही है। तो वो जब विसर्जन जब हम करें, तो उनसे यही प्रार्थना करें कि प्रभु, आपके विग्रह का विसर्जन हो रहा है, आप हमारे बुद्धि के अंदर आकर के विराजमान हो जाए, हमारे शरीर के अंदर आकर के विराजमान हो जाए, और उनकी कृपा से हमारी बुद्धि जागृत हो जाए। क्या करना चाहिए आज के दिन? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आज अनंत चतुर्दशी है, आज वो दिन है जो दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का वो स्वरूप जो शुक्ल यजुर्वेद के अंदर कहा गया, सहस्र शीरिका पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादा स्वभूमिकं सर्वदशपालकसंगुलम्मा, जहां पर पुरुष सूक्त के अंदर भगवान को अनंत स्वरूप में बताया गया, आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अनंत स्वरूप की पूजा होती है। वहीं आज बुद्धि को प्रदान करने वाले, जब हम भगवान गणेश जी का विसर्जन, जब उनके उस स्वरूप का, उनकी जो वो प्रतिमा है, उसको प्रवाहित करके घर आए, तो आज घर आकर के ये ना समझे कि भगवान गणेश जी को हमने भेज दिया है। सबसे पहले हमको प्रयास करना चाहिए कि अपने घर में आकर के बैठ करके और श्रद्धा से भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 108 बार बैठ करके जप करें। आदि गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजन का वर्णन किया है, जिसके अंदर हम भगवान को बिना कुछ अर्पण किए हुए सब कुछ अर्पण करते हैं। अपने नेत्र को बंद करके घर में बैठा जाए और बैठ करके ये स्मरण किया जाए कि भगवान गणेश जी मेरे सामने हैं, मैं उनका सुंदर दुग्ध से अभिषेक कर रहा हूँ कर रही हूँ, मैं सुंदर उनका दही से अभिषेक कर रहा हूँ कर रही हूँ, उनको फ्रूट इत्यादि अर्पण कर रहा हूँ कर रही हूँ, उसके साथ उनको वस्त्र पहना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, और उसके बाद ओम गंगण पतये नमः मंत्र बैठे बैठे जप करें और इस प्रक्रिया को आज ही से शुरू कर दें। मैं सत्य कहता हूँ आपकी बुद्धि 100 गुना ज्यादा काम करेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ देखिए तस्वीरें भी आपके सामने है। शायद यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि भारत का उत्सव क्या है, क्या है गणपति उत्सव, किस तरीके से बप्पा की विदाई हो रही है, किस तरीके से भावनाएं एक तरीके से उमड़ आई हैं आज यहाँ पर इन तस्वीरों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: अनंत चतुर्दशी यानी कि बप्पा के विसर्जन का दिन और हमारी बड़ी और महाकवरेज, 8 घंटे की महाकवरेज लगातार जारी। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर बड़े बड़े पंडालों का विसर्जन भी शुरू हो चुका है। धर्म हमारे समता भी लगातार हमारे साथ बने और हमें बता भी रहे हैं कि किस तरीके से आज विसर्जन की पूरी प्रक्रिया निभाई जाएगी। नंदिता जी, राज जी ने जिस बात का जिक्र किया था, मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाती हूँ। एक तरीके से हम चाहते हैं कि बप्पा हमारे घर आए, 10 दिन बप्पा हमारे घर पधारते, फिर उसके बाद चले जाते हैं। यकीनन ये बिल्कुल वैसा पल होता है जब कोई हमारा अपना, हमारे अपने सगे संबंधी घर पर आते हैं, मेहमान आते हैं और वो चले जाते हैं, घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। ऐसे में 10 दिन तक आराधना की, बप्पा की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आए, तो बप्पा को जब विसर्जन करने के बाद घर लौटे तो क्या करना चाहिए?
1: जी, बहुत सुंदर प्रश्न है और ये बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न इनबॉक्स में भी आता है कि इस समय क्या करें। और जैसा पंडित मिश्रा जी ने बोला कि घर में आके एक बार गणपति का स्मरण कर उनके मंत्रों का जाप करें, किसी भी मंत्र का जाप, सिंपल सा मंत्र ओम गण गणपते नमः है, आप उनका गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ये इस मंत्र में बहुत पावरफुल एनर्जीज है, बिकॉज वो यूनिवर्सल एनर्जीज को आपके घर में खींच के लेके आता है। आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, घी का एक दीपक जलाएं और वहीं पे आप उनका जो एनर्जेटिक फॉर्म है, ऑरिक फॉर्म है, उसका स्मरण करके आप बोले कि आपको मैंने फिजिकल फॉर्म में तो विसर्जित किया, लेकिन जो स्पिरिचुअल फॉर्म है, जो ऑरिक फॉर्म है, उस एनर्जी को मैं अभी भी महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ पूरे वर्ष भर में, जब तक अगली चतुर्थी तिथि आती नहीं है गणेश चतुर्थी, और तब तक आप ज़रूर स्पिरिचुअल फॉर्म में जरूर विराजमान है। जब आप इस एफर्मेशन के साथ पूजा करते हैं तो आपको फिर वो खालीपन आपका हटना शुरू हो जाता है। आप सबको प्रसाद बांटिए, क्योंकि एक अच्छे तरीके से गणपति उत्सव आपने मनाया है, गणपति देव आपके घर पे आए हैं, आपके घर के विघ्नों को उन्होंने हटाया है, आपके घर की ऊर्जा को उन्होंने सकारात्मक किया है। इस ऊर्जा को सकारात्मक लेवल में सस्टेन करने के लिए आपको और ज़्यादा पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसी तरह से जैसे आप इतने 10 दिनों में कर रहे थे। और आप जब श्री हरि के साथ, बिकॉज आज अनंत चतुर्दशी तिथि है, माता लक्ष्मी और गणपति की आराधना करते हैं और माता सरस्वती की आराधना करते हैं, आप देखेंगे आपके जीवन में समस्त कष्ट खाली जाते हैं, जो खालीपन है, जो वैक्यूम है, एक वो जिसे बोलते हैं ना एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, जब बच्चे घर छोड़ करके चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए या अपने कामों के लिए, तो घर एकदम से खाली हो जाता है। तो वैसे ही कुछ ऐसा होता है जब पप्पा चले जाते हैं और घर में लगता है कि अब क्या करें, कुछ भी तो नहीं है करने को, तो उस वक्त में जब आप मेडिटेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि वापस आपको गणपति देव की एनर्जीज जो है बहुत कई मायनों में, कई तरीकों से आपके चारों तरफ नजर आएगी और घर में वो सकारात्मक ऊर्जा सस्टेन रहेगी, मेंटेन रहेगी।
0: बिल्कुल, मिस भी करते हैं ना, और इसीलिए उस पॉजिटिविटी को सस्टेन रखने के लिए बप्पा की आराधना में पूरी तरह से लीन रहे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा कोई कोना नहीं है मुंबई का, खास तौर पर अगर हम बात करें, जहां पर इस वक्त आस्था का सैलाब ना हो। ये 4 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। अलग अलग पंडाल जहां पर बप्पा की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है, और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के कोने कोने की तस्वीरें, जहां पर बप्पा दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये शोभा यात्राएं लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं सीधा विसर्जन के लिए। लेकिन उससे पहले किस तरीके से वो लोग जो कि पंडालों में नहीं जा सके दर्शन करने के लिए, उनके लिए पल बहुत खास हो जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन कोई घर पर नहीं रहता है, हर कोई सड़कों पर आकर बप्पा के दर्शन करता है। हो सकता है कि किसी ने लालबाग चौराहा के दर्शन किए हों, या फिर किसी ने अंधेरी के राजा के दर्शन किए, या कोई मिस कर गया हो, तो ऐसे में ये पल वो होता है जब खुद बप्पा सबके बीच पहुंचते हैं, दर्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस बार सबसे अहम और सबसे खास बात ये भी है कि बीएमसी ने भी इंतजाम खास तौर पर किए हैं ताकि पर्यावरण का ध्यान भी रखा जाए और किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक के अलग से इंतजाम है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई है, नियम कायदे हर कोई सही तरीके से फॉलो करे, इसका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और गुड न्यूज टुडे पर हमारी ये 8 घंटे की महाकवरेज लगातार जारी है। और ये तस्वीर देखिए, आप जिधर नजर दौड़ाएंगे मुंबई में आपको केवल और केवल बप्पा की मनमोहक खूबसूरत तस्वीरें ही नजर आएंगी। और ये सबसे बड़े और विशाल गणपति की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो लोग जो शायद दर्शन करने से चूक गए होंगे, लेकिन आज आप इधर भी दर्शन कर लीजिए। वैसे तो देखिए गुड न्यूज टुडे लगातार 10 दिन या कहें कि उससे पहले से आपको लगातार दर्शन करवा रहा है। हर दिन हमने हर जगह के बप्पा के दर्शन आपको करवाए हैं, पूरे देश में जहां जहां बप्पा विराजे, जिस जिस पंडाल में, जिस जिस रूप में बप्पा विराजे, जो जो संदेश बप्पा ने दिए हैं, वो तमाम संदेश भी हमें आप तक पहुंचाए, क्योंकि बप्पा केवल यहां पर मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं आते बल्कि लोगों को संदेश देने के लिए भी आते हैं। तो बप्पा के अलग अलग संदेशों को भी गुड न्यूज टुडे ने आप तक पहुंचाया है और उन्हीं संदेशों का पालन करते हुए बप्पा चाहेंगे कि आप भी उस पर आगे बढ़े। लेकिन अगर आप दर्शन नहीं कर पाए हैं तो आज ये तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर देख लीजिए, हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, पूरे महाराष्ट्र की तस्वीरें, दक्षिण में जहां जहां बप्पा विराजमान है वहां की तस्वीरें, उत्तर की तस्वीरें, हर जगह पर आपको केवल और केवल भक्ति और भक्ति का सैलाब नजर आएगा। चंद्रांशु जी महाराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रांशु जी महाराज, इन्हीं तस्वीरों को भी हम बयां करेंगे। आपने तो पहले कहा ही कि शब्दों में बयां हम नहीं कर सकते, ये भावनाएं होती हैं, और यकीन मानिए ऐसा होता भी है कि लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं, चुप रहते हैं, मौन रह के ही बप्पा को अपने मन की बात बताते हैं, और वापस से बार बार यही बात कही जाती है कि बप्पा अगले बरस जल्दी आइए। चंद्रांशु जी महाराज
2: जी, नवजोत जी, हम सब कथावाचक हैं, आप जानते हैं भगवान की कथा करते हैं, तो 9 दिन तक जब भगवान की कथा गाते हैं, जब हम लोग कथा विश्राम देकर के जब अपने अपने आश्रमों के लिए चलते हैं, तो जो भक्त लोग होते हैं वैसे रोते हैं जैसे अपनी बेटी की विदाई कर रहे हो, इतना लगाव हम लोगों से हो जाता है। यह तो साक्षात भगवान है, और इनसे कितना प्रेम होगा, किस स्तर का प्रेम होता है भगवान से, या भक्त भगवान के प्रेम की बात हो, वहां पर शब्दों में कोई कैसे बता सकता है, कैसे सोच सकता है, आप उसकी भावना केवल कल्पना में जाकर कर सकती हैं। जहां तक आप जानती हैं इस बात को लेकर के कि आप देखते होंगे कि भगवान गणेश अनादि देव है, विघ्नहर्ता है, और एक रोचक बात याद स्मरण में आ रही थी कि जब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हो रहा था, इतने विघ्न आ रहे थे, माता उनकी मैना माता कहती विवाह ही नहीं करना है ऐसे वर के साथ में, इतना उधम मचने लगा, तब पता चला कि ये हो क्यों रहा अमंगल, जबकि ऋषि मुनि महात्माओं ने सारा परिचय दिया था, सारी बात भगवान भोलेनाथ के बारे में पता थी, फिर क्यों इतने विघ्न आ रहे हैं लगातार। तब वहां पर ब्रह्मा जी अन्य ऋषि मुनियों ने कहा कि एक भूल हो गई है, गणेश भगवान की पूजा नहीं हुई, और जब तक गणेश भगवान विघ्नहर्ता की पूजा नहीं होगी तो कार्यक्रम मंगलमय संपन्न कैसे हो सकता है। तो वहां पर सर्वप्रथम आचार्य विद्वानों ने गणेश भगवान की पूजा किया है, वहां पर एक प्रश्न उठा, जेंटिक दर्शक जितने भी है देख रहे हो, फिर उनके विवाह में ही शंकर भगवान के माँ पार्वती के विवाह में उनकी पूजा कैसे हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वही समाधान दिया है कि ये लीला में केवल उनके पुत्र हैं, वास्तव में यह तो अनंत भगवान है, यह परब्रह्म परमेश्वर है, ये कोई सामान्य नहीं है, लीला करने के लिए पुत्र बन करके आए हुए हैं, देव अनादि जान करके किसी को इस प्रकार शंका नहीं करना चाहिए, जो स्वयं साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, और इनसे प्रेम करना, इनको मानना, इनको विदाई देना विदाई के क्षणों में, फिर तो इनके साथ एक अलग लगाव होता है ना, तो कोई कैसे इस चीज को कैसे महसूस कर रहा होगा, वह तो उसके हृदय जानता है, वह उनका भावना जानता है। और इतनी बात और भी सही है नवजोत जी के, विप्रलम्भ एक शब्द है, विप्रलम्भ से प्रेम पुष्ट होता है। भगवान कृष्ण जब गोपिकाओं के बीच से अंतर ध्यान हुए, गोपिकाएं तमाम प्रकट होने पर भोले कन्हैया के प्रकट होने पर अनेक प्रकार के जब लांछन लगाती हैं, उस समय कन्हैया यही कहते हैं गोपिकाओं को कि हम आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए, विरह से प्रेम बढ़ता है, कितना प्रेम है वह देखने के लिए हम आपके बीच से अंतर ध्यान हुए थे। तो गणपति बप्पा एक साल के लिए जो जाते हैं लीला में, ऐसे तो रहते ही हैं हम सबके साथ में, उनकी तो हर समय सत्ता विद्यमान रहती है, पर ये जो एक विशेष उत्सव चलता है, जब लीला जगत में जाते हैं, एक साल भक्त लोग उनका इंतजार करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, उनके विरह में कहीं ना कहीं तड़पते रहते हैं, और एक साल बाद जब आते हैं फिर बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, और फिर जैसा कहा कि जब धीरे धीरे दिन जाने लगता है, फिर कहीं ना कहीं वो विरह उठती रहती है, और ये विरह की जो जब विदाई का समय है, ये भावुक क्षण दिखाई पड़ता है। इतना एक बात कहना है कि गाइए गणपति जग बंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिद बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसों राम सिया मानस मोरे। गणपति बप्पा को जिस तरह से मोदक प्रिय है, वह अपने शंकर भगवान के माँ पार्वती के अतिशय प्रिय हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, वह कल्याण करे, हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही प्रार्थना है।
0: ये सब की कामना होती। राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। देखिए तस्वीरें लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम दिखा ही रहे हैं। अब शुरुआत जिस लाइन को लेकर हमने की थी कि केवल एक सांकेतिक विसर्जन होता है, लेकिन बप्पा 10 दिन तक हमारे घर पर रहते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल 10 दिन, बप्पा तो हर जगह हर समय विराजमान है। हम जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहले बप्पा का ही नाम लेते हैं, उन्हीं की आराधना, उन्हीं की पूजा की जाती है। लेकिन आज का जो ये पल है, आज की जो ये घड़ी है, ये जो तस्वीरें इस वक्त गुड न्यूज टुडे पर पूरी दुनिया देख रही है, मैं चाहूंगी कि एक मैसेज यहाँ से ये भी जाता है राज मिश्रा जी, कि लोगों को, दुनिया को और तमाम दूसरे मुल्कों को यहाँ से मैनेजमेंट सीखने की भी बहुत जरूरत है। देखिए किस तरीके से इतनी भीड़ को मैनेज करना है, कैसे एक एक पंडाल बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ता रहे, लोग भी दर्शन करते रहे, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, कोई परेशान ना हो, और बप्पा का विसर्जन भी हो जाए और लोग उत्सव भी धूमधाम से मना ले।
3: मधु जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं दो तीन चीजें कहूंगा, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो सीखने की है। एक तो आपके चैनल का इस विषय के लिए बहुत धन्यवाद कि जब हम लोग सुबह इस प्रकार के दृश्यों का दर्शन करते हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, या दिन में दृश्य का दर्शन करते हैं, तो मस्तिष्क अपने आप और जागृत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब क्योंकि सनातन धर्म एक इस प्रकार का, अगर मैं भगवान गणेश जी की बात करूं तो गणेश जी विघ्न के हर्ता हैं, यानी किसी भी कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना उत्पन्न हो, ये उनके जो मैनेज करने वाले जो भक्त हैं उसको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब हम विघ्नहर्ता की पूजा कर रहे होते हैं, जब हम बुद्धि को प्रदान करने वाले देवता की पूजा कर रहे होते हैं, तो वो अपनी इस प्रकार की बुद्धि भी प्रदान करते हैं कि दूसरे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और मेरी सेवा, मेरी आराधना सुचारू रूप से हो जाए। क्योंकि इस धर्म के अंदर, भारत के अंतर्गत ये शब्द कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकृष्ण दुःखमाग भवेत्। यानी सबसे पहली पूजा का जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, पहला नियम है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी के अंदर जब आप पूजन करते हैं तो आपके अंदर एक भाव होना चाहिए कि सभी सुचारू रूप से अपने जीवन का पालन कर पाए, सभी सुचारू रूप से अपनी आस्था का पालन कर पाए, सभी सुचारू रूप से अपने कार्य का पूरी तरीके से पालन कर पाए। तो जब ये विचार एक साथ होता है और इस प्रकार सबकी बुद्धि एक साथ होती है, तो फिर किसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जहां पर किसी भी चीज को फोर्सफुली कराया जाए या जिसको मैनेज करने के लिए फोर्स का या डर दिखा करके जिस चीज का पालन किया जाए, वो भक्ति नहीं हो सकती, वो धर्म नहीं हो सकता है। तो क्योंकि भारत के अंतर्गत ये परिस्थिति इस रूप से, और ये वास्तविकता में सीखने वाली आवश्यकता है कि यहाँ पर कुछ मैनेज किए हुए श्रद्धा सब में इतनी है कि अपने आप सब मैनेज हो रहा है। वो कहते थे ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें लगातार आ ही रही हैं और गुड न्यूज टुडे लगातार हर एक तस्वीर आप तक लेकर आ रहा है, क्योंकि हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। 8 घंटे की बड़ी कवरेज, हर कोने से, देश के हर कोने से, जहां जहां पर बप्पा का उत्सव मनाया जा रहा है, जहां जहां पर भक्ति है, उल्लास है, हर जगह की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे गुड न्यूज टुडे पर। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: आस्था जब आसमान पर उतरती है तो नजारा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता है। गुजरात के अंबाजी में 450 ड्रोन ने रात के आसमान को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया, कहीं त्रिशूल का स्वरूप, कहीं मां अंबा की छवि।
6: अंधेरे आसमान पर जब रोशनी की लकीरें दौड़ती हैं तो कुछ ही पलों में पूरा आसमान एक तस्वीर में बदल जाता है, कहीं त्रिशूल का दिव्य स्वरूप, कहीं मां अंबे की छवि, तो कहीं तिरंगे के साथ नजर आता भारत का नक्शा। आसमान में बनती इन तस्वीरों को देखकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें भी ठहर जाती हैं। खूबसूरत नजारा दरअसल गुजरात के अंबाजी का है, जहां भादरवी महामेला के दौरान आस्था के इस उत्सव में तकनीक ने भी रंग भर दिए हैं। दिन भर माँ के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और रात के वक्त 450 ड्रोन से आसमान पर साकार होती भक्त की तस्वीरें। जैसे जैसे ड्रोन अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे आसमान पर बदलती तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचती हैं। अंबाजी में इन दिनों आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि आसमान में भी अपना रंग बिखेर रही है।
7: उसमें बहुत अद्भुत रीते माँ अंबाना प्रकृति अने चाचर स्वप्ना दिया गब्बर ने पर्वत पकपल यात्रिका आते उनका रथ अने जो लोग लेके आते झंडा, ये सब चीज हमने इंक्लूड करके ड्रोन शो किया था। अने स्पेसिफिक चीज ऐसे माँ अंबा का पाथ अने माँ अंबा का दिया, ये दोनों चीज हमको बहुत खुश लगा। पीपल लोगों को माँ भक्तों को भी बहुत आनंद रहते, दोनों दिन का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके सक्सेसफुली प्लान की हुई थी।
6: मंदिर परिसर और आसमान में रोशनी का ये संगम देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। लगातार दो रात हुए इस ड्रोन शो ने मेले के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक लाइटिंग ने भी पूरे माहौल को भव्य बना दिया। माँ के दरबार में शीश झुकाने के बाद जब नजरें आसमान की ओर उठी तो सामने था आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम।
7: लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ड्रोन शो देख के, एंड लास्ट ईयर पहली बार ड्रोन शो किया हुआ था एंड इस साल भी हमने कंटिन्यू रखा है। लास्ट ईयर से इस साल का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके मैनेज हुआ है एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हम ज्यादा रखे ताकि पकपाला संघ आते उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस साल हमने रखा है, ताकि जो चीज को महत्व माना जाता है अंबाजी मेला में उस चीज को हम इसमें इंटरप्रेट की हुई थी। इसके वजह से लोग बहुत अच्छी तरीके माँ भक्तों का श्रद्धा के साथ साथ दर्शन करके अंबाजी मंदिर में दर्शन करके निकले थे।
6: आसमान में बनती तस्वीरें, नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजता माँ अंबे का जयकारा। अंबाजी में इस वक्त सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि पूरा अरावली क्षेत्र ही भक्ति रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात के अंबाजी से निकलकर अगर बिहार के गया जी पहुंचे तो वहां भी आस्था को रोशनी और तकनीक के जरिए ही एक नया रूप दिया गया। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले से पहले फल्गु नदी का देवघाट भी रोशनी से जगमगा उठा। देवघाट पर शानदार लेजर एंड लाइट शो का उद्घाटन हुआ।
8: में आज लेजर लाइट के द्वारा एक अद्भुत सीता माँ की पूरा कहानी की जीवनी गया सूर कैसे गया सुर बने, पूरा इसका कहानी इस लेजर के माध्यम से जितने भी देश विदेश से यात्री आएंगे उनको, उनके लिए ये हम लोग नगर निगम के द्वारा व्यवस्था करवाए हैं।
6: लेजर और रोशनी के शानदार शो में गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया। माँ सीता के पिंडदान से जुड़ी कथा हो या गयासुर की पौराणिक कहानी,
4: गया जी में कल से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस तत्पर है ताकि जो अनुभूति है अपने आप में एक दैवीय अनुभूति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सुखद हो, सहज हो और किसी भी समस्या के लिए पुलिस के बहुत सारे हेल्पलाइंस भी बनाए गए हैं। अस्थायी थाना भी स्थापित किया गया है और CCTV से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे की जाएगी।
6: अंबाजी में आसमान पर उड़ते ड्रोन हो या गया जी के देवघाट पर चमकती लेजर लाइट, तकनीक ने दोनों जगह आस्था की कहानी कहने का एक नया अंदाज जरूर दिया है। एक तरफ माँ अम्बा की भक्ति में रोशन आसमान, तो दूसरी ओर पूर्वजों की स्मृति और पिंडदान की परंपरा को समर्पित गया जी। दो धाम, दो अलग अंदाज, लेकिन तस्वीर एक ही, आस्था की, जो अब रोशनी के माध्यम से भी दिखाई दे रही है। अम्बाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़ी धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियोस भी शेयर किए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सविता शर्मा ने गणेश उत्सव का वीडियो शेयर किया है। हस्त निर्मित बप्पा की प्रतिमा का सुगंधित पुष्पों के साथ श्रृंगार हुआ है। भगवान गजानन सर पर लाल पगड़ी धारण किए हुए हैं, साथ ही मोरपंख भी लगाया हुआ है। फल और मिष्ठान से बप्पा का भोग लगाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर भी भोपाल की है, जिसे पूजा मिश्रा ने हमें भेजा है। शानदार पंडाल में मंगल मूर्ति की अनुपम प्रतिमा विराजमान है। सर पर सुंदर मुकुट और ऊपर रंग बिरंगे छत्र ने चार चांद लगा दिए। लाल सफेद और गुलाबी रंग के सुगंधित गुलाब के पुष्पों की माला धारण किए हुए भगवान गजानन अपने भक्तों को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
0: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा के विदाई के साथ इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर फिरके श्रद्धालु।

अकोला में भक्त भारी मन से कर रहे बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों की धुन पर गजानन से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना, प्रशासन ने बनाया आर्टिफिशियल पुल। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। बेल्जियम की तर्ज पर ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में फूलों से बनाया गया विशाल फ्लावर कारपेट, 3 लाख से ज्यादा फूलों का हुआ इस्तेमाल।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा और मेरे साथ है सरगम, मेरी सहयोगी गणपति बप्पा
1: मोर्या,
0: मंगल मूर्ति
1: मोर्या।
0: लेकिन आज जो है विशेष करके आज जो जयकारे लग रहे हैं वो है गणपति बप्पा मोर्या अगले बरस तू जल्दी आ। जी हाँ, यही कामना कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें सुबह से ही गुड न्यूज टुडे आपको दिखा रहा है और गुड न्यूज टुडे पर लगातार आप बने रहिए क्योंकि ये महा कवरेज गणेश विसर्जन को लेकर हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आज आपको बता दें विशेष करके महाराष्ट्र में मुंबई की गलियों में, सड़कों में, पुणे में, तमाम जगह पे, अकोला में आप देख सकेंगे कि तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। बड़े बड़े पंडाल से अब जो गजानन है वो निकल चुके हैं और आज विसर्जन का दिन है, आज अनंत चतुर्दशी है और इस महापर्व को किस तरह से मनाया जा रहा है आपको देखिए हम अलग अलग तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया। देखिये, देश भर में गणपति विसर्जन को लेकर उत्सव और उल्लास का माहौल है। ढोल ताशों और जयकारों के बीच आज बप्पा को भावभीनी विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग शहरों से गणपति विदाई की शोभा यात्रा की तस्वीरें आ रही है। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लालबाग चौराहा की शाही सवारी निकल चुकी है।
1: बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल करके आ रही हैं और आपको बता दें कि भव्य तैयारियां बहुत लंबे समय से 10 दिन तक बप्पा को स्थापित किया गया और आज वो समय आ गया है जो भक्त नहीं चाहते कि आए, लेकिन अगर बप्पा जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। तो बप्पा को विदाई देने का दिन मुंबई के गणेश गली के राजा, जिन्हें मुंबई चराजा भी कहते हैं, विसर्जन की यात्रा जो है उनकी वो शुरू हो चुकी है। परेल के राजा की भी विसर्जन यात्रा शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि मुंबई नहीं, पुणे में भी गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा गाजे बाजे, ढोल ताशों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम और श्रद्धा से निकाली जा रही है। जहां जहां से शोभा यात्रा निकल रही है बप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

0: 12 दिन विराजने के बाद भक्तों को उम्र भर का आशीर्वाद देकर बापा फिर से आने के लिए चल पड़े हैं। आज सुबह जब गणपति निकले तो लगा सारा जहां उनके साथ चल पड़ा है। मंगल मूर्ति जहां जहां से गुजरे लगा उत्सव और उल्लास का जन सैलाब गुजर रहा है। हर कोई बापा को जी भर कर निहार लेना चाहता है। हर कोई गणपति की एक झलक पा लेना चाहता है। हर किसी की गणपति से यही कामना है कि अगले बरस तू जल्दी आ।
1: विसर्जन के लिए गिरगांव की चौपाटी की तरफ लालबाग के राजा, ये देखिए फाइनली बाहर निकल चुके हैं और किस जश्न उल्लास के साथ यहाँ तमाम वो गणेश भक्त जो मौजूद हैं, जो निहार रहे थे सुबह से ही घंटों से कि बस एक बार बप्पा की झलक देखने को मिल जाए, क्योंकि ये विसर्जन है। आज जी भर के बप्पा को देखेंगे और उसके बाद एक साल पूरा का पूरा इंतजार होगा। जी हाँ, देखिए कितने ज्यादा भव्य, कितने ज्यादा खूबसूरत इस समय लालबाग के राजा लग रहे हैं। दरबार खुशी से झूम उठा है। आप देखें जिस तरफ भी आपकी नजरें जाएं, लालबाग के राजा को सिर्फ एक बार देखने के लिए खिड़कियों पर, गली पर, ब्रिज पर, ट्रैक पर, यहाँ तक के बांस बम्बू के जो टेंट है उस पर भी लोग चढ़ गए हैं। पत्थरों पर भी लोग चढ़कर बिना अपनी जान की परवाह किए लालबाग के राजा का एक दर्शन करने के लिए घंटों से गर्मी में यहाँ पर मौजूद हैं। हर किसी को प्यास भी लगी होगी, थकावट भी हुई होगी, लेकिन लालबाग के राजा को देखने के लिए जो उत्साह, जो एनर्जी शरीर में अपने आप आ रहा था, उसका नजरिया ये है, उसकी तस्वीर ये है कि फाइनली वो तमाम लोग जो यहाँ पर लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए घंटों से खड़े हुए थे, उन्हें बप्पा का दर्शन करने का मौका मिल गया।
0: कहने को ये बप्पा के विदा होने की तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों में उमंग के वो सारे रंग हैं जो एक साथ कम ही नजर आते हैं। कहीं अबीर गुलाल के रंगों के साथ बप्पा को विदा किया जा रहा है, तो कोई फूलों की बारिश करके लालबाग के राजा को विदाई दे रहा है। सबके मन में इस बात का सुकून है कि बप्पा के चरणों में जो वक्त गुजरा उसने उनका जीवन धन्य कर दिया।
1: लालबाग के राजा के आप बहुत ही ज्यादा करीब से इस समय लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर लालबाग के राजा की दरबारी में मुंबई पुलिस भी एक बड़ी संख्या में मौजूद है। 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे मुंबई को संभाल रहे हैं, बंदोबस्त कर रखा है। और आज 12वां दिन बहुत ही सफलता से पूर्वक मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा सहयोग योगदान के जरिए पूर्ण हुआ है। आज विसर्जन के दिन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर न केवल मौजूद हैं, बल्कि लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं और अपने मोबाइल से उनकी तस्वीर भी खींच रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए अब लालबाग के राजा का विसर्जन का समय फाइनली आ ही गया है, वो घड़ी आ ही गई है जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। दो तरह की खुशी लोगों के आंखों में देखी जा रही है, पहली तो खुशी के आंसू हैं, दूसरे दुख के आंसू हैं। खुशी के आंसू इसलिए हैं क्योंकि ये जो पर्व है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से हो गया। दुख के आंसू इसलिए है क्योंकि बप्पा फाइनली हम सबको विदा कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी रियलिटी है, सच्चाई है, वो तो यही है ना कि बप्पा जाएंगे नहीं तो आएंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि गणपति बप्पा मोरिया उर्चा वर्षी लोकरिया।
0: गणपति उत्सव केवल आस्था का पर्व नहीं, ये समाज की ऐसी जीवंत झांकी है जो सभी को एक साथ ले आती है। यही वजह है कि बप्पा की भक्ति में ना कोई छोटा है, ना बड़ा, ना अमीर है, ना गरीब। तभी तो जब गणपति की प्रतिमा विसर्जन को निकलती है तो सड़कें लोगों से पट जाती हैं। चाहे लालबाग के राजा हो या फिर मुंबई के राजा, विदाई देने पूरा शहर उमड़ पड़ता है। केवल बप्पा की भक्ति का रंग ही अनूठा नहीं है, उनकी आस्था का उल्लास भी गजब का है। पुणे में जिस उत्साह के साथ गणपति उत्सव मनाया जाता है, बप्पा की विदाई का रंग भी उतना ही चटक होता है। यहाँ पारंपरिक वेशभूषा में बप्पा को बड़े अनूठे अंदाज में विदा किया जाता है। भक्ति के साथ संस्कृति का रंग गली गली नजर आता है।
2: पुणे का गणेश फेस्टिवल जो है वो सबसे अलग रहता है, और मतलब यहाँ पे जगह जगह से आदमी आते हैं कि ये सबसे मतलब एक ऑथेंटिक और मतलब परिवार के जैसा हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं।
3: फीलिंग्स तो थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, अभी बापा पुढ़चल वर्षी लवकर या अभी यही बोलना है बापा को, और बापा अभी बहुत सारा आशीर्वाद देके जाते हैं तो इसीलिए अच्छा लग रहा है।
0: दरअसल बाप्पा की आस्था का संसार जितना अनंत है, उनकी सीमाओं का विस्तार भी उतना ही विशाल है। गणपति उत्सव के दौरान बाप्पा की भक्ति का यही अद्भुत संसार निहर कर सामने आता है। बाप्पा 12 दिन हमारे घरों, हमारी गलियों और हमारे मोहल्लों में विराज कर जा जरूर रहे हैं, लेकिन सबके मन में इस बात का इत्मीनान है कि बाप्पा से मिला आशीर्वाद उनके साथ है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी तरह से तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य तोषिका रिजोरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि श्रीपति आचार्य जो ज्योतिषाचार्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे और आज के इस दिन के महत्व के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता सीधे नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके पास लिए चलते हैं। योगेश है हमारे साथ। योगेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पूरे महाराष्ट्र की इस समय तो छठा ही कुछ और होती है, और जाहिर सी बात है उत्सव तो है ही, लेकिन देखिए दोनों चीज है, मिक्स्ड फीलिंग अभी रहती है, अभी मन में तकलीफ भी होता है, आंखें भी नम रहती है, बप्पा की विदाई है तो लोग नाच भी रहे हैं, ढोल बाजे गाजे सब बजा रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले वहां पर दिखाइए, नागपुर में किस जगह पर आप हैं वो बताइए।
5: जी बिल्कुल, इस समय हम मौजूद है नागपुर के गांधी सागर इलाके में, जहाँ जो घरेलू गणपति है, जो घर में बैठने वाले गणपति है, उसका विसर्जन किया जाता है। दरअसल यहाँ पर आर्टिफिशियल टैंक बनाए गए जिससे पर्यावरण को हानि ना हो, ऐसे जगह पर गणपति बाप्पा का विसर्जन जो है वो हो रहा है। दरअसल नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा को बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूजा जाता है। गणेश उत्सव में अपने घरों में गणपति बाप्पा को विराजमान करने के बाद अब बड़े ही अभाव भी नहीं, एक गणपति बाप्पा को विदाई जो है अपने लाडले बाप्पा को वो यहाँ गणपति बाप्पा को यहाँ आरती करके आरती करने के बाद जो है आर्टिफिशियल टैंक यहाँ उसका विसर्जन होना है। अब बड़े ही धूमधाम के साथ गणपति उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। नागपुर में 347 आर्टिफिशियल टैंक बनाए गए हैं जिसका आर्टिफिशियल टैंक में तीन गणपति का विसर्जन होगा। तो बड़े गणपति है,
6: जी बिल्कुल योगेश आपके पास लौटेंगे। देखिए पूरे महाराष्ट्र में जैसे अभी श्वेता कह रही थी, तो अद्भुत छटा है गणपति उत्सव की वो देखने को मिलती है। आज तो अनंत चतुर्दशी है, तो आज के दिन तो उत्सव ही उत्सव देखने को मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, पिछले काफी समय से आप गणपति बप्पा के दर्शन जो है जीएनटी पर हमारे दर्शकों को करा रहे हैं, और अभी मैं आपकी एक रिपोर्ट देख रही थी, आप कह रहे थे कि ऐसा लगता है ना कि एक उत्सव पूरा हो गया है, तो खुशी है इस बात की, लेकिन आंखों में गम भी है कि गणपति बप्पा आज चले जाएंगे, उनका विसर्जन हो जाएगा। आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, और साथ ही मैं तस्वीरें दिखाएं कि लाल बाग चौ राजा यात्रा कहां तक पहुंची है। धर्मेंद्र सुन पा रहे हैं मुझे आप?
7: लाइव मजा है।
4: या मुझे लग रहा है सरगम, दरअसल वहां पर जहां पे वो हैं और ये जो तस्वीरें हमें भेज रहे हैं, वहां पर ढोल ताशे इस तरह से बज रहे होते हैं ना कि उस समय अब सुनाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुनाई देना, लेकिन देखिए ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। मतलब ये हम कह लें कि हमारी संस्कृति वाकई कितनी समृद्ध है, सनातन संस्कृति हमारी कितनी समृद्ध है, और इसकी सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक जो इस वक्त आप गुड न्यूज टुडे के टेलीविजन पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए महाराजा यहाँ पर निकले हैं, बिल्कुल महाराजा जैसा जो है ना वो ट्रीटमेंट मिलता है, और लाल बाग चौ राजा हो गए, और वहां पर कई सारे और ऐसे बहुत बड़े बड़े गणेश पंडाल है जहां से निकले हैं।
6: बिल्कुल श्वेता, और आप तो बहुत सालों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसा महसूस होता है अगर आपने कभी इसे सामने से अनुभव किया हो, इसे महसूस किया हो। खैर धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम उनसे कर रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है इस वक्त? जैसे आप बोल रहे थे ना श्वेता कि इतने ढोल ताशों की आवाज है और आप देखिए यहाँ पर लाखों की तादाद में शायद होंगे यहाँ पर भक्त, और वो भी क्यों ना, क्योंकि मुंबई के लाल बाग चौराजा इतने ज्यादा पॉपुलर है, इतने ज्यादा प्रसिद्ध है, कहते हैं कि तमाम मन्नतों को पूरा कर देते हैं, इसीलिए चाहे आम हो या खास सभी उनके दरबार में
4: मन्नतों के राजा कहा जाता है, इसलिए शायद ही कोई ऐसा है जो बचता है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि जब ये जो सवारी अभी निकली है सरगम आप देख रही हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो आम लोग हैं कम से कम वो इस समय मौका उनको मिल पाता है कि जो लोग नहीं दर्शन कर पाए हैं वो यहाँ पर दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है, कई गली मोहल्लों से निकलते हुए उसके बाद लाल बाग के राजा को ले जाया जाएगा जहां पर इनका विसर्जन होना है। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार आपको हम दिखा ही रहे हैं। तो चलिए हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। तोशिका जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे अनंत चतुर्दशी, सबसे पहले तो हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि आज का दिन और इसके महत्व के बारे में आपसे जानेंगे, और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य होने के नाते आपसे ये समझना मैं चाहूंगी कि आज के दिन को ही क्यों चुना जाता है हमारे यहाँ गणेश विसर्जन को लेकर, आज ऐसी कौन सी तिथि होती है, क्या गणनाएं होती हैं, ग्रह दशा क्या होती है, जरा बताएं।
8: सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को अनंत चतुर्दशी और गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए ना केवल मुंबई में बल्कि पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो ये दिन जो है हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अपने आप में ही हो जाता है। गणपति जी जो है कहते हैं कि वो विघ्न हरता है, हमारे जीवन से ऑब्स्टिकल्स को निकालते हैं। ज्योतिष में भी जब भी हम गणेश जी की आराधना के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि गणपति जी जो है वो आपके जीवन से ऑब्स्टिकल्स को निकालते हैं, आपको विद्या देते हैं, आपको बुद्धि प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ आपके जीवन में शुभता लेकर आते हैं। यही कारण है कि जब भी हम लोग सनातनी होकर, हिंदू होकर, जब भी हमारे घरों में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश पूजा की जाती है, गणेश जी को कुमकुम आदि उनको भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है और उनको पटरे पे बिठाया जाता है। देखिए आज के अगर शुभ दिन की बात करें तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि आज अनंत चतुर्दशी है। अब अनंत चतुर्दशी जो है भगवान त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु जो है कहते हैं कि वो योग निद्रा में समय पे रहते हैं और वो इस दिन जो है करवट बदलते हैं, जिसको देख के माँ लक्ष्मी जो है अत्यधिक प्रसन्न होती है। अनंत का ही मतलब होता है कि अत्यधिक अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के 10 रूपों की जो है वो पूजा आराधना की जाती है और उसके साथ साथ आज के दिन बहुत ही अच्छा एक महत्व माना गया है कि आज के दिन 14 गांठे बांधकर अगर आप एक सूत्र जो है अपने हाथ में धारण करते हैं तो इससे ना केवल भगवान श्री हरि और गणपति जी आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं, बल्कि यहां तक कहा जाता है, आपको पता है कि जब पांडव जो है अपना सारा राज्य पाट सब कुछ हार कर बैठे थे उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने को कहा था और ऐसा कहा था कि पूरे विधि विधान से वो भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। ये व्रत रखने के कारण की वजह से ही उनको उनका राज की सम्मान और राजपाट वापस मिला, इसीलिए इस दिन का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वहीं पे आप ये समझिए कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है, इस दिन जो है गणेश उत्सव का जो है आगमन जो हुआ था 12 दिन पहले उसका समापन होता है, इसीलिए ये तिथि को चुना जाता है क्योंकि चतुर्दशी अपने आप में ही गणपति जी को अत्यधिक प्रिय होती है और इस दिन के जो योग बनते हैं, जो संयोग बनते हैं, बुध आदित्य योग जो है एक दूसरे को सप्तम दृष्टि समय पे देते हैं जो अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण है, बलशाली है। वहीं पे अगर बात करें तो बृहस्पति देव गोचर के लिहाज से अगर बात करें तो उस समय पे सिंह राशि में केतु महाराज के साथ प्रवेश कर चुके हैं। जब भी ये स्थिति बनती है कि आपके जुपिटर प्लैनेट जो है वो सूर्य की राशि में चले जाते हैं तो ये पूजा पाठ करने के लिए, स्पिरिचुअल कार्य करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया।
6: बिल्कुल बिल्कुल, गणपति जो है प्रथम पूज्य है, विघ्नहर्ता है और ये जो शोभा यात्रा है वो बता रही है कि लोगों की कितनी असीम श्रद्धा है भगवान गणपति पे। और आपको बता दें कि विदर्भ में भी गणपति बप्पा को धूमधाम से विदाई दी जा रही है। अकोला में गणपति विदाई की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जो है वो शामिल हुए। इस दौरान ढोल ताशों के पारंपरिक वादन ने श्रद्धालुओं को आनंद से भर दिया। इस यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता धनंजय साबले ने, आप भी देखिए।
9: Oh yeah! Oh yeah!

0: गणपति बाप्पा मोरिया पूजा वर्षी लवकर है, यही उनके साथ जो है बाप्पा की सवारी निकली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाप्पा की ये सवारी जो है वो बड़ी धूम से और बड़े जल्लोष के साथ यहाँ पर निकली है। बाप्पा की ये सुंदर प्रतिमा जो बारा भाई गणपति की है, फूलों से उनका स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हो कि बाप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए जो है यहाँ पर बाप्पा के भक्त जो है घूम रहे है, नाच रहे है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो बाप्पा के जो भक्त है बड़े जल्लोष के साथ जो है ढोल नाच रहे हैं।
1: और पंडित श्रीपति आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीपति जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, जो तस्वीरें आ रही हैं इसमें जिस तरह से हम जो देख पाते हैं, जो महसूस कर पाते हैं, वो ये है कि यहाँ पर दो तरह की भावनाएं समानांतर रूप से चल रही होती हैं। एक तो ये है कि बप्पा की विदाई हो रही है इसलिए आंखें नम होती है, लेकिन दूसरी

0: किस तरह से विघ्न बप्पा हमारे हरते हैं आज के दिन जब हम उनका विसर्जन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में जिस तरह से लोग अपनी भावनाओं के साथ उन्हें लेकर जा रहे हैं।
1: पहले सारे भारत के दर्शकों को ये गुड न्यूज टुडे चैनल की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बापा सबको आशीर्वाद करें, ये इच्छा के साथ प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज एक स्वतंत्र तिथि होता है, लड़ी चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। चतुर्दशी जो कि भगवान शिव जी के सबसे प्रिय होते हैं, हर भगवान जी के भी एकदम अच्छा ही होता है कि भगवान जी के सब जो शिव जी के भगवान को मांगेंगे वो मिल जाता है। तो उसी तरह की नेक्स्ट डे हम लोग का पूर्णिमा भी है, ये एक संधि मुहूर्त है चतुर्दशी एंड पूर्णिमा। तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी कि हम लोग का ये डे स्पेशल होता है, तो ये जो कि भाद्रव महीना का एक एंडिंग पॉइंट है, जो कि चतुर्थी तिथि को भगवान जी आए थे, आज चतुर्दशी तिथि को जाएंगे। ये तिथि हम लोग का जो कि भारतीय सनातन धर्म के जो ज्योतिष गणना के हिसाब से ये तिथि सबसे स्पेशल होता है, इसलिए अनंत चतुर्दशी बोला जाता है। भगवान जी को जो लाल सिंदूर और अबीर चढ़ाते हैं भगवान गणेश जी को, गणेश बापा जी को, उनका हर कामना पूर्ण होता है, क्योंकि वो अग्रपूज्य होते हैं। और जब भगवान जी ने उनको ये हस्ती का जो सिर दिए थे, उसी टाइम उनका आशीर्वाद दिए थे कि ये जो काल काल तक जो भी भक्त भगवान श्री गणेश जी को ये सिंदूर चढ़ा के जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। आज ये जो चतुर्दशी तिथि है, काल है पूर्णिमा, तो हम एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो पूर्णिमा तिथि में विसर्जन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो स्पेशल डे होता है, वो पूर्णता होता है। तो हम चतुर्दशी तिथि को जो कि भगवान शिव जी का तिथि है, उसी तिथि को चुना गया है। जो चतुर्थी में आए थे वो चतुर्दशी को जाएंगे। ये तिथि ज्योतिष गणना के हिसाब से आप देखा जाए तो जो कि अप्रैल 14 को जब 0 डिग्री पर सूर्य भगवान थे, आज ये जो कि खुद के राशि में जा चुके हैं सिंह राशि में जब रहते हैं, जो खुद के घर में तो बलवान रहते हैं
0: जी।
1: उसी पीरियड में जैसे कि रवि सूर्य जो कि ज्योतिष पाठ में सबसे बलवान ग्रह होते हैं, वो जब खुद के हाउस में रहते हैं, बापा जी का जब ये विदाई होता है, उसी दिन जो भक्त वो खुद मतलब पूरे विश्वास के साथ
2: बिल्कुल अनंत चतुर्दशी जो है, बिल्कुल श्रीपति जी, बहुत ज्यादा पावरफुल दिन इसे कहा जाता है, और आज के दिन जब विसर्जन किया जाता है इसीलिए उसमें दोगुना महत्व हो जाता है इसका। धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं, संपर्क साधने की यहाँ पर लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र पहले तो बताएं, आवाज आ रही है? क्योंकि हम सुन सकते हैं कि पीछे ढोल ताशों की आवाज आ रही है, और मुझे पता है कि आसान नहीं होगा हमारा सवाल आपके लिए सुनना। लेकिन धर्मेंद्र, ऐसा होता है कि जब हम घर पे गणपति को बिठाते हैं, 5 दिन कोई 3 दिन विसर्जन करते हैं, और जब विसर्जन करते हैं तो दिल बड़ा भारी हो जाता है। बात मुंबई की करें तो वहां पर तो गणपति को सिर्फ एक उत्सव की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि अभिन्न अंग है वहां की संस्कृति का। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं, भावुक लग रहा है आपको आज?
3: बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि गणेश उत्सव कहीं ना कहीं एक एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ आ जाते हैं और हर कोई एक दूसरे के साथ दर्द बांटता है। मैं इस समय मौजूद हूं गीरगांव चौपाटी के उस जगह जहां मीडिया के लिए एक बड़ा सा स्टैंड बनाया गया है, और यहां से लालबाग के साथ साथ तमाम बड़ी ऊंची प्रतिमाएं हैं विसर्जन के लिए जाएंगी। लेकिन इस समय विसर्जन के लिए जो गणपति बप्पा जा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं कि कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जब बप्पा की स्थापना नहीं हुई थी, 2-3 दिन पहले ही बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को पंडाल में लेके जाने का काम शुरू हो गया था, चूंकि उन्हें डेकोरेशन करना होता था। और एक बहुत बड़ी घटना मुंबई में हो गई थी, भुलेश्वर के राजा बैलेंस नहीं संभलने की वजह से नीचे की तरफ गिर गए थे और 2 लोगों की जान भी उसमें गई थी, जिसमें अध्यक्ष भी थे। अब फिर से वही भुलेश्वर के राजा का विसर्जन होने जा रहा है, और तस्वीरों में आप देखें कि भुलेश्वर राजा अपने तमाम श्रद्धालुओं के साथ इस समय लालबाग से गुजरते हुए अब सीधे गिरगांव चौपाटी की तरफ पहुंचे हुए हैं, जिन 2 महानुभाव का देहांत हो गया था, स्वर्गवासी हो गए थे, उन दोनों की तस्वीरें श्रद्धांजलि देते हुए आगे ले जाई जा रही हैं। यहां पर हर कोई मायूस

0: है, मीडिया ने भी अब यहाँ के पदाधिकारियों को रोक रखा है बातचीत करने के लिए। ये सिलसिला अब लगातार बढ़ते ही जाएगा। अभी तक मुंबई की तमाम जो बड़े पंडाल हैं निकल चुके हैं विसर्जन के लिए। 20 से ज्यादा बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो गिरगांव चौपाटी की तरफ निकल पड़ी है। अब ये काफिला लगातार जारी रहेगा। ये वही रास्ता है जहां से सारे ही बड़े बड़े पंडालों की ऊंची ऊंची जो प्रतिमाएं हैं वो आएंगी, रात भर आएंगी। सबसे आखिरी में लालबाग के राजा भी यहीं से आएंगे, विसर्जन के लिए जाएंगे और करीब कल सुबह 7 बजे के आसपास गिरगांव के चौपाटी पे वे पहुंच जाएंगे और सुबह 8 बजे उनका विसर्जन जो है हो जाएगा। उन्हीं के ठीक पीछे पीछे चिंतामणि के राजा, परेल के राजा, विघ्नहर्ता, वो तमाम बड़े पंडाल टॉप जो 10 में आते हैं और लगता है श्रद्धालुओं के कि इन पंडालों में पहुंचने के बाद गणपति बप्पा का दर्शन करने से उनकी मिन्नतें पूरी हो जाएंगी। वो सारे ही पंडाल अपने लाखों श्रद्धालुओं और गणेश भक्तों के साथ अपनी ऊंची ऊंची प्रतिमाओं की देखरेख करते हुए यहां पहुंचने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा तारीफ मूर्तिकार की भी करनी होगी क्योंकि एक से बढ़कर एक गढ़न, एक आकार गणपति बप्पा को वो दे गए हैं और कितना बढ़िया बैलेंस भी उन्होंने बनाए रखा है। 7-8 किलोमीटर लगातार लाखों की तादाद में साथ में चलना, उनका ख्याल रखना, कहीं न कहीं व्यवस्था का ख्याल रखना, सुरक्षा का ख्याल रखना, किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल ना हो जाए इस बात का ख्याल रखना। सुबह से ही अच्छी खासी गर्मी भी पड़ रही है और इतनी भीड़ में उमस भी होती है, ऐसे में थक जाते हैं लोग, फिर भी बप्पा को देखते ही अलग ही तरह की ऊर्जा शरीर में आ जाती है। और लालबाग का जो प्रथम दर्शन है आज का, आखिरी दर्शन करने के बाद लोग अब गिरगांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, एक कोने में खड़े होकर के बकायदा मुंबई के उन तमाम बड़ी प्रतिमाओं के दर्शन किए जा सकते हैं क्योंकि सारे ही जो गणपति बप्पा हैं वो विसर्जन के लिए इसी रास्ते से ले जाएंगे। देखिए, आपको बताया कि इस बार 12 दिन का उत्सव होता है, महापर्व है और जैसा कि मुंबई महाराष्ट्र के हर गली नुक्कड़ में बप्पा की स्थापना की जाती है, जाहिर है तमाम लोग आते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस निभाती है। वाकई में अच्छा खासा बंदोबस्त इस साल देखने को मिला है। 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे मुंबई में तैनात हैं और बप्पा के साथ चलने वाले जो लोग हैं किसी भी तरीके की उन्हें कोई परेशानी ना हो, व्यवस्था खराब ना हो, उनके सुरक्षा ठीक तरीके से हो और उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए, सही जगह पहुंचने के लिए उनकी मदद की जाए ताकि बड़े ही सरलता से लोग अपने मंजिलों पर पहुंचे, इस बात का पूरा व्यवस्था मुंबई पुलिस ने उठा रखा है। इतना आसान नहीं है विसर्जन का दिन, लगभग जे 6
1: बिल्कुल अद्भुत है ये तस्वीरें और जो आप बता रहे हैं धर्मेंद्र वो हम समझ पा रहे हैं। आप चूंकि वहां पर हैं आप इसे महसूस भी कर पाते होंगे लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो वाकई बता रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के लिए ये कितना बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ा अगर हम उत्सव कहें तो ये गलत नहीं होगा और इसलिए जन समुद्र, जन सैलाब श्रद्धालुओं का जो है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। हम आएंगे आपके पास और हम जानकारी लेंगे, आप तस्वीरें भी हमें दिखाते रहिएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए। तो चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के जिला मंडल से आई महाराजपुर के पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणेशोत्सव की अनूठी तस्वीर। यहाँ पर छात्राओं ने अपनी प्रतिमा से बप्पा की शानदार उन्होंने प्रतिमा बनाई और बुद्धि और वैभव का वरदान देने वाले भगवान गजानन को स्कूल की छात्राओं ने पढ़ाई में इस्तेमाल हो चुकी चीजों का उपयोग कर आकार दिया है। यूज्ड पेन और उनके कैप का इस्तेमाल कर बप्पा की ये खूबसूरत प्रतिमा को बनाया गया है जिसकी खूब चर्चा हुई। छात्राओं की मेहनत, उनके आइडिया और नवाचार की लोगों ने जमकर तारीफ की। तो हमारे तमाम मेहमान और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी ये विशेष कवरेज भी लगातार जारी है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराजा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा की विदाई के साथ इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का हुआ शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

अकोला में भक्त भारी मन से कर रहे बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों की धुन पर गजानन से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना, प्रशासन ने बनाए आर्टिफिशियल कुंड।

0: गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और ये जो जयघोष है श्वेता, मुझे लगता है सिर्फ हमारे स्टूडियो में ही नहीं बल्कि देश भर से भी सुनने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि आज जो है अनंत चतुर्दशी का महापर्व है। तस्वीरें हम आपको जयंती पर लगातार दिखा रहे हैं। देश भर में गणपति विसर्जन को लेकर उत्सव और उल्लास का माहौल है। ढोल ताशों और जयकारों के बीच आज बप्पा को भावभीनी विदाई दी जा रही है। 12 दिनों तक गणपति उत्सव के बाद आज दिन आ गया है उनको विदाई देने का। महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग शहरों से गणपति विदाई की शोभा यात्रा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लालबाग के राजा की शाही सवारी जो है वो निकल चुकी है और हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। और साथ ही में पूरे देश से जिस तरीके से गणेश उत्सव की, गणेश विसर्जन की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको लगातार जीएनटी पर दिखा रहे हैं।
1: इस मंत्र में बहुत पावरफुल एनर्जी।
2: तो मुंबई के गणेश गली के राजा, जिन्हें मुंबई का राजा भी कहते हैं, विसर्जन की यात्रा शुरू हो चुकी है। परेल के राजा की भी विसर्जन यात्रा शुरू हो चुकी है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई नहीं बल्कि पुणे में भी गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा गाजे बाजे, ढोल ताशों और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ धूमधाम और श्रद्धा से निकाली जा रही है। जहां जहां से ये शोभा यात्रा निकल रही है, बप्पा को विदाई देने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो अगले बरस जल्दी आने का वादा किया जा रहा है बप्पा से। और आपको बता दें, अब देखते हैं पुणे की तस्वीर, आइए आपको हम दिखाते हैं। पुणे में भी गणपति को धूमधाम से विदा किया जा रहा है। सड़क श्रद्धालुओं से पटा हुआ है, हर कोई बप्पा के दर्शन करना चाहता है। हर ओर उत्सव का माहौल है, ढोल ताशे बजाकर बप्पा को विदाई दी जा रही। बप्पा के जयकारे लगाने के साथ भक्त गुलाल उड़ा रहे।
3: पुणे में गणपति विसर्जन रेणु की अभी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग पंडाल निकल चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जो पुणे के पांच, मराठी में कहते हैं माला से गणपति, यानी कि सबसे पांच पहले गणपतियों का विसर्जन होता है, उसके बाद ही शहर के बाकी के गणपति बापा जो है वो विसर्जन के लिए जाते हैं। अब माला से जो पहले पांच गणपति थे, उनमें से तीसरा गणपति यानी कि पुण्याचा राजा, यानी कि पुणे का राजा गुरुजी तालीम अब बेलबाग चौक में आ चुका है और इसे गणपति को एक बार आखिरी बार देखने के लिए सभी लोग विसर्जन से पहले सब पुणे कर और महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ जुट चुके हैं। गुलाल यहाँ उधर जा रहा है, पूरा चौक यहाँ रेड हो चुका है और अभी सभी लोग आगे आगे बढ़ते हुए यहाँ से लक्ष्मी रोड की ओर चलेंगे। पुणे के विसर्जन अब शुरू हो चुका है। ये माहौल और नजारा देखिए पूरे शहर में, जहाँ अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, ढोल और ताशा बजाते हैं और फिर इस बेलबाग चौक से सब आगे बढ़ते हुए, सभी आगे बढ़ते हुए यहाँ यहीं से निकलेंगे। अब ये वादन शुरू हो चुका है, ढोल लेके लोग यहाँ खड़े हैं, गुलाल आप देख सकते हो और पुणे का राजा इस तरफ लक्ष्मी रोड की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा।

0: से लोग यहाँ जुटे हैं ताकि वो अपने बापा को एक बार आखिरी बार उसकी विदाई के लिए उसके साथ आए और उसे हाथ जोड़कर जो विघ्नहर्ता है उसे प्रार्थना करें कि जिंदगी के सभी दुख है वो खत्म हो जाए।
1: तो देखिए पूरे महाराष्ट्र में ही जो गणपति विसर्जन की रौनक है वो देखते ही बन रही है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें लाल बाग चौराहा की, एरियल शॉट है श्वेता। और देखिए लाखों की तादाद में मैं कहूँ यहाँ पर श्रद्धालु हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी जो है वो बता रहे थे कि उमस है, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुंबई के लिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, धार्मिक उत्सव के दृष्टिकोण से इसे मत देखिए, उनके लिए ये उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है, बहुत जरूरी उनके लिए आज का दिन है। और ये जो तस्वीरें हैं उसे बखूबी बयां कर रही हैं, लोगों में उल्लास है, उनकी भक्ति का एक नजारा है। ये देखिए एरियल शॉट, ड्रोन शॉट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लाखों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं और मुंबई की गलियों में यहाँ पर सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं।
2: सरगम आप तो वहाँ रहे भी हैं मुंबई?
1: बिल्कुल, एक्चुअली
2: मेरे भाई रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि यहाँ आज के दिन क्या छुट्टी घोषित कर दी जाती है?
1: नहीं, मैं रही नहीं हूँ, मेरे भाई रहते हैं तो रक्षाबंधन के दिन ही अमूमन मेरा वहाँ जाना होता है।
2: लेकिन जानकारी ये है कि आज के दिन छुट्टी मिलती है?
1: मुझे ऐसा लगता है छुट्टी तो होनी चाहिए क्योंकि जितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सड़कों पर नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि, अच्छा मुझे ये लगता है अगर ऑफिस भी होता ना लोग उसे भी छोड़कर आ गए होते। exactly. मुंबई के लिए इतना खास दिन है,
2: इसीलिए मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो देखते हुए। हमारे साथ संजय शर्मा जी, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विद्वान संजय जी। संजय जी आपसे चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने ज्ञान के सागर से यहाँ पर थोड़ी गंगा बहाइए। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वाकई हर बार गुड न्यूज टुडे, एक तो ये बात है कि गुड न्यूज टुडे जिस तरह से कवरेज करता है और ये दिखाता है और सनातन और उससे जुड़ी जितनी भी परंपराएं रही हैं, उत्सव रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं वाकई तमाम जितने भी लोग आते हैं वो इस बात की तारीफ भी करते हैं। संजय जी जरा ये बताइए जो तस्वीरें हैं वाकई हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये एक उत्सव था, एक फेस्टिवल था, गणेशोत्सव मनाया गया, खत्म। ये जो जन सैलाब आप ये जो समुद्र देख रहे हैं, जन समुद्र देख रहे हैं, इसे देखकर आपके मन में किस तरह की भावनाएं आती हैं?
3: मैं तो ये मानता हूं कि ये गण और गुण के देवता हैं गणेश जी, जिनका जिनकी जो स्तुति है बहुत लोकप्रिय स्तुति है जिसमें कहते हैं कि गण नायकाय गण दैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीरा।

0: गणादेशाय धीमहि, यानी गुण कई तरह के गुणाधीश हैं, गुणाध्यक्ष हैं, गणाध्यक्ष हैं। तो ऐसे में चूंकि भारत उत्सव प्रधान देश है, कहीं पर गणपति का उत्सव है, अब कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल उड़ीसा बिहार में दुर्गा पूजा का यानी शक्ति का उत्सव शुरू हो जाएगा, तो ये और इस तरह के सार्वजनिक गणेश उत्सव नहीं थे, घर घर में गणेश स्थापित करने की परंपरा थी दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में तो ये परंपरा नहीं, क्योंकि उत्तर भारत में मानते हैं कि गणेश जी इधर ही रहते हैं और वो कार्तिकेय के देश में, दक्षिण भारत में वो 10 दिनों के लिए जाते हैं अपने भाई के यहाँ, इसलिए वहां विसर्जन की परंपरा है। तो इसको लेकर बहुत सारे, और उत्तर भारत में लोग कहते हैं गणेश जी का विसर्जन नहीं होता, जब बाकी देवताओं का विसर्जन करते हैं तो महालक्ष्मी महागणपति रमस्व में, महागणपति और महालक्ष्मी हमारे अंदर रम जाएं, क्योंकि लक्ष्मी बुद्धि की, ज्ञान की, लक्ष्मी सरस्वती वो शक्ति बुद्धि और ज्ञान और धन ऐश्वर्य की देवी है, गणेश जी विवेक के देवता हैं, तो और हर तरह के जो विघ्न हैं उनको नाश करने के देवता हैं। तो अलग अलग परंपराएं, लेकिन उत्सव तो किसी भी तरह से अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, दिमाग में होना चाहिए। ये उत्सव ही है जो गणपति को, जब अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 4 या 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी, तब गणपति उत्सव का सहारा लेकर बाल गंगाधर तिलक जी ने ये समारोह शुरू किया, ताकि इसी बहाने सब लोग इकट्ठा हों और हम गणपति के बहाने, चूंकि सरकार उस पर रोक लगा नहीं सकती थी अंग्रेजी सरकार, इसलिए वहां से उत्सव शुरू हुआ। और आज हम देखें तो उत्तर भारत में भी
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उत्सव कहीं से भी हो उसको ले लेना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उसको तुरंत ले लेना, जैसे ये समोसे मिठाइयां ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा होता है बस इसको ले लो,
2: मतलब जिस किसी भी चीज से आपको आनंद की प्राप्ति हो वो आपको ले लेना चाहिए।
3: मैं एक और चीज सोच रही हूँ कि यहाँ पर ज्ञान की गंगा जो है बह रही है, तो एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ संजय जी से। संजय जी, मैंने ना ये खुद अनुभव किया है और जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे लिंक करते हुए मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि इंसान के पास पैसा है, रुपया है, प्रेस्टीज है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सी बार एक मुकाम आता है हमारी जिंदगी में, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें ये समझ आता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वहीं से विघ्नहर्ता के शरण में लोग आना शुरू करते हैं। और ये जो आस्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात को बयां करती हैं कि सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय, ऐसा नहीं सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं, बहुत कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसी समय बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है। अगर हम तंबाकू गुटखा ना खाएं, सिगरेट ना पिएं, तो कैंसर से दूर रह सकते हैं, ऐसा बताते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी तंबाकू गुटखा नहीं खाया उनको भी कैंसर हो जाता है। लेकिन दूसरी चीज, जब आपको लगता है कि अब अपना जोर नहीं चल रहा है, तो अपनी नाव भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तेरे ही भरोसे श्री गणनाथ सागर में नैया डार,
1: क्या बात,
3: बहुत क्या।
0: जब आप सागर में नैया डार देंगे तो फिर
1: तो ये उपासना, ये जो उपासना होती है, या फिर हम जो हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि पूजा करने वाली बात, तो वो उसका मतलब ही होता है कि कंप्लीट सरेंडर। जब तक आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं हो जाएंगे ईश्वर के सामने, तब तक आप वो चमत्कार कैसे देखेंगे जो हम देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप रहे क्योंकि गुड न्यूज़ टुडे पर लगातार ये महाकवरेज जारी है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

पितृपक्ष की महिमा, क्या है पितृपक्ष के पूजा के नियम और क्या है पितृपक्ष की सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत इसी से करनी चाहिए कि गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, क्योंकि हर जगह बस यही जय घोष सुनाई दे रहा है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो सीधा यहाँ पर धनंजय के पास चलते हैं, अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, पानी की कमी के कारण इस बार जो बड़ी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन नहीं होना है, इसको लेकर के खबर सामने आई थी। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या शोभा यात्रा निकाली जा रही है वहां पर गणपति बप्पा के?
1: बैलेंस चेक करने का टाइम आ गया है ना, बैलेंस बोले तो अकाउंट का।
2: हाँ हाँ,
1: सैलरी अब 3-4 दिन ही बचे ना, बार बार आके बैलेंस पे जाती है।
0: जी धनंजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
3: धनंजय को आवाज नहीं आ रही है हमारी, एक बार फिर से हम धर्मेंद्र के पास जाना चाहेंगे। धर्मेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे, आप गिरगांव चौपाटी पर हैं और बीएमसी ने पूरा इस बार इंतजाम किया है, वहीं पर तमाम विसर्जन होने हैं, तो जरा ये बताइए, मुख्य रूप से हर कोई लालबाग या राजा के बारे में जानना चाहता है, उनका रूट किस तरह का है और कब तक पहुंच पाएंगे वो वहां पर गिरगांव चौपाटी तक? धर्मेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: और जैसे छुट्टी आपने बताई ना,
3: चलिए उनके पास भी हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजय जी, यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी मैं, ये बड़ा अच्छा समय के साथ मुझे लगता है कि जो बदलाव होने चाहिए वो हो भी रहे हैं, जैसे कई जगह पानी की कमी और तमाम तरह की चीजों को लेकर भी ये हुआ है। छोटे छोटे कुंड बनाए गए हैं और बड़ी मूर्तियों के लिए वैसा बड़ा कुंड भी बनाया गया है, वहां पर विसर्जित किया जा रहा है, तो मुझे लगता है प्रतीकात्मक भी जो चीज, अगर हमारी पृथ्वी के लिए इको फ्रेंडली अगर कुछ चीज हो रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए।
4: जल की कमी भी हो, जल प्रचुर हो, तब भी पर्यावरण की मांग ये कहती है कि हमें गणपति, कोई भी देवता की मूर्तियों का विसर्जन छोटी जगह ही करना चाहिए। बड़ी जगह नदियों को, क्योंकि शुद्धता की गारंटी नहीं है, अगर सिर्फ कच्ची मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं तो उनको तो हम नदियों में विसर्जित प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस है या बाकी कहीं के भी मिट्टी लें तो उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण रहता है, तो आप उसको और ज्यादा प्रदूषित करने के बजाय आप उसको एक छोटी जगह, छोटे सरोवर में या कृत्रिम तालाबों में उसका विसर्जन करें। जैसे मयूर विहार में इधर हमारे इलाके में गणपति विराजित हैं, तो उन्होंने बताया, कान में बताया मुझे, बड़े गणकल यहीं पर विसर्जन है, आप आ जाना।
3: अच्छा।
4: मैंने कहा यहाँ विसर्जन है? बोले हाँ यहीं चौक पे ही करेंगे।
3: अच्छा।
4: तो मैंने कहा रे इतने बड़े गण, बोले वो तो फाइबर के बने हुए हैं, जो सामने गणपति हैं वो कच्ची मिट्टी के हैं, उसको हम यहीं करेंगे,
3: यहीं विसर्जन कर।
4: फाइबर के गणपति तो सिर्फ
0: इस बार बहुत अच्छी चीज हुई है, वाकई पता सराहनीय चीज है, शाडू की मिट्टी से पर्यावरण संरक्षण का जो लगातार संदेश दिया जा रहा है वाकई सराहनीय है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से, धनंजय अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए, धनंजय से एक बार फिर संपर्क साधने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। धनंजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है क्या? इस बार पानी की कमी के चलते बताया जा रहा था बड़ी मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा, तो ऐसे में वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या शोभा यात्रा वहां पर निकाली जा रही है गणपति की?
5: यहां पर जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आप देख सकते हो कि भव्य जो प्रतिमाएं हैं भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन शोभा यात्रा के चलते जो है गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं होगा, ऐसा अधिकतर पंडालों ने कहा है। शोभा यात्रा पे जिस तरीके से गणपति बप्पा को जो है शोभा निकालकर गणपति बप्पा है ढोल मारते नगाड़े पर जो है गणपति बप्पा जो है बड़ी नकार में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन इस वक्त जो है पर्दे से कम हुआ है, बारिश कम हुई है, इसके चलते जो है यहाँ पर।
3: तो हमारे तमाम संवाददाता हमें जानकारी भी दे रहे थे और तस्वीरें भी लगातार हमें दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए कितने बड़े पैमाने पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित होता है, पहले तो 12 दिन की पूजा और उसके बाद आज विसर्जन। तो अनंत चतुर्दशी पर आज गणपति विसर्जन की तमाम तस्वीरें और गुड न्यूज टुडे पर ये महा कवरेज आप इसी तरह से देखते रहेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जितने भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जैसा कि हमने आपको कहा कि गुड न्यूज टुडे पर ये मेगा कवरेज लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: तो इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो शेयर किए हैं, और इसी कड़ी में अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो हमारे दर्शकों द्वारा ही हमें भेजी गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सुरेश चौधरी ने गणेश उत्सव की तस्वीरें हमारे साथ शेयर की है। सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए भगवान गजानन को श्वेत वस्त्र और पगड़ी से विशेष तौर पर यहाँ पे सजाया गया है। परिवार ने शानदार लाइटिंग से पंडाल को सजाया है। वही दूसरी तस्वीर अगर हम बात करें जो हमारे दर्शकों द्वारा ही हमें भेजी गई है, तो वो नर्मदापुरम से शेर सिंह पठानिया ने हमें भेजी है। यहाँ घर में विधि विधान से भगवान गजानन की पूजा अर्चना हो रही है, साथ ही मिष्ठान से बप्पा को भोग भी लगाया गया है।
7: क्या है पितृपक्ष की महिमा, क्या है पितृपक्ष के पूजा के नियम, और क्या है पितृपक्ष की सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मौर्य की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा की विदाई के साथ ही इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में 5 मना से गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन, शोभा यात्रा का शुभारंभ ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरक रहे श्रद्धालु। अकोला में भक्त भारी मन के साथ कर रहे हैं बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों की धुन पर गजानन से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना। प्रशासन ने बनाए आर्टिफिशियल कुंड। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट। 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। बेल्जियम की तर्ज पर ब्रिटेन के ब्रेंटफोर्ड में फूलों से बनाया गया विशाल फ्लावर कार्पेट, 3 लाख से ज्यादा फूलों का हुआ इस्तेमाल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: उड़िया
1: उड़िया
0: वर्षी
1: वर्षी
0: लव
1: लव
0: करिया,
1: करिया।
0: मतलब अगले बरस तू
1: जल्दिया। और देखिए ये बड़ी और महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। हम बार बार ये बात कहते हैं कि शगुफ्ता उत्सव मतलब
0: गुड न्यूज टुडे।
1: आप लोग एक दिन का फेस्टिवल मनाते होंगे लेकिन गुड न्यूज टुडे 365 दिन उत्सव के रंग आपको दिखाता भी है और हम हर फेस्टिवल को जीते भी हैं।
0: बिल्कुल, चलिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। विसर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरम में पहुंच चुकी है। मुंबई की तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से ही जीएनटी पर आपके सामने हैं। तो गणपति विसर्जन पर आप देख रहे हैं जीएनटी की नॉन स्टॉप कवरेज। देश भर में गणेश उत्सव के रंग बिखरे हैं, क्या आम क्या खास, हर घर हर दर पर आज गणपति गूंज आपको सुनाई देगी। ठीक 10 दिन पहले सब धूमधाम से खुशियां मनाते हुए गजानन को घर लाए थे। आज जब बप्पा विदा हो रहे हैं तो वो भी भक्तों में वैसा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से सबके चेहरों पर त्योहार वाली स्माइल देखी जा सकती है।
1: बिल्कुल, ये एक ऐसी परंपरा है जो बेहद प्यार और श्रद्धा के साथ हमारे देश में सदियों से निभाई जा रही है। जिस तरह गणपति की स्थापना के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ठीक वैसे ही विसर्जन के लिए व्यापक तैयारियां की जाती हैं, व्यापक इंतजाम किए जाते हैं ताकि विघ्नहर्ता के विसर्जन में कोई विघ्न ना आए। और इसीलिए ऐसी ही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, नजर भी आ रही हैं आपको। हम सबसे पहले मुंबई ही लिए चलेंगे जहां हर तरफ आपको गणपति उत्सव की रौनक बिखरी हुई नजर आ रही है। चलिए सीधा एक बार रुख करेंगे क्योंकि मुंबई के कोने कोने से हर तस्वीर, हर कैमरे से तस्वीर ली जा रही है और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर आप ये तस्वीरें लाइव देख रहे हैं और लाइव जुड़ भी रहे हैं मेरे सहयोगी धर्मेंद्र वहां से हमारे साथ। धर्मेंद्र, इस वक्त मुंबई कैसी लग रही है वहां पर बताइए जरा। हम तो तस्वीरों में ही देख के उत्सव में शामिल हो रहे हैं लेकिन आप क्योंकि वहां पर मौजूद है, कैसे मन के भाव है बताइए।
2: बिल्कुल, इस समय मुंबई वैसी ही खूबसूरत नजर आ रही है जैसा कि आज के दिन गणपति बप्पा नजर आ रहे हैं और उनको देखने वाली जो आंखें हैं, जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी उतने ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं गिरगांव चौपाटी पर जहां तमाम वो ऊंची ऊंची प्रतिमाएं ला करके विसर्जित की जाती है जिन्हें कहीं ना कहीं मुंबई महाराज देश बहुत ज्यादा मानता है और टॉप 10 गणपति में लिस्ट में आती है। थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से देखें, वीडियो जल्द स्वागत कहां से मैं कहना चाहूंगा उस तरफ घुमाएं कैमरा और दिखाएं किस तरीके से लाखों की तादाद में इस समय श्रद्धालु जो हैं वो सड़कों पर उतर आ रहे हैं। और अब देखिए जिन बप्पा का इस समय यहां पर विसर्जन करने का समय आ रहा है, ये खेतवाड़ी के राजा, और इनका विशाल रूप देखने के बाद ही पता चलता है कि मूर्तिकार ने कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी। आप देखें लाखों की तादाद में बप्पा के साथ साथ श्रद्धालु चल रहे हैं। मुझे लगता है करीब 11 बजे के आसपास खेतवाड़ी के राजा अपने दरबार को छोड़कर विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी की तरफ निकल आए थे और अब गिरगांव चौपाटी से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बप्पा के साथ साथ इनके श्रद्धालु, इनके सेवाकार भी आप देखें और कितने बढ़िया तरीके से बैलेंस संभाला जा रहा है। बप्पा जो है संगीत को लेकर के बप्पा का अवतार यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट इस समय वो लेकर चल रहे हैं वो सभी संगीत से जुड़े हुए होते हैं। बप्पा का आकार, बप्पा की जो हाइट है वो देखकर मालूम पड़ती है तकरीबन कम से कम 40 फीट तो होगी ही। इसी तरीके से खेतवाड़ी के राजा का भी अब समय मिल गया है और विसर्जन की तरफ धीरे धीरे निकले हुए हैं। कुछ देर पहले ही तेजुका राग गणपति, इसके अलावा उपनगर, उसके अलावा मुंबई के जो सबसे बड़े बप्पा होते हैं 43 फीट उनकी ऊंचाई होती है, 12वीं गली के राजा, वो भी अभी जा चुके हैं। और मीडिया के कैमरा के सामने देखिए किस तरीके से इन ऊंची ऊंची प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। आपको बताएं कि परेल इलाके से लेकर के खेतवाड़ी तक, बीच में लालबाग और इसके अलावा करी रोड, चिंसपोकली, ये वो लोकल रेलवे स्टेशन हैं जहां से सेंट्रल रेलवे में रहने वाले जो श्रद्धालु हैं वो बप्पा के विसर्जन में उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। आप देखें किस तरीके से एक दूसरे का साथ देते हुए मंजिल की तरफ लोग बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा योगदान इस समय इसमें मुंबई पुलिस का भी है।
1: खूबसूरत तस्वीरें,
2: व्यवस्था सुरक्षा के साथ
1: लगातार बने रही है हमारे साथ। बहुत ही खूबसूरत भव्य दिव्य तस्वीरें। आस्था का सैलाब किसे कहा जाता है वो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई महाराष्ट्र की, मराठी लोगों की, या फिर उन लोगों के दक्षिण में बहुत धूमधाम के साथ बप्पा का उत्सव मनाया जाता है, पर जब एक पंजाबी बप्पा का उत्सव मनाता है तो उस पंजाबी के भाव कैसे होते हैं, मेरे साथ शगुफ्ता है। ये मुंबई में रही है बहुत सालों तक और यकीन मानिए कि इनकी भी आस्था बप्पा के साथ बहुत ज्यादा है, बहुत भावुक हो जाती है। तो शगुफ्ता, पंजाबियों के लिए ये त्योहार क्या मायने रखता है?
0: देखो, मैं ये कहूंगी पंजाबियों के लिए दिवाली की तरह आप मान लीजिए, मुंबई वासियों के लिए दिवाली जैसे हम इधर मनाते हैं ना दिवाली, ठीक वैसा ही त्योहार ये मुंबई वासी मनाते हैं पूरे धूमधाम के साथ। लेकिन जो जयकारा मैंने आपसे लगवाया ना, वो शुरुआत में यही था कि वो लय में लाकर हम साथ में मराठी आज और वैसे ही लय मिलाकर हम यहाँ पर भी इस जयकारे को लगाएंगे, क्योंकि भाव देखिए आज के दिन नवजोत हर किसी का यही होता है कि आपकी आंखें नम होती हैं क्योंकि बप्पा जा रहे हैं, लेकिन मन में आपका यही भाव है कि बप्पा अगले बरस फिर से आएंगे, विघ्नों का नाश करेंगे। तो चलिए खास मेहमानों के पास हम चलते हैं। संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संजय जी के पास आएंगे। संजीव अग्निहोत्री जी स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रुति जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी जयकारा ठीक था?
3: एकदम बढ़िया,
0: बढ़िया लगा।
3: पुड़िया वर्षी लव करिया,
0: पुड़िया वर्षी लव करिया। और पंजाबी जब बोलते हैं तो फिर कैसे लगते हैं
3: वो, क्या कहते हैं?
0: सिखाते
3: फेर आई काके।
0: लेकिन ये हम बप्पा को तो नहीं बोल सकते ना?
3: नहीं, बप्पा को तो लोग बाल रूप में भी उनको आराधना करते हैं,
0: फिर बोल सकते हैं काके। तो अगली बारी फेर आज
3: कई मैंने कई ऐसे बहुत भावनात्मक वीडियो देखे हैं जिसमें छोटे बच्चे जब गणपति की विदाई हो रही है वो जार जार रोते हैं कि क्यों लेके जा रहे हो। ओ माय फ्रेंड गणेशा टाइप लगता हूँ,
0: तो
3: ओ माय फ्रेंड गणेशा टाइप नहीं, बहुत सारे अभी आएंगे वीडियो जब बच्चे ऐसे फूट फूट के रोते हैं कि इनको मत लेके जाओ, इनको क्यों लेके जा रहे हो।
0: लेकिन सवाल
3: तो लोगों के दिल भर जाते हैं, गला भर जाता है, आंखें भर जाती हैं देख के।
0: विसर्जन मुझे बताइए कि क्यों किया जाता है विसर्जन गणपति बप्पा का, आज के ही दिन हम विसर्जन क्यों करते हैं, आज के दिन का चुनाव क्यों करते हैं?
3: एक तो अनंत चतुर्दशी है, जिस दिन भगवान विष्णु का अनंत शेषावतार अवतार हुआ था, जब भगवान विष्णु अपने चार जब चार महीने का चतुर्मास होता है, जब भगवान आषाढ़ की एकादशी से लेकर और कार्तिक की एकादशी तक जब वो शयन करते हैं, तो जैसे देव शयन एकादशी से लेकर देवोत्थान, तो ये दो महीने बाद भगवान अपना पहलू बदलते हैं, करवट लेते हैं, तो इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी बोलते हैं, अभी जो दो दिन पहले गई है। तो भगवान का जो गणपति का विसर्जन है ये दक्षिण भारत में तो परंपरा है, क्योंकि ये मानते हैं कि भगवान शिव ने दक्षिण का राज है, भारत के दक्षिण का राज्य है, वहां पर भगवान कार्तिकेय को दिया था, इसलिए दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय स्वामी के अनंत नाम भी हैं, अनंत मंदिर भी हैं और उनके मन में अनंत भक्ति भी है। और उत्तर भारत में चूंकि गणेश जी अपने माता पिता के प्रिय होने के कारण और छोटे बेटे होने के कारण वो यहाँ पर हैं, तो इसलिए उत्तर भारत में ऐसी मान्यता है कि गणपति हमेशा रहते हैं, लेकिन वो अपने भाई से मिलने, कार्तिकेय से मिलने 10 दिन के लिए वो दक्षिण भारत जाते हैं, इसलिए दक्षिण भारत के लोग उनको विदा करते हैं। और ये भी कहते हैं कि गणपति का विसर्जन करने के बजाय उनको लोग उनका जल से अभिषेक करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि महाभारत और पुराण लिखने के बाद वो इसी शर्त पर लिखने को तैयार हुए कि वेदव्यास अविरल लगातार बोलते रहेंगे और वो लिखते रहेंगे। जब सारे पुराण और ये सारा लिख चुके वो महाभारत और सब कुछ, तो उसके बाद फिर गणपति जी का थोड़ा सा कहते हैं कि सिर गर्म हो गया था लगातार लिखते रहने की वजह से, तो उनका जल से अभिषेक करते हैं शीतल जल से और उनका फिर से पुनः पुनः पूजा करते हैं।
1: बिल्कुल, चले संजीव अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल आज सुबह से ही गुड न्यूज टुडे लगातार देश भर की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है, किस तरीके से बप्पा के विसर्जन की तस्वीरें लगातार पूरे देश से आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति विसर्जन की परंपरा का धार्मिक महत्व और इसके पीछे की कहानी क्या है और आखिर कैसे शुरू हुई इसकी शुरुआत? दरअसल गणपति विसर्जन की परंपरा के पीछे युगों पुरानी पौराणिक मान्यता है और इस परंपरा के पीछे एक ऐसी कहानी है जो इसे महाभारत काल से जोड़ती है, जिसका जिक्र अभी संजय जी भी कर रहे थे। तो आपको हम दिखाते हैं आखिर क्या है विसर्जन से जुड़ी मान्यता।

0: सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो, लेकिन भादो के महीने में विघ्नहर्ता गजानन संसार में शुभता की बौछार करने स्वयं अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। पूरे 10 दिनों तक बेहद श्रद्धा के साथ भक्त गणपति की सेवा पूजा करते हैं और 10 दिनों के बाद उतनी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ गणपति को धूमधाम से विदा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गौरी नंदन की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है।
1: 14 भुवन एक पति हुई, चतुर्दश भुवनानि विश्वा, ऐसा वेदों में उल्लेख आता है। तो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के 10 स्वामी होते हैं और गणपति को हमारे यहाँ गणाध्यक्ष माना गया। तो 10 दिशाओं से हम मंगल की कामना करें, 10 दिशाओं से समाज के लिए, परिवार के लिए उत्तम अवस्थाएं आए, इसलिए भगवान गणपति का 10 दिन का महोत्सव होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को प्रणाम करके उनको हम विश्राम देते हैं, विसर्जन करते हैं, इसलिए इस तिथि का बहुत ही महत्व है।
0: भाद्रपद के इन 10 दिनों में गणपति के पूजन और आखिरी दिन उनके विसर्जन से जुड़ी एक युगों पुरानी पौराणिक मान्यता भी है। ये पौराणिक कथा गणपति विसर्जन की परंपरा को महाभारत से जोड़ती है। माना जाता है कि भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ अपने हाथों से लिखा था। दरअसल भगवान गणेश को विद्या के साथ साथ लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। इसी के चलते महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के महाग्रंथ को लिखने का दायित्व स्वयं गजानन को सौंपा था। कथा के मुताबिक महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का वाचन शुरू किया, जिसे सुनकर गजानन ने लिखने की शुरुआत। पौराणिक संदर्भों में गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और शांत बताया गया है, यानी कैसी भी परिस्थिति हो वो बिना धैर्य खोए शांत भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं। तभी तो महर्षि वेद व्यास आँख बंद करके महाभारत की कथा सुनाते रहे और गजानन बिना विचलित हुए एकाग्रचित होकर उसे अपनी लेखनी से उतारते रहे। वेद व्यास महाकाव्य समाप्त कर चुप हुए और आंखें खोली तो देखा गणपति के शरीर पर गर्द जम गया था। लगातार लेखन और श्रम से उन्हें गर्मी लग रही थी। तब महर्षि व्यास गजानन को सरस्वती नदी के तट पर ले गए। शरीर की गर्मी दूर करने के लिए उन्होंने गणपति को सरस्वती के जल में डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। माना जाता है कि इसी के साथ पवित्र नदियों में भगवान गणेश के विसर्जन की परंपरा का श्री गणेश हुआ। सारे भारत में आज तक अलग अलग रूपों और रिवाजों के साथ ये परंपरा अनंत श्रद्धा से निभाई जाती है।
1: हमारे यहाँ क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, मृतिका की जो मूर्ति होती है उसको एक संवत्सर से दूसरे संवत्सर तक रखने का पूजा का प्रमाण है, क्योंकि मिट्टी के मूर्ति पर जब हम जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अर्चना करेंगे तो मूर्ति खंडित होने की संभावना होती है। खंडित मूर्ति की पूजा हमारे धर्म शास्त्र में नहीं बताई गई, इसीलिए इन मृतिका की मूर्तियों को जिस स्थान से जल में जल मिल गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, सब इसीलिए विसर्जन करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी पूजा लगातार हम नहीं कर सकते, इसलिए उस दिन हम उनको भगवान गणपति को विसर्जित कर देते हैं।
0: पौराणिक मान्यताओं से इतर गणपति विसर्जन किस परंपरा के पीछे लोक कल्याण की भावना भी छिपे है। वास्तव में सनातन धर्म में शरीर को विनाशी और आत्म चेतना को अविनाशी यानी अक्षय माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि शरीर या पिंड विनाशी है जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः। इसी तरह 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc² फॉर्मूला भी सनातन धर्म के इसी सत्य को बल देता है। आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के मुताबिक एनर्जी यानी ऊर्जा अविनाशी है, यानी उसका क्षय नहीं हो सकता बल्कि वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। इसी तरह अगर गणपति के जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है उस प्राण स्वरूप ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता। इसलिए जब हम गणपति बाप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो जिस मिट्टी से वो प्रतिमा बनी है वो तो जल के तल में जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसमें प्राण तत्व की जो सनातन चेतना है वो जल के साथ एकाकार होकर प्रवाहमान हो जाती है। फिर कुछ समय बाद यही बहता पानी जब इवेपोरेट होकर बादल बनता है और बादल जब बारिश के रूप में नीचे आता है तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। इस तरह गणपति की तात्विक चेतना बारिश के रूप में जन जन तक पहुंच जाती है। साफ है कि बापा के विसर्जन की परंपरा में जन कल्याण की भावना भी समाहित है। तभी तो जितने उल्लास के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत होती है, घरों में पूजा पंडालों में बापा को गाजे बाजे के साथ लाया जाता है, उतनी ही उमंग बापा की विदाई के दिन भी दिखती है। जिस तरह गणपति की स्थापना के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही विसर्जन के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जाते हैं ताकि विघ्नहर्ता के विसर्जन में कोई विघ्न न आए। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था और अगले बरस तू जल्दी आ की मीठी मनुहार के बीच गणपति को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ नदियों, तालाबों और सागर के अंतस में विसर्जित कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि बाप्पा विघ्नों को साथ ले जाएंगे और अगले बरस तक के लिए जगत को शुभता और सर्वमंगल का आशीर्वाद दे जाएंगे। मूर्ति जल में लौट जाती है पर बाप्पा हर दिल में ठहर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, धनंजय साबले हैं अकोला से और नागपुर से हमारे साथ योगेश हैं। लेकिन सबसे पहले अकोला का रुख करेंगे और धनंजय के पास चलते हैं। धनंजय, 12 बजे से लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी इस वक्त कैसी रौनक है वो दिखाइए।
3: बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी ये लालबाग का जो राजा है ये अब जो है हल्का बैटरी के पास पहुंचा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए और ये भव्य प्रतिमा देखने के लिए जो है। आज बात यह है कि लालबाग का राजा जो है वो अपने आप में अकोला के लिए जो है हर दुख दुख में सभी के जो है वो आने वाला है। और बाप्पा के पास जो है, देखिए अब जो थोड़ी हवा भी शुरू हुई, अरे बाप्पा को विघ्नहर्ता कहते हैं, कल भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है और आज भी जो है अभी बारिश का पूरी तरीके से मूड बन गया है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा थोड़ा बादलों की ओर जरा घुमाए की देखिए, अभी थोड़े बादल भरकर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है बाप्पा जो है उसके लिए पानी का बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि नदी और तालाब में जो है अधिकतर पानी नहीं है। गणपति की जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है वो विसर्जित नहीं करने की बात इन्होंने कही थी सभी पंडाल ने, लेकिन अब देखिए थोड़ी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो दो दिन से जो उमस से सभी लोग परेशान थे, अब वो जो है वो पापा के भक्त जो है वो आप थोड़े बहुत यहाँ पर राहत जरूर महसूस जा रहे हैं, क्योंकि आस पास में जो है तो बारिश होने की यहाँ पर बात कही जा रही है।
2: जी, लौटती हूँ आपके पास। नागपुर से योगेश भी हमारे साथ हैं और शगुफ्ता, यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि दो दिन पहले खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक भी की थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस बार अलनियू की वजह से बारिश नहीं हुई है और बहुत सारे पंडालों को ये भी कहा गया कि आप सांकेतिक तौर पर कुछ विसर्जन कर दीजिए लेकिन इन मूर्तियों को आप अगले साल के लिए रखें। और बहुत सारे ऐसे पंडाल हैं जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम मूर्तियां अगले साल विसर्जित करेंगे क्योंकि पानी की कमी, जैसा कि अकोला से ये बता ही रहे थे। हम सीधा नागपुर चलते हैं, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां से, कैसी रौनक वहां पर नजर आ रही है।
4: बिल्कुल, नागपुर में भी तालाबों का पानी और पर्यावरण को ध्यान रखते हुए आर्टिफिशियल ट्रीज बनाए गए, हम देख सकते हैं तस्वीरों में आर्टिफिशियल टैंक
5: जरिए गणपति बाप्पा का जो विसर्जन है वो किया जा रहा है। दरअसल नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में 447 ऐसे टैंक्स बनाए हैं जिसमें लोगों को अपने घर के गणपति बाप्पा का विसर्जन जो है वो करना है। अलग अलग जोन में ये विसर्जन होने वाला है। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि नागपुर में भी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश आज शाम 4 बजे से जारी है, इसके बावजूद भी लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। सार्वजनिक गणपति जो है वो कल विसर्जन उनका होना है, जो घर में बैठने वाले गणपति बाप्पा है उनका विसर्जन आज हो रहा है। नागपुर के गांधी सागर तालाब के पास बना एक आर्टिफिशियल टैंक है, इस समय हम यहाँ मौजूद है। पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए और इस समय अल नीनो के वजह से विदर्भ में मानसून जो है वो काफी कम हुआ है, जिस वजह से तालाबों का पानी घटा है, जिस वजह से तालाबों में गणपति विसर्जन करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसीलिए शहर में पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए 447 कृत्रिम टैंक बनाए गए जिसमें गणपति बाप्पा का विसर्जन होना है। सार्वजनिक गणपति कल से अगले 2-3 दिनों तक यहाँ नागपुर में विसर्जित होंगे, लेकिन जो घर में बैठने वाले गणपति बाप्पा है और सार्वजनिक छोटे पंडालों के गणपति बाप्पा है उनका विसर्जन आज बड़े ही धूम धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ नागपुर में किया जा रहा है।
2: बिल्कुल, चलिए ये अच्छी बात है कि सब लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और सांकेतिक तौर पर अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये भी कहा गया है। संजीव जी हमारे साथ हैं, संजीव जी आपके पास आते हुए। संजीव जी, विसर्जन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, विसर्जन के वक्त ना उत्तर पूजा की जाती है गणपति बप्पा की, वो क्या होती है, उसका क्या अर्थ है और वो क्यों करते हैं, इसके बारे में बताइए।
6: देखिए, कोई भी पूजा हम लोग करते हैं तो वक्रतुंड

0: संपन्न करते हैं, इसलिए इनका नाम है भगवान विघ्नेश्वर। तो उत्तर पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तर पूजा में भगवान को जाते जाते, और उत्तर पूजन इसलिए करते हैं कि वो प्रसन्नतापूर्वक जाएं और हम सबको पुनः पुनः आशीर्वाद दे के जाएं। हम लोगों के यहाँ रिद्धि सिद्धि, देखिए गणेश जी को आप लाते हो, बाकी देवी देवताओं को किसी को बुलाओ, इंद्र आएगा तो अकेले आएंगे, कोई साथ नहीं होगा। और यहाँ गणेश जी जब आते हैं तो उनके साथ में सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ ये सब परकर, कुबेर भंडारी जी लक्ष्मी जी ये सब इनके साथ सफर कर है तो आना ही आना उनको। अब अगर हम विसर्जन करते हैं तो सबका विसर्जन हो जाएगा, पर क्योंकि अभी ये मृतिका के जो बनाए जाते हैं एक ये परंपरा है तो उस हिसाब से ये विसर्जन होता है और होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन इनको रख नहीं सकते। जैसे अभी बोल रहे थे भैया जी ने भी कहा कि बार बार हम लोग पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं या कोई भीगा हुआ धो के ही पुष्प चढ़ाते हैं, अब पुष्प चढ़ाते वहीं पर निशान पड़ जाएगा तो वो खंडित बन जाएगा, क्योंकि मृतिका मिट्टी के, तो अगर खंडित होते तो खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, तो इसलिए विसर्जन करते हैं। और किसी भी पूजा में हम जब विसर्जन की ओर आते हैं तो उत्तर पूजन हम तो उत्तर पूजन करते हैं, उत्तर पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को ऐसा लगता है हमको कि पुनः ये याद रहे कि जिसने हमारी पूजा को इतने भक्तिभाव समन्वित होकर के किया है, हम उसको पुनः आशीर्वाद देकर जाएं, उस पर कृपा बरसा कर जाएं, ये इस भाव से हम लोग करते हैं। तो बार बार हम लोग भी जैसे गेस्ट आते हैं उनको छोड़ने जाते हैं, तो छोड़ने इसलिए जाते हैं कि साहब हमको याद रखें और हमको जो है कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट करके जाए, तो यही भाव रहता
1: है। जी मेहमान आते जाते रहे। इस बीच ये तस्वीरें देखिए गुड न्यूज टुडे पर 8 घंटे की महा कवरेज जारी है। हर जगह जहां जहां भी विसर्जन हो रहा है वहां की तस्वीरें, वहां की आस्था और वहां के भाव, जो लोगों के मन के भाव है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े गणपति और किस तरीके से लगातार शोभा यात्राओं के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। संजय जी आपके पास आऊंगी। देखिए कहाँ तो जाता है बप्पा, कहाँ जाते हैं बप्पा, तो हमारे साथ ही हैं। हम कल पूजा करेंगे तो सबसे पहले बप्पा की फिर से पूजा होगी, प्रथम पूजा उनको वैसे ही कहा जाता है। लेकिन जब इस तरह से हम इस उत्सव को मनाते हैं तो यहाँ पर विसर्जन क्यों होता है? जब बप्पा तो हमारे साथ ही रहेंगे तो फिर इस विसर्जन का अर्थ क्या होता है, अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे समझना चाहूँ तो?
2: जिसका आवाहन किया है उसका विसर्जन भी होता है।
0: बिल्कुल,
2: तो इसीलिए कहते हैं कि जब बहुत विनम्रता दिखानी हो देवता के आगे, कहना हो कि आप सर्वशक्तिमान हैं, तो कहते हैं कि आवाहनम न जाना में विसर्जनम, पूजा चाहे न जाना में क्षम्यताम परमेश्वर। और गणपति ऐसे देवता हैं अनंत रूपों में हैं। गणपति उत्तर भारत में गणपति एक गृहस्थ के रूप में पूजित हैं, दक्षिण भारत में गणपति ब्रह्मचारी के रूप में है, वहां गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि नहीं है, गणपति अकेले हैं। गणपत्य समुदाय है वो बहुत सारे लोग तांत्रिक विधि से भी गणपति की पूजा करते हैं। गणपति अनेक रूपों में अनेक तरह से लोगों में पूजित हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो गणपति के दो दो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, उनके दो बेटे भी हैं शुभ लाभ, उनके भी एक एक बेटा है आमोद और प्रमोद। इंदौर के खजराना गणपति के मंदिर में जाएंगे तो वहां पूरा परिवार रिद्धि सिद्धि के साथ, उनके दो बेटे, बेटे की बहुएं और पोते, ये सब के वहां पर दर्शन होते हैं पूरे परिवार के। तो एक पूरा परिवार है उनका, तो एक गृहस्थ के रूप में गणपति की पूजा होती है। और गणपति चूंकि उन्होंने महाभारत लिखा, लिखा पढ़ी के और बाकी बुद्धि के काम करते हैं, इसलिए गणपति ज्यादा घूमते घामते नहीं है। जिस समय ये कहा गया कि तुम दोनों में जब कार्तिकेय और गणपति के बीच में विवाद हुआ कि विद्वान कौन है ज्यादा, तो शिवजी पार्वती जी ने कहा कि जाओ विश्व ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आओ और जो चक्कर लगा के जल्दी आएगा वो ही ज्यादा विद्वान है। तो कार्तिकेय अपने मोर पर चढ़े और मयूर से वो चल दिए वहां से, और गणपति ने अपने माता पिता की परिक्रमा की तो उन्होंने कहा कि क्या आज भी लोग अगर किसी बड़े आदमी के साथ मिलकर काम कर लो तो लोग कहते गणेश परिक्रमा लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी दुनिया मेरा ब्रह्मांड तो आप ही हैं मेरे माता पिता। तो गणपति ने वो परिक्रमा लगा दी और वो विजयी हुए। तो गणपति ज्यादा चलते फिरते नहीं, उस समय भी उन्होंने शॉर्टकट ही अपनाया क्योंकि बुद्धिर जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। तो गणपति बैठे बैठे और मोदक प्रिय हैं, मोदक खाते हैं तो शरीर स्थूल हो गया है उनका, काफी स्थूल हो गया। तो आज के जो आयुर्वेद कहता है तो उनमें जो डायबिटीज है उनके आशंका बहुत रहती है, लेकिन गणपति चूंकि बुद्धि के देवता हैं इसलिए गणपति जी एक तरफ मोदक भी खाते हैं, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, और दूसरी तरफ जामुन भी खाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जामुन सबसे बढ़िया उपाय है डायबिटीज को दूर रखने का, तो वो कहते हैं कि जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम देव विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो

0: ये स्थिति है।
1: संजय जी आप मोदक मोदक कर रहे हैं, यहाँ पानी आ रहा है एंकर्स के मुंह में, मोदक मंगाने पड़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे। चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ी हुई है, श्रुति जी। श्रुति जी आपके पास आते हुए ये जो संजय जी ने बात कही ना, इसी में से बात को आगे बढ़ाऊंगी। सार यही है कि घर में जब मेहमान आता है तो वो घर से विदा भी होगा, लेकिन उसके साथ इमोशंस आपके इतने हाई लेवल के कनेक्ट हो जाते हैं कि उनको भेजने का मन नहीं करता। यही आज का भी सार है कि गणपति बप्पा जब आते हैं बड़े ही नाच गाने के साथ हम उनको लेकर आते हैं, लेकिन उनको भेजने का मन नहीं करता, ये भाव क्या है?
2: भाव तो फिलहाल क्या है ना कि इंसान की फितरत ऐसी होती है कि वो मुंह में पड़ी जाता है, वो बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है अगर आप देखेंगे तो ये वही है कि जिसमें प्राण आए हैं उसने पंच तत्वों में विलीन होना ही है, और ये तत्वों का ही खेल है। वास्तु और ज्योतिष में जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देखें कि हम देखें कथाएं तो बहुत सारी हैं कि हम उनको जल में जो है उनका विसर्जित करते हैं, लेकिन आपको जान के मतलब हैरानी हो सकती है या आपके मन पे इसको लेके एक उत्सुकता हो सकती है कि गणेश जी को ना केतु और बुध से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि केतु का सर नहीं होता, गणेश जी का भी काटा गया था तो हाथी का सर लगा था, तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, जो कि मेमोरी बहुत स्ट्रांग है तो रीजनिंग एबिलिटीज बढ़ जाती है। वास्तु की दिशा जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट की होती है और पानी जल वही का तत्व है।
1: श्रुति जी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ समय के लिए रोक रही हूँ, बड़ी और महाकवरेज जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तुरंत आएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिलहाल छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लाल बच्चा राजा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा की विदाई के साथ इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में पांच माह नाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन, शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

0: तो आज है अनंत चतुर्दशी, बप्पा का विसर्जन हो रहा है, लेकिन इसी के साथ कि अगले बरस तू जल्दिया। ब्रेक पर जाने से पहले श्रुति जी से चर्चा हो रही थी इसी को लेकर, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी और लाइव तस्वीरें हैं, जहां जहां भी बप्पा का विसर्जन इस वक्त चल रहा है, जहां जहां भी ये शोभा यात्राएं चल रही है, वहां पर किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा है वो तस्वीरें तो देख रहे हैं, लोगों की भावनाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कितना अहम दिन आज का हो जाता है उसी को लेकर श्रुति जी अपनी बात पूरी कीजिए।
1: जी, हम बात कर रहे थे, देखें गणेश विसर्जन की, तो उसमें हम कैलेंडर की बात करते हैं, हम हमेशा पूजा की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, जैसे अभी हो रहा था कि देखें कितना हम दुखी हो जाते हैं। मैंने भी इस बार जो है गणेश जी की इच्छा से ही जो है घर में मैंने उन्हें स्थापित किया था, लेकिन मैंने विसर्जन 1.5 दिन बाद कर दिया था। उसी 1.5 दिन में जो मुझे महसूस हुआ, मैं खुद इतनी भावुक हो गई जैसे घर पे कोई मेंबर आ गया। आपको मेरे दिमाग में तुरंत ये ख्याल चलने लगे, अब मैं नाश्ता करूं तो इनके लिए पहले बना दूं, दोपहर का खाना पहले मैं इनके लिए बना दूं, रात का मतलब उन्हीं की सेवा में। और जब वो गए तो वाकई मेरा भी मन जो था बड़ा उदास सा रहा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी आप कह लें कि भाव जो एनर्जी है ना वो बहुत जल्दी जुड़ जाती है। अब ज्योतिष और वास्तु में ना हम इनके तत्व को जो है वो उसी में हम कहते हैं ना कि जल में क्यों आप करते हैं, तो इसकी भी देखें एक तो कथा है और एक रीजन है। कथा ऐसा कहा जाता है कि देखिए उत्तर में कैलाश है तो उत्तर में ही उनका घर माना जाता है, तो वो इसलिए उत्तर पूजा के बाद उनको उत्तर दिशा में रख के ही उनको उत्तर ही विदा कर दिया जाता है। जो अनंत में जो उनका विसर्जन होता है, वास्तु में उत्तर दिशा का जो तत्व है वो जल तत्व है, तो जल में वहां पे उनका विसर्जन जो है वो किया जाता है। तो ये पीछे जो ज्योतिष में और वास्तु के जो रीजन है ये वो है, और कथाओं में आता है कि देखें वो तो कैलाश वापस जाएंगे इसलिए हम उनका विसर्जन कर रहे हैं। तो ये बातें बहुत नोटिस करने वाली हैं, खास तौर पे ये भी कि देखें उन्हें बुध ग्रह और केतु से जोड़कर देखा जाता है कि केतु को संयमित करने का जो जो उनके पास टोटका कहते हैं ना कि वो गणेश जी ही कर सकते हैं, तो केतु आध्यात्मिक और मोक्ष का ग्रह है, लेकिन गणेश जी को जब उनका दोबारा सर लगा, हाथी का सर लगा, तो उनके पास मेमोरी, हाथी की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो कहते हैं ऐसे कि बहुत मेमोरी आ गई, तो वाइज प्रथम पूज्य उनको कहा जाता है, सबसे वाइज है, सबसे विजडम उनके पास सबसे बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। वास्तु में हम उपाय भी कहते हैं, तो हम कहते हैं क्रिस्टल का जो ट्रांसपेरेंट गणेश जी होते हैं सिर्फ एक आप घर में रखिए, दो मत रखिए, ताकि डुअलिटी ना आए, आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत रहे। तो उत्तर पूर्व दिशा में हम जो है वो कहते हैं कि आप रखिए वहां पे जो क्रिस्टल के गणेश जी हैं। तो इस तरह की जो है बहुत सारे रीजन और लॉजिक या कथाएं जो है उनसे जुड़ी हैं।
0: चलिए, बड़ी सुंदर बात कही आपने। एक और चीज की गणपति के अंगों से हमारे जीवन से के संदेश भी छुपे हुए हैं, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अकोला का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, धनंजय वहां पर मौजूद है। धनंजय, कहां पर पहुंची है विसर्जन की यात्रा, दिखाइए जरा।
2: देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है लोग जो है गणेश भक्त जो है वो बड़े धूम के नाचने लगा है, आप देख सकते हो कि अब रंग करने लगा है, और साथ ही मैं बता दूं कि अब थोड़ा बारिश का भी रुख हुआ है, क्योंकि देखिए विघ्नहर्ता को कहते हैं ना कि विघ्न हरने वाला, तो इसीलिए जाते जाते जो है जो विदर्भ के और किसानों की हालत है, जो विदर्भ के लोगों की हालत है, जिस तरीके से इधर बारिश नहीं होने के चलते आने वाले समय में बहुत त्रासदी हो सकती है, लेकिन भगवान को सब पता रहता है, भगवान सब करते हैं, क्योंकि भरोसे से कुछ जीता जाता है।
3: और आपको यहाँ से देखिए कि बप्पा की जो भव्य मूर्ति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और
2: मूर्ति को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो भक्त है बड़े झूम पे नाचते दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है भक्त जो है
0: मुंबई की भी तस्वीरें लगातार, और वहां पर भी विसर्जन हो रहा है, और साथ ही साथ नागपुर में भी किस तरीके से भक्त नाचते गाते झूमते अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो शांत भावुक होकर भी बप्पा को विदाई देते हैं, लेकिन खास तौर पर अगर हम मुंबई की तस्वीरें देखें, संजय जी मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आज मुंबई लग रही है भीड़भाड़ वाला शहर, कहते कि मुंबई कभी सोती नहीं है, उस बीच इतना बड़ा फेस्टिवल जहां पूरा मुंबई शहर सड़कों पर आ जाए और उसमें भी व्यवस्था ऐसी कि हर कोई अपना अपना कार्य भी कर रहा है, भक्ति में जो लीन है, दर्शन भी हो रहे हैं और विसर्जन भी साथ ही साथ हो रहा है, और एक दो मूर्तियां नहीं, न जाने कितनी मूर्तियां, बड़े बड़े पंडाल, मुझे लग रहा है कि आज दुनिया को भी यहां से मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है।
4: बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि मैनेजमेंट के गुरु हनुमान जी और गणेश जी दो माने जाते हैं। हनुमान जी ये कहते हैं, गणेश जी ये कहते हैं कि कम समय में और कम संसाधनों में कैसे बेहतर काम किया जाए। हनुमान जी कहते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, अगर आप दो मिनट सोच कर करेंगे तो आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। एक अंगूठी गिरानी है ऊपर से पेड़ से, अशोक के पेड़ से, उसमें भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तो विचार किया। रावण ने कभी भी काम किसी से पूछ के नहीं किया और हनुमान जी ने कोई भी काम बिना विचार के नहीं किया, हर चीज़ में पहले सोचा कि इसके कॉन्सेंट प्रोस क्या होंगे। और गणेश जी कहते हैं कि कम संसाधन में आप कैसे बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हो, बस यही बुद्धि का काम है। तो इसलिए गणेश जी की मान्यता है।
0: बिल्कुल, एक और सवाल है मेरे मन में संजय जी, आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बप्पा की, देखिए विदाई हो रही है, शहर शहर से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है, मूरत माटी से बनी है, भावों ने प्राण भरे और आस्था ने दिखाए ईश्वर। अगर देखा जाए तो वास्तव में गणपति कहीं नहीं जाते, वो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। प्रतिमा का विसर्जन एक प्रतीक भर है, एक चक्र के अंत और आरंभ का। इस परंपरा को निभाते हुए तो गणपति विसर्जन के साथ आप अपने भीतर आसपास मौजूद तमाम नेगेटिविटी और बुराइयों को भी खत्म कर सकते हैं, बप्पा के साथ विदा कर सकते हैं। वो आदतें और विचार जिन्हें छोड़कर जिंदगी को बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, गणपति के विसर्जन के साथ उन अवगुणों के विसर्जन का भी मौका है, ताकि जिंदगी में नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी के लिए नई जगह आसानी से बनाई जा सके।
5: कितने प्यार, मनोहार और धूमधाम के साथ लाए थे बापा को, 10 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अब बापा विदा होने वाले हैं, भक्तों के मन में मिला जुला भाव है। धूमधाम से बापा का विसर्जन तो करना है, लेकिन बापा के जाने का दुख भी है। खैर, बापा आए थे तो जाएंगे ही, लेकिन अब की बार बापा को अकेले मत भेजिए, बल्कि बापा के साथ विदा कीजिए वो सब कुछ जिसे आप अपनी जिंदगी से विदा करना चाहते हैं, वो हर आदत, वो हर विचार जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। मसलन ऐसी ही एक आदत है सोशल मीडिया की लत, थक जाता है वो बेचारा अंगूठा 200 मीटर तक स्क्रॉल करते करते, लेकिन बिना वजह स्क्रीन टाइम बढ़ाने की ये आदत महामारी की तरह फैल गई है। वास्तव में दुनिया आपकी मोबाइल स्क्रीन से बहुत बड़ी है, ये बात जितनी सरल है उतनी भयावह भी, क्योंकि 2020 के बाद से हमने बस एक नया इंटरनेट नहीं अपनाया, बल्कि अपनी धारणा का एक प्राइवेट कारखाना अपनी जेब में रख लिया। एल्गोरिदम ने हमें पढ़ा, हमारे क्लिक, हमारा गुस्सा, हमारी जिज्ञासा, डर, बेचैनी, सब कुछ, फिर उसने हमें वही देना शुरू किया जिस पर हमारा दिमाग सबसे तेज प्रतिक्रिया देता था, क्योंकि दिमाग को वास्तव में सत्य नहीं संगति पसंद है, साथ पसंद है, उसे अच्छा लगता है जब दुनिया उसकी पहले से बनी कहानी सही साबित करती है। इसे मनोविज्ञान कॉन्फर्मेशन बायस कहता है। एल्गोरिदम ने बस इस पुराने स्वभाव को एक नई सुपर पावर दे दी, अब हर सुबह करोड़ों लोग उठते हैं और अपनी ही धारणाओं की नई नई पुष्टि देखते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, यही चक्र रोज चलता है। हो सके तो अपनी फीड से बाहर निकलकर देखिए, क्योंकि एल्गोरिदम के आगे जहां और भी है। सो गणपति के साथ अब की बार इस आदत को भी विसर्जित कर दीजिए। ऐसी ही एक आदत है हर चीज की तुलना दूसरों से करना। यूं ही नहीं कहते कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। सोशल मीडिया की छाओं में कुछ और फैली और फैली यह बीमारी वास्तव में आपके सेल्फ एस्टीम के लिए बेहद घातक है। खुशी और संतोष कम होगा, जलन और कड़वाहट बढ़ती जाएगी। सेल्फ ग्रोथ की गाड़ी को अगर आगे बढ़ाना है तो इस आदत का तुरंत विसर्जन करना अच्छा ऑप्शन है। ऐसी ही एक आदत है बिना जाने राय बनाने की, बिना जाने लोगों को जज करने की। न सामने वाले व्यक्ति को जानते हैं, न उसकी परिस्थिति को समझते हैं, बस जज बनकर तुरंत उसके बारे में फैसला सुना देते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? इस आदत का विसर्जन कर दूसरों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसी लिस्ट में शामिल है बात बात पर शिकायत करने की आदत। ये आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को नेगेटिव सोच के लिए प्रोग्राम कर देती है। तनाव और एंजाइटी आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसलिए इस नेगेटिविटी को गणपति के साथ विसर्जित कीजिए और बप्पा से मांगिए दिमाग की रीवायरिंग का आशीर्वाद, ताकि आपकी सोच पॉजिटिव हो सके। और आखिर में विसर्जित कीजिए उस आदत को जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। हेल्थ को इग्नोर करने की आदत अपने आप में एक बीमारी है। बीमारी भी ऐसी जो कई और बीमारियों को न्योता देती है। उठिए, दौड़ लगाइए, कसरत कीजिए, स्नूज बटन कल को कभी आने नहीं देगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप, डाइट में नमक चीनी तेल पर कंजूसी, जंक फूड और नशे की लत से दूरी, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो जिंदगी बदल सकती हैं। बापा यहाँ कुछ नहीं करेंगे। सब जानते हुए भी न मानने की आदत आपकी है तो विसर्जित भी आपको ही करनी पड़ेगी। अमंगल वाली इन आदतों का विसर्जन करेंगे तभी जीवन में सही मायनों में मंगल स्थापित हो पाएगा। गणपति यही सिखाते हैं, यही विसर्जन का विज्ञान है, क्योंकि वास्तव में विसर्जन एक प्रतीक है। क्योंकि असल में बाप्पा कहीं जाते नहीं, वे हमेशा रहते हैं। उनका आना और उनका जाना वास्तव में प्रतीक भर है। हर साल बाप्पा मौका देने आते हैं एक नई शुरुआत का। पिछले साल भी दिया था, फिर से दे रहे हैं। और चिंता की बात नहीं अगर छूट जाए अब की बार भी, क्योंकि अगली बार फिर मिलेगा मौका। हर साल मिलता है, क्योंकि श्री गणेश से बेहतर ये कौन सिखा सकता है कि अच्छे काम का श्री गणेश करने में कभी देर नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, हमने ना ये आदत डाल ली थी 5 साल पहले, जब गुड न्यूज टुडे आया था ना, तो हमने बुरी आदतें छोड़ दी थी। और यकीन मानिए ऐशा गुप्ता, सच बताइए आपके अंदर चेंज आया कि नहीं आया? क्योंकि जब आप अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो यकीन मानिए कि वो जो एल्गोरिदम की बात है ना, हमारी एल्गोरिदम वैसी पॉजिटिव बन गई है।
6: फुल ऑन पॉजिटिव हम हर दिन फील करते हैं और वैसी आउटपुट भी निकलता है, वैसी एनर्जी पास ऑन करने की कोशिश भी हम करते हैं। चलिए, इससे जुड़ा हुआ सवाल संजय जी आपसे लेती हूँ। संजय जी, जो रिपोर्ट हमने चलाई आपने देखी है ना, अवगुणों की हमने बात की, बहुत सारी एडिक्शंस आजकल हमको हैं, हम भी उसी का एक पार्ट हैं, इंक्लूडिंग मी, कि सोशल मीडिया की लत लग गई है, बहुत सारे अवगुण। संजय जी, पर्दे के पीछे जो चीजें हैं वो पर्दे के पीछे रहने दो, सामने मत लेके आओ।
4: जब तुमने बोला,
6: मजाक किया संजय जी,
4: मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा ऐसे चाशनी लगा के बोलना चाहिए था कि मुझे तो अपने अंदर कोई अवगुण दिखता ही नहीं।
6: इसको आप पंजाबी में बोल के बताओ, मैनू तो अपने अंदर कोई बुराई दिखती
4: नहीं। इतनी आनी हो गई है कि मैनू साडे भीतर कोई अवगुण दिखता ही नहीं,
6: अवगुण दिखता ही नहीं। अब ये भी लोगों का सार है कि लोगों के अंदर, मतलब मैं जनरलाइज कर रही हूँ इस चीज को, कि बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी एडिक्शंस हैं, लेकिन हम फील नहीं कर पाते कि हमारे अंदर है, हम उसको इग्नोर करते हैं।
4: गणपति वही तो कहते हैं कि अपनी विशाल आंखों से आप देखिए कि आपके अंदर क्या अवगुण है। इसीलिए गणपति की जो स्तुति है उसमें शास्त्रीय संगीत में हमारे एक गणपति की बहुत अच्छी स्तुति है, जो मेरे हमारे गुरुजी के पिताजी पंडित मोतीराम जी ने लिखी, और उन्होंने कहा कि जय जय जय सुत महेश गण गणेश प्यारे तुम, जय जय जय सुत महेश। तो उसमें उन्होंने कहा कि तीन नेत्र हैं, तो आप गणेश जी त्रिनेत्र हैं, तो आप तीन, दो आंखें तो आपकी हैं, कम से कम एक तो ज्ञान का चक्षु खोलो और उसे देखो कि आपके अंदर क्या बुराई है। दुनिया को तो आप, लोग कहते हैं, लोग अपनी गलती के लिए जज बन जाते हैं, अपनी गलती के लिए वकील बन जाते हैं और दूसरे की गलती के लिए जज बन जाते हैं, तुरंत जजमेंट देते हैं और अपनी गलती पे वकील बन जाते हैं, तुरंत दलील देते हैं। लेकिन गणपति कहते हैं कि आप दो आंखों से भले दुनिया को देखो, लेकिन एक आंखों से, एक आंख से तो अपनी तरफ देखो, तीसरा नेत्र खोलो अपनी तरफ, अंदर की तरफ। इसीलिए लोग कहते हैं कि घर की तरफ लोग गणपति की पीठ नहीं करना चाहते, जब उनको विदा करते हैं तब भी वो घर की चौखट की तरफ गणपति का मुख करते हैं और फिर वहां से विदा लेते हैं, और अगर उनको गोद में उठाते हैं तो गणपति की पीठ अपने सीने की तरफ लेते हैं, हृदय की तरफ लेते हैं, और गणपति का हमेशा मुख का दर्शन करते हैं, पीठ का नहीं। इसलिए घरों में जब ड्योढ़ियों पर गणपति लगाए जाते हैं तो पीछे की तरफ भी दीवार पर एक गणपति रहते हैं ताकि दोनों पीठें ऐसे रहें, या फिर गणपति के पीछे एक आईना लगाते हैं ताकि वो गणपति की पीठ उधर रहे, जिससे उसका जो वास्तु का प्रभाव है वो नहीं पड़े और गणपति हमेशा हमें सुख समृद्धि दें, क्योंकि गणपति सुमुख है, सुंदर मुख है और सुंदर गुण के हैं, गुणाधीशाय है।
0: श्रुति खरबंदा भी हमारे साथ है। श्रुति जी, तो यकीनन इससे एक बात तो साबित होती है कि आज के दिन कम से कम हम एक चीज का प्रण तो ले ही लें कि सबसे पहले हम अपने अंदर देखें, जिन अवगुणों को हम बाहर कहते हैं, कम से कम अपना एक अवगुण अगर त्याग दे तो शायद बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। जब हम कहते हैं ना कि बप्पा तो हर साल आते हैं, कोई ना कोई मनोकामना तो हमारी रह जाती है, तो मनोकामना तभी पूरी होगी जब आप अपने अंदर और खुद को पहचानेंगे।
1: बिल्कुल आप बात सही कर रही हैं। देखें, बप्पा को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, सिद्धि विनायक कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो बप्पा हैं। मतलब गणेश जी जो गजमुख है, जिनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, सबसे पहले तो मेरे सामने यही आ जाती है सिग्निफिकेंस की, उनकी मेमोरी देखे, पावर देखे। फिर मैं आपको ज्योतिष का सिग्निफिकेंस भी बताऊंगी। जब आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है तभी तो आप अपने अंदर जो है एनालाइज करेंगे, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए, जो आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उनको हम बुद्धि और बुद्ध ग्रह और केतु से जोड़ के देते हैं। केतु जो है अध्यात्म, यानी आत्मा का अध्ययन, तो अंतर्मुखी तो होना ही पड़ेगा, तभी आप जो है अपना अध्ययन कर पाएंगे। तो गणेश जी की पूजा भी हम इसलिए करते हैं कि वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में जो आने वाले विघ्न है, या हमारी प्रोस्पेरिटी में, या जो भी हमारी संकल्प की सिद्धि है उसमें जो भी आने वाले विघ्न है, उनको दूर कर दें। और यही जो है इस भाद्रपद की शुक्ल पक्ष मास की जो है
0: जी,
1: ये सारी बातें हम
0: जी बिल्कुल। चलिए लौटती हूँ आपके पास, संजीव जी आपके पास आते हुए। संजीव जी, जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, अगर वो सही है तो आप बताइएगा, बात यही कि जब विसर्जन की प्रक्रिया होती है तो एक पोटली बांधी जाती है गणपति बप्पा के साथ, उस पोटली में क्या रहता है, उस पोटली का अर्थ क्या है, क्यों बांधते हैं?
7: उसमें जैसे धनिया है, हल्दी की गांठे हैं, या सुपारी है, या उनके जो कमल गट्टे वगैरह रहते हैं, लौंग इलायची है, ये सब बांधना चाहिए। इससे रिद्धि सिद्धि का एक खजाना होता है और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है, और ये शुभता का प्रतीक है। हमारे जीवन से अशुभता दूर हो जाए और शुभता हमारे घर में रहे, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आनंद आदि हमारे घर में रहे, हमारे घर में सदा जो है भगवान की कृपा बनी रहे, अष्ट सिद्धि नव रिद्धि हमारे घर में रहे, किसी प्रकार से हमारे घर में वास्तु दोष ना हो, दुर्भिक्ष ना हो, इसलिए भगवान गणपति का पूजन सबसे पहले होता है। हम जो भी स्तोत्र पाठ करते हैं उनमें सबसे पहले भगवान गणपति जी का स्तोत्र पाठ करना चाहिए। एक भगवान गणेश जी का स्तोत्र है, संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम, और ये छोटा है लेकिन इसकी फलस्तुति बहुत बड़ी है, इसका फल तो बहुत बड़ा है लेकिन वैसे छोटा है, आप कहें तो हम इसको पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हमारी महाकवरेज लगातार जारी है, 8 घंटे की बड़ी कवरेज है, नॉन स्टॉप कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम तस्वीरें भी आ रही हैं। आज हर कोई बप्पा को विदा कर रहा है, नम आंखों से विदा कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बप्पा के उन तमाम संदेशों पर चलने की भी जरूरत है और उसे समझने की जरूरत है, समझाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारी कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
1: तो देखिए इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियोस भी शेयर किए हैं, वो लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूपी के नोएडा से श्रुति मंडल ने हमें गणेशोत्सव की तस्वीरें भेजी हैं। शानदार सजे हुए पंडाल में बप्पा की मनमोहक मूर्ति स्थापित की गई, सुंदर पुष्पों और रंग बिरंगी लाइटिंग से सजावट की गई। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान भगवान गजानन को फल और मिष्ठान का भोग लगाया। परिवार ने विधि विधान के साथ मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के जलगांव से उमेश चौहान ने भेजी। यहां पूरे प्राकृतिक माहौल में गणपति की स्थापना की गई। पंडाल में केले के पेड़ लगाए गए, पूरे विधि विधान से जौ उगाए गए। पंडाल में गणपति स्थापना के साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई, इसके साथ ही सुंदर पुष्प और लाइटिंग से सजावट भी की गई।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर
6: क्या है, पितृपक्ष की महिमा क्या है, पितृपक्ष के पूजा के नियम और क्या है पितृपक्ष की सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
1: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लाल बादशाह राजा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला।
8: बप्पा की विदाई के साथ इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन।
1: पुणे में पांचवा नाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन, शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।
8: अकोला में भक्त भारी मन से कर रहे बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों की धुन पर गजानन से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना, प्रशासन ने बनाया आर्टिफिशियल कुट।
1: अनंत चतुर्दशी के मौके पर जालना में पर्यावरण संरक्षण का संदेश, महानगर पालिका ने चलाया बप्पा का आशीर्वाद प्रकृति के साथ अभियान, इको फ्रेंडली उत्सव मनाने वालों को बांटे पौधे।
8: यूपी में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गणपती बाप्पा
1: मोरया
0: पुढ्या वर्षी
1: लोकरिया
0: दोबारा श्वेता के साथ दोबारा श्वेता पुढ्या
1: पुढ्या
0: वर्षी
1: वर्षी
0: लोकरिया
1: लोकरिया
0: ये बताएंगे संजय जी मतलब
2: अगले वर्ष अगले साल आप जल्दी आओ
1: मुझे लगता है अगले साल तक शगुफ्ता मुझे मराठी पूरी तरह से
0: मैं कह रही हूँ आपको महाराष्ट्र में ही दिखूंगी शायद ये सब करती हुई क्योंकि ये मौका ही ऐसा है और देखिए भाव जुड़ा है गणपति बप्पा के साथ तो यादें भी वो नॉस्टैल्जिया फिर से आ जाता है
1: बिल्कुल तो चलिए चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं गणपति उत्सव से जुड़ी तमाम तस्वीरें देखिए 14 तारीख से हमने दिखानी शुरू कर दी थी और खुद गुड न्यूज टुडे में हम गणपति भी लेकर के आए थे और आज चूंकि आज अनंत चतुर्दशी है विसर्जन का दिन है तमाम तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र से देखिए मुंबई से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लालबागचा राजा जिसका इंतजार कई लोगों ने देखिए पंडाल में जाके दर्शन किए लेकिन मुझे आज का दिन इसलिए भी अच्छा लगता है संजय जी आपसे भी कहूंगी कि देखिए वो लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाए उस पंडाल तक नहीं पहुंच पाए लेकिन मन में लालसा रहती है कि हम उनको देखें उनके दर्शन करें तो कम से कम ये दर्शन सुलभ उनके लिए आज के दिन हो जाता है
2: बिल्कुल मतलब गणपति उनके ड्राइंग रूम तक आ जाते हैं दर्शन देने के लिए और ऐसे भी आजकल जो स्थिति है उसमें लोग देवताओं के दर्शन करने नहीं उनको दर्शन देने जाते हैं वहां जाकर वो सेल्फी खींचते हैं और ये सब करते हैं तो वो दर्शन देने जाते हैं देखो बापा हम आए हैं तुम्हारे और इसका प्रमाण भी हम लेके जा रहे हैं
1: लेकिन ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको सीधे हम मुंबई से दिखा रहे हैं देखिए एक एक तस्वीरें सुबह से ही हालांकि आपको हम दिखा रहे हैं और जहां तक हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ने हमें बताया है कि खास करके लालबागचा राजा की अगर हम बात करें तो कल सुबह तक वो गिरगांव चौपाटी पहुंच पाएंगे जहां पर विसर्जन होना है ये सीधे आपको धर्मेंद्र के पास लिए चलते हैं धर्मेंद्र इस वक्त चूंकि आप लगातार गिरगांव चौपाटी पर मौजूद हैं जहां बीएमसी ने इस बार इंतजाम किए हैं विसर्जन के तो जरा हमें तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि कौन कौन से बड़े पंडाल के जो गणपति हैं वो वहां पहुंच चुके हैं
3: बिल्कुल देखिए फिर से एक बार आपको बताऊं कि मैं इस समय मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर खड़ा हूं जहां पर मीडिया के लिए एक महामंच बनाया गया है और ये एक ऐसी तस्वीर है एक ऐसा रास्ता है जहां से मुंबई की जो तमाम बड़ी प्रतिमाएं हैं मूर्तियां हैं वो गिरगांव की तरफ धीरे धीरे एक से बढ़कर एक निकल रही हैं विसर्जन के लिए अभी कुछ देर पहले ही तेजुका के राजा गए हैं खेतवाड़ी के राजा भी उस तरफ निकल चुके हैं इसके अलावा चंदनवाड़ी के राजा भी निकल चुके हैं इस तरह से लगभग 30 से ज्यादा जो बड़ी ऊंची प्रतिभाएं हैं वो विसर्जन के लिए निकल गई हैं वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां से मैं थोड़ा गुजारिश करूंगा कि अब वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब लाखों की मात्रा में इस समय सड़कों पर उतर चुका है जी हाँ और तमाम साउथ मुंबई में स्थापित होने वाली जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं वो सभी अब विसर्जन के लिए लेकर जानी शुरू हो गई हैं ये काफिला सिर्फ और सिर्फ गिरगांव चौपाटी के इसी रास्ते पर देखा जाता है ये वही रास्ता है जहां से लालबाग के राजा भी आने वाले हैं लेकिन उन्हें आने में अभी बहुत ज्यादा समय है आपको बताएं कि गिरगांव चौपाटी में लगातार 3,500 से ज्यादा गणेश जो पंडाल हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है जो यहां पर आकर के विसर्जन कराएंगे यहां पर साउथ मुंबई में जितनी भी ऊंची प्रतिमाएं हैं जो 43 फीट सबसे ऊंची प्रतिमा खेतवाड़ी की थी 12वीं गली की वो भी अब विसर्जन के लिए जा चुकी है इसके अलावा 25 फीट से ज्यादा 40 फीट के भीतर के जितने भी गणेश बप्पा के मूर्तियां हैं वो देखिए यहां पर आ रहे हैं खास बात यह है कि कितने बढ़िया तरीके से मूर्तिकारों ने बप्पा के आकार को गढ़ा है और हर एक रूप में हर अवतार में हर थीम के साथ बप्पा अपने अपने पंडालों में आकर के स्थापित हुए थे और वहां की शोभा बढ़ा रहे थे अपने गणपति बप्पा के साथ उनके पंडाल वाले तमाम आसपास जो सेवादार होते हैं मंडल के कार्यकर्ता होते हैं वो तो चल ही रहे हैं साथ ही साथ जिन ट्रॉलियों में बप्पा इस समय विराजमान है उन ट्रॉलियों को खींचने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेकर के आसपास में खड़े हुए हैं इसके अलावा मुंबई पुलिस एक बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा के मद्देनजर और यहां पर जितने लोग जुटे हुए हैं उनमें बकायदा व्यवस्था बनी रहे किसी तरीके की कोई अफरा तफरी नहीं बचे इस पर पूरी निगरानी मुंबई पुलिस की हुई है देखिए सबसे खास बात यह है कि इस बार AI कैमरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है गणेश उत्सव के इस विसर्जन में बकायदा उन सभी लोगों की तस्वीरें यहां पर छप जाती है जिनका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं क्राइम से जुड़ा हुआ है और अगर ऐसा कोई भी शख्स मुंबई पुलिस के नजर में आता है AI कैमरे के जरिए तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी जाती है पूछताछ करनी शुरू कर दी जाती है इसके अलावा तमाम CCTV कैमरों की नजर भी यहां पर पड़ी हुई है इसके अलावा डिजास्टर कंट्रोल कमेटी ने इस बार अच्छा खासा कंट्रोल रूम बना रखा है और वहां पर भी बहुत सारे ऐसे तस्वीरें लगे हैं, ऐसे कैमरेज लगे हैं, एलईडी लगी है, जहां पर यहां पर आने वाले जितने तमाम लोग हैं उनकी हरकतों पर नजर रखा जा रहा है। इसके अलावा बाकायदा ड्रोन जो है, ड्रोन भी गिरगांव चौपाटी के समुद्र के आसपास उन सभी जगहों पर जहां पर तीव्रता से लोग जुट रहे हैं वो भी अपना नजर गड़ाए हुए है। इसके अलावा नेवी भी अपने लोगों के साथ समुद्र को सुरक्षित रखे हुए है और पूरी तरह से अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ बीएमसी की बात करें तो 25,000 से ज्यादा कर्मचारी पूरे मुंबई को कवर करके बैठे हुए हैं और जिसमें से 3,000 से ज्यादा कर्मचारी स्पेशली गिरगांव चौपाटी को कवर करके रखे हुए हैं। फिलहाल 12 दिन बहुत ही सफल और सुलभ तरीके से गणेश उत्सव बीत चुका है। आज आखिरी दिन है, विसर्जन का दिन है और आज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक बहुत बड़े बंदोबस्त के साथ पुलिस, बीएमसी और जो सेवाकार हैं आसपास के उन सभी ने रख रखी है।
0: विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। धर्मेंद्र मेरी अगर आवाज आप तक आ रही है, धर्मेंद्र एक ना शिकायत है मेरी आपसे, सवाल तो बाद में पूछूंगी। आपने जितने दिन हमारे साथ विसर्जन की प्रक्रिया में आप शामिल हुए आपने जयकारा लगाया, आज आपने जयकारा नहीं लगाया, तो पहले तो आप बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। मुझे लगता है कि चलिए शोर इतना होता है वहां पर ढोल नगाड़ों की धुन के बीच में आपको आवाज कई बार कम सुनाई देती है, लेकिन ये तस्वीरें जो श्वेता, क्योंकि मैं वहां पर रही हूं तो मैंने लाइव देखा है, यहाँ पर बैठकर कवर करना और वहां पर देखना और वहां पर सड़कों पर नाचना, इस त्योहार में शामिल होना, इस फेस्टिवल को फील करना बिल्कुल अलग है। ये पिक्चर ही अलग है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। संजय जी, आपने कभी इसको लाइव कवर किया है, आपने देखा है ये दृश्य? मुझे ऐसे लगता है कि मुंबई के बारे में हम बात करते हैं ना, नवजोत इससे पहले बैठी थी, नवजोत ने दो बार ये सवाल किया था धर्मेंद्र से कि मुंबई कैसी लग रही है। मैं कहूंगी कि मुंबई ना इस वक्त मिनी इंडिया लग रही है। हर धर्म का, हर जात का इंसान यहाँ पर पहुंचा है और वो एक हो गया है, क्योंकि उत्सव आपको एकजुट करता है और एक बनाता है। संजय जी क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल, उत्सव तो मानवीय स्वभाव है, वो धर्म जाति और लिंग भेद इन सबसे परे है। उत्सव का मतलब उत्सव, जो भी वहां पर मौजूद है वो उस रंग में रंगा हुआ है। और बम्बई में अभी, मुंबई में बात करें तो यही उत्सव दिखाई पड़ता है और कुछ दिनों बाद यही रंग यहाँ से शिफ्ट होके पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब में आ जाएगा, दुर्गा पूजा देवी का उत्सव मनेगा। तो गणपति अपने, जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में गणपति ब्रह्मचारी रूप में रहते हैं, उनके साथ रिद्धि सिद्धि नहीं है। उत्तर भारत में जो गणपति की परिकल्पना है, गणपति की पूजा है, गणपति का उत्सव है, वो रिद्धि सिद्धि के साथ एक गृहस्थ हैं गणपति, उनके बेटे पोते भी हैं।
0: अच्छा,
2: हाँ, गणपति की यहाँ पर उत्तर भारत में हम करते हैं, जो हमारे अथर्वशीर्ष में और बाकी पुराणों में वर्णन है, गणपति की दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, और उनके दो पुत्र हैं शुभ और लाभ, एक पुत्री भी है, एक पुत्री जो संतोषी माता कहते हैं वो उनकी पुत्री है।
0: अच्छा।
2: और उनके दो बहुएं हैं बेटों की, जिनका नाम पुष्टि और तुष्टि है, उनके एक एक बच्चे हैं जिनका नाम आमोद और प्रमोद है।
0: तो संजय जी ने फैमिली ट्री बना दिया यहाँ पे, गणेश जी का पूरा पता चल रहा है,
2: पूरा फैमिली ट्री है। तो यहाँ गणेश जी गृहस्थ हैं और पश्चिम, अगर दक्षिण में जाएं तो वहाँ गणेश जी अकेले पूजा होती है उनकी हमेशा, तो गणेश जी ब्रह्मचारी है, वहाँ ब्रह्मचारी के रूप में पूजा होती है। और एक गणपति को मानने वाला संप्रदाय है वो तांत्रिक विधि से उनकी पूजा करता, हम वैदिक विधि से करते हैं, तो अलग अलग तरह से। इसीलिए अनंत गणेश के रूप अनंत हैं, भक्ति की प्रक्रिया अनंत है, और बच्चों के लिए वो ओ माय फ्रेंड गणेशा हैं, तो बड़े लोगों के लिए वो उनके आराध्य देव हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा संजय जी। और वाकई हम कहते हैं ना, हमारे देश में ही अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से मान्यताएं हैं हमारी, और उसके हिसाब से हम पूजा अर्चना करते हैं। संजय जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, जिस रूप में हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, अगर हम खास करके विशेष करके महाराष्ट्र की ही बात करें, लेकिन आपको भी पता है कि महाराष्ट्र से निकलकर गणपति उत्सव तो पूरे देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर ये घर घर का एक हिस्सा है। जैसे कि हमारे इस जहां पर अभी हम हैं, यहां पर हम देखते हैं जैसे ठाकुर जी अगर होते हैं तो ठाकुर जी को बालक के रूप में लोग घर में पूजा उनकी करते हैं, उनको रखते हैं अपने मंदिर में, लेकिन घर का एक सदस्य के तौर पर। महाराष्ट्र में किस तरह की मान्यता है गणेश जी को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजा और जिस तरह से उत्सव ये मनाया जाता है वो वहीं पर हम देख पाते हैं इस तरीके से।
4: बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र में सर्वोपरि भगवान गणेश जी को ही माना है। सर्वोपरि है तो सभी जगह, क्योंकि अग्रगण्य सर्व प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान गणेश जी, और उनका ही पूजन हम लोग करते हैं वैदिक परंपरा में। हम लोग जब भी यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, बिना गणपति पूजन के कोई पूजा संभव ही नहीं है, ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, लिखा ही नहीं। तो लेकिन महाभारत, ये हमारे महाराष्ट्र में, क्षमा करना, महाराष्ट्र में जो पूजा होती है, ऐसी पूजा, अद्भुत पूजा कहीं भी नहीं होती। और इतना भीड़ आप देखिए, मैं खुद वहां पर बंबई में 93 से 96 तक रहा हूं, तो ये जो गणेश जी का जो विशिष्ट जो नजारा है, ये जो देखा है मैंने, ऐसा किसी देवी देवता का नहीं मिलता। और बाकी आज मैं बैठकर यहाँ पहली बार मैंने सोचा है, जबकि मैं 86 से बिल्कुल होश में हूँ, और क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई ठाकुर जी कृपा, आज ये सोच रहा था कि माँ दुर्गा जी ने के लिए भी 9 दिन प्राप्त है, लेकिन भगवान गणेश जी की ने कमाल कर दिया साहब, 10 दिन तक इन्होंने जो अपना धूम धड़ाका मचा रखा है। तो क्योंकि, और ये क्योंकि सबकी तरफ से भगवान गणेश जी के लिए, जितने हमारे देवी देवता, सबकी तरफ से पूरा फोकस है कि बेटा जो तेरी मर्जी हो कर, हम लोग तेरे सामने सब ऐसे खड़े हुए। इसलिए गणेश जी ने चकाचक गणेश, और देखिए पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी, पहले भारत की जिम्मेदारी है, पूरे भारत में सबसे सुसमृद्धशाली यदि कोई नगर है तो वो महाराष्ट्र में मुंबई नगर है, और कोई नहीं है। पहले कलकत्ते में बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन गणेश जी ने सारा बिजनेस खींच लिया। आज मुंबई से ज्यादा सुसमृद्धशाली, अगर हम लोग कहना चाहें कि साहब लक्ष्मी नगर वास्तव में यदि कोई है संसार में,
1: तो मुंबई है,
4: तो मुंबई है। यहाँ तो वैसे ही लक्ष्मी नगर नाम रखा है, लेकिन रियल इसका नाम लक्ष्मी नगर भी हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर क्योंकि वो नाम मुंबा देवी के नाम से मुंबई नाम पड़ा है, तो वो माँ भगवती है, भगवती है, चाहे पुत्र है चाहे माँ है, बात एक ही है, मिली जुली भगत है। और आज आज देखिए गणेश जी की कृपा देखिए आप, कितना सुसमृद्धशाली हमारा मुंबई महानगर है, और वहां पूजा भी बड़ी विशिष्ट होती है। ऐसी पूजा कई बार आपने देखा होगा, जो लोग हमारे धर्म के नहीं है वो लोग भी गणेश जी के पास आके माथा नवाते हैं, और ये सब पूरी दुनिया लाइव GNT के माध्यम से लाइव पूरा भारत पर पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि जो लोग हमारे धर्म से अलग हैं वो भी आकर के बड़ी श्रद्धान्वित होकर के भगवान गणपति को आके धूप दिखाते हैं, आरती दिखाते हैं, पूजा करते हैं। तो क्योंकि गणेश जी महाराज इसलिए जो है, अष्ट सिद्धि नवो निधि सकल बुद्धि के दाता हो, तो भगवान गणपति से पहले कोई ऐसा अग्रगण्य पूजा नहीं है। लेकिन हाँ, वैदिक परंपरा में ये ठीक है कि हम लोग पहले पृथ्वी पूजन कराते हैं, दीप पूजन कराते हैं, क्योंकि वो विटनेस है। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो पूजा कहाँ होगी, यज्ञ कहाँ होगा। इसलिए भगवान गणेश जी का पूजन ही सबसे पहले होता है। और जहां गणेश, जो व्यक्ति गणेश जी का पूजा नहीं करता है, माँ अंबिका का पूजा नहीं करता है, तो माँ भगवती कहती है वहां पर दुर्गा सप्तशती में लिखा है, भस्मी कृतास्य पुण्यानि नरदहेत परमेश्वरी। यदि माँ भगवती का गणेश जी का आराधन नहीं करता तो उनके पुण्यों को भस्म कर दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही पूजन होता है।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपसे एक बार जब बात हो रही थी, शगुफ्ता को भी जरा फ्रेम में ले आए तो हम लोग आपस में बात कर पाए। तो शगुफ्ता आपसे यह जानना चाहूंगी, एक बार आप बात कर रही थी, बता रही थी कि सिद्धि विनायक, खास करके जब गणपति उत्सव होता है उस समय आप गई थी, और वहां का जो आपका एक्सपीरियंस था, आपने कहा श्वेता ऐसा फील होता है कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं पाती, तो वो क्या अनुभव है, वो क्या भावना है?
0: मुझे लगता है मैं एज इंसान, एज ह्यूमन बता ही नहीं सकती उस चीज को, एक्सप्लेन नहीं कर सकती जब तक आप वहां पर पहुंच नहीं जाते हैं। ठीक इसी के साथ कनेक्ट करती हूँ मैं, लाल बादशाह राजा के दर्शन जब मैंने पहली बार किए थे श्वेता, आप वहां पर जाते हैं ना, आपको लगता है कि आप दुनियावी चीजों से बिल्कुल परे हो गए हैं, आप जिन चीजों में फंसे रहते हैं रोजमर्रा की चीजों में, आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं, और आपकी ह्यूमन नेचर जो है वो भी बिल्कुल अलग होकर आप निकलते हैं। जैसे आप किसी भी कवरेज के लिए जाती हैं, जब आप जाती हैं किसी भी जगह पर, आपको लगता होगा कि एक चेंज आता है मेरे अंदर, आप कोई ना कोई चेंज जरूर फील करते हैं, और वही भाव है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भाव बहुत अच्छा है।
1: आप भी शगुफ्ता ये मानती हैं कि उस जगह में एक अलग ही ऊर्जा है?
0: बिल्कुल है, बिल्कुल,
1: एक अलग ऊर्जा
0: के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा है। अब हर किसी का अपने आराध्य के साथ रिश्ता और कनेक्ट अलग होता है। मैं भगवान को अलग तरीके से देखूंगी, आप भगवान को अलग तरीके से देखेंगी, आपकी मान्यता अलग होगी, मेरी मान्यता अलग होगी। मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं मस्जिद भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूँ, लेकिन मुझे हर जगह जाकर एक ही फील होता है, एक ही तरह की भावना होती है। आई एम श्योर कि आप भी उसी के साथ कनेक्ट करती हैं, क्योंकि आप भी हर जगह जाती हैं। अब इसी पर सवाल संजय जी से लेते हैं। संजय जी, यही भावना तो हम सबको जोड़ती है आपस में।
2: जी हाँ बिल्कुल, ये मानवीय भावना, और मानवीय तो कहें तो कोई भी जीव है उसके अंदर वही भावनाएं होती हैं। जीव है और उसमें थोड़ा भी सोचने समझने की शक्ति है, तो वो इस भाव से अपने आप को विलग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि भय, भूख और ये सारी चीजें, आनंद, ये सब जीव मात्र के स्वभाव हैं। तो इसलिए इसको और बिल्कुल आपने सही कहा कि शब्द बता नहीं सकते, ज्यों गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुंह स्वाद।
1: सही बात,
2: तो वो बता नहीं सकता, वो सिर्फ
1: मुझे लगता है कि शगुफ्ता जो बात आपने छेड़ी ना, आपने कहा कि जब आप जाते हैं ऐसे कवरेज पे तो संजय जी ने तो ना जाने ऐसे कितने ही कुंभ से लेकर महाकुंभ से लेकर और कितने ही ऐसे स्पिरिचुअल कवरेज उन्होंने किए हैं, और एक आध बार मेरा भी सौभाग्य रहा कि इनके साथ मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। मैं तो खुद कहती हूँ कि ज्ञान की ये सागर है, कुछ थोड़ी गंगा यहाँ भी बहा दिया करें तो हमें भी कुछ प्राप्ति हो जाए इससे। संजय जी, तो वही मैं आपसे यही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हम देख रहे हैं ना, सिर्फ ये ज्योतिषीय एंगल से तो हमने समझा कि आज का दिन क्यों महत्व है, आज किस तरह के योग बने हैं वो तो हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे मौजूद हैं, वो श्रद्धालु ऐसे मौजूद हैं जो शायद इन चीजों को नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते धर्म के बारे में, वो नहीं जानते आज कौन सा योग बना है नहीं बना है, वो बस उनका एक मन का भाव है जिसको लेकर और भगवान के प्रति उनका समर्पण है जिसे लेकर वो यहाँ पहुंचे।
2: हाँ बिल्कुल, उनको सिर्फ ये लगता है कि ये हमारे गणपति हैं और हम गणपति के हैं, बस यही भाव है जो उनको यहाँ तक पहुंचा लेकर आया, और उसके अंदर जो समुद्र है उत्साह का और श्रद्धा का वो वहीं हिलोरे ले रहा है, वो वहीं अपने अंदर ही विसर्जन करना चाहते हैं गणपति का, और वो चाहते हैं कि गणपति हमेशा उनके साथ रहें, और इसी भावना के साथ ये जन समुद्र है। ये सब सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं आया है, ये रील बनाने वाले लोग भी नहीं हैं, ये सारे लोग हैं जो सिर्फ गणपति को महसूस करने के लिए, इस उत्सव को महसूस करने के लिए इतनी उमस भरी गर्मी में और ऐसे ये सड़कों पर उतरे हैं, और पता नहीं इनको कितनी देर तक सड़कों पर चलते रहना होगा, लेकिन कहीं कोई थकान नहीं, कहीं कुछ नहीं, जब अंदर उत्साह हो और गणपति का भाव हो तो आपको ना थकान लगती है, ना भूख, ना प्यास,
0: और आप बढ़ते जाते हैं जैसे आप लोग कवरेज पे जाते हैं। संजीव जी, आपसे सवाल लेते हुए, संजीव जी सवाल मेरा ये है कि विसर्जन के वक्त ना हम क्षमा याचना भी करते हैं, वो क्यों की जाती है?
4: इसलिए कि हमने जो भी ये धर्म में कार्य किया, ये गणपति में जो कार्य किया, देव में कार्य किया, इसमें यदि, क्योंकि मानव जीवन जो है त्रुटियों का घर है, तो त्रुटियां होती रहती, गलतियां होती रहती, इसलिए भगवान से कहते हैं प्रभु हमने मंत्र पढ़े, हो सकता है गलती हो गई हो, हमने जो आपका आसन पर बैठा तो गलत बैठा, दीप जलाया तो जो भी कुछ किया, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तमे आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। हे प्रभु, ना तो हम आपका आवाहन करना जानते हैं, ना हम आपका विसर्जन करना जानते हैं। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। हे प्रभु, हम पूजा भी नहीं जानते, फिर भी यदि कोई त्रुटि बनी हो तो भगवान कृपा करिए। या फिर गणेश जी के ये छह नाम लेते हैं तो संपूर्ण पूजा का आपको फल मिल जाता है। मोदाय नमः, प्रमोदाय नमः, सुमुखाय नमः, दुर्मुखाय नमः, अभिघ्नाय नमः, विघ्नहर्त्रये नमः। इसमें भगवान गणेश जी के पुत्रों का नाम भी आ गया जो आपने बोला था, आमोद प्रमोद। तो ये भगवान गणेश जी के ये जो छह नाम लेते हो आप, तो ये षडविनायक भगवान की पूजा होती है, और षडविनायक भगवान की जो पूजा होती है बड़ी उत्तम पूजा मानी जाती है, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से अगर जो गणेश जी का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि आनंद होता है जीवन में, कभी किसी प्रकार की कमी नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति खरबंदा जी हम भी हमारे साथ बनी हुई है। श्रुति जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, आज के दिन देखिए व्यस्तता की वजह से भले ही कोई डेढ़ दिन में विसर्जित कर दे या फिर तीन दिनों में पूजा संपन्न कर ले पांच दिनों में, लेकिन दस दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है, ये उत्सव चलता है, तो आज जो लोग अपने घर के भी गणपति जो विसर्जित कर रहे हैं, आप उनको क्या कुछ करना चाहिए? एक तो क्षमा प्रार्थना, ये तो लास्ट में हम करते ही हैं जब हम विसर्जित करते हैं, लेकिन उसके अलावा आज के दिन कोई ऐसी खास चीज जो हमें करनी चाहिए जो घर पे कर रहे हैं?
5: गणेश जी की कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि पूजा भी ना उनकी कृपा से करने का मौका मिलता है, जैसे मुझे इस वर्ष मिला, पिछले वर्ष नहीं मिल पाया था, जब उनकी कृपा होती है तो उनकी इच्छा अनुसार जो है जब हम उनके विसर्जन के लिए जाते हैं तो क्या हो जाता है, पहले उत्तर पूजा करी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि वो उत्तर दिशा में वापस अपने घर जाएंगे जब हम उनका विसर्जन करेंगे। शिदोरी कहते हैं उसको, पोटली बांधी जाती है सांप के लिए कि आप उसमें कुछ पंचमेवा या मोदक, इस तरह की यात्रा के लिए जो आपको खाना जो कहते हैं वो साथ में बांध दिया जाता है। तो और जब उनकी पूजा अर्चना करी जाती है उनको भेजने से पहले, तो कपूर से जो उनकी आरती करी जाती है, फिर उन्हें अक्षत और चंदन जो है चढ़ाया जाता है। अक्षत टूटा हुआ नहीं होता, पूरा साबुत माना जाता है, मून से जुड़े हैं ये। कहीं ना कहीं यहाँ पे ना ज्योतिष में सब तत्वों का यहाँ खेल है, तो बहुत चुन के हम बताते हैं कि ये वस्तु होती है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब जब आप पूजा करके घर आते हैं तो ऐसे कहते हैं क्योंकि अब हमने उनका विसर्जन कर दिया है, जिनका प्राण प्रतिष्ठा किया था उनको विसर्जित कर दिया है। तो घर जब आते हैं तो घर की चौखट पर ही एक सांकेतिक स्नान होता है, और जब आप अंदर आते हैं तो उसके बाद आप जो गणेश जी की वो जगह थी, तुरंत पूजा हटाई नहीं जाती, वहां पे देसी घी का दिया, एक घी का दीपक जिसको कहते हैं, वो जरूर जलाकर उस जगह पर रखा जाता है। और अगर हो सके तो गणेश पुराण

0: हम करते हैं तो उसके बाद अगर वो पूजा संपन्न होती है तो तुरंत कई लोग साफ सफाई कर देते हैं, सब कुछ वहां से फूल पुष्प जो भी हमने चढ़ाया होता है प्रसाद वो हटा देते हैं, लेकिन आप जो बता रही हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। शगुफ्ता, अभी हालांकि हमें ब्रेक लेना है लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो हमें और अभी जानने
1: हैं, बहुत सारी लिस्ट लगी हुई है, सवाल पूछेंगे लेकिन ब्रेक लेना पड़ेगा, हमें हमारी मजबूरी है। लेकिन ये खास कवरेज जो महा कवरेज लगातार जारी है, लौटेंगे, आप देखते रहिए जीएनटी।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: पितृपक्ष की महिमा, क्या है पितृपक्ष के पूजा के नियम और क्या है पितृपक्ष की सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए

0: पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकले लाल बादशाह राजा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला।

0: बप्पा की विदाई के साथ ही इस साल के गणेशोत्सव का हो रहा समापन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में पांच मनाजे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन। शोभा यात्रा का शुभारंभ ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। अकोला में भक्त भारी मन से कर रहे बापा की प्रतिमाओं का विसर्जन। ढोल नगाड़ों की धुन पर गजानन से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना। प्रशासन ने बनाया आर्टिफिशियल कुंड।
1: अनंत चतुर्दशी के मौके पर जालना में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। महानगर पालिका ने चलाया बप्पा का आशीर्वाद प्रकृति के साथ अभियान। इको फ्रेंडली उत्सव मनाने वालों को बांटे पौधे।
0: यूपी में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट। 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।

0: तो गुड न्यूज टुडे पर लगातार आपको ये महा कवरेज हम दिखा रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति विसर्जन हो रहा है। महाराष्ट्र के कोने कोने से तस्वीरें हमारे संवाददाता लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं, और बीच बीच में शगुफ्ता भी अपनी भावनाएं बता रही है मुंबई के उनके अपने एक्सपीरियंस, और इस समय हर साल बहुत मिस करती है। उम्मीद करेंगे कि अगले साल हम वहीं से लाइव करें शो, ये हम चाहेंगे। क्यों शगुफ्ता,
1: ये मन का भाव बोल दिया श्वेता ने। देखिए, अब बप्पा की भक्ति में अगर आप भी लीन होना चाहते हैं तो एक बार तो मुंबई जाना चाहिए। संजय जी ने कहा कि उन्होंने भी कभी कवर नहीं किया है, तो संजय जी को साथ लिए चलेंगे। लेकिन संजय जी को साथ लेकर चलेंगे। संजय जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे श्वेता ने आपके बारे में कहा ना कि आप ज्ञान के सागर हैं, तो सागर में एक नौका में मुझे बिठाइए और मेरी नैया पार लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान जो आपसे मिलता है ना, उससे ही हम तर जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें। बप्पा की आराधना का संकल्प देखिए पूरा हो चुका है। वो घड़ी आ गई है जब पूरे देश में बप्पा को विदाई दी जा रही है। मुंबई समेत देश के तमाम हिस्सों में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया की गूंज आपको सुनाई देगी।
0: बिल्कुल, आपको बता दें आज अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर गणपति उत्सव संपन्न हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा ही भावुक क्षण होता है, क्योंकि आज लोग अपने घरों और पंडालों से गणपति की विदाई कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अगले बरस फिर जल्दी आए। पंडालों में बप्पा विराजे और श्रद्धालुओं और भक्तों को उनकी सेवा और पूजा का अवसर फिर से मिले।
1: तो देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं आपके सामने। कहीं गणपति की विदाई के लिए जुलूस निकल रहा है, कहीं तैयारियां चल रही हैं। तमाम शहरों में गणपति को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। नाचते गाते हुए भक्त आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणेशोत्सव पर्व का आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर समापन हो रहा है। देश भर के तमाम गणेश पंडाल बप्पा की मूर्ति विसर्जन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सुबह से ही गणेश पंडालों में भक्ति की भारी भीड़ देखी जा सकती है। भारी तादाद में भक्त बप्पा का आशीर्वाद लेने आए हैं। आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद नम आंखों से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जा रहा है।
2: आंखें नम है, दिल में बप्पा के लिए प्यार है, और जुबां पर बस एक ही जयकारा है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। ये वो बेला है जब भक्तों का दिल भारी है, क्योंकि बप्पा की विदाई का वक्त है। लेकिन ये खुशी भी है कि अगले साल फिर बप्पा दोगुनी खुशियों के साथ लौटेंगे, और यही वजह है कि मुंबई की सड़कें आज भक्तों के सैलाब से पटी है। कहीं गुलाल उड़ रहा है तो कहीं फूलों की भव्य मालाओं से बप्पा को विदाई दी जा रही है। कहीं ढोल ताशों की गूंज के बीच हर भक्त बप्पा को अगले बरस फिर आने का न्योता दे रहा है। और सबसे भव्य नजारा मुंबई के लालबाग में दिखाई दिया, जहां जैसे ही लालबाग के राजा विदाई के लिए निकले, सड़कें आस्था के समंदर में तब्दील हो गई। दूर दूर तक सिर्फ भक्ति भक्त, हाथों में फूल, आंखों में आंसू और दिल में बप्पा के लिए अटूट विश्वास नजर आया।
3: विसर्जन के लिए गिरगांव की चौपाटी की तरफ लालबाग के राजा, ये देखिए, फाइनली बाहर निकल चुके हैं। और किस जश्न उल्लास के साथ यहाँ तमाम वो गणेश भक्त जो मौजूद हैं, जो निहार रहे थे सुबह से ही घंटों से कि बस एक बार बप्पा की झलक देखने को मिल जाए, क्योंकि ये विसर्जन है। आज जी भर के बप्पा को देखेंगे और उसके बाद एक साल पूरा का पूरा इंतजार होगा। जी हाँ, देखिए कितने ज्यादा भव्य, कितने ज्यादा खूबसूरत इस समय लालबाग के राजा लग रहे हैं। दरबार खुशी से झूम उठा है। आप देखें, जिस तरफ भी आपकी नजर जाए, लालबाग के राजा को सिर्फ एक बार देखने के लिए खिड़कियों पर, गली पर, ब्रिज पर, ट्रैक पर, यहाँ तक के बांस बम्बू के जो टेंट है उस पर भी लोग चढ़ गए हैं। पत्थरों पर भी लोग चढ़कर बिना अपनी जान की परवाह किए लालबाग के राजा का एक दर्शन करने के लिए घंटों से गर्मी में यहाँ पर मौजूद हैं। हर किसी को प्यास भी लगी होगी, थकावट भी हुई होगी, लेकिन लालबाग के राजा को देखने के लिए जो उत्साह, जो एनर्जी शरीर में अपने आप आ रहा था, उसका नजरिया ये है, उसकी तस्वीर ये है कि फाइनली वो तमाम लोग जो यहाँ पर लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए घंटों से खड़े हुए थे, उन्हें बप्पा का दर्शन करने का मौका मिल गया।
2: लालबाग के राजा को मुंबई के भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक माना जाता है। हर साल गणेशोत्सव के दौरान यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है कि लालबाग के राजा की स्थापना की परंपरा ने समय के साथ एक विशाल जनआस्था का रूप ले लिया और आज लालबाग का ये दरबार सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश भर के गणपति भक्तों के लिए श्रद्धा का बड़ा केंद्र बन चुका है। लालबाग के राजा को लेकर भक्तों में खास विश्वास है। मान्यता है कि यहाँ आकर मांगी गई मन्नत बप्पा तक जरूर पहुँचती है, इसलिए गणेशोत्सव के दिनों में यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। कोई नौकरी और कारोबार की सफलता मांगता है, कोई परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने की आस लेकर बप्पा के दरबार में पहुँचता है।
3: लालबाग के राजा की आप बहुत ही ज्यादा करीब से इस समय लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर लालबाग के राजा की दरबारी में मुंबई पुलिस भी एक बड़ी संख्या में मौजूद है। 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे मुंबई को संभाल रहे हैं, बंदोबस्त कर रखा है। और आज 12वां दिन बहुत ही सफलता से पूर्वक मुंबई पुलिस का एक बहुत बड़ा सहयोग योगदान के जरिए पूर्ण हुआ है। आज विसर्जन के दिन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर न केवल मौजूद हैं बल्कि लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं और अपने मोबाइल से उनकी तस्वीर भी खींच रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए अब लालबाग के राजा का विसर्जन का समय फाइनली आ ही गया है, वो घड़ी आ ही गई है जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। दो तरह की खुशी लोगों के आंखों में देखी जा रही है, पहली तो खुशी के आंसू हैं, दूसरे दुख के आंसू हैं। खुशी के आंसू इसलिए हैं क्योंकि ये जो पर्व है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से हो गया। दुख के आंसू इसलिए है क्योंकि बप्पा फाइनली हम सबको विदा कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी रियलिटी है, सच्चाई है, वो तो यही है ना कि बप्पा जाएंगे नहीं तो आएंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि गणपति बप्पा मोरिया उर्चा वर्षी लोकरिया।
2: और अब भले ही विदाई की बेला हो लेकिन भक्तों के दिल में बप्पा हमेशा विराजमान है। आज आंखें नम है लेकिन उम्मीद कायम है और अब अगले आगमन का इंतजार भी शुरू हो गया है। और इसी उम्मीद के साथ हर भक्त अपने बप्पा से कह रहा है, तुम जा तो रहे हो लेकिन जल्दी लौट कर आना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए मुंबई चलते हैं। मैं श्वेता को कुछ बोल रही थी। श्वेता
0: भाई, धर्मेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो धर्मेंद्र आपको आवाज अगर आ रही हो तो शगुफ्ता पहले ही ये कह चुकी है कि पूरे गणपति उत्सव में आपने हमें एक से एक तस्वीरें झांकी सब दिखाई। आज जयकारा आपने नहीं लगाया तो पहले जयकारा लगाया आप, तब आपसे सवाल पूछेंगे।
4: बिल्कुल, शुरुआत इतने ही करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया उर्चावर्षी लोकरिया, और वाकई में यही गूंज जो है वो मुंबई महाराष्ट्र और पूरे देश में इस समय गूंज रही है। लेकिन वाकई में जो सबसे खास तस्वीरें हैं वो मुंबई की ही देखने को मिलती है और इसलिए इस जगह जहाँ इस समय हम लोग मौजूद हैं। फिर एक बार बताऊं मैं कि दादर के किले और चौपाटी पर मैं मौजूद हूँ जहाँ बहुत ही अच्छा प्रशासन ने काम कर रखा है व्यवस्था को लेकर के, और तमाम जो मूर्तियां हैं यहाँ पर ले आकर के विसर्जित की जाएंगी, जिसमें लालबाग के राजा चिंतामणि, परेल के राजा महाराजा लंबोदर, वीरता सुखता, बहुत तमाम वो सारे पंडाल जहाँ की मिन्नतें होती हैं और हर कोई वहाँ पहुँचता है अपने मिन्नत के लिए, सर वाकई में उनकी मिन्नतें पूरी भी हो जाती हैं। पूरी रात भर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। अभी जो ग्रैंड मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आंकड़ा हमारे पास पहुँचा है उसके हिसाब से लगभग 100 के करीब जो ऊंचे मूर्तियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं विसर्जन के लिए। इसके अलावा 200 से ज्यादा छोटी जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जा चुका है क्योंकि गिरगांव चौपाटी को दो तरफ से घेरा हुआ है। पहला जो तरफ है वहां से ऊंची ऊंची प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाई जा रही है। लेकिन इसके अलावा ही 12 छोटे कृष्ण तालाब भी बनाए गए हैं जहाँ पर छोटी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक तमाम मंडलों के जो प्रतिमाएं हैं गणेश जी की वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ लाखों के।
0: अच्छा, एक और सवाल धर्मेंद्र आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस बार जो विसर्जन वहां पर हो रहा है तो उसका क्या तरीका रखा गया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और क्या उसके साथ कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत दी गई है वहां समुद्र तक उसके पास, या फिर पूरा, क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना हुजूम में, तो इस बार क्या वहां पर रूल रेगुलेशन क्या रखे गए हैं?
4: देखिए दो चीजें यहाँ पर जो आज सबसे ज्यादा देखी जाएंगी, जो सबसे पहली बात है हमेशा की तरह कुछ ही पदाधिकारी जो ट्रेनर होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बप्पा के साथ गिरगांव चौपाटी में भीतर जाने दिया जाएगा और पहले से ही समुद्र की तरफ से समुद्री जो लोग हैं जिन्हें उनकी जानकारी है, जिसमें नेवी भी आता है, उनकी एक टीम होगी जो इनकी पूरी तरह से हेल्प करेगी। लेकिन जो सबसे खास बात बड़ी वाली है वो ये कि मुंबई का जो सबसे पुराना पंडाल है जिसे गणेश नदी और मुंबई के राजा के नाम से जाना जाता है, 99 साल इस समय मना रहा है और 1 साल के बाद सेंचुरी करने वाला है। उनके पप्पा को लेकर के इस बार एक जो खबर हमारे पास है वो ये कि एक बहुत बड़ी सी जहाज इस समय पहले से ही लालबाग माफेरी का गिरी और चौपाटी पे लगाए रखी है। इस बार गणेश गल्ली यानी कि मुंबई के राजा को उस जहाज में बिठा करके समुद्र में बहुत गहराई तक लेकर जाया जाएगा, भीतर की तरफ ले जाया जाएगा और क्रेन द्वारा पहली बार 33 फीट के ऊंचे प्रतिमा गणेश जी की, जो इस बार संत की भूमिका में, संत के अवतार में है, उनका विसर्जन करा जाएगा। ये एक नई चीज इस बार गणेश द्वारा अपनाई जा रही है और अगर ये सही सलामत तरीके ढंग से हो गया तो आने वाले साल से बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस दरखास्त करेगी उन सभी बड़े पंडालों से कि इस तरह से बड़ी प्रतिमाओं
1: बिल्कुल इंतजाम बहुत बढ़िया किए गए हैं। धर्मेंद्र, एक और सवाल यहीं पर पूछूंगी इसी से जोड़ता हुआ। धर्मेंद्र, एक तो ये बताइए इस हिस्से में जहां पर आप मौजूद है ना, कितने घंटों से मौजूद है और कितने स्वरूप और कितने रूप गणपति जी के आपके सामने से गुजर चुके हैं, कितनी प्रतिमाओं के दर्शन आप कर चुके हैं?
4: देखिए अभी तक कवरेज के दौरान तो बहुत से मुझे लगता है 200-250 तो हमने कम से कम को दिखाया है, लेकिन अभी ये आंकड़ा आज विसर्जन के लिए 300-350 के आस पास पहुंच गया है। खास बात ये है कि अलग अलग अवतार, अलग अलग टीम संदेश देते हुए जिसमें राम, बालाजी, इसके अलावा संतों की भूमिका दिखाई गई है, इसके अलावा शिवाजी महाराज वो सारी चीजें दिखाई गई है, न केवल महाराज बल्कि देश के उन तमाम बड़े बड़े मंदिरों की भी बातें हुई है, जिनमें केदारनाथ की बात हुई है, पशुपतिनाथ महाराज जो नेपाल में है बसे उनकी बात हुई है। और गजब की ये बात है कि एक मूर्तिकार एक रूप दे देता है, आकार दे देता है बड़े बड़े पंडालों की ऊंची ऊंची प्रतिमाओं को, जिनकी जो हाइट है 25 फीट से लेकर के 43 फीट तक होती है। अलग ही तरह का एंगल होता है, अलग ही तरह का ये कह सकते हैं कि बड़े ही अच्छे तरीके से गणपति को आकार देने के साथ साथ बैलेंस में बहुत ज्यादा काम होता है। जितने भी एक्सपीरियंस मूर्तिकार है उन्हें ही ज्यादा ये काम मिलता है और वाकई में अलग अलग तरह की सुंदर मूर्तियों को देखने का जो एहसास है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फिलहाल आज सुबह से लोग अपने घरों के और साथ ही साथ जो छोटे पंडालों के जो पप्पा हैं उनको विसर्जन के लिए तो निकाल ही देते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन की गणपतियां घर गृहस्थी गणपति जिसे कहते हैं उनके विसर्जन के लिए रखी थी वो अब सारे फ्री हो चुके हैं और साउथ मुंबई धर्मस्थल के रूप में बदल ही जाता है। हर कोई अपने पप्पा का विसर्जन करने के बाद लालबाग, चिंतामणि, गणेश गली के जुलूस के साथ जुड़ जाता है। ये तस्वीरें सुबह 8 बजे से शुरू होते हुए
0: एक और सवाल आपसे साथ ही साथ पूछूंगी, फिर मैं संजय जी से सवाल करूंगी। धर्मेंद्र, ये बताइए कि देखिए अभी थोड़ी ही देर, जैसे लगातार अगर हम ये फ्रेम देख रहे हैं ना, तो सिर्फ लोग आते जाते एक तरफ दिख रहे हैं लेकिन ट्रक वहीं का वहीं है, मूर्ति जो है मुझे वहीं की वहीं दिख रही है। जिस हिसाब से आपने कहा था कि लगभग 5,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन इस बार हुआ है, ऐसा ही कुछ आपने आंकड़ा बताया था, सभी मूर्तियों का विसर्जन होते होते कितना वक्त लग जाएगा धर्मेंद्र?
4: देखिए साउथ मुंबई का जो आंकड़ा है वो करीबन 1-1.5 हजार जो बड़ी मूर्तियां साउथ मुंबई में है और साउथ मुंबई में दो ठिकाने हैं जहां पर विसर्जन की तैयारी कर रखी है बीएमसी द्वारा, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो विसर्जन स्थल है वो गिरगांव चौपाटी में माना जाता है। 3-4 गेट है, अलग अलग तरीकों से भीतर की तरफ बढ़ाया जा रहा है। पप्पा इस समय इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पप्पा जैसे ही 300-400 मीटर की दूरी पर जाएंगे वहां पर एक बहुत बड़ा सिग्नल है, चारों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही है, उन्हें तकलीफ ना हो इस बात का पूरा जो काम है वो ट्रैफिक पुलिस देख रही है। और एक पप्पा के विसर्जन के बाद ही दूसरे पप्पा जाते हैं। इस समय लोखंड के कम से कम 5 से 6 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जैसे एयरपोर्ट पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोकल ट्रेन या फिर जो भी सेंट्रल ट्रेनें होती हैं अपने स्टेशन पर रुक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रुके हैं। उसी तरीके से पप्पा के विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी पर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म किया गया है। एक बार में लगभग 8 से 10 पप्पा जो है 5 मिनट के अंदर उनका विसर्जन हो जाता है।
1: बिल्कुल
4: सिर्फ गिरगांव की, लेकिन इस तरह के 7 बड़े बड़ी जगह है जिसमें जोहर चौपाटी, वर्तोवा बीच, मलाड बीच के भी और पवई बीच के भी नाम शामिल है। उपनगर मुंबई के जो बड़े पंडालों के पप्पा है उस तरफ जाते हैं विसर्जन के लिए।
1: बिल्कुल धर्मेंद्र, मुझे लगता है कि श्वेता की आवाज सुन ली गणपति पप्पा ने, वो वहां से आगे बढ़ गए हैं, बाकी मूर्तियों की भी बारी आ गई है। देखिए विघ्न हरता है, विघ्नों को भी हरते हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति करते हैं। धर्मेंद्र, अगर आवाज आ रही है तो ये बताइए यही रूट है जहां से लाल बादशाह राजा की सवारी भी निकलेगी?
4: बिल्कुल, जो पुलिस ने जिस तरीके से कानूनन एक कह सकते हैं साखली बना रखी है अपनी सुरक्षा को लेकर के, ये एकमात्र रूट है जहां से जितने भी बड़े पंडालों की ऊंची प्रतिमाएं हैं इसी जगह से आएंगी, और उसके बाद से बाकायदा पुलिस की एक जो स्थल है बीएमसी की एक स्थल है, इसके अलावा होमगार्ड की भी एक बहुत बड़ी टीम है, वो एक गणपति बड़े बप्पा को पूरी तरह से घेर लेती है और फिर अपनी सुरक्षा में अभी तक सेवादार सुरक्षा देते आ रहे हैं और एक छोटी छोटी टोलियां गणपति को सेवा देते हुए सुरक्षा देते हुए मुंबई पुलिस की चल रही है। लेकिन 300-400 मीटर की दूरी पर जाने के बाद ही जो चौराहा आता है बहुत बड़ा सिग्नल गिरगांव का दिखता है और फिर सीधे समुद्र के किनारे लोग चले जाते हैं, वहां से पुलिस प्रशासन अपने बंदोबस्त में अपने अंडरटेकिंग में बप्पा को ले लेते हैं और उसके बाद एक बहुत ही अकेले तरीके से वहां पर विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो कर दी जाती है और फिर धीरे धीरे बीएमसी के तमाम जो कर्मचारी हैं वो उन्हें वो रास्ता भी दिखाते हैं जहां से बाहर की तरफ निकल जाना है और फिर सीधे अपने अपने मंजिलों अपने अपने घरों पे जाना है। लेकिन इस बात की तो सच्चाई बिल्कुल यही है, एकमात्र रास्ता है साउथ मुंबई में बसने वाले जितने भी बड़े प्रतिमाएं हैं यहीं से आएंगे और यहीं से चिंतामणि के राजा कुछ देर में दिखेंगे, गणेश गली दिखेंगे और आखिरी में लालबाग के राजा भी यहीं आएंगे और लालबाग के राजा जब यहाँ पहुंचेंगे तो पहले आधे घंटे तक लगातार जो संस्कृति है उस पर भजन कीर्तन नाच गाना डांस ढोल ताजे और स्पेशली जो लालबाग के राजा को लेकर के थीम पर उनका भजन और गाना बनाया गया है उस पर लोग झूमेंगे और फिर धीरे धीरे ये जो महापर्व है ये जो महागणपति पर्व है ये समापन की तरफ होगा।
0: मुझे लगता है कि ये जो चर्चा जो महाकवरेज लगातार हम दिखा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं इसमें मुंबई पुलिस की तारीफ कर लेना भी बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए हजारों नहीं यहाँ लाखों की तादाद में आपको लोग दिखेंगे इस पूरे जो ये जो पूरा इलाका है जहां से गणपति लाए जा रहे हैं और विसर्जन हो रहा है। तो मुंबई पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, देखिए दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग लगी है क्योंकि हजारों हजार लोग दोनों ही तरफ जहां से ये ले जाया जा रहा है दोनों ही तरफ आप देखिए लोग वहां पर खड़े हैं और एक झलक गणपति का देख लेना चाह रहे हैं, पा लेना चाह रहे हैं और इस बीच सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और वाकई काबिले तारीफ है।
1: संजय जी, जी आप सवाल पूछेगा लेकिन इसमें आपने जैसे मुंबई पुलिस की तारीफ की ना, एक और चीज इसमें ऐड कर देती हूँ जितनी इन्फो मेरे पास है। जब लाल बादशाह की राजा की सवारी मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचती है ना, सबसे पहले मुंबई पुलिस को वहां पर सलामी दी जाती है कि आप इतनी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं तो आपको हम सलाम करते हैं, उसके बाद फिर ये सवारी आगे बढ़ती है।
0: बिल्कुल, आप देखें ना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और ना सिर्फ आज के दिन की बात है, जब से यहाँ पर यानी 14 तारीख से जब से गणपति विराजते हैं तब से लेकर अभी तक जब तक विसर्जित ना हो जाए उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये लालबाग चौराहे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए वाकई जो लोग ठीक से दर्शन नहीं कर पाए थे एक बार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से एक बार वो भी दर्शन कर ले, हम भी इसी माध्यम से दर्शन कर पाते हैं, उम्मीद करेंगे लालबाग चौराहा अगली बार हमें भी दर्शन के लिए वहां मुंबई बुलाएं तो हम सभी लोग साथ में वहां जाएं और वहां से हम लाइव करें। लेकिन देखिए ये भव्यता ये दिव्यता, वाकई अभी संजय जी यहां पर हम बात कर रहे थे कि भव्यता की बात कर रहे थे, इस दिव्यता की बात कर रहे थे और उसमें आपने एक बात की कि आप हमारे देश में जितना भी साउथ आप ले लीजिए, कहीं भी आप साउथ का पार्ट ले लीजिए, वहां पर ये भव्यता ये दिव्यता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसके पीछे आप रीजन बताएं।
5: इसमें हमने देखा है कि देश का हो या किसी भी शहर का हो दक्षिणी हिस्सा ज्यादा समृद्ध रहता है। आप दक्षिणी दिल्ली ले लीजिए, दक्षिण कोलकाता ले लीजिए, दक्षिण मुंबई ले लीजिए और गोवा दक्षिण देख लीजिए, तो ये दक्षिण का हिस्सा ज्यादा समृद्ध होता है। और अगर भारत के दक्षिण में देखें तो श्रीलंका जो कुबेर की राजधानी थी, कुबेर का आधिपत्य था वहां, तो रावण ने वही देख कर कि वो आधिपत्य वहां पर है और बहुत समृद्धि और ऐश्वर्य है तो इसलिए रावण ने वहीं पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्होंने फिर कुबेर को भगाया, लड़ाई में हराया और वहां पर उसके कब्जा लेके बैठ गए। वो श्रीलंका के बारे में लोग कहते हैं कि जब जो लंका बनाई उसकी कहानी भी बहुत दिव्य है। दिव्य ये है कि एक बार पार्वती जी ने कहा कि महादेव आप तो ऐसे रह रहे हैं हिमालय में लेकिन ये बच्चे छोटे छोटे हैं, जैन जी हैं तो इनको तो तमाम सुविधाएं चाहिए, इनको क्यों क्या परेशानी, इनको क्यों यहाँ पर इतनी ठंड में और ऐसे जंगल में रख रहे हो। उन्होंने कहा हमें तो भाई बच्चों के लिए कुछ सुविधा बढ़िया शहर बनवाइए। तो महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि भाई एक बढ़िया शहर का निर्माण किया जाए और वो शहर पूरा सोने से लकदक, हर तरह की सुविधाएं और एकदम बढ़िया दक्षिण दिल्ली टाइप का बढ़िया बढ़िया शहर बनाया। और उस शहर का जब प्रवेश होना था, उसका उद्घाटन होना था, उसमें गृह प्रवेश की बात थी, तो उन्होंने फिर ये बताया कि भाई कौन से ऋषि इसमें वो कर सकते हैं। तो विश्रवा ऋषि उस समय बहुत विद्वान माने जाते थे रावण के पिताजी, तो उनको बुलाया गया और उनसे वो पूरी पूजा विधि कराई गई। और जब उनसे ये कहा गया कि विप्रवर दक्षिणा बताइए, उन्होंने कहा रे देवाधिदेव महादेव आपसे क्या दक्षिणा। तो पार्वती जी ने कहा कि अरे ऋषिवर ऐसा नहीं हो सकता, जब तक दक्षिणा ना हो तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता है, तो आप दक्षिणा बताएं। उन्होंने कहा जी ये शहर ही मुझे दे दो दक्षिणा में
0: शहर मांग लिया।
5: तो उन्होंने कहा कि अब तो हम वचन से बद्ध हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि पार्वती हमारी किस्मत में यहीं रहना लिखा है। उन्होंने कहा अब चूंकि शहर तुमने ले लिया है तो अब इसको ऐसी जगह ले जाओ जहां हमारी भूमि से अलग हो। तो वो समुद्र में फिर वो लंका वहां पर स्थापित हुई। और फिर इस तरह से उन्होंने फिर बाद में विश्रवा ऋषि ने फिर रावण के भाई थे कुबेर को वो लंका मिली, लेकिन फिर बाद में रावण ने उस पर कब्जा किया। तो ये लोक कथा दंत कथा।
1: बिल्कुल, एक और चीज जो जेंजी का जिक्र आपने किया ना, जेंजी को ये कहना बड़ा अच्छा लगता है आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली, ये आजकल स्टेटमेंट हर जगह सुनने को मिलती है। चलिए खास कवरेज लगातार जारी है, इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। महाकवरेज चलती रहेगी, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियो भी शेयर किए। यूपी के गाजियाबाद से पूजा ने गणेशोत्सव की शानदार तस्वीरें शेयर की है। यहाँ बाल स्वरूप में बप्पा की प्रतिमा को बड़े ही सलीके से सजाया गया है। माखन खाते हुए भगवान गजानन को सुंदर कमल का फूल अर्पित किया गया है। साथ ही मोर के पंख से मंगल मूर्ति के ऊपर छाया की गई है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर से रक्षा ठाकुर ने भेजी है। शानदार पंडाल में स्थापित गणपति का अनुपम श्रृंगार किया गया है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। बप्पा की विदाई के साथ ही इस साल के गणेश उत्सव का हो रहा समापन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घर में बने कृत्रिम तालाब में किया विसर्जन। पुणे में पांचवा नाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

0: चलिए हम आपको इस वक्त सीधा लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल की जयंती के अवसर पर भजन जामिंग कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधा वहीं की तस्वीरें आपको वहीं ले चलते हैं
1: और प्राची के रंग में रंग सकते हैं। तो पार्वती गाना आप में से सब लोगों ने, कितने लोगों ने इसमें से हनुमान फिल्म देखी है? जी, जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों से विशेष अनुरोध है कि वो हनुमान हंस फिल्म जरूर देख लें, क्योंकि आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सारे के सारे भक्ति के रंग में डूबने के लिए ही आए हैं ना। तो भक्ति में सराबोर होने के लिए ये जो फिल्म है ना, एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप देख कर आएंगे हॉल में, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम पार्वती गाना शुरू करते हैं। दादा, तो आप लोगों को याद है ना पार्वती गाना?
2: जब चित पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती का,
1: तो मैं अकेला नहीं गाऊंगा, आप लोगों के साथ गाएंगे।

का भार है। डायनेमिक्स जटा लटाना कभू सवार है, दीसत महाभयंकर मूड़ पे आधो चंदा और बेला पे घूमे शंकर। जटा लटाना कभू सवार है, दीसत महा

आंखों मर रही, वो घुमर रही हैं या मर रही हैं, इस मंच से आज इसका जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने पूछा, मैंने बताया नहीं किसी बात, वो है काय को मर रही, क्यों मर रही हो। लेकिन वो मर रही नहीं है, वो मर रही है। मर रही में एक इज्जत है, जो आप में और तू में अंतर है ना, वो मर रही और मर रही में है। तो बुंदेलखंडी में बहुत इज्जत से अगर किसी को बोले तो काय को मर रही, क्यों मर

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: विशाल चतुर्वेदी जी हैं जिन्होंने हृदय में जिनके सीताराम कंपोज भी किया है। और आइए ये खूबसूरत जोड़ी हमारे बीच है, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी जी और साधु तिवारी जी के लिए।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, चरण स्पर्श स्वीकार करें। मैं हनुमान अंश फिल्म का राइटर और डायरेक्टर हूं। हमने बहुत ही, आपने सबको पता होगा कि बहुत ही छोटे से बजट में एक फिल्म बनाई और आज वो दुनिया में जो कर रही है, हम लोगों के बीच में जो कर रही है, उसमें एक छोटी सी लाइन मैंने एंड क्रेडिट में गाई थी। वो मुझसे आ गया कि मैं वो लाइन्स गाऊं।

आप में से हनुमान चालीसा कितने लोगों को आती है? हाथ खड़ा करें, क्या बात है। हमारी फिल्म में हनुमान चालीसा को सेंटर बना के हमने फिल्म बनाई है। फिल्म का क्लाइमेक्स सीक्वेंस हमने देखा होगा, हनुमान चालीसा। लेट्स डू वन हनुमान चालीसा टुगेदर।

I can't hear. Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Jai Jai Hanuman Sri Ram. Ram Ram Ram. Ram Ram. सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि ओर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रेम भरता संभाए सहस बदन।

0: ही जलधि लाग गए सृजना ही दुर्गम काज जगत के जेत सुगम अनुग्रह तुम रे देत राम दुआरे तुम रखवारे हो दुना आज्ञा बिन पैसा सब तुगल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो कोडर्ण आप समारोह जपत निरंतर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ सोई अमित जीवन चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सिद्धि असबर दीन राम रसायन सदा रहो तुमरे भजन जन्म जन्म के अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव गिनाही जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा की
1: जय श्री राम जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां हनुमान अंश के इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। और आइए चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं
0: पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप
2: संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित
0: बोलो भाई सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय नव पार्वती हर हर महादेव।
1: तिवारी जी और डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी जी के लिए। और आइए एक बार फिर से आप हवाले हैं एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के जोरदार तालियां वंस अगेन बैक स्टेज सिब्लिंग्स के लिए।
3: 140 करोड़ लोग मेरा भारत महान था मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहेगा। सब मिलके बोलो भारत माता की
1: yeah!
3: भारत माता की।

0: तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे, भजन जैमिंग में पहुंचे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की

0: सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की महिमा के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है तो आज हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष की महिमा क्या है, इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत तो हो चुका है उन्हें हम सामान्यतः पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक उसकी आत्मा मन के साथ जुड़ करके सूक्ष्म लोक में रहती है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है और पितृपक्ष के 15 दिनों में जो आपके पितर हैं वो सूक्ष्म लोक से धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उनको आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में, उनके प्रेम में, उनके सम्मान में दान और धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 26 सितंबर को होगा तो पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है और ये पितृपक्ष 10 अक्टूबर तक यानी पितृ विसर्जन अमावस्या तक रहेगा। मेष राशि, इस समय आपको बेवजह का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व बढ़ेंगे, पैसा लगाने में, धन के निवेश में सावधानी रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पितृपक्ष बड़ा पवित्र समय है, पितरों का आशीर्वाद पाने का समय है, तो पितृपक्ष में कौन से काम किए जाएं, कौन से नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके। दोपहर के समय जिसको कुतप वेला कहते हैं, लगभग मध्य दोपहर के समय में ये जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश, एक तरह की घास है कुश, इसको रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है, और पूर्वज के देहांत वाली तिथि पर किसी निर्धन को भोजन कराया जाता है। तो जब आप अपने पितृ के देहांत की तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, किसी निर्धन को भोजन करा लेते हैं, तो इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे,
अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए पितृपक्ष में नियमित रूप से पितरों को जल अर्पित किया जाता है, जिसको तर्पण करना कहते हैं, और जिस दिन उनका देहांत हुआ होता है, जिस तिथि पर, उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। तो आखिर परिवार का कौन सा व्यक्ति पितरों के लिए जल अर्पित कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है? घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो रोज तर्पण पितृपक्ष में रोज अपने पूर्वजों को जल दे सकता है। अगर घर में कोई वरिष्ठ पुरुष नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष, भाई, पुत्र, भतीजा, ये भी तर्पण कर सकता है, जल दे सकता है। पौत्र यानी पुत्र का पुत्र या नाती यानी पुत्री का पुत्र, इसको भी तर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। आजकल के समय में, वर्तमान में, स्त्रियां भी तर्पण करती हैं, श्राद्ध करती हैं, अगर दूर दूर तक घर में कोई पुरुष नहीं है तो। तर्पण जो भी करे नियमानुसार करे, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप तर्पण कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने पितरों को जल दे रहे हैं, तो पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करना चाहिए। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए पितृपक्ष का समय बड़ा पवित्र समय है, लेकिन पितृपक्ष में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपना जीवन जीने में, अपने रूटीन का पालन करने में। तो पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन किया जाए? देखिए पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करिए और अपने पितरों को याद करिए, उनके नाम से संध्या में दीपक जलाइए और दिन के समय में तर्पण करिएगा। कुतप वेला, मध्य दोपहर का जो समय है,
इस समय में पितरों को जल दीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए, इसी समय में तर्पण करने का विशेष महत्व है। और जब आप तर्पण करेंगे तो जल में काला तिल मिला लेंगे, हाथ में कुश ले लेंगे और इसके बाद जब आप जल देंगे, जब आप तर्पण करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। जो कोई व्यक्ति तर्पण कर रहा है, पितृपक्ष का पालन कर रहा है, पितरों के लिए दान कर रहा है, दीपक जला रहा है, उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस 15 दिन की अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिएगा। जहां तक हो सके पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और अगर आप पितरों को फूल चढ़ाते हैं या जल में फूल डालकर उनको अर्पित करते हैं तो वो हल्की सुगंध वाले होने चाहिए, तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। और पितरों का श्राद्ध करना है, पिंड दान करना है, तर्पण करना है तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके ये काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले तो पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करिएगा। सारी भगवत गीता का पाठ ना भी कर पाए तो 11वें अध्याय का नियमित पाठ करिएगा। कर्ज लेकर या दबाव में आकर, प्रेशर में आकर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर प्रेशर में कष्ट में श्राद्ध करने का लाभ नहीं होता। देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पितृपक्ष का समय अशुभ समय होता है, निगेटिव समय होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष कोई नकारात्मक समय या कोई निगेटिव समय नहीं होता। पितृपक्ष में पवित्रता से रहने से, दान करने से, धर्म का पालन करने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, बिल्कुल सामर्थ्य ना हो कि पितरों के नाम से दान करें, श्राद्ध करें, लोगों को अन्न वस्त्र वगैरह दें। आप खुद ही बहुत गरीब हों तो श्राद्ध कैसे करेंगे? श्राद्ध वाले दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। दोपहर के समय में पितरों को जल दीजिएगा और इसके बाद गाय को हरा चारा खिलाइएगा और पितरों से कृपा की प्रार्थना करिएगा। मात्र इतना करने से आपका श्राद्ध कर्म पूरा होगा, श्राद्ध कर्म संपन्न होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लात।
7: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराजा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। अकोला में भक्त भारी मन से कर रहे हैं बापा की प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के धुन पर गजानन से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना, प्रशासन ने बनाया आर्टिफिशियल कुंड। अनंत चतुर्दशी के मौके पर जालना में पर्यावरण संरक्षण का संदेश, महानगर पालिका ने चलाया बप्पा का आशीर्वाद प्रकृति के साथ अभियान, इको फ्रेंडली उत्सव मनाने वालों को बांटे जासवंत के पौधे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेनजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। फिल्म हनुमान अंश के कलाकारों ने बांधा

0: श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और हमारे साथ वाण्या आर्या जी स्टूडियो में मौजूद है। वाण्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वाण्या जी हमारे साथ रहेंगी और जिस तरह से आप जान रहे हो लगातार गुड न्यूज टुडे अगर आप देख रहे हैं तो आप ये भी देख रहे होंगे कि महा कवरेज मेगा कवरेज गणपति विसर्जन को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र में पूरे देश में जहां जहां गणपति विसर्जन इस वक्त हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारी संस्कृति हमारी परंपरा की भव्यता और दिव्यता लगातार हम दिखा रहे हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि बप्पा के भक्तों की इस वक्त आंखें नम है, विनायक के भक्तों का दिल भावुक है। यह बप्पा की विदाई का पल है, दिलों में बप्पा के लिए आस्था और अटूट प्रेम के साथ जुबान पर बस एक ही जय घोष है, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू चल दिया। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा आज विदा हो रहे हैं, हालांकि वो हमारे दिल में हमारी आस्था में हमारी सांसों में हमेशा विराजमान रहेंगे। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा की प्रतिमाओं के विसर्जन की धार्मिक परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि विधिवत विसर्जन करने से भगवान गणेश पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। इस बार 11 दिनों तक विराजमान रहने वाले बापा की स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा बताई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि विधि विधान से विसर्जन करने की वजह से अनंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक परंपरा भर नहीं है बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक दार्शनिक और प्रकृति से जुड़े संदेश का भी प्रतीक है। विसर्जन मोह त्याग और वैराग्य का संदेश भी देता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने जब गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई थी तो गणेश जी उसे लिखते रहे। लगातार लिखने के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। उनके शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन वेदव्यास जी ने उन्हें सरोवर के पवित्र जल में स्नान कराया था और तभी से 10 दिनों के उत्सव के बाद विसर्जन की ये परंपरा चली आ रही है। तस्वीरें आ रही है जिसको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बप्पा जब निकले हैं, विदाई का वक्त आ गया है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं वहां पर श्रद्धालु इस वक्त मुंबई की सड़कों पर मौजूद हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी बता रहे हैं कि उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं का जो उत्साह है जो उमंग है वो कम नहीं है। आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वाण्या जी तो हमारे साथ हैं ही। इन दोनों से आज के महात्म्य के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको हम लिए चलते हैं मुंबई जहां से ये तस्वीरें आ रही हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र दुबे। धर्मेंद्र देखिए वक्त जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि अब बप्पा की प्रतिमाएं भी जो हैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रही हैं। अभी इस वक्त बताइए, तस्वीरें दिखाइए कि अभी और कितना वक्त बचा है, लगभग कितनी मूर्तियां जो हैं विसर्जित की जा चुकी हैं। धर्मेंद्र क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए इस वक्त जो है काफी भीड़ भाड़ होती है और वैसे भी जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं गिरगांव चौपाटी बीएमसी ने यहीं पर इंतजाम किया हुआ है। और ये देखिए बप्पा की ये भव्य मूर्ति जो इस वक्त निकली हुई है, वाकई ये जो भव्यता ये जो दिव्यता, क्योंकि न सिर्फ महाराष्ट्र में, वैसे तो अब महाराष्ट्र से निकलकर अब पूरे देश में आप देख सकते हैं कोने कोने में हर क्षेत्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है, लेकिन खास करके ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो भव्यता है ये आपको केवल और केवल महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगी। आइए आपको अकोला लिए चलते हैं। धनंजय सावले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय अकोला की तस्वीरें दिखाइए, रात के 9 बज चुके हैं, वहां इस वक्त क्या नजारा है? नेट नेटवर्क इशू की वजह से धनंजय से भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अकोला की सड़कों की तस्वीरें हैं। तो हालांकि मुंबई की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे वहां तो लाखों की संख्या में लोग थे, लेकिन अकोला में भी कम लोग नहीं है उस शहर के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से। यहाँ पर भी देखिए बड़े बड़े गणपति यहाँ भी बनाए गए हैं और धनंजय ने हमें ढेर सारी तस्वीरें वहां से और ढेर सारी स्टोरीज हमें भेजी थी और हमें वहां के पंडाल दिखाए गए थे, भव्य पंडाल वहां पर भी अकोला में भी बनाए गए थे। और आप देख सकते हैं अभी जिस तरह से गणेश विसर्जन जो है अभी ये पूरा प्रोसेस अभी चल ही रहा है। इको फ्रेंडली कोशिश की गई है कि इस बार जो है इको फ्रेंडली थीम भी रखा जाए और खास करके कई बड़े मूर्ति हैं उसका भी कोशिश की गई थी कि मिट्टी की ही मूर्ति बने, क्ले से मूर्ति बने और विसर्जन को लेकर ही प्राकृतिक नहीं लेकिन कृत्रिम यहाँ पर कुंड कई सारे बनाए गए हैं, बड़े बड़े कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर विसर्जन किए जाने की भी बात कही गई थी। और जिस तरीके से अमूमन होता है जो बहते हुए जल में कहते हैं प्रवाहित करते हैं वो यहाँ शायद नहीं हो रहा है जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया,
1: बहुत ही सफल और सुलभ तरीके से।
0: लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और अपने संवाददाताओं से फिर हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वानिया जी आपके पास आते हुए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर हर साल देखिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस उत्सव को मनाने में, लेकिन जब इस उत्सव को मनाया जाता है ना तब उस समय ये धन दौलत ये सारी चीजें देखी नहीं जाती। उस समय अगर कुछ दिखता है तो वो आपकी भावना होती है, जो बनाने वाला है जो मंडल है गणेश मंडल वो तो कर ही रहा है और तमाम जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी भी भावना सर्वोपरि रहती है।
2: जी थैंक यू सो मच श्वेता जी, जीएनटी के माध्यम से आप सभी को अनंत चतुर्थी की चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत ही दिव्य भव्य और अद्भुत जो है ये क्षण होता है और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। जैसे हमारे घर पर जब कोई गेस्ट आते हैं जब हम उनको विदा करते हैं तो किस तरह से जो हमारे इमोशंस हैं वो फ्लो करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है इस विसर्जन से। कभी कभी आपके मन में सवाल भी आता होगा कि आखिर ये विसर्जन क्यों करते हैं और ये विसर्जन जो है ये हमें क्या सिखा के जाता है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये विसर्जन हमें सिखाता है कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट, कि किसी भी चीज से हमें लाइफ में इतना मोह नहीं रखना है कि जब वो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख हो। और गणपति जी को जब भी आप विदा करते हो तो आप उनको जरूर बोलिए कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। यहां पर लॉ ऑफ परमानेंस भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि कोई भी चीज हमारे जीवन में जो है वो परमानेंट नहीं होती है, जो आया है उसे जाना ही है, पंच तत्वों में फिर से विलीन होना ही है। तो गणपति जी हमें सिखाते हैं, बप्पा हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अहंकार को त्याग के ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है, जमीन से जुड़े रहना है। और बप्पा विसर्जन जब करते हैं, जब बप्पा जाते हैं तो कहते हैं हमारे सभी कष्टों को जो है वो अपने साथ ले जाते हैं, हमारे सभी नेगेटिव चीजों को वो अपने साथ लेके जाते हैं, जो जाएगा वो वापस भी आएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये जन्म और मरण का ये जो काल चक्रव्यूह है। तो ये दिखाते हैं कि कुछ दिन पहले आप बप्पा को इतने इमोशन से अपने घर में लेके आए, आपने उनकी सेवा करी, आपका उनसे जो है एक अटैचमेंट बना, लेकिन अब जो है उनको जाना भी है तो हम चाह के भी उनको रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, ये साइकिल जो है हमें अपनी लाइफ में जो है एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, इससे हमें डरना नहीं है, एक्सेप्टेंस है। और ये एक न्यू बिगनिंग्स का भी टाइम है क्योंकि अगले बरस तो जल्दी आ, वो फिर से जो है दोबारा आएंगे। तो ये जो लॉ ऑफ परमानेंस है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट है, ये सारी चीजें हमें दर्शाता है। वो विघ्न हरता है, हमारे जीवन के जो भी विघ्न है वो अपने साथ लेके जाते हैं। जब वो जाते हैं तो उनको आप खाना जरूर दीजिए, उनके मोदक जरूर दीजिए, पानी उनको जरूर दीजिए, उनको दूर्वा जो है वो भी आप साथ में दीजिए, उनको खाना जो है आप बांध के दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उस जगह को आपको विसर्जन के बाद क्लीन भी करना है, वहां पर जो है आप साफ सफाई कीजिए, गंगा जल जो है डालिए और बप्पा को पूरे भावुक इमोशनल मोमेंट से जो है आप विदा कीजिए। और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आज ये जो डे है ये बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि ये कंप्लीशन का डे है, आपके विश मैनिफेस्टेशन का भी ये जो है ये दिन है। तो आप देखिए कि बप्पा से हमें बहुत कुछ विजडम हमें मिलता है, उनसे बुद्धि हमें सीखने को मिलता है। आपके बच्चों का पढ़ाई में फोकस नहीं लगता है तो वो कंसंट्रेशन भी बप्पा ही देते हैं।
0: बिल्कुल, तो इतने दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद आज वो विदाई की घड़ी आ गई है। और सीधे आपको हम एक बार मुंबई लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र इस वक्त आप वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं देखिए 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लगभग अंदाजन आप बता पाएंगे कि कितनी जो बड़ी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन हो चुका है।
3: देखिए, हर एक घंटे में बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से एक अपडेट मिलती है कि अभी तक कितने बप्पा का विसर्जन हो गया है। जो अभी हाल ही में अपडेट आई है उसके हिसाब से 200 से ज्यादा बड़ी जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन अब तक हो चुका है। इसके अलावा 3,500 से ज्यादा अब तक जो छोटी मूर्तियां हैं उनका भी विसर्जन हो गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं ये वही रास्ता है जहां से तमाम गणेश बड़ी मूर्तियां इस समय विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रही हैं। हर किसी ने जैसे अपने करेजा को थाम रखा है। वाकई में लगातार 12 दिन लोग जो है गणपति बप्पा के साथ रहे हैं। एक मेहमान के रूप में उन्हें अपने घर, अपने पंडाल में, अपने दरबार में ले आते हैं, लेकिन धीरे धीरे बप्पा उनके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। लोग उनके साथ जागरण करते हैं, पूरा दिन बिताते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया सा माहौल बना होता है घर में और मुंबई की हर उस जगह पे, महाराष्ट्र की हर उस जगह पे, देश के हर उस जगह पे जहां जहां गणपति बप्पा विराजमान है, एक दूसरे से कह सकते हैं कि गेट टुगेदर का माहौल हो जाता है। रिश्तेदार अपना समय निकाल करके एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर पे प्रसाद के रूप में भोजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महापर्व ऐसे ही घोषित नहीं किया गया है। देखिए, तमाम लोग इस समय गिरगांव की धरती पे उनकी सड़क पर पहुंचे हुए हैं। संख्या इनकी कितनी है ये आंकड़ा के आसपास पहुंच पाना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता ही है कि लाखों की तादाद में अब तक गिरगांव चौपाटी में लोग पहुंचे होंगे और धीरे धीरे अपने घरों की तरफ प्रस्थान भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पूरी रात बप्पा के साथ उनके हुजूम में, उनके जुलूस में उन्हें देखना चाहते हैं वो तो अभी पूरी रात यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये सिलसिला लगातार चलने वाला है। हजारों की तादाद में बृहन मुंबई महानगर पालिका में बड़ी बड़ी गणेश जी की प्रतिमाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और एक के बाद एक जैसे जैसे इनका नंबर लग रहा है हर कोई विसर्जन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि अच्छी खासी व्यवस्था इस समय बीएमसी मुंबई पुलिस की तरफ से, साथ ही साथ होमगार्ड पुलिस की भी तरफ से यहां पर की गई है और बड़े ही अच्छे तरीके से बप्पा का विसर्जन यहां किया जा रहा है। गिरगांव चौपाटी में लोखंड की कम से कम 25 प्लेटें लगाई गई हैं, प्लेटफॉर्म इसे कहा जाता है। 7 से 8 गणपति बप्पा ऊंची प्रतिमा वाले एक साथ में जो है विसर्जित किए जा सकते हैं। इस तरह की तैयारी बृहन मुंबई महानगर पालिका में ने जो है गिरगांव चौपाटी में की है और ठीक इसी की तरह लगातार 7 से 8 जो बड़े बड़े चौपाटी कह सकते हैं जहां पर विसर्जन की व्यवस्था की गई है, जिसमें वर्सोवा का नाम आता है, पवई का नाम आता है और इसके अलावा मलाड बीच का नाम आता है, जुहू बीच का नाम आता है, जहां जहां बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के साथ छोटे छोटे गणपति बप्पा का भी विसर्जन किया जा रहा है। 3,200 से ज्यादा कह सकते हैं कि इस समय बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो गिरगांव में लगे पड़े हैं। 12 कृत्रिम तालाब भी गिरगांव में ही बनाए गए हैं, इसलिए यहां पर बड़ी सुविधा है, बहुत ज्यादा जगह है और अच्छा खासा ट्रैफिक का इंतजाम यहां पर पुलिस द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से एक बढ़िया व्यवस्था के साथ यहां पर जो है कह सकते हैं कि लगातार जो विसर्जन का माहौल है वो बना हुआ है।
0: बिल्कुल, धर्मेंद्र आप जिस तरह से बता भी रहे हैं जाहिर सी बात है और तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है लोग हैं, श्रद्धालु हैं तो हुजूम तो बहुत ज्यादा है, हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन सब बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभ तरीके से लोग आ रहे हैं और कहीं भी धक्का मुक्की कम से कम नहीं दिख रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहेंगे तो मुंबई पुलिस ने, बीएमसी ने काफी अच्छा यहां पर काम किया है, निश्चित तौर पर तारीफ करने लायक है। लेकिन इस बीच आपसे यह भी जानना चाहेंगे, तमाम वो दर्शक जो मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, वो तो जानना चाहते ही हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि भाई लालबागचा राजा आखिर वो कहां तक पहुंचे हैं इस वक्त, क्योंकि आपने खुद ही बताया है कि उनका विसर्जन उनकी मूर्ति का होते होते लगभग कल सुबह 7:30 बज जाएंगे, तो इस वक्त वो कहां तक पहुंचे हैं, उनकी शोभा यात्रा कहां तक पहुंची है?
3: देखिए, थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, अचरज भी होगा, लेकिन रियलिटी तो यही है और जिस तरीके से लालबाग के राजा जहां जहां स्टॉप लेंगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। खबरों के अनुसार अभी जस्ट चिंचपोकली के राजा का जो ब्रिज है वो लालबाग के राजा ने क्रॉस किया है, अब सीधे मोहम्मद अली गली की रोड पर जाएंगे जहां पर एकता मंच द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। खास बात यह है कि वहां कुछ मुस्लिम समुदाय हैं, वो गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं। गणपति बप्पा की राहों में तमाम वो बड़े पंडाल और तमाम रहीवासी संघ, फिर जिसमें मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, साउथ इंडियन समाज, उत्तर भारतीय समाज, मराठी समाज तो इससे सम्मिलित है ही। हर किसी ने इस पार से लेकर उस पार तक बड़े बड़े हार लालबाग के राजा के स्वागत के लिए लगा रखे हैं। और जैसे ही लालबाग के राजा जो है वो हर एक पंडाल से होकर गुजरते हैं, वहां मौजूद जो हार है उनके गले पर गिरा दिया जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो कहीं ना कहीं दही अंडी की पिरामिड बनाती है और गणपति बप्पा को बकायदा सलामी देती है। इसके अलावा मलखम भी यहाँ किए जाते हैं। इसके अलावा भजन संगीत मराठी महाराष्ट्र की संस्कृति को दिखाते हुए जो चीजें हैं वो लालबाग के राजा के राहों में लगातार बनता रहता है। और जो जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ पर जिस जगह हम इस समय खड़े हैं, लालबाग के राजा सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ से 2 घंटा लगेगा। पास के 500 मीटर की दूरी पर गिरगांव चौपाटी जो है वहां जाने में।
0: अच्छा धर्मेंद्र, साथ ही साथ एक ये भी सवाल का जवाब दे दे कि वहां के जो लोग हैं, खास करके जो मुंबई कर हैं, उसमें से क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो खास करके मान लीजिए वो आए किसी और गणेश पंडाल की तरफ से हैं, लेकिन कई लोग रुक जाते हैं सुबह तक कि वो लालबाग के राजा का जब विसर्जन होगा तो एक झलक उनको देख लें, उसके बाद ही जाएं घर, ऐसा भी होता है क्या?
3: बिल्कुल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि परिवार संग, अपने दोस्तों के संग, कॉलेज के, स्कूल्स के सारे लोग यहाँ पर रात बिताने के सोच के साथ ही आते हैं, क्योंकि गणेश उत्सव का बहुत ज्यादा मजा रात में ही होता है। लोग अपने घरों से शाम 5-6 बजे निकल जाया करते थे जो पिछले 11 दिन बीते हैं, और बकायदा सुबह 4-5 बजे तक दर्शन करने के बाद, जिसमें लालबाग के राजा सहित तमाम टॉप 10 बहुचर्चित पंडाल जहां लोग पहुंचना चाहते हैं, जिन्हें मिन्नतों के राजा कहते हैं, ऐसी जगहों पर जो है लगातार जो है पहुंचते हैं और पूरी रात लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद अगले दिन लोगों को काम पर भी जाना होता है, इस तरह से अपनी पूरी व्यवस्था करते हैं। लेकिन आज का जो माहौल है, आज संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी क्योंकि हर कोई गिरगांव चौपाटी पे आना चाहता है। पूरी रात बड़े बड़े गणपति बप्पा की ऊंची प्रतिमाएं अलग अलग अवतार, अलग अलग थीम में लोगों को देखने के लिए, उनके साथ फोटो, सेल्फीज, क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पूरी रात आज लोग यहाँ रहेंगे। यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है, यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है, हर वो व्यवस्था है जो जीने खाने और कुछ समय बिताने के लिए होती है। लेकिन हाँ, बैठने की सुविधा शायद ही मिल जाए, खड़े होने मिल जाए,
0: थोड़ी इससे तो उन्हें संतुष्टि करनी पड़ेगी। धर्मेंद्र, सब कुछ नहीं मिल सकता है। देखिए, बप्पा के दर्शन भी हो रहे हैं और वो भी वो लोग जो कि हर जगह जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, तो एक जगह आकर के इतने सारे गणेश जो मूर्तियां हैं गणेश जी की, उनके दर्शन हो जाए अलग अलग जगह से, तो थोड़ी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तो खड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आएंगे आपके पास, आप तस्वीरें दिखाते रहे हैं धर्मेंद्र। डीपी शास्त्री जी बने हुए हैं हमारे साथ। शास्त्री जी, आपसे समझना चाहेंगे कि गणपति की विदाई या फिर विसर्जन, इसे हम कैसे समझे कि आज विसर्जन तो किया जा रहा है गणेश जी का, लेकिन साथ ही साथ भक्तों ने, जिन्होंने भी उनकी पूजा अर्चना की है इतने दिनों तक, तो क्या आज के दिन उनकी मनोकामना, उनका संकल्प, उनकी पूजा पूर्ण मान ली जाए विसर्जन के साथ ही?
4: देखिए, भावों में चंदु इसीलिए मुड़ी जो पटना है उसको करते हैं गति के रूप है, गणपति का वो कुछ फल उससे हमारे सहय रहेगा, इनके लिए लिखा गया है नमस्ते प्रभु आया विष्णु रूप आए थे नमा नमरे आया करी आए थे नमा ब्रह्म रूप में है और शिव के रूप में।
0: बिल्कुल शास्त्री जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम उसको चेक कराने की कोशिश करते हैं। इस बीच वानिया जी के पास आते हुए, वानिया जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लोग बड़े बड़े पंडालों में गणपति पूजा करते हैं वो तो है ही, लेकिन जिन लोगों ने घर पे भी बिठाया है, आज विसर्जन के साथ ही क्या माना जाए, उनका संकल्प, मनोकामना, उनकी पूजा पूरी हुई?
4: देखिए,
2: जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है श्वेता जी. ये जो विसर्जन का टाइम होता है ये कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट का ही टाइम होता है. तो इस टाइम पर जो भी आपने बप्पा से मांगना है आप वो मांगिए. और वैसे भी जितने दिन बप्पा आपके घर रुके हैं तो आई एम श्योर कि आपने वो आरती करी, पूजा करी, उनकी सेवा करी. तो आज का ये टाइम है कंप्लीशन का. इसका ये भी मतलब है कि बप्पा को हमको खुशी खुशी विदा करना है. और जब एक चीज विदा होती है तो वो कंप्लीशन, वो इवेंट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है. लेकिन आप यहाँ पर जो भी आपके रिचुअल्स हैं आप वो पूरे फॉलो कीजिए. जो आप उनको जैसे जो उनकी विदाई है, जैसे उनको मोदक आप बांध के दीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था खाना बांध के देना है, पानी बांध के देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है. जैसे उनकी आंखें हमें लाइफ में, छोटी आंखें हमें फोकस करना सिखाती हैं कि चीजों पर हमारा अपने लक्ष्य से फोकस हमारे जीवन में नहीं हटना चाहिए. उनका बड़ा पेट हमें यह सिखाता है कि हमें बातों को डाइजेस्ट करना भी आना चाहिए. अगर किसी ने हमें कुछ ट्रस्ट और कमिटमेंट के साथ कुछ बताया है, उनका एक दंत, जो एक दांत जो उनका टूटा हुआ है, वो हमें ये कहता है कि कुछ बड़ी चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें जो है लाइफ में खोनी पड़ती हैं. उनका जो मूषक वाहन है और जो उनकी सूंड है वो हमें लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है कि हमें सिचुएशंस में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा. जिस विधि राखे राम, सिचुएशंस को अडेप्ट करना पड़ेगा. तो इतना कुछ वो जीवन में हमें सीखने को है. मुझे लगता है असली विसर्जन तो वही है ना, जब हम उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर अपनाते हैं, वो बप्पा का रूप हम जब अपने अंदर लेते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि चीजों पर फोकस करो, चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत हो. और जो विसर्जन है ये कंप्लीशन है. आज आपको जो सच्चे मन से, दिल से, आत्मा से जो आज बप्पा से आप मांगोगे, बप्पा भी आज आपको तथास्तु जरूर कहेंगे. तो इसलिए आज आपको जो भी विशेष मैनिफेस्ट करनी है और इस रिचुअल्स में अपने बच्चों को आप साथ में जरूर बिठाइए, क्योंकि संस्कार जो चैरिटी होती है इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम होम. आप भी कीजिए, आपके हस्बैंड भी करें और आपके बच्चे भी जब साथ में करते हैं तो यही कल्चर और रिचुअल्स को वो आगे वाली जनरेशन पर कैरी फॉरवर्ड जो है वो भी करते हैं, क्योंकि कल से तो श्राद्ध आपके शुरू हो जाएंगे. तो आज जो है ये पूरा पूरा कंप्लीशन है. और कल से फिर हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे, एंसेस्टर्स को याद करेंगे. और बप्पा याद रखिए, जो आप अपनी लाइफ से आज रिलीज करना चाहते हैं वो आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि बप्पा अपने साथ उस चीज को विसर्जन जो है कर देंगे. और उस चीज़ को वही चीज हमारे जीवन
0: में, जितनी भी नकारात्मकता है और जितना भी हम कहते हैं कि नेगेटिविटी है या फिर ईर्ष्या, जलन, तमाम तरह की ये जो नेगेटिव चीजें हैं उसका भी विसर्जन आज के दिन हमें कर देना चाहिए. धनंजय सावले हमारे संवाददाता अकोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं. धनंजय, अकोला में इस बार जिस तरह से आपने बताया था कि इस बार विसर्जन नहीं हो रहा है उस तरीके से जिस तरह से मुंबई में हम देख रहे हैं, वहां पर शोभा यात्राएं निकली हुई हैं, अभी यात्रा कहां तक पहुंची है और फिर किस तरह से ये कल्मिनेट होगा?
5: शोभा यात्रा का प्रमुख मार्ग है उसके बीच तक ये शोभा यात्रा पहुंची है. और सबसे अहम बात है कि जो मानसा गणपति होता है उसका विसर्जन जो है शाम को 5:30 बजे लगभग मोरना के गणेश घाट पर हुआ है. लेकिन जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उनको विसर्जन के लिए जिले के कोई भी नदी या तालाब में इतना पानी नहीं है कि वो विसर्जित हो सके. लेकिन शोभा यात्रा निकालना है वो जरूरी है, क्योंकि बप्पा का अपने गांव भेजने के लिए उनका स्वागत, उनका जल्लोष के साथ

0: लगभग पुलिस ने जो है 3000 पुलिस का जो बंदोबस्त लगाया है, सीसीटीवी है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, वॉच टावर से नजर रखी जा रही है। मानो पुलिस भी जो है इस बंदोबस्त के लेकर जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगी हुई है। और ऐसे में जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस शोभा यात्रा में जो आकाश होते हैं जो अपने
1: पारे अगर अगर धनंजय आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुंबई में जैसे हम बात कर रहे हैं वहां भी बहुत सारे गणेश पंडाल हैं लेकिन लालबागचा राजा का नाम अलग ही लिया जाता है, वैसे ही आपसे जानना चाहूंगी अगर अकोला की बात मैं पूछूं तो अकोला में सबसे बड़े राजा अकोला के वो कौन से हैं और किस इलाके के हैं?
0: जिस तरीके से मुंबई के लालबाग के राजा है उसी तरीके से अकोला में भी जो है अकोला का लालबाग का राजा जो एकता गणेश उत्सव मंडल का है जो मालिकपुरे में बैठता है। इसके बाद में चिंतामणि है, गोरखन रोड का राजा है, उमरी का राजा है। मानो इस तरीके के जो बड़े बड़े पंडाल है वो पंडाल में बप्पा की भव्य मूर्ति है जो है वो यहाँ पर विराज स्थापित की गई थी और अभी उनका जो एक पूरे जल्लोष में शोभा यात्रा में उनकी सवारी यहाँ पर निकल रही है। और इसमें खास बात यह है कि मैंने सुबह एक खबर आपके लिए बनाया के लिए बनाया था, वो खबर में ऐसा था कि एक जो तीसरा मान का गणपति है
1: जी
0: वो जागेश्वर महाराज गणेश उत्सव पंडाल का है, उससे जो है प्रतिष्ठित जो है वो हाथी की सवारी में पप्पा की सवारी निकाली है और जिसे महिलाएं जो है बड़े भाव और श्रद्धा से जीतती है। तो अकोला में भी है अर्जुन
1: बिल्कुल
0: पंडाल है वो भी लगभग 90 साल पुराना पंडाल है।
1: क्या बात है। और आपकी आपकी भेजी भी आज की भेजी भी वो तमाम खबरें भी हमने गुड न्यूज टुडे पर बिल्कुल दिखाई है और दर्शकों ने देखा है कि अकोला में भी कितने भव्य तरीके से गणपति के बड़े बड़े भव्य पंडाल वहां बनाए गए और गणपति प्रतिमा को वहां विराजित किया गया और आज जो है विसर्जन जो है वहां पर हो रहा है जिसकी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। शास्त्री जी आपसे हम समझना चाहेंगे कि हर चीज का हमारे यहाँ वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में भी वर्णन है कि कोई भी चीज़ अगर आप स्थापना करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ करते हैं आप, वैसे ही विसर्जन भी करने का एक अपना तरीका है। आपसे जानना चाहेंगे शास्त्र संवत क्या वो तरीका है विसर्जन का जिससे करना चाहिए, वो कौन कौन सी पूजा है जो विसर्जन के समय विशेष तौर पर हमें करनी चाहिए, उनके लिए भी खास करके बताएं जिन लोगों के घर में गणपति है और आज वो विसर्जन करेंगे।
2: देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी तो बधाई देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को और पूरे सनातन के जो लोग मानने वाले पूरे विश्व के पटल पे है। गणपति बुद्धि है, बुद्धि का कभी विसर्जन नहीं होता है। बुद्धि सदैव आपके साथ ही समाज के राष्ट्र के साथ रहता है उत्थान करने के लिए। भगवान गणपति के विग्रह का विसर्जन होगा, जो मूर्ति बनी है मिट्टी की उसको जल तत्व में पंच तत्व में विलीन किया जाता है। गणपति के लिए लिखा गया है कि नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। जो खुद ब्रह्मा है, विष्णु और शिव है, इनके सब स्वरूप की मूर्ति के आप दर्शन करते हैं, वो संसार के हमारे सबके रक्षक है। भावम इच्छन्तु देवता, देवता भाव के भूखे हैं। तो भाव से जो पूजन 10 दिन 12 दिन जिन लोगों ने किया उस प्रतिमा को उस विग्रह को विसर्जन करने के पूर्व में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, मेरे द्वारा कोई मंत्र में त्रुटि हो, क्रिया में त्रुटि हो या पूजा पाठ में त्रुटि अगर रह गई है तो उसके लिए मैं आपको नमन और प्रणाम करता हूँ, यह हमारी माताएं बहने करती हैं। और साथ में हमें कामना करते हैं, हे गणपति, हे गजानन, हे लंबोदर, हे बुद्धि के देवता, हे देवताओं में अग्रणी माने आगे पूजा जाने वाले ब्रह्मांड के नायक, हमारे परिवार को, कारोबार को, धन वैभव यश को, कृति को बढ़ाएं, हमारे बच्चों को जीवन में ज्ञान बुद्धि दें
1: जी।
2: और एक कामना यह करते हैं जब हम गणपति को विदा करते हैं तो साबुत चावल, पीला हल्दी, पान के पत्ते, सुपारी पीले पोटली में बांध करके अपने घर व्यापार में रखते भी हैं। एक क्या है, वृद्धि के लिए है।
1: बिल्कुल
2: साथ में
1: बिल्कुल शास्त्री जी, बाकी का जवाब में

लूंगी आपसे, क्योंकि वक्त यहाँ पर हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हमें रुकना होगा। आप लोग तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर ये महा कवरेज लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराहे की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ, ढोल नगाड़ों के धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु। अकोला में भक्त भारी मन से कर रहे बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों की धुन पर गजानन से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना, प्रशासन ने बनाया आर्टिफिशियल कुंड। अनंत चतुर्दशी के मौके पर जालना में पर्यावरण संरक्षण का संदेश, महानगर पालिका ने चलाया बप्पा का आशीर्वाद प्रकृति के साथ अभियान, इको फ्रेंडली उत्सव मनाने वालों को बांटे जासवंद के पौधे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेन जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। फिल्म हनुमान अंश के कलाकारों ने बांधा समा। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट। 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।

0: तो गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, यही इस वक्त जयकारे मुंबई की सड़कों पर लग रहे हैं और आपको हम चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालबाग चौराहा सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी उनकी शोभा यात्रा में कितनी रौनक देखने को मिल रही है, कितनी भव्यता देखने को मिल रही है, अद्भुत ये तस्वीरें हैं। वहीं आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए हैदराबाद से भी तस्वीरें आ रही है। हैदराबाद में भी किस तरह से गणपति की जो प्रतिमा है वो विसर्जन के लिए निकल चुकी है, वहां भी शोभा यात्रा निकल चुकी है। साथ ही साथ जालना की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जालना भी बड़ी बड़ी भव्य प्रतिमाएं जो यहाँ पर गणपति की है एक के बाद एक, क्योंकि यहाँ तेज हवा भी चल रही है, हल्की बारिश की भी संभावना दिख रही है, तो कुछ प्रतिमाएं जो आप देख सकते हैं उसे कवर कर दिया गया है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरह से आपको हम ये हैदराबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये इमेजिनेशन का ना, मुझे लगता है कि ये जो उत्सव होते हैं ना, ये इमेजिनेशन का भी एक आपको मौका देते हैं और अद्भुत तरीके से लोग यहाँ इमेजिनेशन करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रतीकात्मक तौर पर। देखिए चार मीनार, और अगर मैं देख पा रही हूँ ये चार मीनार ही है वहाँ पर, और उसके सामने आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से गणपति बप्पा जो हैं उनकी मूर्ति को लाया जा रहा है, भव्य लाइटिंग है और जो पंडाल वो तो एक से एक है, अद्भुत पंडाल हमने आपको दिखाया है। तो ये शोभा यात्रा अलग अलग शहरों में निकली हुई है और इस वक्त वानिया जी, अगर मतलब ज्योतिष से हटके अगर मैं आपसे सवाल पूछूं एक एक एक श्रद्धालु के तौर पर भी या फिर आम आम जनमानस के तौर पर भी, यहाँ देखिए नासिक का ढोल स्पेशली इस समय नासिक के ढोल को बजाने की परंपरा है। इनफैक्ट दिल्ली में भी मैं गई थी गणेश पंडाल में, तो वहां पर जब मूर्ति को लाया गया था तो स्पेसिफिकली बोला गया था जो ढोल वाले हैं वो नासिक के होने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल अलग ढंग से वो ढोल बजाते हैं। आपने नोटिस किया है?
1: हाँ जी हाँ जी, उनका जो बजाने का तरीका है वो ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और एक बात अभी आपने बहुत अच्छी कही, तो क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। आप देखिए कैसे लोग इतना अपना क्रिएटिव माइंडसेट जो है वो यूज करते हैं, अपना इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है वो अपनी यूज करके कैसे कैसे इतनी सुंदर सुंदर अद्भुत तस्वीरें जो हमारी आ रही है। और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि GNT हमारे लिए एक मंदिर ही है जहाँ से हम घर बैठे जो है सारे दर्शन कर पाते हैं। GNT पर्सनली मेरे लिए तो एक इमोशन भी है जो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ। और GNT के माध्यम से आप देखिए GNT ने जैसे अपने गणपति विसर्जन किए, तो श्वेता जी मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ कि इको फ्रेंडली गणपति अगर आप यूज करते हैं और कहीं ना कहीं आप उनको अपने घर में ही जब उनका जो है आप विसर्जन करते हैं और उस पानी को उस जल को जो है आप किसी पौधे में डाल सकते हैं, गमले में डाल सकते हैं, अपने गार्डन में डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, हम अपनी माँ वसुंधरा को स्वच्छ रखें, हम अपनी पवित्र नदियों को जो है वो भी अगर हम स्वच्छ रखें, तो GNT ने ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है सभी को दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप जो है जब आज विसर्जन का भी टाइम है तो एक क्षमा याचना जो है आप जरूर मांगे, क्योंकि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई है गणपति जी की सेवा में तो गणपति जी उसके लिए आप हमें जो है जरूर क्षमा।
0: तो आपने जो इससे पहले बात कही वानिया जी उसको मैं कंप्लीट करते हुए, क्योंकि उस पूरे प्रोसेस में हम लोग लगातार रहे और हमने ये गुड न्यूज़ टुडे ने ये कहा था पहले से भी और हमारी मान्यता भी ऐसी है कि इको फ्रेंडली गणेश ही हमारे यहाँ पधारे, तो हमने इको फ्रेंडली गणेश भी रखा और विसर्जन ही ऑफिस के प्रमाइसिस में हमने किया था। वहीं पर आर्टिफिशियल हमने एक पॉन्ड बनाया था और वहां पर विसर्जन किया, और जिस तरह से आपने बाद में कहा तो उस पानी को, क्योंकि वो थोड़ी देर में डायल्यूट हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है उसमें, तो गमलों में यहाँ पर डाल दिया गया था। ऐसे ही लोगों से हमेशा हम अपील भी करते हैं पर्यावरण की रक्षा वो करे, इसी तरीके से वो कर सकते हैं। तो पूजा भी हो गई और साथ ही साथ हमारी प्रकृति, हमारी धरती, उसकी रक्षा भी हो गई। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी आपके पास आते हुए यहां पर हम देखते हैं कि पूजा, अगर घर में भी पूजा होती है और विसर्जन भी होता है तो उसमें कई बार होता है पूजन सामग्री, क्योंकि 10 दिनों का पूरा मामला है, लंबे समय से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं तो पूजन सामग्री ही बहुत हो जाती है, उसके सहित विसर्जन कर दिया जाता है, क्या यह तरीका सही है?
2: नहीं, पूजन जो सामग्री है ना, कई गड्ढा खोद के जमीन के अंदर उसे गाड़ दिया जाए, थोड़ी देर में वो प्रकृति के साथ अपने आप ही मेल मिलाप कर लेता है। कोई ऐसी वस्तु जल में ना डाला जाए जो जल प्रदूषित करे। और ये तो बड़ी अच्छी बात है जो अभी चर्चा चल रहा है, घरों में लोगों ने बहुत अच्छा विसर्जन का परंपरा आगाह किया है, एक संदेश भी दिया है। गणपति के लिए लिखा गया कि अग्निस्तोम वायुस्तोम चंद्रमा स्तोम सूर्यम तोम, गणपति अग्नि है, वायु है, सूर्य है, तुम तो मैं वो केवलम करता सी, तुम्हें केवल हम धरता सी, सब तुम ही करने वाले हो ब्रह्मांड की। तो कर्ता भी गणपति को ही मानते हैं, हम उस कर्ता को नमन प्रणाम करते हुए जब भी विसर्जन करते हैं एक हम कामना करते हैं कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राइमाम गणपति रेवा सर्व पाप हरो भवा। मेरे वचन से कर्म से कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गया हो, इसको आप परिपूर्ण करें और हमारे को सदैव आप मंगल करें, रक्षा करें। तो विसर्जन परंपरा में एक भावनात्मक चीज जुड़ती है हमारी, किसी मूर्ति के विग्रह को जब हम विसर्जन करने के लिए जाते हैं एक लगाव उस मूर्ति के साथ मन से विचार से दिल से बन जाता है। तो गणपति के जो विसर्जन परंपरा सुबह से चल रहा है पूरे रात्रि चलेगा, यानी सुबह तक लालबाग के राजा जाएंगे समुद्र के तलटी पे। आज के समय में जल इतना नहीं है, ना जलाशय है ना पोखरा है ना कोई आस पास जल का साधन है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ इस तरह के साधन बनाना पड़ेगा और भावनात्मक संबंध भगवान से बना के रखे। भगवान गणपति या गणेश पंचायतन या शिव पंचायतन सदैव पूजनीय है, इनके हर काम में पूजा किया जाता है। आप एक छोटा निमंत्रण पत्र भी बनाती हैं, गणेश जी के मंत्र लिखती हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, जो मंगल के देने वाले हैं गरुड़ध्वज है, मंगलम भगवान सब मंगल मंगल करने वाले हैं। वो कहीं दूर थोड़े जाएंगे, वो विसर्जन करने से दूर नहीं जाएंगे, वो सृष्टि के रक्षक हैं, सनातन के रक्षक हैं। हर युग काल में तिथि मुहूर्त लग्न को देखते हुए समयानुसार हमारे ऋषियों ने अपने परंपरा से व्रत को निर्णय किया, त्योहार को मनाने का विधि विधान दिया। तो चतुर्दशी से अनंत चतुर्दशी तक ये 10 दिन का जो उत्सव है भगवान गणपति के, चाहे दक्षिण भारत के लोग हैं, उत्तर भारत के हैं, जो सनातन के मानने वाले पूरे विश्व के लोग मनाए हैं, बुद्धि की हम कामना करेंगे और विग्रह को त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, भगवान सबको क्षमा कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
2: पृथ्वी का काम है क्षमा करना, देवता का काम है क्षमा करना, व्यक्ति कोई किसी को क्षमा नहीं करता है। व्यक्ति तो एक मिनट में लड़ाई झगड़ा कर लेता है, द्वेष कर लेता है, क्लेश कर लेता है, देवता
0: बिल्कुल यही समय है। क्योंकि यही बात देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि गणेश यानी कि विघ्नहर्ता, वो सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, वो आपको विवेक देते हैं, वो आपको बुद्धि देते हैं, आपको समझ देते हैं कि अगर विपरीत परिस्थितियां भी हैं या फिर ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब आपके अंदर आक्रोश या गुस्सा भर जाए तो उस समय अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह से सही दिशा या फिर आपके लिए क्या सही होगा, सही व्यवहार क्या होगा, वो भी कैसे बनाए रखना है, ये भी गणपति हमें देते हैं। चलिए सीधे धर्मेंद्र के पास अब हम चलते हैं। धर्मेंद्र, अब आपके पास आते हुए ये बताइए कि अब कहाँ तक पहुंचे हैं, लालबाग चा राजा की जो शोभा यात्रा है वो कहाँ तक आगे बढ़ी है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है, हालांकि मुंबई में विशेष करके इस समय आना नहीं हुआ, लेकिन जब केदारनाथ में गई थी और वहां पर भी मैं देख रही थी जब बाबा की डोली आगे बढ़ रही थी तो हर दूसरे गांव में, यानी कि एक गांव के बाद जब दूसरा गांव आता था तो वहां पर बाकायदा एक जगह पर तमाम लोग उस गांव के इकट्ठा होते थे, वहां पर उस डोली की पूजा अर्चना होती थी और उसके बाद वो डोली आगे बढ़ती थी। कुछ ऐसा ही यहां पर सिलसिला मुझे भी देखने को मिल रहा है।
3: बिल्कुल, देखिए जो लालबाग के राजा का काफिला है वो लगभग 27 स्टेशनों पर रुकता ही है और हर जगह बप्पा के इंतजार में लोग वहां पर खड़े होते हैं ताकि उनका स्वागत किया जा सके, जिसमें बहुत सारे रहवासी भी होते हैं। अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से टैंक नाका है जिसे लालबाग के राजा ने अभी क्रॉस किया है और हिंदू मुस्लिम जो एकता कमेटी है वो बप्पा का इंतजार कर रही है, वो अपने तरीके से बप्पा का स्वागत करती है। और जैसा कि ये बहुत बड़ा महापर्व तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक भी है, ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो एक दूसरे से बप्पा के सामने गले लगते हैं और बप्पा से ये वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए ये एकता लगातार बढ़ती ही रहेगी। देखिए, गणेश उत्सव मुंबई और महाराष्ट्र का इसलिए भी बहुत ज्यादा हमेशा ही चर्चा का विषय बना हुआ होता है क्योंकि हर पंडाल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सूचनाएं देता है, कुछ न कुछ उपदेश देता है, कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो समाज में जाकर के बहुत ही ज्यादा प्रभाव देती हैं। अभी 3 दिन पहले ही बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC ने टॉप 10 पंडालों को गौरव सम्मान दिया है। और वो गौरव सम्मान इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा चलचित्र दर्शकों तक पहुंचाया, श्रद्धालुओं तक पहुंचाया, जो एक बहुत बड़ा बदलाव का परिणाम ले सकता है। जैसा कि जिन्होंने फर्स्ट प्राइज मारा था, मुंबई के अंधेरे इलाके में वो पंडाल है स्वप्न अक्षय मित्र मंडल के नाम से, और उन्होंने एक पेड़ की कहानी बताई थी कि किस तरीके से पेड़ आपके घर के बाहर छोटे से बड़ा होता है, आपको छावनी देता है जब आप जन्म लेते हैं और आपकी मृत्यु तक हर जगह पेड़ जो है कहीं किताबें बन करके तो कहीं सोफा कुर्सियां, इसके अलावा आपके जो भी खुशहाली होती शादी ब्याह जैसे माहौल में भी यज्ञ पूजन के लिए हर जगह वो पेड़ होता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो पॉपुलेशन है बढ़ता जा रहा है, लोग घर बना रहे, पेट की छटनी हो रही है, काटा जा रहा है, कहीं ना कहीं आईसीयू में अब वो पेड़ पहुंच चुका है, ये भी एक बहुत बड़ा दृश्य उन्होंने दिखाया था। और आईसीयू में बकायदा इंजेक्शन वगैरह पेड़ को लगाए जा रहे हैं। इन पर फर्स्ट अवार्ड, पहला अवार्ड गौरव सम्मान अवार्ड बीएमसी द्वारा दिया गया। इस तरह के बाकी भी 9 पंडाल होते हैं और अभी कुछ देर पहले भी एक बहुत बड़ी टीम अपने बप्पा का विसर्जन करते हुए गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रही थी और जाते जाते एक बहुत बड़ा उपदेश वो दे गई। उपदेश में यही था कि कुछ भी करें लेकिन गलत ना बोलें, गलत ना सोचें, एक दूसरे से प्यार रखें, भ्रष्टाचार में बिल्कुल भी लिप्त ना हो, ज्यादा से ज्यादा पौधे कमाएं, और जिस तरीके से बलात्कार जैसे मामले चल रहे हैं वो सारी चीजें रोकी जाए। इस तरह के अलग अलग उद्देश्य, इस तरह की अलग अलग बातें कहीं ना कहीं इन गणेश भक्तों द्वारा मुंबईकर और यहां आने वाले तमाम लोगों तक पहुंचाई जाती है, और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं और ये सारी चीजें जो करता है वो करता धरता है, सुखरता है दुखरता है।
0: ये बात तो सच है धर्मेंद्र, आपने आपने जितनी भी स्टोरीज वहां से भेजी थी मुंबई से, उसमें हर एक पंडाल कुछ कहता है और हर एक पंडाल ने कोई ना कोई एक मैसेज दिया है जो कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन साथ ही साथ आज ये बताइए, एक तरफ तो उत्साह है, जिस ढोल की बात हम स्टूडियो में कर रहे थे कि नासिक का ढोल बहुत आज वहां पर जो है वही बजाया जाता है, उसकी एक अलग ऊर्जा होती है जो इस वक्त पूरे माहौल में वहां मुंबई में अभी गूंज रही होगी और देखने को मिल रही होगी। लेकिन साथ ही साथ ये बताइए, विसर्जन के बाद मन जरूर भारी होता होगा और आज जरूर लोग भावुक भी वहां उतने ही हो रहे होंगे।
3: अभी कुछ देर पहले एक यहाँ पर ग्रुप आया हुआ था और वो एक परिवार था, मुझे लगता है कि सातवें दिन का विसर्जन उन्होंने गौरी गणेश जी का किया होगा, क्योंकि कुछ बातें मेरी कैमरे के पीछे उनसे हुई, सभी की आंखें भरी हुई थी। और स्पेशली जब उनसे पूछा गया कि पप्पा जा रहे हैं क्या उस वजह से, तो वो परेल के महाराजा के लिए रुके हुए थे, कुछ मिन्नतें उन्होंने मांगी थी और परेल के राजा ने उस मिन्नत को पूरा कर दिया, जिसके बाद वो परिवार परेल के राजा के आखिरी विसर्जन के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था। तकरीबन 2-2.5 घंटे इंतजार के बाद फाइनली बप्पा आए और उन्हें देख करके उनकी आंखें नम हो गई। ये कहानी सिर्फ उस एक परमार परिवार की नहीं है बल्कि यहां आने वाले तमाम लोगों की है। परिवार तो बप्पा के साथ होता ही है, लेकिन दिन भर बप्पा के साथ अपना समय जो देता है वो होता है उनका कार्यकर्ता, वो होता है उनका सेवादार। और देखिए किस तरीके से एक बहुत ही इस समय भव्य विशाल गणपति महाराज हमारे सामने खड़े, कुछ देर में विसर्जन के लिए जाएंगे और उनके नीचे देखें पैरों के पास सारे सेवादार पूरी तरह से हल्दी में रंगे हुए हैं, पीले कलर में रंगे हुए हैं। देखिए सभी ने अपने बप्पा को घेर रखा है। ये वो लोग हैं जो अपने काम से छुट्टियां ले लेते हैं या फिर काम करने के बाद में एक्स्ट्रा सेवा जो है वो बप्पा की देते हैं, और अब इस तरीके से काफिला बनाकर रात भर बप्पा के साथ रहेंगे। अब जिन्होंने बप्पा को मेहमान बनाकर लाया था और धीरे धीरे जो उनके परिवार का सदस्य बन गए, इस बार 10 दिन भी नहीं, 12 दिन के बाद 12वें दिन बप्पा का विसर्जन, यानी कि आप सोचें 12 दिन करेजे से लगा करके बप्पा को इन सभी ने रखा था। फाइनली वो दिन आ गया, वो पल, वो घड़ी, वो समय आ गई है कि अब बप्पा का विसर्जन है। अब ये खुद भी नहीं सोच पा रहे कि आखिर इन्हें करना क्या है, मायूस हो या फिर खुशी के मारा झूम उठे, क्योंकि दोनों ही बातें यहां देखने लायक है। मायूसी इसलिए क्योंकि ये देखिए बप्पा अब धीरे धीरे चल रहे हैं विसर्जन के लिए, और खुश इसलिए कि किसी तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो महापर्व है ये बीत गया है। आप देखें किस तरीके से मेंटेनेंस करा जाता है, किस तरीके से बैलेंस किया जाता है और किस तरीके से बप्पा की ट्रॉली खींची जाती है और बप्पा को बड़े प्यार से बड़े अच्छे ढंग से संभालते हुए ले जाया जाता है। सारे एक्सपीरियंस, सारे एक्सपर्ट ही बप्पा के पास यहाँ मौजूद होते हैं, जिन्हें खड्डों का ध्यान रखना होता है, आसपास के पेड़ों की टहनियों का ख्याल रखना होता है, साथ ही साथ आसपास आने वाले श्रद्धालुओं का भी ख्याल रखना होता है, और उन सभी का ख्याल रखते हुए सबसे ज्यादा ख्याल जो है वो गणपति बप्पा का रखना होता है। और फाइनली एक के बाद एक गणपति बप्पा जो है वो अपने विसर्जन के लिए लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। जो
0: क्या बात है धर्मेंद्र, अद्भुत तस्वीरें आप बहुत ही अद्भुत तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई एक तरफ तो मन में ऊर्जा उत्साह भर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भावुक भी करती जा रही है कि वो समय वो पल आ गया है जब अब विसर्जन का समय आ गया है। लेकिन वानिया जी अभी भी अबीर गुलाल यहाँ उड़ाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ बप्पा से यही कामना कि जो कुछ भी गलती हमसे हुई है उसके लिए क्षमा करें और अगले बरस आप जल्द से जल्द आए। वानिया जी
1: जी बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बहुत ही इमोशनल ये मोमेंट्स हैं और बहुत ही भावुक ये पल और क्षण हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि गणपति जी से अपने जीवन में, क्योंकि वही हमारे सुख करता है, वही हमारे दुख करता है, तो हमारे सारे जो हैं हमारे सुखों को हमारे जीवन में देने वाले, हमारे दुखों को हरने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी आज आप उनसे चाहते हैं उन्हें बोलिए कि मुझे आज ब्लेस करके जो है आप यहाँ से जाओ, अपना आशीर्वाद जो है मेरे सिर पर हाथ जो है आज के दिन रख के जाओ, और कहीं ना कहीं प्रकृति के जो भी हमारे नियम हैं उनको आप फॉलो करो, और उनसे जो है विद्या बुद्धि अपने बच्चों के लिए जो है आज आप जरूर ये आशीर्वाद जरूर लें, उनके आप पैर छुए, उनके आगे माथा टेकें, और जो है वो किसी भी पूजा की शुरुआत बप्पा के बिना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगी का इनिशिएशन है, तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल देता है कि एक नई सुबह जो है अब आ रही है, एक नया सवेरा जो है अब आ रहा है। तो विसर्जन के बाद फिर से अपने न्यू गोल्स को आप फिर से रीसेट कीजिए, और अपनी इंटेंशन जो भी आपको चाहिए तो अगली बरस जब बप्पा आए तो हमारे लिए वो सारी ब्लेसिंग्स जो है, हमारे लिए वो दुआएं जो है वो हमेशा लेके आए, और अपना आशीर्वाद बप्पा जो है हमेशा हमें अपने जीवन में देके जाएं। और किसी भी चीज से आपको उनको सुखी मन से विदा करना है, दुखी मन से नहीं करना है, खुशी खुशी आप उनको विदा करो। आप इमोशनल हो सकते हो बट कहीं भी उनको दुखी मन से आप विदा मत कीजिए, ऐसा जब बप्पा हमें दुखी देखेंगे तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो खुशी खुशी आप जो है इमोशनली उनको जो है आप वैल्यू कीजिए और उनसे सीखिए, उनसे बहुत कुछ सीखिए, और आज ही वो दिन है जब अपनी सारी नेगेटिव इमोशंस आपको रिलीज करने हैं।
0: बिल्कुल वानिया जी आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपने वो लॉ ऑफ डिटैचमेंट तो पहले ही बता दिया है कि किस तरह से हमें रखना है, और जीवन का ये क्रम चलता रहे यही हम भी चाहेंगे। और इसी के साथ ये भी तो कहा गया है ना कि भाई ये प्रतीकात्मक तौर पर विसर्जन है, बप्पा कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमारे दिलों में हमेशा इसी तरह से रहेंगे और इसी तरह से घर परिवार पूरे संसार को ब्लेस करते रहेंगे। तो गुड न्यूज टुडे पर 8 घंटे की महाकवरेज लगातार विसर्जन को लेकर चल रही है, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से अकोला, लाइव तस्वीरें लालबाग चौराहा की, इसी तरह से आगे भी आपको हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: तो इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने बड़े ही धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया है। हर दिन लाखों गणेशोत्सव की तस्वीरें शेयर की है, मंगल मूर्ति की अनुपम प्रतिमा को खूबसूरती से सजाए गए पंडाल में विराजमान किया गया, सुंदर पुष्पों की माला धारण किए हुए बापा को प्रिय मोदक और फलों का भोग लगाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से मनोज गुप्ता ने हमें भेजी है, जहां बापा का दरबार बेहद खूबसूरत सजा हुआ है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मोरय की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

0: अकोला में भक्त भारी मन के साथ कर रहे बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों की धुन पर गजानन से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना, प्रशासन ने बनाया आर्टिफिशियल कुंड।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: अगले बरस तू जल्दी आ। जी हाँ, बिल्कुल इसी के साथ आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ नवजोत रंधावा और हमारी ये मैराथन कवरेज लगातार जारी है। जेंजी की भाषा में हम इसको मैराथन कवरेज ही कहेंगे। 8 घंटे की महा कवरेज, जहां हम आपको दिखा रहे हैं देश भर के अलग अलग कोनों से तमाम वो तस्वीरें जहां पर बप्पा को विदाई दी जा रही है। कहीं ना आंखों के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है, तो कहीं ढोल ताशों के साथ भक्त नाचते गाते झूमते शोभा यात्रा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें, लेकिन जो सबसे खूबसूरत दिव्य भव्य जिसको कहेंगे, आस्था का समंदर जिसको कहेंगे, वो नजर आ रहा है इस वक्त मुंबई में, जहां पर गणपति विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में, कहें कि पूरी मुंबई एक तरीके से सड़कों पर आ गई है। जेएनटी की ये नॉनस्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं और देखते ही देखते 12 दिन बीत गए हैं। गणेश चतुर्थी के दिन धूमधाम से बप्पा आए थे और आज है अनंत चतुर्दशी, जब बप्पा की विदाई हो रही है। विसर्जन की परंपरा है बहुत ही प्यार श्रद्धा के साथ, देश में सदियों से यूं ही निभाई जा रही है। और जिस तरह से गणपति की स्थापना के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती, ठीक वैसे ही इंतजाम विसर्जन को लेकर भी किए जाते हैं। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में आज बप्पा की विदाई हो रही है, लेकिन मुंबई और अकोला की अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ की तस्वीरें बेहद खूबसूरत भव्य भक्तिमय नजर आ रही हैं। तो मुंबई में लालबाग के राजा समेत कई विशाल प्रतिमाएं चौपाटी के रास्ते पर हैं और जितनी बड़ी तादाद में उनके साथ भक्त चल रहे हैं, माना यही जा रहा है कि शनिवार सुबह ही विसर्जन होगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि आज सुबह लालबाग राजा की विसर्जन यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी भी जो खबरें और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, उस हिसाब से जो हमें समय मिला है वो यही है कि कल सुबह 8 बजे बप्पा का विसर्जन होगा, उससे पहले नहीं। तो आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर मेरे सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। धर्म, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त, देखिए रात के 10:10 का वक्त हो चुका है और सुबह से तमाम प्रतिमाओं को हम देख रहे हैं, मुंबई की अलग अलग सड़कों पर भक्ति का जन सैलाब नजर आ रहा है। मेरे दो सवाल है, क्या अभी भी उतने ही रंग उतनी ही भक्ति वहां पर दिख रही है, कितनी संख्या में लोग हैं? और दूसरा, जहां तक विसर्जन की बात है, आप बता रहे थे कि लालबाग राजा का सबसे आखिर में विसर्जन होता है और उसके लिए कल सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा, तो अभी कौन कौन सी मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है, कौन सी कतार में है?
1: देखिए, जहां तक श्रद्धालुओं के आने की बात है, भीड़ की बात है, तो आपको बता दें कि शुरुआत अभी हुई है। अभी वो कहते हैं ना गाना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल उसी तरीके से पार्टी यानी सेलिब्रेशन यानी त्योहार उत्सव श्रद्धालुओं द्वारा गणपति बप्पा के लिए, वो अभी शुरू हुआ है। और लगातार जो टीमें हैं, जो जुलूस है, जो शोभा यात्रा है बप्पा के साथ, तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे देखिए काफिलों में यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया कुछ देर पहले कि 3,500 से ज्यादा, वो आंकड़ा अब 4,000 पहुंच चुका है कि 4,000 से ज्यादा छोटी गणपतियों का विसर्जन किया जा चुका है। हाँ, ये कह सकते हैं कि रात 12 बजे तक जो छोटी गणपतियां होती हैं जिन्हें घर में विराजमान किया गया है, उन्हें यहाँ ला करके वो अपने परिवार संग चले जाएंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें यहाँ आने में समय लगता है और पूरा खालीपन लगता है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जिससे जगह ज्यादा मिलती है। इसलिए तमाम श्रद्धालुओं के साथ लगातार बप्पा के साथ लोग यहाँ पर जुड़ते ही चले जाएंगे।
0: धर्म, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, हालांकि मैं समझ सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहां पर ढोल ताशों की आवाजें भी हैं, पीछे से हम बहुत सारी आवाजें सुन रहे हैं, भक्तों का जोश भी यहां पर हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन एक एक सवाल जल्दी से कि जितनी भीड़ सुबह थी क्या उतनी ही शाम में? हालांकि मुंबई के लिए तो कहा यही जाता है कि मुंबई सोती नहीं है, मतलब दिन रात लोग जागते रहते हैं, तो जितनी भीड़ सुबह थी क्या उतनी तादाद में अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं?
1: देखिए, इसका जवाब खुद ये तस्वीरें बता रही हैं। आप देखें, एक के पीछे एक गणेश जी लगातार लगे हुए हैं, बने हुए हैं, सभी विशाल काय बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं। इन्हीं बप्पा को देख लीजिए, देखकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। और इसके पीछे जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, मुझे लगता है अभी मैं जहां तक देख पा रहा हूं 20 ऊंची ऊंची प्रतिमाएं गणेश जी की दूर तक दिखाई दे रही है। अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, पूरी रात ये सिलसिला चलने ही वाला है। जहां तक रही बात भीड़ की श्रद्धा की, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज्यादातर अब अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें ट्रैवल अभी करना होता है। मुंबई की लोकल मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन और बहुत सारी ऐसी यात्रा की वो जो चीजें हैं वो बंद हो जाती है, तो हर कोई अब अपने घर पहुंचना चाहता है। वो एक तरह की मजबूरी है, ऐसा ना हो तो लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिन लोगों ने ये ठान रखा है कि परिवार, फैमिली, दोस्त यार, फैंस के साथ आकर के पूरी रात आज बप्पा के सेवा में न केवल रंग जाना है बल्कि अपने अलग ही तरह का सेलिब्रेशन मनाना है, वो सारे के सारे लोग जो है आपको दिखेंगे ही। देखिए एक के पीछे एक, कैसे सारे ही गणपति बप्पा ऊंची ऊंची जो प्रतिमाओं के लिए जाने जाते हैं लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये इन सभी का याराना है, दोस्ती है। आपस में शायद सब कोई बात भी कर रहे हैं, बप्पा कह रहे आज मैं पहले, आप पहले, इस तरीके से तरह तरह के उदाहरण, तरह तरह की चीजें गणेश उत्सव।
0: और देखिए धर्म कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, यानी ये पल, ये समय, ये मौका इसलिए भी धर्म इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हर जगह पंडाल हॉपिंग नहीं कर पाते हैं, सभी गणपति नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ पर जब क्रमवार एक के बाद एक यहाँ पर विसर्जन के लिए मूर्तियां जा रही हैं तो एक तरीके से लोग दर्शन भी कर पाते हैं इजीली। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, अगर आप हमें बता पाए कि किस कौन सी प्रतिमा का विसर्जन कब होगा, किस तरीके से पूरी कतार लगेगी, किसके पीछे कौन से बप्पा होंगे, ये तय कैसे होता है, ये आपसे मैं जानूंगी। लेकिन उससे पहले नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नितिशा जी बहुत स्वागत है आपका, और इन तस्वीरों में आप भी हमारे साथ शामिल हुए क्योंकि मैराथन कवरेज गुड न्यूज टुडे की लगातार जारी 8 घंटे की महा कवरेज, हम देश भर से तस्वीरें दिखा रहे हैं बप्पा के विसर्जन की। साथ ही साथ संजय शर्मा जी भी मौजूद है हमारे साथ। लेकिन नितिशा जी मन के भाव इन तस्वीरों को देखकर क्या कह रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका?
2: देखिए बिल्कुल आपके अभी एंकर बोल रहे थे ना कि मन प्रफुल्लित हो रहा है उनको देखकर, तो मेरा भी पूरा दिन जीएनटी सुबह 12 बजे से ये शो मैं देख रही हूँ और सच में मन प्रफुल्लित होता है। पूरे देश के गणपति यात्राएं जो देखी है, जो मंदिरों के दर्शन किए हैं सुबह से, और लाल बाग के गणपति जी का जो उनका जाना था पूरी प्रोसेस, बहुत मजा आया। नवजोत जी और आपके बिना आज का दिन कैसे पास होना था मेरा, तो आपको देख के मन प्रफुल्लित हो गया क्योंकि त्योहार पे अगर आप मुझे ना मिलो तो कुछ अधूरा रह जाता
0: है। ये फीलिंग्स म्यूचुअल है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। चले जल्दी से एक बार संजय जी, संजय इन तस्वीरों को देखकर मन के भाव कैसे हैं, क्या क्या पहला रिएक्शन मैं चाहूंगी कि आप बताइए। देखिए रात 10:15 का समय हो चुका है, सुबह से ये पूरी विसर्जन की प्रक्रिया जारी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरा देश इस उत्सव के रंग में रंगा हुआ है।
3: देखो गणेश जी की महिमा बहुत बड़ी है और कहा जाता है कि प्रथम पूज्य है और सब जो है मिलकर के इस आनंद स्वरूप को जो है एंजॉय कर रहे हैं और ये एक तरह का त्योहार की तरह ही मनाया जा रहा है। और गणेश जी की स्थापना हम लोग अपने घर में करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं, एक खुशमय और मंगलमय जीवन जो हमारा व्यतीत होता है। आज का जो पूरा दिन है, मैं आपको जीएनटी में सुबह भी प्रोग्राम कर रहा था, तो सुबह से लेकर के और अभी तक का जो समय चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि सब जो है भाव विभोर हो गए हैं और भगवान की भक्ति में जो है लग गए हैं और गणेश जी के अलावा दूसरा शब्द मन के अंदर ही नहीं आ रहा और गणेश जी का जो भाव है वो मन के अंदर बैठ चुका है। क्या गणेश जी की कोई भी प्रतिमा देखे, नाना प्रकार की प्रतिमाएं जो है गणेश जी के अलग अलग रूप को जो है दर्शा रही हैं और उनको देख करके जैसे लाल बाग के गणपति को देखा मैंने, तो मैं मेरे मन में आनंद की अनुभूति हुई और मैं कहूंगा कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका मन भी गदगद कहीं ना कहीं हो गया और भगवान की कृपा उनके ऊपर अवश्य बनी।
0: देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि क्यों आपको गुड न्यूज टुडे छोड़कर नहीं जाना है, इसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं, नितिशा जी भी अग्री करेंगी। पहली बात तो यह है कि आपको पॉजिटिविटी अगर कहीं मिलेगी तो वो यहां मिलेगी, और दूसरी बात यह है कि अगर आपको सही मायने में हिंदुस्तान के रंग, भारत के रंग देखने, भारत की आस्था देखनी है, हमारी संस्कृति देखनी है, हमारे देश के लोगों के भाव देखने हैं, भावनाएं देखनी है, आस्था देखनी है, तो वो केवल यही मिलेगी। शायद आप मुंबई ना जा पाए, शायद आप वहां जाकर लालबाग चौराहा के दर्शन ना कर पाए, मैं भी नहीं गई हूं, मैंने भी दर्शन नहीं किए, लेकिन यहां बैठकर हम मुंबई के हर एक पंडाल के दर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र में और दक्षिण में जहां जहां बप्पा विराजमान है और जो भी संदेश दे रहे हैं वो सब आपको सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर ही हम दिखा रहे हैं। जल्दी से एक बार हमारे साथ धर्म भी मौजूद है। धर्म, मेरा सवाल वही कि कौन से बप्पा का विसर्जन किस समय होगा, वो लाइन कैसे लगेगी, कतारें कैसे डिसाइड होती हैं?
4: मुझे तो आईडिया नहीं समझ में आ रहा,
1: देखिए हर साल जो है एक अलग ही तरह से प्रक्रिया होती है और अलग तरह से सारे ही मंडल एक मीटिंग करते हैं जिसमें बातें डिसाइड हो जाती है। सबसे पहले करीब 11 बजे से 12:30 के बीच में लालबाग के राजा ही अपना पंडाल छोड़ते हैं और फिर यू टर्न मार करके फिर अपने ही पंडाल की तरफ जब तक आते हैं तब तक 6-7 घंटे हो चुके होते हैं, यानी कि सुबह निकलने के बाद 5 बजे अपने पंडाल पहुंचते हैं। दूसरा जो नंबर होता है वो मुंबई के गणेश गली यानी कि सबसे जो पुराने पंडाल हैं जिन्हें मुंबई का राजा के नाम से जाना जाता है उनका होता है। तीसरा नंबर तेजुका राय का होता है। इसी तरीके से चिंतामणि का राजा और उसके बाद में बहुत सारे तमाम और इस तरीके से हर कोई ही नंबर अपने खुद ही लगा लिया करता है। हर साल उसी तरीके के चीजें होती है लेकिन टॉप 10 जो गणपतियां होती हैं वो अपने सही समय से निकलती हैं। जैसे कि अभी तक गणेश गली का जो विसर्जन है हो चुका है, तेजुका का विसर्जन हो चुका है, चिंतामणि का विसर्जन हो चुका है, परेल के राजा महाराजा विघ्नहर्ता लंबोदर का दर्शन हो चुका है और इस तरीके से लगातार खेतवाड़ी में भी कुछ 12-13 गलियां होती हैं 100-100 मीटर पर और सभी गलियों में 25-30 फीट से ज्यादा ही ऊंची प्रतिमाएं बिठाई जाती हैं, उन सभी का भी दर्शन हो गया है। अब मुंबई के दूसरे जो कोने वहां से गणपति बप्पा के आने का सिलसिला अभी भी चालू है। थोड़ा सा दृश्य से देखें किस तरीके से लद लद के अब पहले तो एक ही रास्ता रोका गया खोला गया था लेकिन अब दूसरे सड़क को भी खोल दिया गया है ताकि एक तरफ से बड़ी जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं वो आए और दूसरी तरफ से छोटी जो प्रतिमाएं हैं वो आते चले। लेकिन अंत में जो कहते हैं ना कि मुंबई महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े देव माने जाते हैं गणपति के, जिनकी बहुत बड़ी मिन्नत है, जिनके पैर छूने के लिए लोग 10-10 घंटे कतार में खड़े होते हैं, उनका नाम है लालबाग का राजा। सभी को उनका इंतजार होता है। जो किसी ने ये तय कर रखा है कि रात भर अब बप्पा का दर्शन लेना है पूरे मुंबई भर के, वो इस तरीके से यहाँ जो भीड़ जुटी हुई है आकर खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह पकड़कर खड़े रहते हैं और लगातार बप्पा का दर्शन करते रहते हैं। और जिन्हें लालबाग का राजा का दर्शन करना ही है किसी भी हाल में, वो पूरे सुबह 8 बजे तक गिरगांव चौपाटी में ही रहेंगे क्योंकि जिस जगह की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे के आसपास लालबाग के राजा अपने काफिलों के साथ में लाखों श्रद्धालुओं के साथ में यहां पहुंच जाएंगे और तकरीबन 1 घंटा लगता है उन्हें गिरगांव चौपाटी तक जाने के लिए। और गिरगांव चौपाटी तक पहुंचने के बाद 1 घंटे के भीतर उनकी आरती पूजा होती है, उसके बाद में तमाम लोग उन्हें समुद्र के भीतर ले जाएंगे, एक टीम होती है, एक व्यवस्था की गई है, उन सभी की तैयारी होती है और फिर अंत में 8 बजे फाइनली लालबाग के राजा का विसर्जन हो जाता है। और ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कहना है कि उनके विसर्जन के बाद ये जो महापर्व है गणेश उत्सव है इसकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और मैं उदाहरण माफ करिएगा एक और मैं बात यहाँ कहना चाहूंगा, अंधेरी के राजा के नाम से भी एक बप्पा है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध है, जो सेलिब्रिटियों के बप्पा है, ज्यादातर टीवी और बॉलीवुड के स्टार्स वहीं जाते हैं। वो एकमात्र बप्पा मुंबई के ऐसे हैं जिनका विसर्जन 21वें दिन होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अब जिस दिन भी संकष्टी आने वाला है उस दिन होने वाला है। और जिस तरीके से लालबाग के राजा के साथ लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुड़ जाते हैं, 21वें दिन अंधेरी के राजा के साथ वो सारे जुड़ जाते हैं और हमें ये भी कह सकते हैं कि फाइनली मुंबई का गणेश उत्सव समाप्त हो चुका है।
0: बिल्कुल बिल्कुल धर्म, मैं लौटूंगी आपके पास तस्वीरें लगातार मुंबई से, धर्मेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ धर्म हमें यहाँ पर दे भी रहे हैं। लेकिन नितिशा जी अब आपके पास आऊंगी, जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो देखिए बहुत कुछ मन में आता है। यहाँ पर बप्पा जा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, भावनाएं बहुत जुड़ जाती हैं। और अगर आपको भी याद हो तो स्पेशली गुड न्यूज टुडे पर जिस वक्त बप्पा की मूर्ति आकार लेना शुरू करती है तब से लेकर यहाँ तक यानी कि विसर्जन की तिथि तक लगातार गुड न्यूज टुडे हर दिन बड़ी महा कवरेज, हम केवल आज 8 घंटे की बात कर रहे हैं लेकिन गुड न्यूज टुडे जिस दिन बप्पा की मूर्ति ने आकार लेना शुरू किया था हम उसी दिन से इस उत्सव के रंग में रंगे हुए हैं और हर कोई इस उत्सव के रंग में रंग जाता है। फिर उसके बाद जब बप्पा जाते हैं तो यकीनन मन थोड़ा भारी होता है, मन थोड़ा भावुक होता है।
2: बिल्कुल नवजोत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस दिन मूर्ति आकृति लेना शुरू करती है उस दिन से ही हम जुड़े होते हैं और जीएनटी वो क्षण भी हमें दिखाता है जब मूर्ति की स्थापना या मूर्ति की आकृति स्टार्ट होती है। और साथ ही साथ अभी एंकर बोल रहे थे कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे भक्त वहां पे लगे हुए लाइनों में उनके एक दर्शन के लिए पूरी रात खड़े होंगे उस जगह पर। तो मैं यही कहूंगी ये भावना बहुत स्पेशल है क्योंकि गणेश जी भी बहुत स्पेशल है उन्हें विघ्नों के हर्ता कहा गया। बड़ा सिर, बड़े कान, छोटी आंखें, बड़ा पेट, उनका एक एक अंग हमें हमारे जीवन को जीने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए इनफैक्ट प्रेरित करता है। तो उनके साथ तो वैसे भी हम जुड़े हैं, क्योंकि उनके बिना ना कोई मंगल कार्य हो सकता है और ना ही कोई हमारे विघ्नों का नाश हो सकता है, ना ही रिद्धि माता, ना सिद्धि माता, और ना ही शुभ लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। तो उनकी जरूरत क्षण क्षण मनुष्य को तो पड़ती ही पड़ती है, और उनका जाना एक तरह से प्रसन्नता भी है कि वो अगले साल वापिस आएंगे और मेरे सभी कष्ट हर लेंगे जाते हुए, और एक तरफ दुख भी हो रहा है कि वो जा रहे हैं और अब मुझे पूरा एक साल और वेट करना पड़ेगा उनको बुलाने के लिए। तो अभी मैंने भी उनको विसर्जित किया, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही किया, पूरा मैं गुलाल से वो हुई हुई थी, और मुझे लग रहा है वो गुलाल एक तरह से ब्लेसिंग थी बप्पा की कि मैं तुम्हारे साथ रंग में से जुड़ा हुआ हूँ। एक स्पेशल अनुभूति कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा प्रकृति के रंगों के साथ। तो वो जा रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन वो प्रकृति का रंग, वो हमारे जीवन में एक साल जो विघ्न जो हटेंगे वो हमारे साथ हमेशा नवजोत जी जुड़े रहेंगे।
0: बिल्कुल, और वो प्रकृति का रंग नितिशा जी, हाँ, आज मुंबई की सड़कों पर उड़ता हुआ हमने देखा भी है। हर तरफ या तो भक्त नजर आ रहे हैं, या बप्पा नजर आ रहा है, या फिर उन पर बरसता हुआ वो लाल गुलाल नजर आ रहा था। संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, आज बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है, जैसे नितिशा जी भी बता रही हैं, इससे पहले हमारे साथ श्रुति खरबंदा भी थी, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी बप्पा का विसर्जन किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। बहुत अहम आज का दिन है, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। संजय जी, ये भी बताइए, अभी तक बप्पा हमारे साथ थे, बप्पा की सेवा, बप्पा की भक्ति में हम सब लीन थे, लेकिन विसर्जन के बाद भले ही हम भावुक हो जाते हैं, उसके बाद किस तरीके से बप्पा की आराधना होती है?
3: देखो, नितिशा जी ने बड़ा सुंदर बोला कि जीवन के रंग प्रभु के संग, ये भी एक क्या कि सारा उन्होंने एक बात में, एक ही चीज में निचोड़ कर रख दिया और बड़ा अच्छे से व्याख्यान किया उन्होंने। और अभी जो हम बात करें कि जब हम भावुक हो जाते हैं, एक मंत्र आता है, बड़ा स्पेशल मंत्र है, जैसे आप कहते हैं गणपति बापा मोरिया अगले वर्ष तू जल दिया, उसके लिए एक स्पेशल मंत्र है, यांतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किष्टम इष्ट कामार सिद्ध पुनर अपि पुनर रागमन चर, क्योंकि दोबारा से आपको आगमन हमारे जीवन में होना चाहिए। कि गणपति की जो प्रतिमा है वो जा रही है, असली में गणेश जी तो हमारे घर में सदा विराजमान है और कण कण में विराजमान है, और गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य है, उनकी प्रतिमा जो हम लाते हैं घर में और एक आस्था के साथ जो स्थापना करते हैं गणेश जी की, और अपने घर में ला करके कहते हैं कि गणपति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, और जिस तरीके से माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है उसी प्रकार से गणेश जी का जितने भी रूप है, बाल रूप है, तरुण रूप है, भक्ति रूप है, वीर रूप है, श्रीपति रूप है, द्विज रूप है, और उसमें सबसे अच्छा एक बात कहूंगा एकाक्षरी जो रूप है गणपति का। तो ये सारे जो त्रिमुख है, लोचन है, ये 32 जो नाम होते हैं गणेश जी के, वो अलग अलग आकार के होते हैं, और उस उन आकारों की अगर हम बात करें तो गणेश जी हर रूप में आप देखें, दुर्गा गणपति भी होते हैं, माता गणपति भी होते हैं, योग गणपति भी होते हैं, त्रिमुख गणपति भी होते हैं, ये सारे जो गणेश जी की प्रतिमाएं अलग अलग आकार की होती हैं, और जो प्रथम में पूज्य गणपति होता है वो हमारे बाल तरुण गणपति होते हैं। जो बड़ी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन अभी आप जैसे कह रहे थे कि आखिरी में आप देखें ये वाली जो मूर्ति है वो माँ दुर्गा की तरह है, और आप देखें कि दुर्गा गणपति हैं। तो हरेक जो गणपति का आकार है वो नाना प्रकार के आकार है, विष्णु गणपति हैं। तो ये सारे गणपतियों की जब हम आराधना करते हैं, हर व्यक्ति अलग रूप की जो है गणेश जी की प्रतिमा रखता है, और रख करके कई लोग बड़े छोटे से सुंदर से बाल रूप में गणपति लाते हैं और घर में जो है स्थापना करते हैं, उसके बाद में रोज भोग लगाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, आसन देते हैं और गंगा जल भर करके रखते हैं, कोठली भी बना करके जब जाते हैं तो विसर्जन के लिए जो एक सिक्का, सुपारी और चावल, पीले चावल की गणेश जी के साथ जो है उसको विसर्जित किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम गणेश जी को अर्पित करते हैं, जैसे रस्ते में आप जाते हो तो खाना लेकर जाते हो, बांध के लेकर जाते हो अपने बच्चे को स्कूल।
0: बिल्कुल, एक परिवार के सदस्य की तरह, एक मेहमान की तरह, लोग खुद बाद में खाते हैं लेकिन उठते ही स्नान करने के बाद सबसे पहले होता है कि बप्पा के लिए भोग तैयार कर दिया जाए, सबसे पहले उनको भोग लगाया जाए क्योंकि वो घर पर विराजमान होते हैं। चलिए, यहीं से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तस्वीरें लगातार आपके सामने और हमारी बड़ी और महा कवरेज भी लगातार जारी है। रुक रहे, ब्रेक के लिए तुरंत लौटते हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात।

0: बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या है पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष का क्या होगा पूजा विधान और पितृपक्ष में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।

0: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकली लालबागचा राजा की शोभा यात्रा, भक्तिमय माहौल में गणपति बप्पा मौर्य की गूंज, श्रद्धालुओं का लगा मेला। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ ही गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेनजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। फिल्म हनुमान अंश के कलाकारों ने बांधा समा। यूपी में बदला मौसम का मजाज। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में अलर्ट। 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।

0: अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति विसर्जन पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है और देखते ही देखते कैसे 12 दिन बीत गए। तो गणेश चतुर्थी के दिन धूमधाम से हम बप्पा को घर लाए थे, लेकिन आज है अनंत चतुर्दशी और बप्पा की विदाई हो रही है। विसर्जन की तमाम परंपराएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिनका विसर्जन हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका विसर्जन अभी होगा। तो एक एक करके तमाम मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन मुंबई की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं विसर्जन की, आपको सीधा नागपुर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। मेरे सहयोगी योगेश इस वक्त ये रिपोर्ट लेकर आए हैं।
1: गणेश उत्सव के दौरान अपने लाडले गणपति बाप्पा को बड़े ही धूमधाम के साथ पूजा अर्चना के बाद अब पारी है अपने लाडले गणपति बाप्पा के विसर्जन की। इस समय हम नागपुर के गांधी सागर इस तालाव में हैं, तालाव के पास मौजूद है। यहाँ पर आर्टिफिशियल टैंक बनाए गए हैं, बड़ी संख्या में लोग अपने लाडले गणपति बाप्पा को विदाई देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हम देख सकते हैं तस्वीरों में जो गणपति है, जो गणेश उत्सव के दौरान घरों में पंडालों में लोगों ने बड़े ही श्रद्धा आस्था और भक्तिभाव के साथ विराजमान किए थे, उसकी विदाई का ये वक्त है गणपति बाप्पा के लिए। यहाँ पे आर्टिफिशियल टैंक नागपुर महानगर पालिका के ओर से बनाए गए हैं। इस समय हम देख सकते हैं लोग जो है वो गणपति बाप्पा की आरती के बाद यहाँ पहुँचे हैं। ये बताइए आपने गणपति बाप्पा को घर में विराजमान किया था, आज विदाई हो रही है,
2: विदाई हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि 10 दिन जो हमारे गणेश जी जो हम दिन सवेरे शाम उनकी पूजा पाठ करते थे, आज गणपति बाप्पा जो हमसे विदाई हो रही है उससे बहुत दुख लग रहा है मुझे।
3: गणपति बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी।
1: तो हम देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपने घरों के गणपति बाप्पा का जो विसर्जन है वो विसर्जन करने के लिए आ रहे हैं। हर कोई भक्त यहाँ एक ही बात कह रहा है कि गणपति बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी नौकरिया। योगेश पांडे, गुड न्यूज टुडे, नागपुर।
0: तो देखिए हर कोई कह रहा है नम आंखों से विदाई तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बप्पा अगले बरस आए और जल्दी आए। तो 11 दिनों तक घर घर में सुख समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद देने वाले गणपति बप्पा विदा हो रहे हैं। मुंबई से लेकर जालना, अकोला, नागपुर तक श्रद्धा का सैलाब है, ढोल ताशों की गूंज है, गुलाल और फूलों के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है। साथ ही साथ भक्तों ने उनसे अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना भी की है। हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: आगमन हुआ था तो घर आंगन खिल उठे थे। अब प्रस्थान की घड़ी है तो वही आंगन सूना सूना है। ढोल की थाप के बीच विदाई है, गुलाल की रंगत के बीच हल्की उदासी है, हजारों आवाजों के बीच एक ही पुकार है, बप्पा जल्दी आना, अगले बरस जरा जल्दी आना। अपने साथ नई उम्मीदें लाना, नई खुशियां लाना, हर परिवार के जीवन में मंगल भरना। दिल में बप्पा की छवि है, हाथ जुड़े हैं और होठों पर सिर्फ एक पुकार, गणपति बप्पा मोरिया। ये वो पल है जब उत्सव थम रहा है मगर आस्था की धड़कन अब भी तेज है। 11 दिनों तक घर घर में मंगल का उजाला रहा, आरती की थाल सजी, मोदक का भोग लगा, हर दिन बप्पा के नाम रहा। अब वही गजानन विदाई ले रहे हैं। मुंबई से लेकर अकोला और अलग अलग जगहों पर सड़कें श्रद्धालुओं के सैलाब से भर चुकी है। कहीं गुलाल की रंगत है, कहीं फूलों से सजारत, ढोल ताशों की गूंज है, लेकिन दिल में बिछड़ने की टीस आंखों में दिखाई दे रही है। सुबह जब लालबाग से पहली तस्वीर सामने आई तो भक्तों की आंखें नम हो गई। लालबाग के राजा विसर्जन के लिए निकले तो दर्शन के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा। जितनी दूर तक नजर जाए भक्ति भक्त नजर आए। किसी के हाथ में पुष्प थे, किसी की आंखों में नमी, हर चेहरे पर अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास था। ऐसी ही भावना जालना में भी देखने को मिली, जहां मोती तालाब स्थित विसर्जन कुंड पर गणेश प्रतिमाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात तक जारी रहा। घरेलू पूजा से लेकर सार्वजनिक मंडलों तक अलग अलग इलाकों से श्रद्धालु अपने लाडले गणराय को लेकर पहुंचे। जल में समर्पित करने से पहले बप्पा की आरती हुई, हाथ जोड़कर अगले साल शीघ्र आगमन की प्रार्थना की गई। महानगर पालिका के कर्मचारियों ने प्रतिमाओं को विधिवत विसर्जित करवाया और किसी अनहोनी से बचाव के लिए पुलिसकर्मी भी पूरी तरह मुस्तैद दिखे। उधर अकोला में भी बप्पा की विदाई का रंग भावना से मिलकर इंद्रधनुषी हो गया। विदर्भ की सबसे बड़ी विसर्जन शोभा यात्राओं में शामिल 12 भाई गणपति की पालकी निकली। ढोल ताशा, डिंडी और अखाड़ों के साथ निकले इस जुलूस में करीब 70 गणेश मंडल और अखाड़े शामिल हुए। रास्ते में भव्य झांकियां दिखी, कलाबाजी के करतब नजर आए और सबसे खास रहा गजानन का हाथी पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देना। कृत्रिम हाथी पर विराजे विघ्नहर्ता का ये स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना रहा। मातृशक्ति पार्वती नंदन की सनूठी सवारी को आगे बढ़ाती दिखाई दी, लेकिन इन भव्य दृश्यों के बीच एक तस्वीर ऐसी भी रही जिसने दिल छू लिया। कुछ श्रद्धालु जल में अर्पित करने से पहले प्रतिमा को बार बार सिर से लगाते नजर आए। आंखों में आंसू थे, मन में बिछड़ने का दर्द था और प्रार्थना थी कि जाते जाते बप्पा विदर्भ को अच्छी बारिश का आशीर्वाद देकर जाए। अकोला में घरेलू प्रतिमाओं के लिए महानगर पालिका की ओर से बनाए गए कृत्रिम विसर्जन कुंड पर भी सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ युवा और महिलाएं झूमते दिखे, मगर समर्पण की घड़ी आते ही उल्लास भावुकता में बदल गया। नागपुर के राजा की विसर्जन यात्रा भी धूमधाम से शुरू हुई। आरती के बाद रथ आगे बढ़ा, साथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जुलूस। ढोल ताशों की थाप ने माहौल को भक्तिमय कर दिया, जयकारों से रास्ते गूंज उठे। दर्शन के लिए मार के दोनों ओर लोग खड़े रहे, किसी ने फूल बरसाए, किसी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कई दिनों तक भक्तों के बीच विराजे नागपुर के राजा का पूरे भक्तिभाव से विसर्जन हुआ। जालना से गौरव विजयशाली, अकोला से धनंजय साबले, नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो पूरा देश आज उत्सव के रंग में रंगा हुआ है, डूबा हुआ है और उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। वैसे उत्सव कल सुबह तक यूं ही जारी रहेगा क्योंकि कम से कम मुंबई की तस्वीरें तो यही बताती है, जैसे हमारे रिपोर्टर लगातार वहां से दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें बता भी रहे हैं कि सबसे आखिर में लालबाग चौराहा के का विसर्जन होता है और उसका जो समय दिया गया है वो होगा कल सुबह 8 बजे का। इस बीच लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नितिशा जी हैं और संजय जी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। नितिशा जी, आपके पास आना चाहूंगी। बप्पा को हम विदाई दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बप्पा से सीखनी चाहिए। अगर हम बप्पा को घर ला रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि बप्पा हमारे घर में रहे। एक सांकेतिक तौर पर विदाई तो दी गई है, लेकिन उनका आशीर्वाद घर पर बना रहे उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए?
2: जी, मैं बप्पा के रंग बोलूं या जीएनटी के रंग बोलूं, हम शो देख रहे हैं, साथ में हमारी आंखें भी भीग रही हैं और साथ में हंसी भी आ रही है। कभी जयकारे लगाने का मन करता है तो कभी एकदम से आंखें नम हो जाती है। तो ये जो स्पेशल आप लोग जो हमारे अंदर जो भावनाएं भर देते हो ना, एकदम ऐसा लगता है कि कोई भंवर आ रहा हो, जहाँ पे हम खुश भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं और जयकारे भी लगा रहे हैं, बहुत स्पेशल है पहली बात तो। और सीखने की बात करूं तो पप्पा हमारे जीवन में आए सकारात्मक रूप में, और ये सिर्फ विसर्जन का समय नहीं, ये हमें ये दर्शाता है कि जो भी आपके जीवन में आता है वो जाता भी जरूर है। और इसके लिए भी हमें पप्पा से ही सीखना चाहिए कि जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो एक दिन जाएगा। आयु है, हमारा सुख है, हमारा दुख है, वो सब चीजें एक दिन जाएंगी जरूर। और दूसरा नवजोत जी, हम पप्पा को जल में विदाई देते हैं। जल यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी मन, तो बप्पा तो हमारे मन में, जल में, जल में हमने उनको विदा किया है तो वो हमारे मन में तो हमेशा ही है। सकारात्मक एक मंगल मूर्ति रूप में कि वो हमारे मन में बैठे हैं। और पॉजिटिविटी देखिए, आज चंद्रमा राहु के साथ है कुंभ राशि में, लेकिन हम लोग कितने भावुक भी हो रहे हैं, कितने खुश भी हो रहे हैं, कभी आंखें नम भी हो रही है। तो बप्पा हमें पूरी तरह से सिखा रहे हैं कि चाहे ये रोना है, ये दुख है, ये भावनाएं हैं, इन सब में न्यूट्रल हो जाओ और अपने मन में मुझे बसाओ। तो उन्होंने जल में विदाई ली है, यानी हमारे मन में विदाई ली है, और हर मन में वो है और हर मन में बप्पा हमेशा रहेंगे।
1: बिल्कुल संजय जी, अब एक और बात हम अक्सर कहते हैं कि विसर्जन के साथ साथ हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी विसर्जित कर देना चाहिए, और बप्पा क्योंकि हमारे यहाँ पधारे हैं, हमने उनकी आराधना की है, तो बप्पा से जितनी पॉजिटिविटी हम ले पाए हमें उतनी पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। क्या क्या और चीजें बप्पा हमें सिखा के जाते हैं?
3: जी देखो, सबसे पहली चीज सिखाते हैं कि सुख और आनंद से रहना, स्टेबिलिटी से रहना। कहा जाता है कि सृष्टि गणपति जो है, जिनकी चार भुजाएं होती हैं, वो कहते हैं स्टेबिलिटी देते हैं जिंदगी के अंदर। जिस प्रकार से पहले आकार और स्वरूप नहीं होता था, तो हम छोटी सी मिट्टी का एक छोटा सा गांठ लेकर के और उसपे जो है गणेश रौली मौली लपेट करके, रौली लगा के उसको गणेश गणपति बना करके पूजा किया करते थे। अब आकार वाली प्रतिमाएं आ गई हैं, तो हम आकार लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि सारे आकार हैं। गणेश जी का बाल रूप आप देखें कि जिस प्रकार से छोटा बालक होता है, उस प्रकार से बाल रूप उनको हमें सिखाता है कि हमें हमारे अंदर बचपना होना चाहिए। तरुण रूप सिखाता है कि हमें हमेशा यंग रहना है, अच्छा रहना है, अच्छा दिखावा करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है और हमें स्वस्थ रहना है। तरुण गणपति हमें सिखाते हैं। भक्ति गणपति हमें सिखाते हैं कि हमें हमारे अंदर भक्ति भाव होना चाहिए, सबके प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, त्याग की भावना, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। वीर गणपति सिखाते हैं हमें कि हमारे अंदर शक्ति जरूर होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, कैसा भी समय आ जाए हमें किसी भी शक्ति से डरना नहीं चाहिए, हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। और इसी प्रकार से सिद्धि गणपति सिखाते हैं कि हम सभी कामों को अपने जीवन के अंदर चुटकी बजा करके सिद्ध कर सकते हैं। और सृष्टि गणपति की बात कर रहा था, वो मूसक पे आते हैं आराम आराम से, धीरे धीरे, और अपने सारे काम कर जाते हैं। योग गणपति हमें सिखाते हैं कि हमें जो है अपने योग और साधना के द्वारा जो है जीवन के अंदर इस लोक से परलोक जाने की शक्ति, आप देखें देह को त्यागने की शक्ति, अपने को स्वस्थ रखने की शक्ति योग गणपति सिखाते हैं। त्रिमुख शक्ति जो है गणेश जी की, जो तीन मुख वाली शक्ति होती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हम कहते हैं, त्रिमुखी सिखाती है कि हमें तीनों लोकों में अपना नाम और परचम बनाना है और सृष्टि की रक्षा करनी है, जिस प्रकार से गणेश जी अपनी माँ की रक्षा करते हैं। हल्दी गणपति जो जिसको हल्दी गणपति कहते हैं, वो सिखाते हैं कि हमें अपनी माता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपनी माँ के रक्षक के रूप में कवच बन करके रहना चाहिए, चाहे पिताजी क्यों ना सामने आ जाए, अपने प्राण की बलि भी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्षिप्रा गणपति सिखाते हैं हमें, क्षिप्र गणपति जो होते हैं, हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, मंगल में रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ऋण मोचन सिखाते हैं कि कभी भी बड़ा लोन नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि अपने पैर को इतनी ज्यादा पसारो मत कि भाई आप लोन में ही डूब जाओ। तो ये क्या है, सारी चीजें जो है गणेश जी हमें अलग अलग रूप में
1: ओवरऑल
3: जो है
1: अगर
3: कुछ
1: देखा जाए नितिशा जी, ओवरऑल अगर देखा जाए, चाहे वो बप्पा का उत्सव हो या बप्पा से सीखने की बात हो, सबसे बड़ी बात ये है कि बप्पा हमें मैनेजमेंट सिखाते हैं आज की तारीख में, जो सबको आनी चाहिए। हर किसी को मैनेजमेंट आनी चाहिए, चाहे वो घर की हो, दफ्तर की हो, जीवन की हो, कहीं भी किसी भी चीज की, डिसिप्लिन के साथ साथ मैनेजमेंट।
2: जी हाँ, उनके 32 स्वरूप पूरी तरह से हमें वो ज्ञान दे देते हैं कि जो मनुष्य को अपने जीवन में सफलता को ला सके। तो वो 32 रूप हमारे पूरे 32 इंद्रियों को जागृत करने वाले बप्पा, और बप्पा जाते कहीं नहीं है, हमारे मनों में स्थापित रहते हैं आस्था और संस्कार के रूप में। वो हमें विश्वास देते हैं कि जो भी कठिनाई आएगी, जो भी विघ्न आएंगे, उन सबको मैं समाप्त कर दूंगा, उन सबको मैं तुमसे दूर कर दूंगा। इसीलिए उन्हें मंगल मूर्ति भी कहा गया है कि मैं हूँ तो मंगल ही मंगल उस घर में होता रहेगा। और जिस घर में पप्पा के चरण पड़ जाए, उस घर में वैसे भी कैसे विघ्न आ सकते हैं, उस घर में तो वैसे भी मंगल ही मंगल होगा। और मैं तो देख रही हूँ लाखों भक्त इतनी आस्था लिए, इतने इतने घंटों की लाइन में लगकर वेट करके, पूरी पूरी रात जाग कर जो उनको विदाई दे रहे हैं, तो उनको कितने भाव विभोर होंगे इस समय कि पप्पा जा तो रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में मंगल ही मंगल करके हमें सिखा के मैनेजमेंट तरह से जीवन की पूरी। मेरी वॉइस आ रही है नवजोत जी?
1: जी जी जी नितिशा जी, तो चलिए ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भी देखिए, समय भले कितना ही हो जाए लेकिन भक्त जो हैं वो चाह रहे हैं कि एक झलक बप्पा की पाली जाए, एक झलक बप्पा को देख लिया जाए। और ये वक्त इसलिए भी बहुत स्पेशल हो जाता है सभी भक्तों के लिए, क्योंकि एक के बाद एक हर मुंबई के हर कोने से, हर जगह के जो पंडालों के बप्पा होते हैं वो यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से शोभा यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कि पंडाल हॉपिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं बप्पा के, अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए इस पल को कोई भी मिस नहीं करना चाहता। और जैसे कि हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो घर चले जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी रात यहाँ पर रुकते हैं दर्शन करने के लिए। ये आस्था ही है भक्तों की, लोगों की, जो बप्पा से उन्हें जोड़े रखती है, उन्हें बांधे रखती है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें हो या फिर महाराष्ट्र के किसी भी कोने की या फिर दक्षिण भारत की, हर जगह से ऐसे ही आस्था के रंग लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 11 दिनों तक लगातार सुख समृद्धि मंगल का आशीर्वाद बप्पा ने दिया। और इसीलिए अब विदाई हो रही है तो भक्त कह रहे हैं कि बप्पा आप जा तो रहे हैं लेकिन अगले बरस जल्दी आइएगा और ये वादा करके जाइएगा। और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्से, चाहे वो मुंबई हो, जालना, अकोला, नागपुर, कहीं भी आप देख लीजिए, श्रद्धा का सैलाब नजर आएगा। कोई ढोल ताशों के साथ बप्पा को विदाई दे रहा है, कोई रंग गुलाल के साथ, कोई फूलों के साथ बप्पा को विदाई दे रहा है, तो कोई श्रद्धा भाव के साथ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू भी हैं। संजय जी, आपने बाल रूप का जिक्र किया, बप्पा के बाल रूप का, ऐसे बहुत से हमने बच्चे भी देखे हैं, क्योंकि बड़े लोग तो जब बप्पा को लेकर आते हैं एक आस्था भाव सभी का रहता है, लेकिन बच्चों को क्योंकि वो शिक्षा भी देनी है, धर्म के साथ जोड़ना है, तो कई बार कई घरों में ऐसा होता है कि माता पिता एक छोटे से गणेश ले आते हैं घर पे ताकि बच्चे भी उनके साथ अटैच हों, और वो इतनी अटैचमेंट हो जाती है बच्चों की कि आंसू तक निकल आते हैं बच्चों के जिस वक्त वो बप्पा को विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं।
3: देखो, बाल गणपति जो होता है, जब हम लेकर के आते हैं छोटा सा स्वरूप, जैसे छोटा बच्चा जब घर पे लेकर के आते हैं तो सब लोग उसके साथ खेलना शुरू हो जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि भाई ये हमारे घर में एक नया गेस्ट जो है आया है, और उसको पूरे तरीके से जैसे मम्मी उसको खाना खिलाती है वैसे उनको भोग लगाती है और दूरवा रखती है, मोदक रखती है, मिष्ठान देती है, सारी चीजें जो एक बच्चे के साथ की जाती है, जल का लोटा भर के रखते हैं, दीपक जलाते हैं, तो सारी विधान जो करते हैं, रौली लगाते हैं भगवान जी को, पोटली भर के रखते हैं। तो ये सारी चीजें जब बच्चे देखते हैं कि भाई जैसे जैसे हमारे साथ करती है मम्मी वैसे ही उनके साथ कर रही है, तो बच्चे घर का सदस्य समझने लगते हैं। और 10 दिन के अंदर अपने घर के अंदर जब भी बच्चा खेलता है कूदता है, जब बाल रूप में होता है 5 साल तक, तो उसको जो है नासमझ होता है, तो उनको पकड़ के, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको जाने ही नहीं देते, विसर्जन करने भी नहीं देते और रोना और विलाप करना शुरू कर देते हैं। तो गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं, जितने भी आप देखें, कान देखें तो कान बड़े कान कहते हैं कि भद्रम करने भी सुनुयाम, हमें भद्र सुनना है, अच्छाई को सुनना है, बुराई को ग्रहण करना ही नहीं है, बड़े कान ये सिखाते हैं। नाक लंबी है, सूंड लंबी हो, कहते हैं कि हमें हर चीज को पहले समझना है और समझ करके ग्रहण करना है। तो ये सारी जितने भी चीजें भगवान के अंदर हैं और जो मंत्र भी हैं, जैसे गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपति नमः, अगर व्यक्ति इसका जाप करता है तो निरोगी हो जाता है। ओम गण गणपति नमः बोलता है तो उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और कहते हैं कि समकश्य दंतश्य कपलोगज कर्णक लंबो दृष्ट विघ्ननाशो विनायका धूम्र केतुर गणार दक्षो बाल चंद्रो गजान द्वदशतानी नामानी। ये जो है गणेश जी के 12 नाम है, जो स्पेशल नाम है उसमें कहते हैं कि कपिला जो नाम आता है, कपिला का अर्थ होता है गौ। कहते हैं जिस प्रकार से हम गौ रक्षक है तो हमें गौ की रक्षा करनी चाहिए, अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए और सबको अच्छे अच्छी चीजें फल इत्यादि सबको ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान को फल अर्पित करते हैं तो बच्चों को फल फ्रूट्स भी खिलाना चाहिए, उससे बच्चा निरोगी हो जाता है। कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुर मैं देव सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हमारे जीवन में वक्रतुंड की तरह हम खुश रहें, प्रसन्न आनंद में रहें। और इस प्रकार से गणेश जी के जो मूल मंत्र है, जैसे गणेश पंच महारत्नम है, जितने भी गणेश जी के मंत्र हैं, तो उनका जाप इस वक्त करें। और लघु मंत्र तो सबसे बड़ा मंत्र तो एक ही है, ओम गण गणपते।
1: बिल्कुल, इसका जाप लगातार करते रहना चाहिए। बिल्कुल, दिव्य भव्य तस्वीरें लगातार आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने भी बड़ी धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ उत्सव के वीडियोस भी शेयर किए हैं। तो गुजरात के वडोदरा से आशुतोष पंचोली ने गणेश उत्सव की तस्वीरें शेयर की। खूबसूरत पंडाल में सुंदर पोशाक और मनमोहक पगड़ी धारण किए बप्पा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। भगवान गजानन फल और मिष्ठान का भोग भगवान को लगाया गया और साथ ही साथ उन्हें सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई गई। वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां धरती तिवारी ने ये तस्वीरें भेजी हैं। सिंहासन पर विराजमान गणपति बप्पा का दरबार शानदार तरीके से सजा हुआ है। भगवान गजानन के सम्मुख अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है। मिष्ठान का भोग लगाया गया।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकल रही लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, श्रद्धा भक्ति के माहौल में गणपति बप्पा मोरय के जयकारे, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का मेला। पुणे में 5 मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेनजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रण कौशल।

यूपी में बदला मौसम, चार राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।

तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से। अगले बरस तो जल्दी आ, और इसी उम्मीद के साथ और इसी भावना के साथ बड़ी संख्या में भक्त आज बप्पा को विदा कर रहे हैं। गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं हमारी ये मैराथन कवरेज, 8 घंटे की लगातार कवरेज, जिसमें दिखा रहे हैं हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बप्पा को विदाई दी जा चुकी है, लेकिन मुंबई की ये तस्वीरें जो दिव्य भव्य तस्वीरें हैं, कहते हैं कि मुंबई पूरी रात नहीं सोती, और शायद इसीलिए रात में बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं बप्पा को विदाई देने के लिए। और ये वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। कुछ ऐसे पंडाल हैं जिनकी मूर्तियों को विसर्जित किया जा चुका है, और कुछ ऐसे पंडाल हैं जिनकी मूर्तियों का विसर्जन अभी फिलहाल चल रहा है और समय लगेगा। और सबसे आखिर में लालबाग के राजा का विसर्जन होगा, जो कि कहा जा रहा है कि कल सुबह 8 बजे का वक्त जब लालबाग के राजा को विसर्जित किया जाएगा। तो बेहद खूबसूरत दिव्य और भव्य तस्वीरें जो लगातार सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं। गणपति विसर्जन की परंपरा का धार्मिक महत्व है, और इसके पीछे एक कहानी भी है जो इसे महाभारत काल से जोड़ती है। आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है विसर्जन से जुड़ी मान्यता।

0: सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। लेकिन भादो के महीने में विघ्नहर्ता गजानन संसार में शुभता की बौछार करने स्वयं अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। पूरे 10 दिनों तक बेहद श्रद्धा के साथ भक्त गणपति की सेवा पूजा करते हैं और 10 दिनों के बाद उतनी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ गणपति को धूमधाम से विदा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गौरी नंदन की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है।
1: 14 भुवन एक पति हुई, चतुर्दश भुवनानि विश्वा, ऐसा वेदों में उल्लेख आता है। तो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के 10 स्वामी होते हैं और गणपति को हमारे यहाँ गणाध्यक्ष माना गया। तो 10 दिशाओं से हम मंगल की कामना करें, 10 दिशाओं से समाज के लिए, परिवार के लिए उत्तम अवस्थाएं आए, इसलिए भगवान गणपति का 10 दिन का महोत्सव होता है। और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को प्रणाम करके उनको हम विश्राम देते हैं, विसर्जन करते हैं, इसलिए इस तिथि का बहुत ही महत्व है।
0: भाद्रपद के इन 10 दिनों में गणपति के पूजन और आखिरी दिन उनके विसर्जन से जुड़ी एक युगों पुरानी पौराणिक मान्यता भी है। ये पौराणिक कथा गणपति विसर्जन की परंपरा को महाभारत से जोड़ती है। माना जाता है कि भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ अपने हाथों से लिखा था। दरअसल भगवान गणेश को विद्या के साथ साथ लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। इसी के चलते महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के महाग्रंथ को लिखने का दायित्व स्वयं गजानन को सौंपा था। कथा के मुताबिक महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का वाचन शुरू किया, जिसे सुनकर गजानन ने लिखने की शुरुआत। पौराणिक संदर्भों में गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और शांत बताया गया है, यानी कैसी भी परिस्थिति हो वो बिना धैर्य खोए शांत भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं। तभी तो महर्षि वेद व्यास आँख बंद करके महाभारत की कथा सुनाते रहे और गजानन बिना विचलित हुए एकाग्रचित होकर उसे अपनी लेखनी से उतारते रहे। वेद व्यास महाकाव्य समाप्त कर चुप हुए और आंखें खोली तो देखा गणपति के शरीर पर गर्द जम गया था। लगातार लेखन और श्रम से उन्हें गर्मी लग रही थी। तब महर्षि व्यास गजानन को सरस्वती नदी के तट पर ले गए। शरीर की गर्मी दूर करने के लिए उन्होंने गणपति को सरस्वती के जल में डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। माना जाता है कि इसी के साथ पवित्र नदियों में भगवान गणेश के विसर्जन की परंपरा का श्री गणेश हुआ। सारे भारत में आज तक अलग अलग रूपों और रिवाजों के साथ ये परंपरा अनंत श्रद्धा से निभाई जाती है।
1: हमारे यहाँ क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, मृतिका की जो मूर्ति होती है उसको एक संवत्सर से दूसरे संवत्सर तक रखने का पूजा का प्रमाण है। क्योंकि मिट्टी के मूर्ति पर जब हम जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अर्चना करेंगे तो वो मूर्ति खंडित होने की संभावना होती है। खंडित मूर्ति की पूजा हमारे धर्म शास्त्र में नहीं बताई गई, इसीलिए इन मृतिका की मूर्तियों को जिस स्थान से जल में जल मिल गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, सब इसीलिए विसर्जन करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी पूजा लगातार हम नहीं कर सकते, इसलिए उस दिन हम उनको भगवान गणपति को विसर्जित कर देते हैं।
0: पौराणिक मान्यताओं से इतर गणपति विसर्जन किस परंपरा के पीछे लोक कल्याण की भावना भी छिपे है। वास्तव में सनातन धर्म में शरीर को विनाशी और आत्म चेतना को अविनाशी यानी अक्षय माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि शरीर या पिंड विनाशी है जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः। इसी तरह 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=MC² फॉर्मूला भी सनातन धर्म के इसी सत्य को बल देता है। आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के मुताबिक एनर्जी यानी ऊर्जा अविनाशी है, यानी उसका क्षय नहीं हो सकता बल्कि वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। इसी तरह अगर गणपति के जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है उस प्राण स्वरूप ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता। इसलिए जब हम गणपति बाप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो जिस मिट्टी से वो प्रतिमा बनी है वो तो जल के तल में जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसमें प्राण तत्व की जो सनातन चेतना है वो जल के साथ एकाकार होकर प्रवाहमान हो जाती है। फिर कुछ समय बाद यही बहता पानी जब इवेपोरेट होकर बादल बनता है और बादल जब बारिश के रूप में नीचे आता है तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। इस तरह गणपति की तात्विक चेतना बारिश के रूप में जन जन तक पहुंच जाती है। साफ है कि बापा के विसर्जन की परंपरा में जन कल्याण की भावना भी समाहित है। तभी तो जितने उल्लास के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत होती है, घरों में पूजा पंडालों में बापा को गाजे बाजे के साथ लाया जाता है, उतनी ही उमंग बापा की विदाई के दिन भी दिखती है। जिस तरह गणपति की स्थापना के लिए कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही विसर्जन के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जाते हैं ताकि विघ्नहर्ता के विसर्जन में कोई विघ्न न आए। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था और अगले बरस तो जल्दी आ की मीठी मनोहार के बीच गणपति को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ नदियों, तालाबों और सागर के अंतस में विसर्जित कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि बाप्पा विघ्नों को साथ ले जाएंगे और अगले बरस तक के लिए जगत को शुभता और सर्व मंगल का आशीर्वाद दे जाएंगे। मूर्ति जल में लौट जाती है पर बाप्पा हर दिल में ठहर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो दिव्य भव्य तस्वीरें लगातार आ रही हैं हर जगह से और हमारी ये बड़ी और महाकवरेज लगातार जारी भी है। तस्वीरों के साथ साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी ये जो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं ये चीज भी दिखती है और इस रिपोर्ट में हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से बप्पा के जीवन से, चाहे कितनी भी कथाएं क्यों ना जुड़ी हुई, लेकिन आज के जीवन को, आज के मनुष्य को किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना है, हम बहुत कुछ बप्पा से सीख सकते हैं।
3: बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया एनर्जी के बारे में, मैंने बड़े ध्यान से सुना उसको। और कहा जाता है कि अगर प्रारंभ है तो अंत भी है, कि अगर किसी चीज का जन्म हुआ है तो उसको अंत में जाना ही पड़ेगा। और तभी हम कहते हैं अनंत, अनंत का मतलब था जिसका कभी भी अंत नहीं होता वो अनंत कहलाता है। तो आज का दिन जब कहते हैं कि अगर बिगिनिंग है तो एंड भी है, तो ये क्या है कि जो चीज जिस चीज से उत्पन्न होती है उसी तत्व में मिल जाती है, फाइव एलिमेंट्स हैं और पांचों तत्वों में ही, जैसे मूर्ति मिट्टी से बनी है, उसमें प्राण भी आए हैं और उसके पश्चात हमने पूजा भी करी है, और वो एक एनर्जी जो है जागृत हो जाती है। जब आप किसी भी मूर्ति की पूजा करते हो, आपने देखा होगा एक समय में गणेश जी दूध पी रहे थे पर लोग क्या विश्वास नहीं कर पा रहे थे, पर उस वक्त एक एनर्जी थी उस वक्त संसार में जो गणपति को, जो है दूध को आप चम्मच से जब लगाओगे तो ऐसे लग रहा था कि वो मूर्ति जो है उस दूध को खींच रही है। तो क्या है कि एनर्जी हर मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, कोई भी आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कोई भी मूर्ति रखते हैं, अगर उसकी रोज पूजा करते हैं तो क्या है कि मिट्टी में भी हलचल होना शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो गणेश जी का जो स्वरूप होता है, आकार होता है, जब आप उसकी पूजा करते हैं भक्ति श्रद्धा के साथ में, तो उसमें भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जो आप सोच रहे होते हैं, कहते हैं कि मूर्ति भी सुनती है आपकी बात। जब आप भगवान के मंदिर में जाते हो तो आप क्या है कि अपने मन से जो है कुछ भी विचार करके जाते हो कि हमारा ऐसा हो जाए, हे ईश्वर हमारे जीवन में ये सब चीजें हो, हमारे जीवन में अच्छाई आए और हम अच्छाई को ग्रहण करते जाएं, बुराई को त्यागते जाएं। अभी बड़ा सुंदर शब्दों में एनर्जी की बात करी कि एल्ब्रेट ने किस प्रकार से एक विस्तृत जानकारी दी कि इसमें फॉर्मूला जो है EC/MC² का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी को किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। तो आप समझें कि सारी चीजें जो एनर्जी से ही चलती हैं, चाहे कोई भी चीज दुनिया की बनी है वो एक एनर्जी के ऊपर ही बनी हुई है, और उस एनर्जी को हमें ग्रहण करना है। एनर्जी भी हमें पॉजिटिव ग्रहण करनी है, नेगेटिव एनर्जी को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही सारी चीजें गणेश जी ने देखो अपने, कहा जाता है जब उनका तप बढ़ गया, क्योंकि 10 दिन तक लगातार जब लिखते रहे तो उनकी बॉडी में जो है हीट हो गई, और उस हीट को कम करने के लिए जो है वेद व्यास जी ने उनको जो है जल में स्नान कराया, जिससे कि आपका जीवन शांत हो जाए, आपका मन शांत हो जाए, क्योंकि नहाने के बाद आदमी जो है प्रफुल्लित वातावरण में आ जाता है। आप जब स्नान कर लें, कितने भी थके हुए हो तो आप जब स्नान कर लेते हैं और ध्यान कर लेते हैं, जब स्नान कर लेगा और ध्यान कर लेगा तो उसकी एक एनर्जी वापस आ जाती है। जब आप सो के उठते हैं तो भी एक एनर्जी आती है आपके जीवन में। तो भगवान ने जो जो चीजें बनाई है, रात जैसे सोने के लिए बनाई है, दिन जागने के लिए बनाया है, सूर्य आप देखो कि एनर्जी के से ही हमारा जीवन जो है चलता है
2: और वो इसलिए क्योंकि हम अगर उस डिसिप्लिन के साथ इन तमाम चीजों को लगातार फॉलो करते रहे। तो डॉक्टर नितिशा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिशा जी, ये सारी बातें जो अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई, संजय जी भी हमें समझा रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज की तारीख में, आज के जीवन में जब हर कोई, हर दूसरा आदमी एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसे में बप्पा से ये चीज, संयम किस तरीके से रखना है, संयम के साथ जीवन कैसे जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
4: बिल्कुल, और नकारात्मकता की बात करें तो जिस घर में बप्पा के चरण पड़ जाते हैं वो मंगल मूर्ति है, तो नकारात्मकता तो वैसे भी चली जाती है। और मैं बहुत बप्पा से बहुत अटैच फील कर रही हूँ, तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि एंजाइटी डिप्रेशन तब होता है हमारे अंदर जब हमारे जो मूषक रूपी जिस पर गणेश जी सवार है, हमारा मन विचलित होता रहता है, इधर उधर भागता है, जब हमारे गणेश जी उस पर बैठ जाते हैं, यानी मन के ऊपर जब गणेश जी का वास हो जाता है तो वो मन इधर उधर भटक नहीं सकता और कुछ भी खा नहीं सकता, वो डिसिप्लिन में आ जाता है, वो अपने ऊपर संयम रखने लग जाता है। तो जो मूषक राज है वो हमारा कहीं ना कहीं मन है, और मन पर अगर डिसिप्लिन संयम रखती है तो उस पर गणेश जी को बिठाना पड़ेगा। तभी गणेश जी को मूलाधार चक्र से भी जोड़ा गया कि वो माँ पार्वती की, अपनी माता की रक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारा मन इधर उधर ना भटके। और छोटे बच्चों से तो यही कहना चाहूंगी कि जब भी अपनी शिक्षा पढ़ाई को शुरू करें, गणपति बप्पा मौर्या, श्री गणेशाय नमः जरूर बोले, गणेश भगवान की जय बोले, आपका मन भी एकाग्र होगा, मन में शांति आएगी और बच्चों के जीवन में फोकस बहुत बढ़ेगा, बहुत क्लैरिटी आएगी। कहा जाता है कि अपनी टेबल पर पढ़ते हुए या लिखते हुए गणेश जी की छोटी सी मूर्ति या पिक्चर बन दी जाए, उससे बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा ज्ञान और फोकस क्लियर होता है।
2: बिल्कुल, बुद्धि के देवता कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन फोकस जिसकी कमी है ये भी बहुत जरूरी है, तो बप्पा की आराधना से आप ये सब कुछ पा सकते हैं। डॉक्टर नितिशा आपका और संजय शर्मा जी आपका, दोनों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त मुंबई की जो आ रही है, जहां पर विसर्जन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, एक एक करके तमाम पंडालों के राजा, कहें कि तमाम पंडालों के बप्पा एक एक करके कतारबद्ध तरीके से विसर्जन की तरफ ले जाया जा रहा है इनको, और सबसे आखिर में होंगे लालबागचा राजा, जिनका विसर्जन कल सुबह 8 बजे किया जाएगा। और हर तरफ अगर देखा जाए, और ये तस्वीरें सुबह से ही हम देख रहे हैं, लगातार बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं, आस्था का सैलाब है, तिल रखने तक की वहां पर जगह नहीं है, ढोल नगाड़ों के साथ कोई बप्पा को विदाई दे रहा है, कोई संगीत नृत्य के साथ दे रहा है, किसी की आंखें नम है और कोई पीछे चुपके से बस बप्पा से प्रार्थना कर रहा है कि बप्पा अगले बरस आप जल्दी आइएगा। और इसी के साथ बप्पा को आज विदाई दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मुंबई की, जहां पर रात में भी लोग मौजूद हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो दर्शन कर लेना चाहते हैं, बप्पा के हर स्वरूप के, हर रूप के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग पंडालों में बप्पा विराजमान थे। वक्त ज्यादा नहीं होता है पंडाल हॉपिंग का, हर जगह पर जाकर बप्पा के दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन ये एक ऐसा समय होता है जब हर पंडाल के बप्पा यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से विसर्जन के लिए ले जाए जाते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर हर कोई बप्पा के हर रूप के दर्शन कर सकता है। इस बार भी अगर देखा जाए तो अलग अलग पंडालों में अलग अलग थीम के साथ बप्पा विराजमान थे, अलग अलग संदेशों के साथ पंडाल बनाए गए थे, और मकसद सीधे तौर पर यह था कि लोग इसके साथ जुड़े। यहाँ पर अलग अलग पंडालों में ये भी देखा गया था कि लोगों ने अपने मन के भावों को भी पंडाल में, पंडाल की थीम मन के भावों के हिसाब से तैयार की थी। तो ये तस्वीरें जो हैं ये दिखाती हैं कि केवल ये एक आस्था का सैलाब नहीं, केवल ये एक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए वो भी हमें गणपति बप्पा सिखा कर जाते हैं। बहुत कुछ सीखा जा सकता है गणपति बप्पा से। तो इस वक्त आपको बता दें कि 12 दिन तक लगातार आराधना में लीन भक्त, लेकिन आज बप्पा को विदाई दी जा रही है इसी उम्मीद के साथ कि अगले बरस आप जल्दी आइए। तो इस साल गुड न्यूज टुडे के साथ दर्शकों ने भी बड़ी धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाया है। हर दिन लाखों दर्शकों ने हमें बप्पा की मनमोहक प्रतिमाएं भी भेजी हैं, और ये वीडियोस भी लगातार लोगों ने हमसे शेयर किए जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से काजल ने तस्वीर भेजी अपने घर पर मनाए जा रहे गणेशोत्सव की भव्य तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर है लखनऊ से रीना शर्मा की, जिन्होंने हमें भेजी है, जिसमें परिवार ने भगवान गजानन की विधिवत आराधना की है। तो इस खास निष्कर्ष में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ गुड लक टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है, इसके नियम क्या होते हैं और क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि पितृपक्ष का समय अशुभ समय होता है, निगेटिव समय होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष कोई नकारात्मक समय या कोई निगेटिव समय नहीं होता। पितृपक्ष में पवित्रता से रहने से, दान करने से, धर्म का पालन करने से जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं।
0: और चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 26 सितंबर 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या होगा।
1: दिनांक 26 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत अपने खास विषय के साथ करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि पितृ कौन होते हैं और पितृपक्ष किसे कहते हैं।
1: जी देखिए, पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है तो आज हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष की महिमा क्या है, इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम सामान्यतः पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक उसकी आत्मा मन के साथ जुड़ करके सूक्ष्म लोक में रहती है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है और पितृपक्ष के 15 दिनों में जो आपके पितर हैं वो सूक्ष्म लोक से धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उनको आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में, उनके प्रेम में, उनके सम्मान में दान और धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 26 सितंबर को होगा। तो पितृपक्ष 26 सितंबर को आरंभ हो रहा है और ये पितृपक्ष 10 अक्टूबर तक यानी पितृ विसर्जन अमावस्या तक रहेगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले जान लेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: मेष राशि, इस समय आपको बेवजह का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व बढ़ेंगे, पैसा लगाने में धन के निवेश में सावधानी रखिएगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60

0: बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि पितृपक्ष में किस तरह के कार्य और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
0: देखिए, पितृपक्ष बड़ा पवित्र समय है, पितरों का आशीर्वाद पाने का समय है, तो पितृपक्ष में कौन से काम किए जाएं, कौन से नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके। दोपहर के समय जिसको कुतप वेला कहते हैं, लगभग मध्य दोपहर के समय में ये जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश, एक तरह की घास है कुश, इसको रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है, और पूर्वज के देहांत वाली तिथि पर किसी निर्धन को भोजन कराया जाता है। तो जब आप अपने पितृ के देहांत की तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, किसी निर्धन को भोजन करा लेते हैं, तो इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं।
1: और चलिए, वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग

0: प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आज आप पहला सवाल किसका लेंगे?
0: जी आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें मेल लिखती हैं जम्मू से। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1993। जन्म का समय रात में 9:42। जन्म स्थान है जम्मू। मीनाक्षी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह की अच्छी संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं और ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि अगस्त 2027 के पहले आपका विवाह होना चाहिए। जम्मू या जम्मू के आसपास होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। आपके करियर और धन का मामला आपकी कुंडली में अच्छा है, तो उसके लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और आगे बढ़ते हैं आज की आपकी दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, आप दूसरा सवाल किसका लेने वाले हैं?
0: जी अगला प्रश्न रीना सिंह ने हमें लिखा है और रीना जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 8 अक्टूबर 2010। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे मुझे अपने बेटे को किस क्षेत्र में ले जाना चाहिए? रीना जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर आपका बेटा आगे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में जाए, आगे अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जाए, कंप्यूटर्स की पढ़ाई करे, तो आपके बेटे के लिए बहुत उत्तम रहेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छी सफलता पा सकेंगे। आपको ये भी ध्यान देना है कि जितने दिन आपके बेटे की अगले 2-2.5 साल तक पढ़ाई चल रही है, उसमें वो भटकने ना पाए, गलत संगति आदि में ना पड़े। तो फिलहाल आप ऐसा करिए, अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं और अगर संभव हो तो इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: तो चलिए पितृपक्ष की बात कर रहे हैं इस शो में। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन पितरों के लिए जल अर्पित कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है।
0: देखिए पितृपक्ष में नियमित रूप से पितरों को जल अर्पित किया जाता है, जिसको तर्पण करना कहते हैं, और जिस दिन उनका देहांत हुआ होता है, जिस तिथि पर, उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। तो आखिर परिवार का कौन सा व्यक्ति पितरों के लिए जल अर्पित कर सकता है या श्राद्ध कर सकता है? घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो रोज तर्पण पितृपक्ष में रोज अपने पूर्वजों को जल दे सकता है। अगर घर में कोई वरिष्ठ पुरुष नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष, भाई, पुत्र, भतीजा, ये भी तर्पण कर सकता है, जल दे सकता है। पौत्र यानी पुत्र का पुत्र या नाती यानी पुत्री का पुत्र, इसको भी तर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। आजकल के समय में, वर्तमान में, स्त्रियां भी तर्पण करती हैं, श्राद्ध करती हैं, अगर दूर दूर तक घर में कोई पुरुष नहीं है तो। तर्पण जो भी करे नियमानुसार करे, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप तर्पण कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने पितरों को जल दे रहे हैं, तो पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करना चाहिए।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने की।
0: तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए पितृपक्ष के विषय में आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जानने का वक्त हो चला है कि आखिर पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना जरूरी होता है।
0: देखिए पितृपक्ष का समय बड़ा पवित्र समय है, लेकिन पितृपक्ष में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए अपना जीवन जीने में, अपने रूटीन का पालन करने में। तो पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन किया जाए? देखिए पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करिए और अपने पितरों को याद करिए, उनके नाम से संध्या में दीपक जलाइए और दिन के समय में तर्पण करिएगा। उत्तप वेला मध्य दोपहर का जो समय है, इस समय में पितरों को जल दीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। इसी समय में तर्पण करने का विशेष महत्व है और जब आप तर्पण करेंगे तो जल में काला तिल मिला लेंगे, हाथ में कुश ले लेंगे और इसके बाद जब आप जल देंगे, जब आप तर्पण करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। जो कोई व्यक्ति तर्पण कर रहा है, पितृपक्ष का पालन कर रहा है, पितरों के लिए दान कर रहा है, दीपक जला रहा है, उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस 15 दिन की अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिएगा। जहां तक हो सके पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और अगर आप पितरों को फूल चढ़ाते हैं या जल में फूल डालकर उनको अर्पित करते हैं तो वो हल्की सुगंध वाले होने चाहिए, तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। और पितरों का श्राद्ध करना है, पिंड दान करना है, तर्पण करना है तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके ये काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले तो पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करिएगा। सारी भगवत गीता का पाठ ना भी कर पाए तो 11वें अध्याय का नियमित पाठ करिएगा। कर्ज लेकर या दबाव में आकर, प्रेशर में आकर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर प्रेशर में कष्ट में श्राद्ध करने का लाभ नहीं होता।
1: और अब जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी दी गई है जिस पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी अगला प्रश्न वरुण गुप्ता ने हमें लिखा है और वरुण हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1982। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म स्थान है आगरा। वरुण कह रहे हैं कि मैं अभी खाने पीने की चीज का व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा व्यापार मध्यम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, तो क्या ये व्यापार मेरे लिए सुटेबल है और आगे क्या इस व्यापार को करने से मुझे लाभ रहेगा? वरुण, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप खाने पीने की चीज का, कन्फेक्शनरी का, होटल रेस्टोरेंट का अगर काम कर रहे हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। थोड़ा सब्र करिए, मई

0: तरक्की कर सकेंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनिदेव का मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आपका चौथा और अंतिम सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, चौथा सवाल किसका होने वाला है आज?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न रमेश कुमार जी ने हमें लिखा है, और रमेश कुमार जी मुरादाबाद से हमें मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1965, जन्म का समय दोपहर में 2 बजे, और जन्म स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। रमेश जी कह रहे हैं कि मेरा मकान नहीं बन पा रहा है, आधे में बन करके ही रुका हुआ है। जब भी मैं मकान बनाने की शुरुआत करना चाहता हूं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा मकान जल्दी बन सके और मुझे सफलता मिल सके। रमेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल शनि देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से आपका मकान पूरा बन पाएगा और पूरा लाभ आपको हो पाएगा। आप नवंबर के महीने से जो बाकी बचा हुआ मकान है उसको बनवाने का प्रयास करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन 26 सितंबर को है। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेनजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रण कौशल।

0: यूपी में बदला मौसम, राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। अनंत चतुर्दशी के बाद से ही पितरों के सत्कार की परंपरा का आरंभ हो जाता है, जो एक पखवाड़ा तक माना जाता है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे पितृपक्ष की महिमा के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं अपने पूर्वजों को याद करने, उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा का पालन आखिरकार हमें क्यों करना चाहिए और कैसे आप पा सकते हैं अपने पितरों की अनुकंपा, देखिए हमारी इस खास पेशकश में।

0: पूर्णिमा तिथि पर होता है जिनका परलोक गमन। ऐसे पितरों का पूर्णिमा की तिथि पर होता है तर्पण। 15 दिवसीय महालय पक्ष का होने जा रहा है आगाज। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का है मोक्षदायिनी रिवाज। धर्मग्रंथ कहते हैं जो भी साधक विधि विधान के साथ इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों का सत्कार करता है वो जाने अनजाने हुए पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे कि 15 दिवसीय महालय पक्ष में पूर्वजों की आवभगत कैसे करें। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा में किन पितरों के श्राद्ध की परंपरा रही है।
1: प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में आती हैं, लेकिन पूर्णिमा उसमें नहीं आती। तो जिन पितरों की तिथि पूर्णिमा होती है उनका श्राद्ध पूर्णिमा को आरंभ हो जाता है और उसी दिन से महालया का आरंभ होता है। या ज्ञान जो पितर हमारे हैं जिनका श्राद्ध तिथि पूर्णिमा को है उनका श्राद्ध किया जाए, इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व है।
0: पूर्वजों का कैसे करें तर्पण, कौन सा भोग करें अर्पण, श्राद्ध का क्या है विधिवत विधान, किस विधि से पूर्वज देंगे वरदान। माना जाता है कि पूर्वजों की तृप्ति होने से न सिर्फ सभी दोषों का अंत होता है बल्कि कुंडली से पितृदोष भी सदा के लिए मिट जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिन पितरों का विधिवत श्राद्ध नहीं होता उनकी मुक्ति अधूरी रहती है।
1: ये धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सब कार्य को छोड़ के जो पितरों के निमित्त कार्य बताए गए हैं, हम हमारे धर्म सिंधु में देख लीजिए, महाभारत के शांति पर्व में देख लीजिए, पद्म पुराण में देख लीजिए, सब जगह पितरों के बारे में बताया गया है, पितृपक्ष का महत्व बताया गया है। इसीलिए पितरों के लिए हम पितृपक्ष में विशेष करके उपाय करके उनके प्रसन्न होकर आशीर्वाद की कामना उनसे करते हैं।
0: पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष की क्या है महिमा। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातनी आस्था है कि जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके सत्कार से पितृ प्रसन्न हो गए तो आपके सभी कार्य निष्कंटक पूर्ण होते हैं।
1: हमारे यहाँ महाभारत के शांति पर्व में और जब तक पितरों की कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी तब तक जीवन में परिवार में विवाह है, नया भूमि भवन प्राप्त करना है, संतान वृद्धि, यह सब कर्म परिवार में नहीं होते।
0: ऐसा मानते हैं कि हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों पितृपक्ष की परंपराओं का पालन किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय ही पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। मान्यता तो यहाँ तक है कि जिसके पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं उस पर ईश्वर भी अनुकंपा नहीं करते हैं।
1: पितृपक्ष में नियमित रूप से तर्पण अवश्य करना चाहिए। किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, गंगा जी किनारे जाकर के और तिल ले करके तिल से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। और जिस तिथि पर जिस पितर का श्राद्ध हो उस दिन श्राद्ध करें, अपने पितरों के फोटो पर सुगंधित माला, जिस पुष्प में सुगंध हो ऐसी माला चढ़ावे, चंदन लगावे और सायंकाल के समय एक दीपक जलावे और पितृ स्तोत्र का पाठ करे। पितृ स्तोत्र का पाठ करने से जो रुचि ऋषि ने गाया है, कहा है, उसका पाठ करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।
0: पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उस तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। पितृपक्ष में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर पितर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की सावधानियां और साथ ही जानेंगे कि कौन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं। इनके कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है, लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम आखिर क्या है।
3: पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। माना जाता है कि श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि जो भी साधक महालय पक्ष में अपने पितरों की निमित विधिवत संस्कार करता है, उनको मन, कर्म और वचन से भोजन प्रदान करता है, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। उसके पूरे परिवार पर पितरों की कृपा बरसती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गौर से देखिए और कीजिए इन सावधानियों का पालन।
1: सबसे बड़ा नियम होता है कि सात्विक भोजन करना। जब तक पिता की तिथि न बीत जाए, माता की तिथि अगर हो तो तब तक छौर कर्म न करावे, दाढ़ी बाल न कटवावे, धोबी को कपड़ा न दे, किसी को अप्रिय वचन न बोले, क्योंकि पितृलोक के समय हमारे पितृ हमारे मृत्यु लोक में रहते हैं और आपके आस पास ही रहते हैं, और जो अखाद्य वस्तुएं हैं उनका परित्याग करें।
3: पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतब वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व होता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाली सफेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भागवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें।
1: सादा जीवन उच्च विचार, यह जो हमारे यहाँ भाषा बताई गई है कि अपने पितरों के निमित्त जो तिथि जिस दिन हो, प्रातः काल में या संध्या के समय या रात्रि के समय श्राद्ध न करे, तर्पण न करे। जो अपराह्न काल बताया गया है, 1 बजे के बाद वाला जो समय है, उस समय अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि करावे। गौ माता को, स्वान को माने कुत्ते को और कौए को बलि दे और भोजन करावे, लोगों को तृप्त करे, और अगर हो सके तो 15 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करे।
3: बहुत से लोगों को अपनी परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। कौन सही अर्थों में श्राद्ध करने का अधिकारी होता है?
1: अगर पिता नहीं है तो पुत्र करे, पुत्र नहीं है तो पौत्र करे, पौत्र नहीं है तो प्रपौत्र करे, वह भी नहीं है तो जो रिश्ते में बताया गया है वो लोग भी कर सकते हैं। या इन सब लोगों के लिए जिनके कोई नहीं था आपके परिवार में, किसी आपके चाचा को, किसी बड़े पिता जो कोई संतान नहीं थी, उनके निमित्त भी आप कर सकते हैं। वो भी आश्रित होते हैं कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए जल अर्पण करे, मेरे नाम पर भोजन करावे, दान करे, तो ऐसा अधिकार सबको दिया गया है।
3: घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य ना हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें। ये पितृपक्ष के 15 दिन अति शुभ फल देने वाले हैं। इन दिनों पितरों की आत्माएं मृत्यु लोक में आकर अपने वंशजों से भोग ग्रहण करती हैं, तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। तो आप भी पितरों को प्रसन्न करें और इस महाफलदायी पितृपक्ष का लाभ उठाएं। आगे हम आपको बताने वाले हैं नियमित रूप से पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करें और तिथि अनुसार आप किस तिथि पर कर सकते हैं श्राद्ध कर्म और तर्पण। आगे जानिए।
2: श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है। पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद जरूरी हैं। कैसे कुछ उपाय करके आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं वो भी जान लीजिए।
3: आने वाले हैं पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के दिन, जब आप तर्पण, पिंड दान और दान पुण्य करके पितरों की अनुकंपा पाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होंगे, जिसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ होगा। कल पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। पितृपक्ष की अवधि में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अलग अलग श्राद्ध तिथियां आती हैं। परिवार में जिस पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि पर होती है उसी तिथि के अनुसार श्राद्ध करने की परंपरा है। वैसे तो आप पंचांग में भी इन तिथियों को देख सकते हैं, लेकिन हम भी आपको ज्योतिषियों द्वारा बताई गई श्राद्ध की वो तिथियां बता देते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर को होगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर से किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 28 सितंबर को है। तृतीया तिथि का श्राद्ध कर्म 29 सितंबर को पूर्ण होगा। चतुर्थी और पंचमी तिथि के श्राद्ध का विधान 30 सितंबर को माना गया है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध कर्म 1 अक्टूबर को संपन्न होगा। सप्तमी तिथि का कर्म कांड की तिथि 2 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि के श्राद्ध की परंपराएं 3 अक्टूबर को निभाई जाएंगी। नवमी तिथि का श्राद्ध संस्कार 4 अक्टूबर को पूर्ण होगा। दशमी तिथि के श्राद्ध का अनुष्ठान 5 अक्टूबर को है। एकादशी तिथि के श्राद्ध की पूर्णता 6 अक्टूबर को की जाएगी। द्वादशी तिथि का श्राद्ध की परंपराओं का पालन 7 अक्टूबर को होगा। त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का कर्म कांड 8 अक्टूबर को है। चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का पालन की तारीख 9 अक्टूबर है, जबकि 10 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या है।
1: यह पितरों का पक्ष ही है। यह 15 दिन का जो पक्ष है, यह जो पितृ जिस दिन जिनका निर्वाण हुआ है उस तिथि को उस पितरों का श्राद्ध करने का हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जय मुंडी तय पिंडी, अगर जितने पुत्र हैं अगर सबकी रसोई अगर अलग अलग बनती है तो हर व्यक्ति को अपने पिता के लिए अपने पितरों के लिए यह कार्य करना चाहिए, यह ग्रंथों में हमें बताया गया है।
3: पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके घर में हमेशा कोई न कोई समस्या रहती हो और शुभ कार्यों के पूर्ण होने में बार बार विघ्न होता हो तो इसके पीछे पूर्वजों की नाराजगी भी हो सकती है। तो चलिए आपको वो ज्योतिषीय महा उपाय भी बताते हैं जिसको करने से आपके घर में शुभता होगी और संपन्नता का वास होगा।
1: तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, तर्पण करें, ब्राह्मण को अन्न दान करें, भोजन करावे, गौ को खिलावे, कुत्ता को खिलावे, कौआ को खिलावे। इन 15 दिनों के भीतर अगर हमारे द्वारा कोई अपराध हुआ हो, परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर के जो रुके हुए कार्य हैं वह सब पूर्ण हो। ऐसा अमावस्या को करने से या पितृपक्ष में करने समापन के दिन सारे जीवन के रुके कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण हो जाते हैं।
3: दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं, रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, अमावस्या के दिन दान जरूर करें। माना जाता है कि तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है, साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना जहां बेहद अहम और आवश्यक कर्म है, वहीं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बेहद जरूरी हो जाती है। पितृपक्ष में किए गए ये उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: आस्था जब आसमान पर उतरती है तो नजारा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता है। गुजरात के अंबाजी में 450 ड्रोन ने रात के आसमान को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया, कहीं त्रिशूल का स्वरूप, कहीं माँ अंबा की छवि।
7: अंधेरे आसमान पर जब रोशनी की लकीरें दौड़ती हैं तो कुछ ही पलों में पूरा आसमान एक तस्वीर में बदल जाता है। कहीं त्रिशूल का दिव्य स्वरूप, कहीं माँ अंबे की छवि, तो कहीं तिरंगे के साथ नजर आता भारत का नक्शा। आसमान में बनती इन तस्वीरों को देखकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें भी ठहर जाती हैं। खूबसूरत नजारा दरअसल गुजरात के अंबाजी का है, जहां भादरवी महामेला के दौरान आस्था के इस उत्सव में तकनीक ने भी रंग भर दिए हैं। दिन भर माँ के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और रात के वक्त 450 ड्रोन से आसमान पर साकार होती भक्त की ये तस्वीरें। जैसे जैसे ड्रोन अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे आसमान पर बदलती तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचती हैं। अंबाजी में इन दिनों आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि आसमान में भी अपना रंग बिखेर रही है।
8: ड्रोन शो दिखाया हुआ है, उसमें बहुत अद्भुत रहते माँ अंबाना प्रकृति अने छाछर चौकना दिया गब्बर ने पर्वत पगपाला यात्रिका आते उनका रथ अने जो लोग लेके आते झंडा, ये सब चीज हमने इंक्लूड करके ड्रोन शो किया था। अने स्पेसिफिक चीज ऐसे माँ अंबा का पाद अने माँ अंबा का दिया, ये दोनों चीज हमको बहुत खुश लगे। पीपल लोगों को माँ भक्तों को भी बहुत आनंद रहते, दोनों दिन का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके सक्सेसफुली प्लान की हुई थी।
7: मंदिर परिसर और आसमान में रोशनी का ये संगम देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। लगातार दो रात हुए इस ड्रोन शो ने मेले के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक लाइटिंग ने भी पूरे माहौल को भव्य बना दिया। माँ के दरबार में शीश झुकाने के बाद जब नजरें आसमान की ओर उठी तो सामने था आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम।
8: लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ड्रोन शो देख के, एंड लास्ट ईयर पहली बार ड्रोन शो किया हुआ था एंड इस साल भी हमने कंटिन्यू रखा है। लास्ट ईयर से इस साल का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके मैनेज हुआ है एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हम ज्यादा रखे ताकि पगपाला संघ आते उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस साल हमने रखा है, ताकि जो चीज को महत्व माना जाता है अंबाजी मेला में उस चीज को हम इसमें इंटरप्रेट की हुई थी। इसके वजह से लोग बहुत अच्छी तरीके माँ भक्तों का श्रद्धा के साथ साथ दर्शन करके अंबाजी मंदिर में दर्शन करके निकले थे।
7: आसमान में बनती तस्वीरें, नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजता माँ अंबे का जयकारा। अंबाजी में इस वक्त सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि पूरा अरावली क्षेत्र ही भक्ति रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात के अंबाजी से निकलकर अगर बिहार के गया जी पहुंचे तो वहां भी आस्था को रोशनी और तकनीक के जरिए ही एक नया रूप दिया गया। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले से पहले फल्गु नदी का देवघाट भी रोशनी से जगमगा उठा। देवघाट पर शानदार लेजर एंड लाइट शो का उद्घाटन हुआ।
9: में आज लेजर लाइट के द्वारा एक अद्भुत सीता माँ की पूरा कहानी की जीवनी, गया सुर कैसे गया सुर बने, पूरा इसका कहानी इस लेजर के माध्यम से जितने भी देश विदेश से यात्री आएंगे उनको उनके लिए ये हम लोग नगर निगम के द्वारा व्यवस्था करवाए हैं।
7: लेजर और रोशनी के शानदार शो में गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया। माँ सीता के पिंडदान से जुड़ी कथा हो या गयासुर की पौराणिक कहानी।
10: गया जी में कल से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस तत्पर है ताकि जो अनुभूति है अपने आप में एक दैवीय अनुभूति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सुखद हो, सहज हो और किसी भी समस्या के लिए पुलिस के बहुत सारे हेल्पलाइंस भी बनाए गए हैं। अस्थाई थाना भी स्थापित किया गया है और सीसीटीवी से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे की जाएगी।
7: अंबाजी में आसमान पर उड़ते ड्रोन हो या गया जी के देवघाट पर चमकती लेजर लाइट, तकनीक ने दोनों जगह आस्था की कहानी कहने का एक नया अंदाज जरूर दिया है। एक तरफ माँ अम्बा की भक्ति में रोशन आसमान, तो दूसरी ओर पूर्वजों की स्मृति और पिंडदान की परंपरा को समर्पित गया जी। दो धाम, दो अलग अंदाज, लेकिन तस्वीर एक ही, आस्था की, जो अब रोशनी के माध्यम से भी दिखाई दे रही है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: क्या है पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष का क्या होगा पूजा विधान, और पितृपक्ष में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकल रही लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, श्रद्धा भक्ति के माहौल में गणपति बप्पा मोरय के जयकारे, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का मेला। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके।

के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रण कौशल।

0: यूपी में बदला मौसम, चार राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे बिना परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर हो। लेकिन ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की रेखा को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की होगी, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ नाश्ते की टेबल पर बैठने नहीं दिया, उन्हें अलग दूर कुर्सी पर बिठाया गया। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय वॉरशिप INS कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज PNS हुनैन के बीच हुई टक्कर का यह वीडियो है। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: क्या राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में जाति को लेकर भेदभाव करते हैं? क्या राहुल बुजुर्ग नेताओं का अपमान करते हैं? सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तस्वीर वायरल हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि हाल ही में राहुल गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को नाश्ते पर बुलाया। उनके साथ ब्रेकफास्ट करते वक्त राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ टेबल पर बैठने नहीं दिया। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: यह तस्वीर इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लोग इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस का दलित प्रेम ढोंग है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ नाश्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यह तस्वीर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही है। इस तस्वीर में टेबल पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम कुछ अधिकारियों के साथ बैठक कर नाश्ता कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे उन सबसे दूर कोने में एक अलग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नाश्ते के टेबल पर मौजूद क्यों नहीं है, ये लोगों को खटक रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के कारण राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया और उन्हें पीछे बैठा दिया। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि दिन रात दलित दलित चिल्लाने वाले राहुल गांधी के नाश्ते की टेबल पर दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जगह ही नहीं है। तस्वीर तेजी से सर्कुलेट हो रही है, लोग सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: इससे पहले इन तस्वीरों का पूरा सच हम आपको बताएं, पहले ये समझ लीजिए कि ये तस्वीर आई कहां से है और ये कब की है। असल में दिल्ली में 12 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी शामिल हुए थे। इस दौरान अनवर इब्राहिम ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इस तस्वीर को उसी मुलाकात से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब मलेशिया के प्रधानमंत्री को होस्ट कर रहे थे, तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ बैठने नहीं दिया, उन्हें अपनी टेबल से दूर कोने में बैठने के लिए कहा। यह तस्वीर तेजी से फैली और इसके साथ ही यह नैरेटिव फैल गया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं इसलिए उन्हें राहुल गांधी ने साथ में नहीं बिठाया। लोग कहने लगे कि कैमरों के

0: सामने राहुल गांधी दलित प्रेम का नाटक करते हैं, उनकी असलियत अब सामने आई है। पर इस पूरी तस्वीर और इससे जुड़े दावों में बहुत कुछ ऐसा था जो हमें खटक रहा था, इसीलिए हमने तस्वीर की जांच शुरू की। इस तस्वीर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की दाहिनी और राहुल गांधी बैठे हुए हैं और सामने प्रियंका गांधी। टेबल पर कुछ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, कैमरे में खड़गे भी हैं, पर वो इस टेबल से दूर एक कोने में बैठे हैं। तस्वीर को जब बारीकी से देखा गया तो हमें इसमें कुछ खामियां नजर आई। खड़गे जिस तरह से बैठे हुए हैं वो सामान्य नहीं है। आसपास और भी सोफे हैं लेकिन उन पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। खड़गे ऐसे अकेले बैठे रहे, ये बहुत अजीब सा लग रहा था, इसीलिए हमने इससे जुड़ी खबरें ढूंढनी शुरू की। पर कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में तस्वीर हमें नजर नहीं आई। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मिली। हम सोच में पड़ गए कि अगर राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष का ऐसा अपमान किया तो फिर खबर क्यों नहीं बनी। और यही हमारा पहला सवाल है कि अगर राहुल और प्रियंका ने विदेशी मेहमान के सामने कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान किया है तो फिर ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आई। तस्वीर में एक बात और हमें खटकी, हमें खड़गे के दोनों हाथ मिले हुए दिखे। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। जूम करके देखने पर उंगलियां अलग नहीं दिख रही हैं, एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं। ये साफ साफ एडिट हुई तस्वीर ही लग रही है। ऐसे में हमारे सामने दूसरा सवाल ही था कि क्या खड़गे इस मुलाकात के दौरान वहां मौजूद भी थे। इससे जुड़ा तीसरा सवाल कि क्या इस तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को अलग से जोड़कर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस रिपोर्ट में सच जानिए।
1: इस तस्वीर के सामने आते ही इसे जातीय रंग दिया जाने लगा। सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव फैलाया गया। ऐसे लोग जो झूठ का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते, वो इस खबर पर कूद पड़े। कहने लगे कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा है। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम तस्वीर की जांच में जुटी। सच कहने पर हमें ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से 13 सितंबर को नाश्ते पर मुलाकात की, लेकिन इस असली तस्वीर में मल्लिका अर्जुन खड़गे है ही नहीं। यानी साफ है कि वायरल तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को इस तरह से जोड़ दिया गया ताकि ऐसा लगे कि उन्हें बाकी नेताओं से अलग बैठाया गया है। सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर प्रकाशित मिली। इस रिपोर्ट को 13 सितंबर को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर दिल्ली में हुए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने दिल्ली में दोनों के साथ नाश्ता किया था। तस्वीर में एआई का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए हमने एआई डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन की मदद से सर्च किया। इस टूल ने तस्वीर में करीब 100% तक एआई के इस्तेमाल होने की संभावना जताई। साफ है सोफे पर अकेले बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वायरल तस्वीर एडिटेड है। ओरिजिनल तस्वीर में खड़गे है ही नहीं, इसमें सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी मलेशिया के प्रधानमंत्री और अधिकारियों के साथ नाश्ता करते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
0: बात पाकिस्तान की गुस्ताखी की। 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता और पाकिस्तानी जहाज पीएनएस हुनैन के बीच टक्कर हुई थी। पाकिस्तानी जहाज की इस गलती से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो टक्कर के दौरान का है, पर जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: 15 सितंबर की शाम को उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज पीएनएस हुनैन के बीच मामूली टक्कर हो गई थी। दरअसल भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी पर था, तभी पाकिस्तानी जहाज ने तेज गति से आते हुए असुरक्षित तरीके से पैंतरेबाजी की, जिसके कारण दोनों जहाजों में टक्कर हो गई। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय पोत ने उनके अभ्यास क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसके बाद इस गैर पेशेवर और अस्वीकार्य व्यवहार पर कड़ा विरोध जताने के लिए भारत ने 16 सितंबर को नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया। भारत ने इसे 1991 के द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया। अब इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 15 सितंबर का ये लेटेस्ट वीडियो है जब अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज भारतीय नौसेना के जहाज से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: खबर तो यही है असली। 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत और पाकिस्तानी जहाज के बीच टक्कर तो हुई थी, पर हमने कभी उस टक्कर से जुड़ा कोई वीडियो नहीं देखा। इसीलिए जब ये वीडियो देखा तो हमें थोड़ा सा शक हुआ। मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी सच्चाई सामने लाना जरूरी था। तो वीडियो में दो जहाजों के बीच मामूली टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस दौरान वहां पर कोई गहमा गहमी नजर नहीं आती है। वीडियो में हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, एक शख्स तस्वीर भी ले रहा है। अगर टक्कर का ये वीडियो होता तो फिर उस वक्त माहौल में एक बेचैनी होती, लोग हंसी मजाक तो नहीं कर रहे होते। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि महज कुछ सेकंड में ही एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक सामने से खतरनाक तरीके से गुजर रहा है। फैक्चर टीम की नजर जहाज के कोड नंबर यानी कि पताका संख्या पर गई। इस पर U-52 लिखा हुआ था। ये INS गोदावरी का कोड है, जबकि 15 सितंबर को अरब सागर में जो उस भारतीय जहाज की टक्कर पाकिस्तानी जहाज से हुई है, उस जहाज का नाम INS कोलकाता था, जिसका कोड नंबर है D-63। इस पड़ताल में हमें एक और अहम बात पता चली कि INS गोदावरी युद्धपोत 23 दिसंबर 2015 को रिटायर हो चुका है। ऐसे में हमारे सामने पहला सवाल यही था कि रिटायरमेंट के 11 साल बाद INS गोदावरी का वीडियो कैसे सामने आया। वीडियो में एक और गौर करने वाली चीज दिखी। पाकिस्तानी जहाज पर D-182 लिखा हुआ है। ये पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS बाबर है, जो कि 2014 में रिटायर हो चुका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल कि अगर टक्कर वाला वीडियो अभी का है तो पर इसमें सेवामुक्त हो चुका PNS बाबर कैसे दिख रहा है। और तीसरा अहम सवाल ये कि जिन दो युद्धपोतों के बीच टक्कर हुई है उनका एक भी फ्रेम इस वीडियो में क्यों नजर नहीं आ रहा है। सच इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्चर टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें ये क्लिप 16 अक्टूबर 2014 को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वीडियो हालिया टक्कर से एक दशक से भी अधिक पहले का है। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी नौसेना के PNS बाबर को एक भारतीय नौसैनिक पोत से टकराते हुए दिखाया गया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन करने पर हमें 2011 की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इसी घटना को एक अलग कोण से दिखाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस टक्कर में शामिल भारतीय पोत INS गोदावरी था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया था। पाकिस्तान के आचरण का औपचारिक रूप से विरोध करते हुए ये कहा गया कि PNS बाबर ने अपने जोखिम भरे युद्धाभ्यासों से INS गोदावरी और उसके चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों और सैन्य अभ्यासों की अग्रिम सूचना पर 1991 के भारत पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो काफी पुराना है। भारतीय नौसेना के INS गोदावरी और पाकिस्तानी नौसेना के PNS बाबर के बीच 2011 में हुई टक्कर का ये वीडियो है। इसका अरब सागर में 15 सितंबर को हुई टक्कर से कोई संबंध नहीं है और इसे हाल की घटना की फुटेज के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। बप्पा की विदाई के लिए जाते नन्हे बच्चों को देखिए, जिनके चेहरे पर उदासी के बजाय प्यार और अपनापन नजर आ रहा है। बच्चे बप्पा को प्यार से चूमते और निहारते हुए विदाई दे रहे हैं। उनके मासूम चेहरे और सच्ची भावनाएं हर किसी का दिल छू रही हैं। शायद यही भक्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ उम्र छोटी है, लेकिन आस्था और प्रेम बेहद गहरा है।

छोटी उम्र और बड़ा कारनामा, इस नन्हे उस्ताद ने अपनी कला के दम पर पूरी महफिल लूट ली। सांस्कृतिक आयोजन में जहां बड़े बड़े ढोल वादक पारंपरिक ढोल और ताशा बजा रहे हैं, वहीं ये कान्हा कलाकार पूरी एकाग्रता और सटीक ताल के साथ ढोल पर स्टिक्स चल रहा है। जिस अंदाज और जोश में मासूम बच्चा ताशा बजा रहा था, उसे देखकर एक पल के लिए लोग हैरान रह गए। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो यकीन तक नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से ताशा बजा सकता है।

0: आजकल बच्चों की फोन की लत अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, वहीं राजस्थान के अजमेर जिले में रहने वाले एक लड़के ने अपने दिमाग से लोगों का ध्यान खींचा है। छठी क्लास में पढ़ने वाले सिद्धार्थ कुमावत ने अपनी टेक्निकल माइंड और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी का इस्तेमाल करते हुए कार्डबोर्ड से कॉकपिट बनाया है। बच्चे ने जो मॉडल तैयार किया है वह बाजारों में नहीं मिलता, बल्कि उसके हाथों की मेहनत है। सिद्धार्थ ने जो बनाया है वह सिर्फ क्राफ्ट नहीं बल्कि उनकी समझ को भी दिखाता है कि वे कितने क्रिएटिव हैं और पेशेंस के साथ चीजों को करते हैं। अपने इस मॉडल को बच्चे ने इस खूबसूरती से तैयार किया है जिससे वे दूसरों को दिखाकर भी सिखा सकें। जिस रूबिक क्यूब को सुलझाने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, उसे चीन के 6 साल की बच्ची ने महज कुछ सेकंड में सुलझाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन की 6 साल की लियान युनजी ने 3x3 रूबिक क्यूब को बेहद तेजी से सुलझाकर महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह 3x3 रूबिक क्यूब में 4.5 सेकंड से कम औसत बनाने वाली पहली महिला स्पीड क्यूबर बन गई। जेंगडू की रहने वाली लियान को प्यार से जीजी भी बुलाया जाता है। बच्चों की मासूमियत ही उनके हर छोटे से काम को खास बना देती है। इस वीडियो में बच्चा प्लेट में रखी चीज को मोबाइल फोन समझ बैठता है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे उठाकर कान से लगा लेता है। बच्चे की यह मासूम हरकत देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस प्यारे से पल को देखकर लोग खूब खुश हो रहे हैं। बचपन की ऐसी छोटी छोटी शरारतें हमेशा यादों में बस जाती है। बेटे के विदाई के वक्त एक पिता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। कन्यादान की रस्म को लेकर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल छू लिया। पिता ने बेटी को कोई वस्तु नहीं बल्कि अपने दिल का टुकड़ा और राजकुमारी बताया। पिता की बातों में बेटी के प्रति प्यार, चिंता और एक पिता का गर्व साफ नजर आता है।
1: एक राजा बाप होता है, उस बाप के लिए बेटी एक राजकुमारी है जो सदा उसके दिल में वास करती है। उस अपने दिल के टुकड़े को दान नहीं कर सकता, उसे एक नई जिंदगी के लिए, नए आभास के लिए, नई शुरुआत के लिए अपने दिल से, अपने तन मन से शुभकामनाएं देता है।
0: एक माँ अपनी बेटी को लेकर चुपके से उसके नानी के घर पहुँचती है। नानी को उम्मीद नहीं होती कि उनकी बेटी उनकी नातिन को लेकर आई है। ऐसे में जैसे ही वह देखती है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये एक छोटा सा पल अब लोगों को भावुक करने का काम कर रहा है।

0: तब महिला साड़ी पहनकर बाजार के बीच सड़क पर लाठी लेकर उतरती है। जैसे ही वह लाठी को हवा में लहराना शुरू करती है, उनकी फुर्ती और लय देखकर वहां खड़े लोग दंग रह जाते हैं। सिर पर पल्लू और पैरों में बेजोड़ संतुलन के साथ महिला जिस आसानी और आत्मविश्वास से लाठी घुमाती है, वह साबित करता है कि हुनर और जज्बे के आगे उम्र एक मामूली संख्या है। वीडियो में केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा लड़कियां भी पूरी तत्परता और अनुशासन के साथ लाठी चलाने का अभ्यास करती नजर आ रही हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर लाठी के वार रोकना और सटीक प्रहार करना दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक इंसान अगर बंदर के बीच जाकर उनकी जैसा ही हरकतें करने लगे तो फिर क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले तो वह बंदरों को अपने पास बुलाता है और फिर जब बंदर उसके पास आते हैं तो वह बंदरों की तरफ अपना चेहरा करके उन पर स्मोक छोड़ता नजर आ रहा है। ये देख बंदर डर जाते हैं और डर कर वह पीछे हट जाते हैं। शख्स की हरकतों को पहली नजर में देख ऐसा लगता है जैसे बंदरों के बीच कोई दूसरा बंदर आ गया हो, लेकिन इस बंदर से दूसरे बंदर खौफ खा रहे हैं और अपनी जान के लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। उसकी चाल ढाल और अंदाज देख कर बंदर भी पीछे हटने लगते हैं। कुछ बंदर उसे देख कर दूर भागते नजर आते हैं जबकि कुछ हैरानी से उसे देखते रहते हैं। वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि जो शख्स बंदरों को डराने पहुंचा था उसने कुछ समय के लिए उन्हें पूरी तरह उलझन में डाल दिया। बंदरों को समझ ही नहीं आता कि उनके सामने आखिर कौन खड़ा है। कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा होने में सालों लग जाते हैं। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही एहसास कराता है। वीडियो में एक 80 साल के बुजुर्ग पहली बार अपनी आंखों के सामने हवाई जहाज देखते नजर आ रहे हैं। प्लेन को देखते ही उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है वह लोगों का दिल छू रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का हवाई जहाज देखने का सपना 80 साल बाद पूरा हुआ। उनके बेटे ने इस खास पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं और कई यूजर्स को अपने माता पिता की याद आ रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली इंसान और रोबोट फाइटर देखने को मिली है। एक रिंग के अंदर मशहूर इन्फ्लुएंसर फ्रैंकी लापेन 6 फीट लंबे रिमोट कंट्रोल रोबोट से भिड़े। इस अनोखे मुकाबले को ह्यूमन वर्सेस टर्मिनेटर मैच नाम दिया गया जिसे अमेरिकी रोबोटिक कंपनी आरीके ने आयोजित किया था। मैच शुरू होने से पहले रोबोट ने रिंग में वार्म अप किया और अपनी मूवमेंट दिखाई। फाइट शुरू होते ही फ्रैंकी ने रोबोट पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवाब में रोबोट ने भी पलटवार करते हुए जोरदार पंच और लाते मारी। रोबोट की किक इतनी ताकतवर थी कि फ्रैंकी उछलकर पिंजरे में दूर जा गिरे। इस मैच ने साफ दिखाया कि ये मशीन कितनी फुर्ती और ताकत से हमला कर सकती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: आस्था जब आसमान पर उतरती है तो नजारा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता है। गुजरात के अंबाजी में 450 ड्रोन ने रात के आसमान को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया। कहीं त्रिशूल का स्वरूप, कहीं माँ अंबा की छवि।
7: अंधेरे आसमान पर जब रोशनी की लकीरें दौड़ती हैं तो कुछ ही पलों में पूरा आसमान एक तस्वीर में बदल जाता है। कहीं त्रिशूल का दिव्य स्वरूप, कहीं माँ अम्बे की छवि, तो कहीं तिरंगे के साथ नजर आता भारत का नक्शा। आसमान में बनती इन तस्वीरों को देखकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें भी ठहर जाती हैं। खूबसूरत नजारा दरअसल गुजरात के अंबाजी का है, जहां भादरवी महामेला के दौरान आस्था के इस उत्सव में तकनीक ने भी रंग भर दिए हैं। दिन भर माँ के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और रात के वक्त 450 ड्रोन से आसमान पर साकार होती भक्त की ये तस्वीरें। जैसे जैसे ड्रोन अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे आसमान पर बदलती तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचती हैं। अंबाजी में इन दिनों आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि आसमान में भी अपना रंग बिखेर रही है।
5: ड्रोन शो दिखाया हुआ है, उसमें बहुत अद्भुत रहते माँ अंबाना प्रकृति अने चाचर शौकना दिया गब्बर ने पर्वत पगपाला यात्रिका आते उनका रथ अने जो लोग लेके आते झंडा, ये सब चीज हमने इंक्लूड करके ड्रोन शो किया था। अने स्पेसिफिक चीज ऐसे माँ अंबा का पाद अने माँ अंबा का दिया, ये दोनों चीज हमको बहुत खुश लगे। पीपल लोगों को माँ भक्तों को भी बहुत आनंद रहते, दोनों दिन का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके सक्सेसफुली प्लान की हुई थी।
7: मंदिर परिसर और आसमान में रोशनी का ये संगम देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। लगातार दो रात हुए इस ड्रोन शो ने मेले के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक लाइटिंग ने भी पूरे माहौल को भव्य बना दिया। माँ के दरबार में शीश झुकाने के बाद जब नजरें आसमान की ओर उठी तो सामने था आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम।
5: लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ड्रोन शो देख के। एंड लास्ट ईयर पहली बार ड्रोन शो किया हुआ था एंड इस साल भी हमने कंटिन्यू रखा है। लास्ट ईयर से इस साल का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके मैनेज हुआ है एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हम ज्यादा रखे ताकि पगपाला संघ आते उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस साल हमने रखा है ताकि जो चीज को महत्व माना जाता है अंबाजी मेला में उस चीज को हम इसमें इनकॉर्पोरेट की हुई थी। इसके वजह से लोग बहुत अच्छी तरीके माँ भक्तों का श्रद्धा के साथ साथ दर्शन करके अंबाजी मंदिर में दर्शन करके निकले थे।
7: आसमान में बनती तस्वीरें, नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजता माँ अंबे का जयकारा। अंबाजी में इस वक्त सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि पूरा अरावली क्षेत्र ही भक्ति रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात के अंबाजी से निकलकर अगर बिहार के गया जी पहुंचे तो वहां भी आस्था को रोशनी और तकनीक के जरिए ही एक नया रूप दिया गया। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले से पहले फल्गु नदी का देवघाट भी रोशनी से जगमगा उठा। देवघाट पर शानदार लेजर एंड लाइट शो का उद्घाटन हुआ।
8: में आज लेजर लाइट के द्वारा एक अद्भुत सीता माँ की पूरा कहानी की जीवनी गया सूर कैसे गया सूर बने पूरा इसका कहानी इस लेजर के माध्यम से जितने भी देश विदेश से यात्री आएंगे उनको उनके लिए ये हम लोग नगर निगम के द्वारा व्यवस्था करवाए हैं।
7: लेजर और रोशनी के शानदार शो में गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया। माँ सीता के पिंडदान से जुड़ी कथा हो या गयासुर की पौराणिक कहानी,
9: गया जी में कल से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस तत्पर है ताकि जो अनुभूति है अपने आप में एक दैवीय अनुभूति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सुखद हो, सहज हो और किसी भी समस्या के लिए पुलिस के बहुत सारे हेल्पलाइंस भी बनाए गए हैं। अस्थाई थाना भी स्थापित किया गया है और CCTV से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे की जाएगी।
7: अंबाजी में आसमान पर उड़ते ड्रोन हो या गया जी के देवघाट पर चमकती लेजर लाइट, तकनीक ने दोनों जगह आस्था की कहानी कहने का एक नया अंदाज जरूर दिया है। एक तरफ माँ अंबा की भक्ति में रोशन आसमान तो दूसरी ओर पूर्वजों की स्मृति और पिंडदान की परंपरा को समर्पित गया जी। दो धाम, दो अलग अंदाज, लेकिन तस्वीर एक ही आस्था की, जो अब रोशनी के माध्यम से भी दिखाई दे रही है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकल रही लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, श्रद्धा भक्ति के माहौल में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का मेला। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेनजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रण कौशल।

0: यूपी में बदला मौसम, चार राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। अनंत चतुर्दशी के बाद से ही पितरों के सत्कार की परंपरा का आरंभ हो जाता है, जो एक पखवाड़ा तक माना जाता है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे पितृपक्ष की महिमा के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं अपने पूर्वजों को याद करने, उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा का पालन आखिरकार हमें क्यों करना चाहिए और कैसे आप पा सकते हैं अपने पितरों की अनुकंपा, देखिए हमारी इस खास पेशकश में।

0: पूर्णिमा तिथि पर होता है जिनका परलोक गमन। ऐसे पितरों का पूर्णिमा की तिथि पर होता है तर्पण। 15 दिवसीय महालय पक्ष का होने जा रहा है आगाज। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का है मोक्षदायिनी रिवाज। धर्मग्रंथ कहते हैं जो भी साधक विधि विधान के साथ इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों का सत्कार करता है वो जाने अनजाने हुए पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे कि 15 दिवसीय महालय पक्ष में पूर्वजों की आवभगत कैसे करें। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा में किन पितरों के श्राद्ध की परंपरा रही है।
1: प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में आती हैं, लेकिन पूर्णिमा उसमें नहीं आती। तो जिन पितरों की तिथि पूर्णिमा होती है उनका श्राद्ध पूर्णिमा को आरंभ हो जाता है और उसी दिन से महालया का आरंभ होता है। या ज्ञान जो पितर हमारे हैं जिनका श्राद्ध तिथि पूर्णिमा को है उनका श्राद्ध किया जाए, इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व है।
0: पूर्वजों का कैसे करें तर्पण, कौन सा भोग करें अर्पण, श्राद्ध का क्या है विधिवत विधान, किस विधि से पूर्वज देंगे वरदान। माना जाता है कि पूर्वजों की तृप्ति होने से न सिर्फ सभी दोषों का अंत होता है बल्कि कुंडली से पितृदोष भी सदा के लिए मिट जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिन पितरों का विधिवत श्राद्ध नहीं होता उनकी मुक्ति अधूरी रहती है।
1: ये धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सब कार्य को छोड़ के जो पितरों के निमित्त कार्य बताए गए हैं, हम हमारे धर्म सिंधु में देख लीजिए, महाभारत के शांति पर्व में देख लीजिए, पद्म पुराण में देख लीजिए, सब जगह पितरों के बारे में बताया गया है, पितृपक्ष का महत्व बताया गया है। इसीलिए पितरों के लिए हम पितृपक्ष में विशेष करके उपाय करके उनके प्रसन्न होकर आशीर्वाद की कामना उनसे करते हैं।
0: पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष की क्या है महिमा। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातनी आस्था है कि जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके सत्कार से पितृ प्रसन्न हो गए तो आपके सभी कार्य निष्कंटक पूर्ण होते हैं।
1: हमारे यहाँ महाभारत के शांति पर्व में और जब तक पितरों की कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी तब तक जीवन में परिवार में विवाह है, नया भूमि भवन प्राप्त करना है, संतान वृद्धि, यह सब कर्म परिवार में नहीं होते।
0: ऐसा मानते हैं कि हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों पितृपक्ष की परंपराओं का पालन किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय ही पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। मान्यता तो यहाँ तक है कि जिसके पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं, उस पर ईश्वर भी अनुकंपा नहीं करते हैं।
1: पितृपक्ष में नियमित रूप से तर्पण अवश्य करना चाहिए। किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, गंगा जी किनारे जाकर के और तिल ले करके तिल से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। और जिस तिथि पर जिस पितर का श्राद्ध हो, उस दिन श्राद्ध करें, अपने पितरों के फोटो पर सुगंधित माला, जिस पुष्प में सुगंध हो ऐसी माला चढ़ावे, चंदन लगावे और सायंकाल के समय एक दीपक जलावे और पितृ स्तोत्र का पाठ करे। पितृ स्तोत्र का पाठ करने से जो रुचि ऋषि ने गाया है, कहा है, उसका पाठ करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।
0: पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उस तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। पितृपक्ष में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के

0: लिए हर संभव प्रयास करें। अगर पितर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की सावधानियां और साथ ही जानेंगे कि कौन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
1: माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनके कृपा से जीवन के तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है, लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम आखिर क्या है।
2: पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। माना जाता है कि श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि जो भी साधक महाल्य पक्ष में अपने पितरों की निमित विधिवत संस्कार करता है, उनको मन, कर्म और वचन से भोजन प्रदान करता है, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। उसके पूरे परिवार पर पितरों की कृपा बरसती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गौर से देखिए और कीजिए इन सावधानियों का पालन।
3: सबसे बड़ा नियम होता है कि सात्विक भोजन करना। जब तक पिता की तिथि न बीत जाए, माता की तिथि अगर हो तो तब तक छौर कर्म न करावे, दाढ़ी बाल न कटवावे, धोबी को कपड़ा न दे, किसी को अप्रिय वचन न बोले, क्योंकि पितृलोक के समय हमारे पितृ हमारे मृत्यु लोक में रहते हैं और आपके आस पास ही रहते हैं, और जो अखाद्य वस्तुएं हैं उनका परित्याग करें।
2: पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतब वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व होता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाली सफेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भागवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें।
3: सादा जीवन, उच्च विचार, यह जो हमारे यहाँ भाषा बताई गई है कि अपने पितरों के निमित्त जो तिथि जिस दिन हो, प्रातः काल में या संध्या के समय या रात्रि के समय श्राद्ध न करे, तर्पण न करे। जो अपराह्न काल बताया गया है, 1 बजे के बाद वाला जो समय है, उस समय अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि करावे, गौ माता को, स्वान को माने कुत्ते को और कौए को बलि दे और भोजन करावे, लोगों को तृप्त करे, और अगर हो सके तो 15 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करे।
2: बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। कौन सही अर्थों में श्राद्ध करने का अधिकारी होता है?
3: अगर पिता नहीं है तो पुत्र करे, पुत्र नहीं है तो पौत्र करे, पौत्र नहीं है तो प्रपौत्र करे, वह भी नहीं है तो जो रिश्ते में बताया गया है वो लोग भी कर सकते हैं। या इन सब लोगों के लिए जिनके कोई नहीं था आपके परिवार में, किसी आपके चाचा को, किसी बड़े पिता जो कोई संतान नहीं थी, उनके निमित्त भी आप कर सकते।

0: हैं वो भी आश्रित होते हैं कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए जल अर्पण करे, मेरे नाम पर भोजन करावे, दान करे, तो ऐसा अधिकार सबको दिया गया है।
1: घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य ना हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें। ये पितृपक्ष के 15 दिन अति शुभ फल देने वाले हैं। इन दिनों पितरों की आत्माएं मृत्यु लोक में आकर अपने वंशजों से भोग ग्रहण करती हैं, तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। तो आप भी पितरों को प्रसन्न करें और इस महाफलदायी पितृपक्ष का लाभ उठाएं। आगे हम आपको बताने वाले हैं नियमित रूप से पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करें और तिथि अनुसार आप किस तिथि पर कर सकते हैं श्राद्ध कर्म और तर्पण। आगे जानिए।
2: श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है। पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद जरूरी हैं। कैसे कुछ उपाय करके आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं वो भी जान लीजिए।
1: आने वाले हैं पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के दिन, जब आप तर्पण, पिंड दान और दान पुण्य करके पितरों की अनुकंपा पाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होंगे, जिसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ होगा। कल पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। पितृपक्ष की अवधि में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अलग अलग श्राद्ध तिथियां आती हैं। परिवार में जिस पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि पर होती है उसी तिथि के अनुसार श्राद्ध करने की परंपरा है। वैसे तो आप पंचांग में भी इन तिथियों को देख सकते हैं, लेकिन हम भी आपको ज्योतिषियों द्वारा बताई गई श्राद्ध की वो तिथियां बता देते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर को होगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर से किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 28 सितंबर को है। तृतीया तिथि का श्राद्ध कर्म 29 सितंबर को पूर्ण होगा। चतुर्थी और पंचमी तिथि के श्राद्ध का विधान 30 सितंबर को माना गया है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध कर्म 1 अक्टूबर को संपन्न होगा। सप्तमी तिथि का कर्म कांड की तिथि 2 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि के श्राद्ध की परंपराएं 3 अक्टूबर को निभाई जाएंगी। नवमी तिथि का श्राद्ध संस्कार 4 अक्टूबर को पूर्ण होगा। दशमी तिथि के श्राद्ध का अनुष्ठान 5 अक्टूबर को है। एकादशी तिथि के श्राद्ध की पूर्णता 6 अक्टूबर को की जाएगी। द्वादशी तिथि का श्राद्ध की परंपराओं का पालन 7 अक्टूबर को होगा। त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का कर्म कांड 8 अक्टूबर को है। चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का पालन की तारीख 9 अक्टूबर है, जबकि 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है।
0: यह पितरों का पक्ष ही है। यह 15 दिन का जो पक्ष है, यह जो पितृ जिस दिन जिनका निर्वाण हुआ है उस तिथि को उस पितरों का श्राद्ध करने का हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जय मुंडी तय पिंडी, अगर जितने पुत्र हैं अगर सबकी रसोई अगर अलग अलग बनती है तो हर व्यक्ति को अपने पिता के लिए अपने पितरों के लिए यह कार्य करना चाहिए, यह ग्रंथों में हमें बताया गया है।
1: पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके घर में हमेशा कोई न कोई समस्या रहती हो और शुभ कार्यों के पूर्ण होने में बार बार विघ्न होता हो तो इसके पीछे पूर्वजों की नाराजगी भी हो सकती है। तो चलिए आपको वो ज्योतिषीय महा उपाय भी बताते हैं जिसको करने से आपके घर में शुभता होगी और संपन्नता का वास होगा।
0: तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, तर्पण करें, ब्राह्मण को अन्न दान करें, भोजन करावे, गौ को खिलावे, कुत्ता को खिलावे, कौआ को खिलावे। इन 15 दिनों के भीतर अगर हमारे द्वारा कोई अपराध हुआ हो, परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हुआ हो, तो हमें क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर के जो रुके हुए कार्य हैं वह सब पूर्ण हो। ऐसा अमावस्या को करने से या पितृपक्ष में करने समापन के दिन सारे जीवन के रुके कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण हो जाते हैं।
1: दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं, रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, अमावस्या के दिन दान जरूर करें। माना जाता है कि तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है, साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना जहां बेहद अहम और आवश्यक कर्म है, वहीं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बेहद जरूरी हो जाती है। पितृपक्ष में किए गए ये उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: आस्था जब आसमान पर उतरती है तो नजारा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता है। गुजरात के अंबाजी में 450 ड्रोन ने रात के आसमान को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया, कहीं त्रिशूल का स्वरूप, कहीं मां अंबा की छवि।
11: अंधेरे आसमान पर जब रोशनी की लकीरें दौड़ती हैं तो कुछ ही पलों में पूरा आसमान एक तस्वीर में बदल जाता है, कहीं त्रिशूल का दिव्य स्वरूप, कहीं मां अंबे की छवि, तो कहीं तिरंगे के साथ नजर आता भारत का नक्शा। आसमान में बनती इन तस्वीरों को देखकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें भी ठहर जाती हैं। खूबसूरत नजारा दरअसल गुजरात के अंबाजी का है, जहां भादरवी महामेला के दौरान आस्था के इस उत्सव में तकनीक ने भी रंग भर दिए हैं। दिन भर मां के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और रात के वक्त 450 ड्रोन से आसमान पर साकार होती भक्त की ये तस्वीरें। जैसे जैसे ड्रोन अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे आसमान पर बदलती तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचती हैं। अंबाजी में इन दिनों आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि आसमान में भी अपना रंग बिखेर रही है।
12: ड्रोन शो दिखाया हुआ है, उसमें बहुत अद्भुत रहते माँ अम्बा ना प्रकृति अने चाचर चौक ना दिया गब्बर ने पर्वत पगपाल यात्रिका आते उनका रथ अने जो लोग लेके आते झंडा, ये सब चीज हमने इंक्लूड करके ड्रोन शो किया था। अने स्पेसिफिक चीज ऐसे माँ अम्बा का पाथ अने माँ अम्बा का दिया, ये दोनों चीज हमको बहुत खुश लगे। पीपल लोगों को माँ भक्तों को भी बहुत आनंद रहते, दोनों दिन का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके सक्सेसफुली प्लान की हुई थी।
11: मंदिर परिसर और आसमान में रोशनी का ये संगम देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। लगातार दो रात हुए इस ड्रोन शो ने मेले के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक लाइटिंग ने भी पूरे माहौल को भव्य बना दिया। माँ के दरबार में शीश झुकाने के बाद जब नजरें आसमान की ओर उठी तो सामने था आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम।
12: लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ड्रोन शो देख के। एंड लास्ट ईयर पहली बार ड्रोन शो किया हुआ था एंड इस साल भी हमने कंटिन्यू रखा है। लास्ट ईयर से इस साल का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके मैनेज हुआ है एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हम ज्यादा रखे ताकि पगपाला संघ आते हैं उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस साल हमने रखा है ताकि जो चीज को महत्व माना जाता है अंबाजी मेला में उस चीज को हम इसमें इंटरप्रेट की हुई थी। इसके वजह से लोग बहुत अच्छी तरीके माँ भक्तों का श्रद्धा के साथ साथ दर्शन करके अंबाजी मंदिर में दर्शन करके निकले थे।
11: आसमान में बनती तस्वीरें, नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजता माँ अंबे का जयकारा। अंबाजी में इस वक्त सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि पूरा अरावली क्षेत्र ही भक्ति रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात के अंबाजी से निकलकर अगर बिहार के गया जी पहुंचे तो वहां भी आस्था को रोशनी और तकनीक के जरिए ही एक नया रूप दिया गया। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले से पहले फल्गु नदी का देवघाट भी रोशनी से जगमगा उठा। देवघाट पर शानदार लेजर एंड लाइट शो का उद्घाटन हुआ।
9: में आज लेजर लाइट के द्वारा एक अद्भुत सीता माँ की पूरा कहानी की जीवनी, गया सुर कैसे गया सुर बने, पूरा इसका कहानी इस लेजर के माध्यम से जितने भी देश विदेश से यात्री आएंगे उनको उनके लिए ये हम लोग नगर निगम के द्वारा व्यवस्था करवाए।
11: लेजर और रोशनी के शानदार शो में गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया। माँ सीता के पिंडदान से जुड़ी कथा हो या गयासुर की पौराणिक कहानी।
13: गया जी में कल से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस तत्पर है ताकि जो अनुभूति है अपने आप में एक दैवीय अनुभूति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सुखद हो, सहज हो। और किसी भी समस्या के लिए पुलिस के बहुत सारे हेल्पलाइंस भी बनाए गए हैं, अस्थाई थाना भी स्थापित किया गया है और CCTV से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे की जाएगी।
11: अंबाजी में आसमान पर उड़ते ड्रोन हो या गया जी के देवघाट पर चमकती लेजर लाइट, तकनीक ने दोनों जगह आस्था की कहानी कहने का एक नया अंदाज जरूर दिया है। एक तरफ माँ अंबा की भक्ति में रोशन आसमान तो दूसरी ओर पूर्वजों की स्मृति और पिंडदान की परंपरा को समर्पित गया जी। दो धाम, दो अलग अंदाज, लेकिन तस्वीर एक ही, आस्था की, जो अब रोशनी के माध्यम से भी दिखाई दे रही है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: क्या है पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष का क्या होगा पूजा विधान और पितृपक्ष में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकल रही लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, श्रद्धा भक्ति के माहौल में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का मेला। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेंजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रण कौशल।

0: राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे बिना परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर हो। लेकिन ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की रेखा को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की होगी, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ नाश्ते की टेबल पर बैठने नहीं दिया, उन्हें अलग दूर कुर्सी पर बिठाया गया। क्या है इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय वॉरशिप INS कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज PNS हुनैन के बीच हुई टक्कर का यह वीडियो है। क्या है सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में जाति को लेकर भेदभाव करते हैं, क्या राहुल बुजुर्ग नेताओं का अपमान करते हैं? सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तस्वीर वायरल हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि हाल ही में राहुल गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को नाश्ते पर बुलाया। उनके साथ ब्रेकफास्ट करते वक्त राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ टेबल पर बैठने नहीं दिया। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: ये तस्वीर इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लोग इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस का दलित प्रेम ढोंग है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ नाश्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ये तस्वीर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही है। इस तस्वीर में टेबल पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम कुछ अधिकारियों के साथ बैठक कर नाश्ता कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे उन सबसे दूर कोने में एक अलग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे नाश्ते के टेबल पर मौजूद क्यों नहीं है, ये लोगों को खटक रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के कारण राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया और उन्हें पीछे बैठा दिया। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि दिन रात दलित दलित चिल्लाने वाले राहुल गांधी के नाश्ते की टेबल पर दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जगह ही नहीं है। तस्वीर तेजी से सर्कुलेट हो रही है, लोग सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: इससे पहले इन तस्वीरों का पूरा सच हम आपको बताएं, पहले ये समझ लीजिए कि ये तस्वीर आई कहां से है और ये कब की है। असल में दिल्ली में 12 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी शामिल हुए थे। इस दौरान अनवर इब्राहिम ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इस तस्वीर को उसी मुलाकात से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब मलेशिया के प्रधानमंत्री को होस्ट कर रहे थे, तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ बैठने नहीं दिया, उन्हें अपनी टेबल से दूर कोने में बैठने के लिए कहा। यह तस्वीर तेजी से फैली और इसके साथ ही यह नैरेटिव फैल गया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं इसलिए उन्हें राहुल गांधी ने साथ में नहीं बिठाया। लोग कहने लगे कि कैमरों के सामने राहुल गांधी दलित प्रेम का नाटक करते हैं, उनकी असलियत अब सामने आई है। पर इस पूरी तस्वीर और इससे जुड़े दावों में बहुत कुछ ऐसा था जो हमें खटक रहा था, इसीलिए हमने तस्वीर की जांच शुरू की। इस तस्वीर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की दाहिनी और राहुल गांधी बैठे हुए हैं और सामने प्रियंका गांधी, टेबल पर कुछ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, कैमरे में खड़गे भी हैं, पर वो इस टेबल से दूर एक कोने में बैठे हैं। तस्वीर को जब बारीकी से देखा गया तो हमें इसमें कुछ खामियां नजर आई। खड़गे जिस तरह से बैठे हुए हैं वो सामान्य नहीं है, आसपास और भी सोफे हैं लेकिन उन पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। खड़गे ऐसे अकेले बैठे रहे, ये बहुत अजीब सा लग रहा था, इसीलिए हमने इससे जुड़ी खबरें ढूंढनी शुरू की। पर कहीं भी मेन

0: मेनस्ट्रीम मीडिया में तस्वीर हमें नजर नहीं आई। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मिली। हम सोच में पड़ गए कि अगर राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष का ऐसा अपमान किया तो फिर खबर क्यों नहीं बनी। और यही हमारा पहला सवाल है कि अगर राहुल और प्रियंका ने विदेशी मेहमान के सामने कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान किया है तो फिर ये खबर मेनस्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आई। तस्वीर में एक बात और हमें खटकी, हमें खड़गे के दोनों हाथ मिले हुए दिखे। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। जूम करके देखने पर उंगलियां अलग नहीं दिख रही हैं, एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं। ये साफ साफ एडिट हुई तस्वीर ही लग रही है। ऐसे में हमारे सामने दूसरा सवाल ही था कि क्या खड़गे इस मुलाकात के दौरान वहां मौजूद भी थे। इससे जुड़ा तीसरा सवाल कि क्या इस तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को अलग से जोड़कर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में सच जानिए।
1: इस तस्वीर के सामने आते ही इसे जातीय रंग दिया जाने लगा। सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव फैलाया गया। ऐसे लोग जो झूठ का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते, वो इस खबर पर कूद पड़े। कहने लगे कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा है। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम तस्वीर की जांच में जुटी। सच कहने पर हमें ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से 13 सितंबर को नाश्ते पर मुलाकात की, लेकिन इस असली तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे है ही नहीं। यानी साफ है कि वायरल तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को इस तरह से जोड़ दिया गया ताकि ऐसा लगे कि उन्हें बाकी नेताओं से अलग बैठाया गया है। सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर प्रकाशित मिली। इस रिपोर्ट को 13 सितंबर को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर दिल्ली में हुए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने दिल्ली में दोनों के साथ नाश्ता किया था। तस्वीर में AI का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए हमने AI डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन की मदद से सर्च किया। इस टूल ने तस्वीर में करीब 100% तक AI के इस्तेमाल होने की संभावना जताई। साफ है सोफे पर अकेले बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वायरल तस्वीर एडिटेड है। ओरिजिनल तस्वीर में खड़गे है ही नहीं, इसमें सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी मलेशिया के प्रधानमंत्री और अधिकारियों के साथ नाश्ता करते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
0: बात पाकिस्तान की गुस्ताखी की। 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता और पाकिस्तानी जहाज PNS हुनैन के बीच टक्कर हुई थी। पाकिस्तानी जहाज की इस गलती से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो टक्कर के दौरान का है, पर जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: 15 सितंबर की शाम को उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज PNS हुनैन के बीच मामूली टक्कर हो गई थी। दरअसल भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी पर था, तभी पाकिस्तानी जहाज ने तेज गति से आते हुए असुरक्षित तरीके से पैंतरेबाजी की, जिसके कारण दोनों जहाजों में टक्कर हो गई। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय पोत ने उनके अभ्यास क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसके बाद इस गैर पेशेवर और अस्वीकार्य व्यवहार पर कड़ा विरोध जताने के लिए भारत ने 16 सितंबर को नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया। भारत ने इसे 1991 के द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया। अब इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 15 सितंबर का ये लेटेस्ट वीडियो है जब अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज भारतीय नौसेना के जहाज से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: खबर तो यही है असली। 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत और पाकिस्तानी जहाज के बीच टक्कर तो हुई थी, पर हमने कभी उस टक्कर से जुड़ा कोई वीडियो नहीं देखा। इसीलिए जब ये वीडियो देखा तो हमें थोड़ा सा शक हुआ। मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी सच्चाई सामने लाना जरूरी था। तो वीडियो में दो जहाजों के बीच मामूली टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस दौरान वहां पर कोई गहमा गहमी नजर नहीं आती है। वीडियो में हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, एक शख्स तस्वीर भी ले रहा है। अगर टक्कर का ये वीडियो होता तो फिर उस वक्त माहौल में एक बेचैनी होती, लोग हंसी मजाक तो नहीं कर रहे होते। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि महज कुछ सेकंड में ही एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक सामने से खतरनाक तरीके से गुजर रहा है। फैक्ट चेक टीम की नजर जहाज के कोड नंबर यानी कि पताका संख्या पर गई। इस पर U-52 लिखा हुआ था। ये INS गोदावरी का कोड है, जबकि 15 सितंबर को अरब सागर में जो उस भारतीय जहाज की टक्कर पाकिस्तानी जहाज से हुई है, उस जहाज का नाम INS कोलकाता था, जिसका कोड नंबर है D-63। इस पड़ताल में हमें एक और अहम बात पता चली कि INS गोदावरी युद्धपोत 23 दिसंबर 2015 को रिटायर हो चुका है। ऐसे में हमारे सामने पहला सवाल यही था कि रिटायरमेंट के 11 साल बाद INS गोदावरी का वीडियो कैसे सामने आया। वीडियो में एक और गौर करने वाली चीज दिखी। पाकिस्तानी जहाज पर D-182 लिखा हुआ है। ये पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS बाबर है, जो कि 2014 में रिटायर हो चुका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल कि अगर टक्कर वाला वीडियो अभी का है तो पर इसमें सेवामुक्त हो चुका PNS बाबर कैसे दिख रहा है। और तीसरा अहम सवाल ये कि जिन दो युद्ध पोतों के बीच टक्कर हुई है उनका एक भी फ्रेम इस वीडियो में क्यों नजर नहीं आ रहा है। सच इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें ये क्लिप 16 अक्टूबर 2014 को एक YouTube चैनल पर अपलोड की हुई मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वीडियो हालिया टक्कर से एक दशक से भी अधिक पहले का है। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी नौसेना के PNS बाबर को एक भारतीय नौसैनिक पोत से टकराते हुए दिखाया गया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन करने पर हमें 2011 की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इसी घटना को एक अलग कोण से दिखाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस टक्कर में शामिल भारतीय पोत INS गोदावरी था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया था। पाकिस्तान के आचरण का औपचारिक रूप से विरोध करते हुए ये कहा गया कि PNS बाबर ने अपने जोखिम भरे युद्धाभ्यासों से INS गोदावरी और उसके चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों और सैन्य अभ्यासों की अग्रिम सूचना पर 1991 के भारत पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो काफी पुराना है। भारतीय नौसेना के INS गोदावरी और पाकिस्तानी नौसेना के PNS बाबर के बीच 2011 में हुई टक्कर का ये वीडियो है। इसका अरब सागर में 15 सितंबर को हुई टक्कर से कोई संबंध नहीं है और इसे हाल की घटना की फुटेज के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। बप्पा की विदाई के लिए जाते नन्हे बच्चों को देखिए, जिनके चेहरे पर उदासी के बजाय प्यार और अपनापन नजर आ रहा है। बच्चे बप्पा को प्यार से चूमते और निहारते हुए विदाई दे रहे हैं। उनके मासूम चेहरे और सच्ची भावनाएं हर किसी का दिल छू रही हैं। शायद यही भक्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ उम्र छोटी है लेकिन आस्था और प्रेम बेहद गहरा है।

छोटी उम्र और बड़ा कारनामा, इस नन्हे उस्ताद ने अपनी कला के दम पर पूरी महफिल लूट ली। सांस्कृतिक आयोजन में जहां बड़े बड़े ढोल वादक पारंपरिक ढोल और ताशा बजा रहे हैं, वहीं ये कान्हा कलाकार पूरी एकाग्रता और सटीक ताल के साथ ढोल पर स्टिक्स चल रहा है। जिस अंदाज और जोश में मासूम बच्चा ताशा बजा रहा था, उसे देखकर एक पल के लिए लोग हैरान रह गए। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो यकीन तक नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से ताशा बजा सकता है।

0: जहां आजकल बच्चों की फोन की लत अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, वहीं राजस्थान के अजमेर जिले में रहने वाले एक लड़के ने अपने दिमाग से लोगों का ध्यान खींचा है। छठी क्लास में पढ़ने वाले सिद्धार्थ कुमावत ने अपनी टेक्निकल माइंड और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी का इस्तेमाल करते हुए कार्डबोर्ड से कॉकपिट बनाया है। बच्चे ने जो मॉडल तैयार किया है वह बाजारों में नहीं मिलता, बल्कि उसके हाथों की मेहनत है। सिद्धार्थ ने जो बनाया है वह सिर्फ क्राफ्ट नहीं बल्कि उनकी समझ को भी दिखाता है कि वे कितने क्रिएटिव हैं और पेशेंस के साथ चीजों को करते हैं। अपने इस मॉडल को बच्चे ने इस खूबसूरती से तैयार किया है जिससे वे दूसरों को दिखाकर भी सिखा सकें। जिस रूबिक क्यूब को सुलझाने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, उसे चीन के 6 साल की बच्ची ने महज कुछ सेकंड में सुलझाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन की 6 साल की लियान युनजी ने 3x3 रूबिक क्यूब को बेहद तेजी से सुलझाकर महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह 3x3 रूबिक क्यूब में 4.5 सेकंड से कम औसत बनाने वाली पहली महिला स्पीड क्यूबर बन गई। जेंगडू की रहने वाली लियान को प्यार से जीजी भी बुलाया जाता है। बच्चों की मासूमियत ही उनके हर छोटे से काम को खास बना देती है। इस वीडियो में बच्चा प्लेट में रखी चीज को मोबाइल फोन समझ बैठता है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे उठाकर कान से लगा लेता है। बच्चे की यह मासूम हरकत देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस प्यारे से पल को देखकर लोग खूब खुश हो रहे हैं। बचपन की ऐसी छोटी छोटी शरारतें हमेशा यादों में बस जाती है। बेटे के विदाई के वक्त एक पिता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। कन्यादान की रस्म को लेकर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल छू लिया। पिता ने बेटी को कोई वस्तु नहीं बल्कि अपने दिल का टुकड़ा और राजकुमारी बताया। पिता की बातों में बेटी के प्रति प्यार, चिंता और एक पिता का गर्व साफ नजर आता है।
1: एक राजा बाप होता है, उस बाप के लिए बेटी एक राजकुमारी है जो सदा उसके दिल में वास करती है। उस अपने दिल के टुकड़े को दान नहीं कर सकता, उसे एक नई जिंदगी के लिए, नए आभास के लिए, नई शुरुआत के लिए अपने दिल से, अपने तन मन से शुभकामनाएं देते हैं।
0: एक माँ अपनी बेटी को लेकर चुपके से उसके नानी के घर पहुँचती है। नानी को उम्मीद नहीं होती कि उनकी बेटी उनकी नातिन को लेकर आई है। ऐसे में जैसे ही वह देखती है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये एक छोटा सा पल अब लोगों को भावुक करने का काम कर रहा है।

0: बुजुर्ग महिला साड़ी पहनकर बाजार के बीच सड़क पर लाठी लेकर उतरती है। जैसे ही वह लाठी को हवा में लहराना शुरू करती है, उनकी फुर्ती और लय देखकर वहां खड़े लोग दंग रह जाते हैं। सिर पर पल्लू और पैरों में बेजोर संतुलन के साथ महिला जिस आसानी और आत्मविश्वास से लाठी घुमाती है, वह साबित करता है कि हुनर और जज्बे के आगे उम्र एक मामूली संख्या है। वीडियो में केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा लड़कियां भी पूरी तत्परता और अनुशासन के साथ लाठी चलाने का अभ्यास करती नजर आ रही हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर लाठी के वार रोकना और सटीक प्रहार करना दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक इंसान अगर बंदर के बीच जाकर उनकी जैसा ही हरकतें करने लगे तो फिर क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले तो वह बंदरों को अपने पास बुलाता है और फिर जब बंदर उसके पास आते हैं तो वह बंदरों की तरफ अपना चेहरा करके उन पर स्मोक छोड़ता नजर आ रहा है। ये देख बंदर डर जाते हैं और डर कर वह पीछे हट जाते हैं। शख्स की हरकतों को पहली नजर में देख ऐसा लगता है जैसे बंदरों के बीच कोई दूसरा बंदर आ गया हो, लेकिन इस बंदर से दूसरे बंदर खौफ खा रहे हैं और अपनी जान के लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। उसकी चाल ढाल और अंदाज देख कर बंदर भी पीछे हटने लगते हैं। कुछ बंदर उसे देख कर दूर भागते नजर आते हैं जबकि कुछ हैरानी से उसे देखते रहते हैं। वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि जो शख्स बंदरों को डराने पहुंचा था उसने कुछ समय के लिए उन्हें पूरी तरह उलझन में डाल दिया। बंदरों को समझ ही नहीं आता कि उनके सामने आखिर कौन खड़ा है। कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा होने में सालों लग जाते हैं। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही एहसास कराता है। वीडियो में एक 80 साल के बुजुर्ग पहली बार अपनी आंखों के सामने हवाई जहाज देखते नजर आ रहे हैं। प्लेन को देखते ही उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है वह लोगों का दिल छू रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का हवाई जहाज देखने का सपना 80 साल बाद पूरा हुआ। उनके बेटे ने इस खास पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं और कई यूजर्स को अपने माता पिता की याद आ रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली इंसान और रोबोट फाइटर देखने को मिली है। एक रिंग के अंदर मशहूर इन्फ्लुएंसर फ्रैंकी लापेन 6 फीट लंबे रिमोट कंट्रोल रोबोट से भिड़े। इस अनोखे मुकाबले को ह्यूमन वर्सेस टर्मिनेटर मैच नाम दिया गया, जिसे अमेरिकी रोबोटिक कंपनी आरीके ने आयोजित किया था। मैच शुरू होने से पहले रोबोट ने रिंग में वार्म अप किया और अपनी मूवमेंट दिखाई। फाइट शुरू होते ही फ्रैंकी ने रोबोट पर घूसे बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवाब में रोबोट ने भी पलटवार करते हुए जोरदार पंच और लाते मारी। रोबोट की किक इतनी ताकतवर थी कि फ्रैंकी उछलकर पिंजरे में दूर जा गिरे। इस मैच ने साफ दिखाया कि ये मशीन कितनी फुर्ती और ताकत से हमला कर सकती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आस्था जब आसमान पर उतरती है तो नजारा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता है। गुजरात के अंबाजी में 450 ड्रोन ने रात के आसमान को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया, कहीं त्रिशूल का स्वरूप, कहीं माँ अंबा की छवि।
2: अंधेरे आसमान पर जब रोशनी की लकीरें दौड़ती हैं तो कुछ ही पलों में पूरा आसमान एक तस्वीर में बदल जाता है, कहीं त्रिशूल का दिव्य स्वरूप, कहीं माँ अंबे की छवि, तो कहीं तिरंगे के साथ नजर आता भारत का नक्शा। आसमान में बनती इन तस्वीरों को देखकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें भी ठहर जाती हैं। खूबसूरत नजारा दरअसल गुजरात के अंबाजी का है, जहां भादरवी महामेला के दौरान आस्था के इस उत्सव में तकनीक ने भी रंग भर दिए हैं। दिन भर माँ के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और रात के वक्त 450 ड्रोन से आसमान पर साकार होती भक्त की ये तस्वीरें। जैसे जैसे ड्रोन अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे आसमान पर बदलती तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचती हैं। अंबाजी में इन दिनों आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि आसमान में भी अपना रंग बिखेर रही है।
3: ड्रोन शो दिखा हुआ है, उसमें बहुत अद्भुत रहते माँ अंबा ना प्रकृति अने चाचर चौक ना दिया गब्बर ने पर्वत पकपल यात्रिका आते उनका रथ अने जो लोग लेके आते झंडा, ये सब चीज हमने इंक्लूड करके ड्रोन शो किया था। अने स्पेसिफिक चीज ऐसे है माँ अंबा का पाथ अने माँ अंबा का दिया, ये दोनों चीज हमको बहुत खुश लगे। पीपल लोगों को माँ भक्तों को भी बहुत आनंद रहते, दोनों दिन का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके सक्सेसफुली प्लान की हुई थी।
2: मंदिर परिसर और आसमान में रोशनी का ये संगम देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। लगातार दो रात हुए इस ड्रोन शो ने मेले के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक लाइटिंग ने भी पूरे माहौल को भव्य बना दिया। माँ के दरबार में शीश झुकाने के बाद जब नजरें आसमान की ओर उठी तो सामने था आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम।
3: लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ड्रोन शो देख के, एंड लास्ट ईयर पहली बार ड्रोन शो किया हुआ था एंड इस साल भी हमने कंटिन्यू रखा है। लास्ट ईयर से इस साल का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके मैनेज हुआ है एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हम ज्यादा रखे ताकि पकपाला संघ आते उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस साल हमने रखा है, ताकि जो चीज को महत्व माना जाता है अंबाजी मेला में उस चीज को हम इसमें इंटरप्रेट की हुई थी। इसके वजह से लोग बहुत अच्छी तरीके माँ भक्तों का श्रद्धा के साथ साथ दर्शन करके अंबाजी मंदिर में दर्शन करके निकले थे।
2: आसमान में बनती तस्वीरें, नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजता माँ अंबे का जयकारा। अंबाजी में इस वक्त सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि पूरा अरावली क्षेत्र ही भक्ति रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात के अंबाजी से निकलकर अगर बिहार के गया जी पहुंचे तो वहां भी आस्था को रोशनी और तकनीक के जरिए ही एक नया रूप दिया गया। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले से पहले फल्गु नदी का देवघाट भी रोशनी से जगमगा उठा। देवघाट पर शानदार लेजर एंड लाइट शो का उद्घाटन हुआ।
4: में आज लेजर लाइट के द्वारा एक अद्भुत सीता माँ की पूरा कहानी की जीवनी, गया सुर कैसे गया सुर बने, पूरा इसका कहानी इस लेजर के माध्यम से जितने भी देश विदेश से यात्री आएंगे उनको उनके लिए ये हम लोग नगर निगम के द्वारा व्यवस्था करवाए हैं।
2: लेजर और रोशनी के शानदार शो में गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया। माँ सीता के पिंडदान से जुड़ी कथा हो या गयासुर की पौराणिक कहानी।
5: गया जी में कल से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस तत्पर है ताकि जो अनुभूति है अपने आप में एक दैवीय अनुभूति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सुखद हो, सहज हो। और किसी भी समस्या के लिए पुलिस के बहुत सारे हेल्पलाइंस भी बनाए गए हैं, अस्थाई थाना भी स्थापित किया गया है और CCTV से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे की जाएगी।
2: अंबाजी में आसमान पर उड़ते ड्रोन हों या गया जी के देवघाट पर चमकती लेजर लाइट, तकनीक ने दोनों जगह आस्था की कहानी कहने का एक नया अंदाज जरूर दिया है। एक तरफ माँ अम्बा की भक्ति में रोशन आसमान, तो दूसरी ओर पूर्वजों की स्मृति और पिंडदान की परंपरा को समर्पित गया जी। दो धाम, दो अलग अंदाज, लेकिन तस्वीर एक ही, आस्था की, जो अब रोशनी के माध्यम से भी दिखाई दे रही है। अम्बाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकल रही लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, श्रद्धा भक्ति के माहौल में गणपति बप्पा मोरय के जयकारे, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का मेला। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेनजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रण कौशल।

0: यूपी में बदला मौसम, चार राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। अनंत चतुर्दशी के बाद से ही पितरों के सत्कार की परंपरा का आरंभ हो जाता है, जो एक पखवाड़ा तक माना जाता है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे पितृपक्ष की महिमा के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं अपने पूर्वजों को याद करने, उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा का पालन आखिरकार हमें क्यों करना चाहिए और कैसे आप पा सकते हैं अपने पितरों की अनुकंपा, देखिए हमारी इस खास पेशकश में।

0: पूर्णिमा तिथि पर होता है जिनका परलोक गमन। ऐसे पितरों का पूर्णिमा की तिथि पर होता है तर्पण। 15 दिवसीय महालय पक्ष का होने जा रहा है आगाज। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का है मोक्षदायिनी रिवाज। धर्मग्रंथ कहते हैं जो भी साधक विधि विधान के साथ इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों का सत्कार करता है वो जाने अनजाने हुए पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे कि 15 दिवसीय महालय पक्ष में पूर्वजों की आओ भगत कैसे करें। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा में किन पितरों के श्राद्ध की परंपरा रही है।
1: प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में आती हैं, लेकिन पूर्णिमा उसमें नहीं आती। तो जिन पितरों की तिथि पूर्णिमा होती है उनका श्राद्ध पूर्णिमा को आरंभ हो जाता है और उसी दिन से महालया का आरंभ होता है। या ज्ञान जो पितर हमारे हैं जिनका श्राद्ध तिथि पूर्णिमा को है उनका श्राद्ध किया जाए, इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व है।
0: पूर्वजों का कैसे करें तर्पण, कौन सा भोग करें अर्पण, श्राद्ध का क्या है विधिवत विधान, किस विधि से पूर्वज देंगे वरदान। माना जाता है कि पूर्वजों की तृप्ति होने से न सिर्फ सभी दोषों का अंत होता है बल्कि कुंडली से पितृदोष भी सदा के लिए मिट जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिन पितरों का विधिवत श्राद्ध नहीं होता उनकी मुक्ति अधूरी रहती है।
1: ये धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सब कार्य को छोड़कर जो पितरों के निमित्त कार्य बताए गए हैं, हम हमारे धर्म सिंधु में देख लीजिए, महाभारत के शांति पर्व में देख लीजिए, पद्म पुराण में देख लीजिए, सब जगह पितरों के बारे में बताया गया है, पितृपक्ष का महत्व बताया गया है। इसीलिए पितरों के लिए हम पितृपक्ष में विशेष करके उपाय करके उनके प्रसन्न होकर आशीर्वाद की कामना उनसे करते हैं।
0: पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष की क्या है महिमा। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातनी आस्था है कि जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके सत्कार से पितृ प्रसन्न हो गए तो आपके सभी कार्य निष्कंटक पूर्ण होते हैं।
1: हमारे यहाँ महाभारत के शांति पर्व में और जब तक पितरों की कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी तब तक जीवन में परिवार में विवाह है, नया भूमि भवन प्राप्त करना है, संतान वृद्धि, यह सब कर्म परिवार में नहीं होते।
0: ऐसा मानते हैं कि हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों पितृपक्ष की परंपराओं का पालन किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय ही पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। मान्यता तो यहाँ तक है कि जिसके पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं उस पर ईश्वर भी अनुकंपा नहीं करते हैं।
1: पितृपक्ष में नियमित रूप से तर्पण अवश्य करना चाहिए। किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, गंगा जी के किनारे जाकर के और तिल ले करके तिल से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। और जिस तिथि पर जिस पितर का श्राद्ध हो उस दिन श्राद्ध करें। अपने पितरों के फोटो पर सुगंधित माला, जिस पुष्प में सुगंध हो ऐसी माला चढ़ावे, चंदन लगावे और सायंकाल के समय एक दीपक जलावे और पितृ स्तोत्र का पाठ करे। पितृ स्तोत्र का पाठ करने से जो रुचि ऋषि ने गाया है, कहा है, उसका पाठ करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।
0: पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उस तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। पितृपक्ष में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर पितर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की सावधानियां और साथ ही जानेंगे कि कौन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं। इनके कृपा से जीवन के तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है, लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम आखिर क्या है।
3: पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। माना जाता है कि श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि जो भी साधक महाल्य पक्ष में अपने पितरों की निमित विधिवत संस्कार करता है, उनको मन, कर्म और वचन से भोजन प्रदान करता है, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। उसके पूरे परिवार पर पितरों की कृपा बरसती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गौर से देखिए और कीजिए इन सावधानियों का पालन।
1: सबसे बड़ा नियम होता है कि सात्विक भोजन करना। जब तक पिता की तिथि न बीत जाए, माता की तिथि अगर हो तो तब तक छौर कर्म न करावे, दाढ़ी बाल न कटवावे, धोबी को कपड़ा न दे, किसी को अप्रिय वचन न बोले, क्योंकि पितृलोक के समय हमारे पितृ हमारे मृत्यु लोक में रहते हैं और आपके आस पास ही रहते हैं, और जो अखाद्य वस्तुएं हैं उनका परित्याग करें।
3: पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतब वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व होता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाली सफेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भागवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें।
1: सादा जीवन उच्च विचार, यह जो हमारे यहाँ भाषा बताई गई है कि अपने पितरों के निमित्त जो तिथि जिस दिन हो, प्रातः काल में या संध्या के समय या रात्रि के समय श्राद्ध न करे, तर्पण न करे। जो अपराह्न काल बताया गया है, 1 बजे के बाद वाला जो समय है, उस समय अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि करावे, गौ माता को, स्वान को माने कुत्ते को और कौए को बलि दे और भोजन करावे, लोगों को तृप्त करे, और अगर हो सके तो 15 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करे।
3: बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। कौन सही अर्थों में श्राद्ध करने का अधिकारी होता है?
1: अगर पिता नहीं है तो पुत्र करे, पुत्र नहीं है तो पौत्र करे, पौत्र नहीं है तो प्रपौत्र करे, वह भी नहीं है तो जो रिश्ते में बताया गया है वो लोग भी कर सकते हैं। या इन सब लोगों के लिए जिनके कोई नहीं था आपके परिवार में, किसी आपके चाचा को, किसी बड़े पिता जो कोई संतान नहीं थी, उनके निमित्त भी आप कर सकते हैं। वो भी आश्रित होते हैं कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है जो हमारे जल अर्पण करे, मेरे नाम पर भोजन करावे, दान करे, तो ऐसा अधिकार सबको दिया गया है।
3: घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य ना हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें। ये पितृपक्ष के 15 दिन अति शुभ फल देने वाले हैं। इन दिनों पितरों की आत्माएं मृत्यु लोक में आकर अपने वंशजों से भोग ग्रहण करती हैं, तृप्त होकर अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। तो आप भी पितरों को प्रसन्न करें और इस महाफलदायी पितृपक्ष का लाभ उठाएं। आगे हम आपको बताने वाले हैं नियमित रूप से पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करें और तिथि अनुसार आप किस तिथि पर कर सकते हैं श्राद्ध कर्म और तर्पण। आगे जानिए।
2: श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है। पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद जरूरी हैं। कैसे कुछ उपाय करके आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं वो भी जान लीजिए।
3: आने वाले हैं पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के दिन, जब आप तर्पण, पिंड दान और दान पुण्य करके पितरों की अनुकंपा पाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होंगे, जिसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ होगा। कल पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। पितृपक्ष की अवधि में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अलग अलग श्राद्ध तिथियां आती हैं। परिवार में जिस पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि पर होती है उसी तिथि के अनुसार श्राद्ध करने की परंपरा है। वैसे तो आप पंचांग में भी इन तिथियों को देख सकते हैं, लेकिन हम भी आपको ज्योतिषियों द्वारा बताई गई श्राद्ध की वो तिथियां बता देते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर को होगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर से किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 28 सितंबर को है। तृतीया तिथि का श्राद्ध कर्म 29 सितंबर को पूर्ण होगा। चतुर्थी और पंचमी तिथि के श्राद्ध का विधान 30 सितंबर को माना गया है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध कर्म 1 अक्टूबर को संपन्न होगा। सप्तमी तिथि का कर्म कांड की तिथि 2 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि के श्राद्ध की परंपराएं 3 अक्टूबर को निभाई जाएंगी। नवमी तिथि का श्राद्ध संस्कार 4 अक्टूबर को पूर्ण होगा। दशमी तिथि के श्राद्ध का अनुष्ठान 5 अक्टूबर को है। एकादशी तिथि के श्राद्ध की पूर्णता 6 अक्टूबर को की जाएगी। द्वादशी तिथि का श्राद्ध की परंपराओं का पालन 7 अक्टूबर को होगा। त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का कर्म कांड 8 अक्टूबर को है। चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का पालन की तारीख 9 अक्टूबर है, जबकि 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है।
1: यह पितरों का पक्ष ही है। यह 15 दिन का जो पक्ष है, यह जो पितृ जिस दिन जिनका निर्वाण हुआ है उस तिथि को उस पितरों का श्राद्ध करने का हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जय मुंडी तय पिंडी, अगर जितने पुत्र हैं अगर सबकी रसोई अगर अलग अलग बनती है तो हर व्यक्ति को अपने पिता के लिए अपने पितरों के लिए यह कार्य करना चाहिए, यह ग्रंथों में हमें बताया गया है।
3: पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके घर में हमेशा कोई न कोई समस्या रहती हो और शुभ कार्यों के पूर्ण होने में बार बार विघ्न होता हो तो इसके पीछे पूर्वजों की नाराजगी भी हो सकती है। तो चलिए आपको वो ज्योतिषीय महाउपाय भी बताते हैं जिसको करने से आपके घर में शुभता होगी और संपन्नता का वास होगा।
1: तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, तर्पण करें, ब्राह्मण को अन्न दान करें, भोजन करावे, गऊ को खिलावे, कुत्ता को खिलावे, कौआ को खिलावे। इन 15 दिनों के भीतर अगर हमारे द्वारा कोई अपराध हुआ हो, परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर के जो रुके हुए कार्य हैं वह सब पूर्ण हो। ऐसा अमावस्या को करने से या पितृपक्ष में करने समापन के दिन सारे जीवन के रुके कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण हो जाते हैं।
3: दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं, रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, अमावस्या के दिन दान जरूर करें। माना जाता है कि तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है, साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना जहां बेहद अहम और आवश्यक कर्म है, वहीं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बेहद जरूरी हो जाती है। पितृपक्ष में किए गए ये उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कब
10: आस्था जब आसमान पर उतरती है तो नजारा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता है। गुजरात के अंबाजी में 450 ड्रोन ने रात के आसमान को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया, कहीं त्रिशूल का स्वरूप, कहीं माँ अंबा की छवि।
11: अंधेरे आसमान पर जब रोशनी की लकीरें दौड़ती हैं तो कुछ ही पलों में पूरा आसमान एक तस्वीर में बदल जाता है। कहीं त्रिशूल का दिव्य स्वरूप, कहीं माँ अंबे की छवि, तो कहीं तिरंगे के साथ नजर आता भारत का नक्शा। आसमान में बनती इन तस्वीरों को देखकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें भी ठहर जाती हैं। खूबसूरत नजारा दरअसल गुजरात के अंबाजी का है, जहां भादरवी महामेला के दौरान आस्था के इस उत्सव में तकनीक ने भी रंग भर दिए हैं। दिन भर माँ के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और रात के वक्त 450 ड्रोन से आसमान पर साकार होती भक्त की ये तस्वीरें। जैसे जैसे ड्रोन अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे आसमान पर बदलती तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचती हैं। अंबाजी में इन दिनों आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि आसमान में भी अपना रंग बिखेर रही है।
12: ड्रोन शो दिखाया हुआ है, उसमें बहुत अद्भुत रहते माँ अंबा ना प्रकृति अने छाछर चौक ना दिया गब्बर ने पर्वत पगपाला यात्रिका आते उनका रथ अने जो लोग लेके आते झंडा, ये सब चीज हमने इंक्लूड करके ड्रोन शो किया था। अने स्पेसिफिक चीज ऐसे है माँ अंबा का पाथ अने माँ अंबा का दिया, ये दोनों चीज हमको बहुत खुश लगे। पीपल लोगों को माँ भक्तों को भी बहुत आनंद रहते, दोनों दिन का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके सक्सेसफुल प्लान की हुई थी।
11: मंदिर परिसर और आसमान में रोशनी का ये संगम देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। लगातार दो रात हुए इस ड्रोन शो ने मेले के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक लाइटिंग ने भी पूरे माहौल को भव्य बना दिया। माँ के दरबार में शीश झुकाने के बाद जब नजरें आसमान की ओर उठी तो सामने था आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम।
12: लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ड्रोन शो देख के, एंड लास्ट ईयर पहली बार ड्रोन शो किया हुआ था एंड इस साल भी हमने कंटिन्यू रखा है। लास्ट ईयर से इस साल का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके मैनेज हुआ है एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हम ज्यादा रखे ताकि पगपाला संघ आते उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस साल हमने रखा है, ताकि जो चीज को महत्व माना जाता है अंबाजी मेला में उस चीज को हम इसमें इंटरप्रेट की हुई थी। इसके वजह से लोग बहुत अच्छी तरीके माँ भक्तों का श्रद्धा के साथ साथ दर्शन करके अंबाजी मंदिर में दर्शन करके निकले थे।
11: आसमान में बनती तस्वीरें, नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजता माँ अंबे का जयकारा। अंबाजी में इस वक्त सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि पूरा अरावली क्षेत्र ही भक्ति रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात के अंबाजी से निकलकर अगर बिहार के गया जी पहुंचे तो वहां भी आस्था को रोशनी और तकनीक के जरिए ही एक नया रूप दिया गया। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले से पहले फल्गु नदी का देवघाट भी रोशनी से जगमगा उठा। देवघाट पर शानदार लेजर एंड लाइट शो का उद्घाटन हुआ।
13: में आज लेजर लाइट के द्वारा एक अद्भुत सीता माँ की पूरा कहानी की जीवनी, गया सुर कैसे गया सुर बने, पूरा इसका कहानी इस लेजर के माध्यम से जितने भी देश विदेश से यात्री आएंगे उनको उनके लिए ये हम लोग नगर निगम के द्वारा व्यवस्था करवाए हैं।
11: लेजर और रोशनी के शानदार शो में गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया। माँ सीता के पिंडदान से जुड़ी कथा हो या गयासुर की पौराणिक कहानी।
14: गया जी में कल से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस तत्पर है ताकि जो अनुभूति है अपने आप में एक दैवीय अनुभूति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सुखद हो, सहज हो और किसी भी समस्या के लिए पुलिस के बहुत सारे हेल्पलाइंस भी बनाए गए हैं। अस्थाई थाना भी स्थापित किया गया है और CCTV से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे की जाएगी।
11: अंबाजी में आसमान पर उड़ते ड्रोन हों या गया जी के देवघाट पर चमकती लेजर लाइट, तकनीक ने दोनों जगह आस्था की कहानी कहने का एक नया अंदाज जरूर दिया है। एक तरफ माँ अम्बा की भक्ति में रोशन आसमान, तो दूसरी ओर पूर्वजों की स्मृति और पिंडदान की परंपरा को समर्पित गया जी। दो धाम, दो अलग अंदाज, लेकिन तस्वीर एक ही, आस्था की, जो अब रोशनी के माध्यम से भी दिखाई दे रही है। अम्बाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
15: क्या है पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष का क्या होगा पूजा विधान और पितृपक्ष में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकल रही लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, श्रद्धा भक्ति के माहौल में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का मेला। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेनजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रण कौशल।

0: यूपी में बदला मौसम, चार राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: में कैमरा हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। लेकिन ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की रेखा को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की होगी जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ नाश्ते की टेबल पर बैठने नहीं दिया, उन्हें अलग दूर कुर्सी पर बिठाया गया। क्या है इसकी सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय वॉरशिप INS कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज PNS हुनैन के बीच हुई टक्कर का यह वीडियो है। क्या है सच्चाई आगे जानिए, शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: क्या राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में जाति को लेकर भेदभाव करते हैं? क्या राहुल बुजुर्ग नेताओं का अपमान करते हैं? सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तस्वीर वायरल हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि हाल ही में राहुल गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को नाश्ते पर बुलाया। उनके साथ ब्रेकफास्ट करते वक्त राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ टेबल पर बैठने नहीं दिया। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: ये तस्वीर इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लोग इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस का दलित प्रेम ढोंग है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ नाश्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यह तस्वीर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही है। इस तस्वीर में टेबल पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम कुछ अधिकारियों के साथ बैठक कर नाश्ता कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे उन सबसे दूर कोने में एक अलग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे नाश्ते के टेबल पर मौजूद क्यों नहीं है, ये लोगों को खटक रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के कारण राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया और उन्हें पीछे बैठा दिया। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि दिन रात दलित दलित चिल्लाने वाले राहुल गांधी के नाश्ते की टेबल पर दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जगह ही नहीं है। तस्वीर तेजी से सर्कुलेट हो रही है, लोग सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: इससे पहले इन तस्वीरों का पूरा सच हम आपको बताएं, पहले ये समझ लीजिए कि ये तस्वीर आई कहां से है और ये कब की है। असल में दिल्ली में 12 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी शामिल हुए थे। इस दौरान अनवर इब्राहिम ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इस तस्वीर को उसी मुलाकात से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब मलेशिया के प्रधानमंत्री को होस्ट कर रहे थे तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ बैठने नहीं दिया, उन्हें अपनी टेबल से दूर कोने में बैठने के लिए कहा। ये तस्वीर तेजी से फैली और इसके साथ ही ये नैरेटिव फैल गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं इसलिए उन्हें राहुल गांधी ने साथ में नहीं बिठाया। लोग कहने लगे कि कैमरों के सामने राहुल गांधी दलित प्रेम का नाटक करते हैं, उनकी असलियत अब सामने आई है। पर इस पूरी तस्वीर और इससे जुड़े दावों में बहुत कुछ ऐसा था जो हमें खटक रहा था, इसीलिए हमने तस्वीर की जांच शुरू की। इस तस्वीर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की दाहिनी और राहुल गांधी बैठे हुए हैं और सामने प्रियंका गांधी, टेबल पर कुछ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, कैमरे में खड़गे भी हैं पर वो इस टेबल से दूर एक कोने में बैठे हैं। तस्वीर को जब बारीकी से देखा गया तो हमें इसमें कुछ खामियां नजर आई। खड़गे जिस तरह से बैठे हुए हैं वो सामान्य नहीं है, आसपास और भी सोफे हैं लेकिन उन पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। खड़गे ऐसे अकेले बैठे रहे, ये बहुत अजीब सा लग रहा था, इसीलिए हमने इससे जुड़ी खबरें ढूंढनी शुरू की पर कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में तस्वीर हमें नजर नहीं आई। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मिली। हम सोच में पड़ गए कि अगर राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष का ऐसा अपमान किया तो फिर खबर क्यों नहीं बनी, और यही हमारा पहला सवाल है कि अगर राहुल और प्रियंका ने विदेशी मेहमान के सामने कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान किया है तो फिर ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आई। तस्वीर में एक बात और हमें खटकी, हमें खड़गे के दोनों हाथ मिले हुए दिखे, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, जूम करके देखने पर उंगलियां अलग नहीं दिख रही हैं।

0: एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं। ये साफ साफ एडिट हुई तस्वीर ही लग रही है। ऐसे में हमारे सामने दूसरा सवाल ही था कि क्या खड़गे इस मुलाकात के दौरान वहां मौजूद भी थे। इससे जुड़ा तीसरा सवाल कि क्या इस तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को अलग से जोड़कर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में सच जानिए।
1: इस तस्वीर के सामने आते ही इसे जातीय रंग दिया जाने लगा। सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव फैलाया गया। ऐसे लोग जो झूठ का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते, वो इस खबर पर कूद पड़े। कहने लगे कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा है। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम तस्वीर की जांच में जुटी। सच कहने पर हमें ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से 13 सितंबर को नाश्ते पर मुलाकात की, लेकिन इस असली तस्वीर में मल्लिका अर्जुन खड़गे है ही नहीं। यानी साफ है कि वायरल तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को इस तरह से जोड़ दिया गया ताकि ऐसा लगे कि उन्हें बाकी नेताओं से अलग बैठाया गया है। सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर प्रकाशित मिली। इस रिपोर्ट को 13 सितंबर को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर दिल्ली में हुए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने दिल्ली में दोनों के साथ नाश्ता किया था। तस्वीर में AI का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए हमने AI डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन की मदद से सर्च किया। इस टूल ने तस्वीर में करीब 100% तक AI के इस्तेमाल होने की संभावना जताई। साफ है सोफे पर अकेले बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वायरल तस्वीर एडिटेड है। ओरिजिनल तस्वीर में खड़गे है ही नहीं, इसमें सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी मलेशिया के प्रधानमंत्री और अधिकारियों के साथ नाश्ता करते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
0: बात पाकिस्तान की गुस्ताखी की। 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता और पाकिस्तानी जहाज PNS हुनैन के बीच टक्कर हुई थी। पाकिस्तानी जहाज की इस गलती से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो टक्कर के दौरान क्या है, पर जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: 15 सितंबर की शाम को उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज PNS हुनैन के बीच मामूली टक्कर हो गई थी। दरअसल भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी पर था, तभी पाकिस्तानी जहाज ने तेज गति से आते हुए असुरक्षित तरीके से पैंतरेबाजी की, जिसके कारण दोनों जहाजों में टक्कर हो गई। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय पोत ने उनके अभ्यास क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसके बाद इस गैर पेशेवर और अस्वीकार्य व्यवहार पर कड़ा विरोध जताने के लिए भारत ने 16 सितंबर को नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया। भारत ने इसे 1991 के द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया। अब इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 15 सितंबर का ये लेटेस्ट वीडियो है जब अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज भारतीय नौसेना के जहाज से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: खबर तो यही है असली। 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत और पाकिस्तानी जहाज के बीच टक्कर तो हुई थी, पर हमने कभी उस टक्कर से जुड़ा कोई वीडियो नहीं देखा। इसीलिए जब ये वीडियो देखा तो हमें थोड़ा सा शक हुआ। मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी सच्चाई सामने लाना जरूरी था। तो वीडियो में दो जहाजों के बीच मामूली टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस दौरान वहां पर कोई गहमा गहमी नजर नहीं आती है। वीडियो में हंसने की आवाजें सुनाई दे रही है, एक शख्स तस्वीर भी ले रहा है। अगर टक्कर का ये वीडियो होता तो फिर उस वक्त माहौल में एक बेचैनी होती, लोग हंसी मजाक तो नहीं कर रहे होते। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि महज कुछ सेकंड में ही एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक सामने से खतरनाक तरीके से गुजर रहा है। फैक्ट चेक टीम की नजर जहाज के कोड नंबर यानी कि पताका संख्या पर गई। इस पर U-52 लिखा हुआ था। यह INS गोदावरी का कोड है, जबकि 15 सितंबर को अरब सागर में जो उस भारतीय जहाज की टक्कर पाकिस्तानी जहाज से हुई है, उस जहाज का नाम INS कोलकाता था, जिसका कोड नंबर है D-63। इस पड़ताल में हमें एक और अहम बात पता चली कि INS गोदावरी युद्धपोत 23 दिसंबर 2015 को रिटायर हो चुका है। ऐसे में हमारे सामने पहला सवाल यही था कि रिटायरमेंट के 11 साल बाद INS गोदावरी का वीडियो कैसे सामने आया। वीडियो में एक और गौर करने वाली चीज दिखी। पाकिस्तानी जहाज पर D-182 लिखा हुआ है। ये पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS बाबर है जो कि 2014 में रिटायर हो चुका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल कि अगर टक्कर वाला वीडियो अभी का है तो पर इसमें सेवा मुक्त हो चुका PNS बाबर कैसे दिख रहा है। और तीसरा अहम सवाल ये कि जिन दो युद्ध पोतों के बीच टक्कर हुई है उनका एक भी फ्रेम इस वीडियो में क्यों नजर नहीं आ रहा है। सच इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें ये क्लिप 16 अक्टूबर 2014 को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वीडियो हालिया टक्कर से एक दशक से भी अधिक पहले का है। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी नौसेना के PNS बाबर को एक भारतीय नौसैनिक पोत से टकराते हुए दिखाया गया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन करने पर हमें 2011 की एक रिपोर्ट मिली जिसमें इसी घटना को एक अलग कोण से दिखाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस टक्कर में शामिल भारतीय पोत INS गोदावरी था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया था। पाकिस्तान के आचरण का औपचारिक रूप से विरोध करते हुए ये कहा गया कि PNS बाबर ने अपने जोखिम भरे युद्धाभ्यासों से INS गोदावरी और उसके चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों और सैन्य अभ्यासों की अग्रिम सूचना पर 1991 के भारत पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो काफी पुराना है। भारतीय नौसेना के INS गोदावरी और पाकिस्तानी नौसेना के PNS बाबर के बीच 2011 में हुई टक्कर का ये वीडियो है। इसका अरब सागर में 15 सितंबर को हुई टक्कर से कोई संबंध नहीं है और इसे हाल की घटना की फुटेज के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
8: ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। बप्पा की विदाई के लिए जाते नन्हे बच्चों को देखिए, जिनके चेहरे पर उदासी के बजाय प्यार और अपनापन नजर आ रहा है। बच्चे बप्पा को प्यार से चूमते और निहारते हुए विदाई दे रहे हैं। उनके मासूम चेहरे और सच्ची भावनाएं हर किसी का दिल छू रही हैं। शायद यही भक्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ उम्र छोटी है लेकिन आस्था और प्रेम बेहद गहरा है।

छोटी उम्र और बड़ा कारनामा, इस नन्हे उस्ताद ने अपनी कला के दम पर पूरी महफिल लूट ली। सांस्कृतिक आयोजन में जहां बड़े बड़े ढोल वादक पारंपरिक ढोल और ताशा बजा रहे हैं, वही ये कान्हा कलाकार पूरी एकाग्रता और सटीक ताल के साथ ढोल पर स्टिक्स चल रहा है। जिस अंदाज और जोश में मासूम बच्चा ताशा बजा रहा था, उसे देखकर एक पल के लिए लोग हैरान रह गए। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो यकीन तक नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से ताशा बजा सकता है।

0: बच्चों की फोन की लत अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, वहीं राजस्थान के अजमेर जिले में रहने वाले एक लड़के ने अपने दिमाग से लोगों का ध्यान खींचा है। छठी क्लास में पढ़ने वाले सिद्धार्थ कुमावत ने अपनी टेक्निकल माइंड और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी का इस्तेमाल करते हुए कार्डबोर्ड से कॉकपिट बनाया है। बच्चे ने जो मॉडल तैयार किया है वह बाजारों में नहीं मिलता, बल्कि उसके हाथों की मेहनत है। सिद्धार्थ ने जो बनाया है वह सिर्फ क्राफ्ट नहीं बल्कि उनकी समझ को भी दिखाता है कि वे कितने क्रिएटिव हैं और पेशेंस के साथ चीजों को करते हैं। अपने इस मॉडल को बच्चे ने इस खूबसूरती से तैयार किया है जिससे वे दूसरों को दिखाकर भी सिखा सकें। जिस रूबिक क्यूब को सुलझाने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं उसे चीन के 6 साल की बच्ची ने महज कुछ सेकंड में सुलझाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन की 6 साल की लियान युनजी ने 3x3 रूबिक क्यूब को बेहद तेजी से सुलझाकर महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह 3x3 रूबिक क्यूब में 4.5 सेकंड से कम औसत बनाने वाली पहली महिला स्पीड क्यूबर बन गई। जंगडू की रहने वाली लियान को प्यार से जीजी भी बुलाया जाता है। बच्चों की मासूमियत ही उनके हर छोटे से काम को खास बना देती है। इस वीडियो में बच्चा प्लेट में रखी चीज को मोबाइल फोन समझ बैठता है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे उठाकर कान से लगा लेता है। बच्चे की यह मासूम हरकत देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस प्यारे से पल को देखकर लोग खूब खुश हो रहे हैं। बचपन की ऐसी छोटी छोटी शरारतें हमेशा यादों में बस जाती है। बेटे के विदाई के वक्त एक पिता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। कन्यादान की रस्म को लेकर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल छू लिया। पिता ने बेटी को कोई वस्तु नहीं बल्कि अपने दिल का टुकड़ा और राजकुमारी बताया। पिता की बातों में बेटी के प्रति प्यार, चिंता और एक पिता का गर्व साफ नजर आता है।
1: एक राजा बाप होता है, उस बाप के लिए बेटी एक राजकुमारी है जो सदा उसके दिल में वास करती है। उस अपने दिल के टुकड़े को दान नहीं कर सकता, उसे एक नई जिंदगी के लिए, नए आभास के लिए, नई शुरुआत के लिए अपने दिल से, अपने तन मन से शुभकामनाएं देते हैं।
0: एक माँ अपनी बेटी को लेकर चुपके से उसके नानी के घर पहुँचती है। नानी को उम्मीद नहीं होती कि उनकी बेटी उनकी नातिन को लेकर आई है। ऐसे में जैसे ही वह देखती है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये एक छोटा सा पल अब लोगों को भावुक करने का काम कर रहा है।
2: ये

0: महिला साड़ी पहनकर बाजार के बीच सड़क पर लाठी लेकर उतरती है। जैसे ही वह लाठी को हवा में लहराना शुरू करती है, उनकी फुर्ती और लय देखकर वहां खड़े लोग दंग रह जाते हैं। सिर पर पल्लू और पैरों में बेजोड़ संतुलन के साथ महिला जिस आसानी और आत्मविश्वास से लाठी घुमाती है, वह साबित करता है कि हुनर और जज्बे के आगे उम्र एक मामूली संख्या है। वीडियो में केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा लड़कियां भी पूरी तत्परता और अनुशासन के साथ लाठी चलाने का अभ्यास करती नजर आ रही हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर लाठी के वार रोकना और सटीक प्रहार करना दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक इंसान अगर बंदर के बीच जाकर उनकी जैसा ही हरकतें करने लगे तो फिर क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले तो वह बंदरों को अपने पास बुलाता है और फिर जब बंदर उसके पास आते हैं तो वह बंदरों की तरफ अपना चेहरा करके उन पर स्मोक छोड़ता नजर आ रहा है। ये देख बंदर डर जाते हैं और डर कर वह पीछे हट जाते हैं। शख्स की हरकतों को पहली नजर में देख ऐसा लगता है जैसे बंदरों के बीच कोई दूसरा बंदर आ गया हो, लेकिन इस बंदर से दूसरे बंदर खौफ खा रहे हैं और अपनी जान के लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। उसकी चाल ढाल और अंदाज देख कर बंदर भी पीछे हटने लगते हैं। कुछ बंदर उसे देख कर दूर भागते नजर आते हैं जबकि कुछ हैरानी से उसे देखते रहते हैं। वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि जो शख्स बंदरों को डराने पहुंचा था उसने कुछ समय के लिए उन्हें पूरी तरह उलझन में डाल दिया। बंदरों को समझ ही नहीं आता कि उनके सामने आखिर कौन खड़ा है। कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा होने में सालों लग जाते हैं। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही एहसास कराता है। वीडियो में एक 80 साल के बुजुर्ग पहली बार अपनी आंखों के सामने हवाई जहाज देखते नजर आ रहे हैं। प्लेन को देखते ही उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है वह लोगों का दिल छू रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का हवाई जहाज देखने का सपना 80 साल बाद पूरा हुआ। उनके बेटे ने इस खास पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं और कई यूजर्स को अपने माता पिता की याद आ रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली इंसान और रोबोट फाइटर देखने को मिली है। एक रिंग के अंदर मशहूर इन्फ्लुएंसर फ्रैंकी लापेन 6 फीट लंबे रिमोट कंट्रोल रोबोट से भिड़े। इस अनोखे मुकाबले को ह्यूमन वर्सेस टर्मिनेटर मैच नाम दिया गया, जिसे अमेरिकी रोबोटिक कंपनी आरीके ने आयोजित किया था। मैच शुरू होने से पहले रोबोट ने रिंग में वार्म अप किया और अपनी मूवमेंट दिखाई। फाइट शुरू होते ही फ्रैंकी ने रोबोट पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवाब में रोबोट ने भी पलटवार करते हुए जोरदार पंच और लाते मारी। रोबोट की किक इतनी ताकतवर थी कि फ्रैंकी उछलकर पिंजरे में दूर जा गिरे। इस मैच ने साफ दिखाया कि ये मशीन कितनी फुर्ती और ताकत से हमला कर सकती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: आस्था जब आसमान पर उतरती है तो नजारा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता है। गुजरात के अंबाजी में 450 ड्रोन ने रात के आसमान को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया। कहीं त्रिशूल का स्वरूप, कहीं मां अंबा की छवि।
8: अंधेरे आसमान पर जब रोशनी की लकीरें दौड़ती हैं तो कुछ ही पलों में पूरा आसमान एक तस्वीर में बदल जाता है। कहीं त्रिशूल का दिव्य स्वरूप, कहीं माँ अम्बे की छवि, तो कहीं तिरंगे के साथ नजर आता भारत का नक्शा। आसमान में बनती इन तस्वीरों को देखकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें भी ठहर जाती हैं। खूबसूरत नजारा दरअसल गुजरात के अंबाजी का है, जहां भादरवी महामेला के दौरान आस्था के इस उत्सव में तकनीक ने भी रंग भर दिए हैं। दिन भर माँ के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और रात के वक्त 450 ड्रोन से आसमान पर साकार होती भक्त की ये तस्वीरें। जैसे जैसे ड्रोन अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे आसमान पर बदलती तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचती हैं। अंबाजी में इन दिनों आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि आसमान में भी अपना रंग बिखेर रही है।
6: ड्रोन शो दिखा हुआ है, उसमें बहुत अद्भुत रहते माँ अंबानाथ प्रकृति अने चाचर शौकनाथ या गब्बर ने पर्वत पगपाल यात्रिका आते उनका रथ अने जो लोग लेके आते झंडा, ये सब चीज हमने इंक्लूड करके ड्रोन शो किया था। अने स्पेसिफिक चीज ऐसे है माँ अम्बा का पाथ अने माँ अम्बा का दिया, ये दोनों चीज हमको बहुत खुश लगे। पीपल लोगों को माँ भक्तों को भी बहुत आनंद रहते दोनों दिन का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके सक्सेसफुली प्लान की हुई थी।
8: मंदिर परिसर और आसमान में रोशनी का ये संगम देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। लगातार दो रात हुए इस ड्रोन शो ने मेले के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक लाइटिंग ने भी पूरे माहौल को भव्य बना दिया। माँ के दरबार में शीश झुकाने के बाद जब नजरें आसमान की ओर उठी तो सामने था आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम।
6: लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ड्रोन शो देख के। एंड लास्ट ईयर पहली बार ड्रोन शो किया हुआ था एंड इस साल भी हमने कंटिन्यू रखा है। लास्ट ईयर से इस साल का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके मैनेज हुआ है एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हम ज्यादा रखे ताकि पगपाला संघ आते उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस साल हमने रखा है ताकि जो चीज को महत्व माना जाता है अंबाजी मेला में उस चीज को हम इसमें इंटरप्रेट की हुई थी। इसके वजह से लोग बहुत अच्छी तरीके माँ भक्तों का श्रद्धा के साथ साथ दर्शन करके अंबाजी मंदिर में दर्शन करके निकले थे।
8: आसमान में बनती तस्वीरें, नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजता माँ अम्बे का जयकारा। अंबाजी में इस वक्त सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि पूरा अरावली क्षेत्र ही भक्ति रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात के अंबाजी से निकलकर अगर बिहार के गया जी पहुंचे तो वहां भी आस्था को रोशनी और तकनीक के जरिए ही एक नया रूप दिया गया। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले से पहले फल्गु नदी का देवघाट भी रोशनी से जगमगा उठा। देवघाट पर शानदार लेजर एंड लाइट शो का उद्घाटन हुआ।
9: में आज लेजर लाइट के द्वारा एक अद्भुत सीता माँ की पूरा कहानी की जीवनी गया सूर कैसे गया सूर बने पूरा इसका कहानी इस लेजर के माध्यम से जितने भी देश विदेश से यात्री आएंगे उनको उनके लिए ये हम लोग नगर निगम के द्वारा व्यवस्था करवाए हैं।
8: लेजर और रोशनी के शानदार शो में गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया। माँ सीता के पिंडदान से जुड़ी कथा हो या गयासुर की पौराणिक कहानी।
10: गया जी में कल से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस तत्पर है ताकि जो अनुभूति है अपने आप में एक दैवीय अनुभूति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सुखद हो, सहज हो। और किसी भी समस्या के लिए पुलिस के बहुत सारे हेल्पलाइन भी बनाए गए हैं, अस्थाई थाना भी स्थापित किया गया है और CCTV से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे की जाएगी।
8: अंबाजी में आसमान पर उड़ते ड्रोन हो या गया जी के देवघाट पर चमकती लेजर लाइट, तकनीक ने दोनों जगह आस्था की कहानी कहने का एक नया अंदाज जरूर दिया है। एक तरफ माँ अम्बा की भक्ति में रोशन आसमान तो दूसरी ओर पूर्वजों की स्मृति और पिंडदान की परंपरा को समर्पित गया जी। दो धाम, दो अलग अंदाज, लेकिन तस्वीर एक ही, आस्था की, जो अब रोशनी के माध्यम से भी दिखाई दे रही है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: क्या है पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष का क्या होगा पूजा विधान और पितृपक्ष में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: गाजे बाजे के साथ निकल रही लालबाग चराजा की शोभा यात्रा श्रद्धा भक्ति के माहौल में गणपति बप्पा मोरय के जयकारे, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का मेला। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेनजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रण कौशल।

0: यूपी में बदला मौसम, चास राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा। गुड न्यूज टुडे
2: दूरदर्शी के बाद से ही पितरों के सत्कार की परंपरा का आरंभ हो जाता है, जो एक पखवाड़ा तक माना जाता है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे पितृपक्ष की महिमा के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं अपने पूर्वजों को याद करने, उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा का पालन आखिरकार हमें क्यों करना चाहिए और कैसे आप पा सकते हैं अपने पितरों की अनुकंपा, देखिए हमारी इस खास पेशकश में।

0: पूर्णिमा तिथि पर होता है जिनका परलोक गमन। ऐसे पितरों का पूर्णिमा की तिथि पर होता है तर्पण। 15 दिवसीय महालय पक्ष का होने जा रहा है आगाज। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का है मोक्षदायिनी रिवाज। धर्मग्रंथ कहते हैं जो भी साधक विधि विधान के साथ इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों का सत्कार करता है वो जाने अनजाने हुए पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। आज हम अपनी खास पेशकश में जानेंगे कि 15 दिवसीय महालय पक्ष में पूर्वजों की आवभगत कैसे करें। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा में किन पितरों के श्राद्ध की परंपरा रही है।
1: प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में आती हैं, लेकिन पूर्णिमा उसमें नहीं आती। तो जिन पितरों की तिथि पूर्णिमा होती है उनका श्राद्ध पूर्णिमा को आरंभ हो जाता है और उसी दिन से महालया का आरंभ होता है। या ज्ञान जो पितर हमारे हैं जिनका श्राद्ध तिथि पूर्णिमा को है उनका श्राद्ध किया जाए, इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व है।
0: पूर्वजों का कैसे करें तर्पण, कौन सा भोग करें अर्पण, श्राद्ध का क्या है विधिवत विधान, किस विधि से पूर्वज देंगे वरदान। माना जाता है कि पूर्वजों की तृप्ति होने से न सिर्फ सभी दोषों का अंत होता है बल्कि कुंडली से पितृदोष भी सदा के लिए मिट जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिन पितरों का विधिवत श्राद्ध नहीं होता उनकी मुक्ति अधूरी रहती है।
1: ये धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सब कार्य को छोड़ के जो पितरों के निमित्त कार्य बताए गए हैं, हम हमारे धर्म सिंधु में देख लीजिए, महाभारत के शांति पर्व में देख लीजिए, पद्म पुराण में देख लीजिए, सब जगह पितरों के बारे में बताया गया है, पितृपक्ष का महत्व बताया गया है। इसीलिए पितरों के लिए हम पितृपक्ष में विशेष करके उपाय करके उनके प्रसन्न होकर आशीर्वाद की कामना उनसे करते हैं।
0: पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष की क्या है महिमा। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातनी आस्था है कि जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके सत्कार से पितृ प्रसन्न हो गए तो आपके सभी कार्य निष्कंटक पूर्ण होते हैं।
1: हमारे यहाँ महाभारत के शांति पर्व में और जब तक पितरों की कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी तब तक जीवन में परिवार में विवाह है, नया भूमि भवन प्राप्त करना है, संतान वृद्धि, यह सब कर्म परिवार में नहीं होते।
0: ऐसा मानते हैं कि हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों पितृपक्ष की परंपराओं का पालन किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय ही पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। मान्यता तो यहाँ तक है कि जिसके पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं उस पर ईश्वर भी अनुकंपा नहीं करते हैं।
1: पितृपक्ष में नियमित रूप से तर्पण अवश्य करना चाहिए। किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, गंगा जी किनारे जाकर के और तिल ले करके तिल से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। और जिस तिथि पर जिस पितर का श्राद्ध हो उस दिन श्राद्ध करें, अपने पितरों के पुष्प फोटो पर सुगंधित माला, जिस पुष्प में सुगंध हो ऐसी माला चढ़ावे, चंदन लगावे और सायंकाल के समय एक दीपक जलावे और पितृ स्तोत्र का पाठ करे। पितृ स्तोत्र का पाठ करने से जो रुचि ऋषि ने गाया है, कहा है, उसका पाठ करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।
0: पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उस तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। पितृपक्ष में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर पितर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आगे हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की सावधानियां और साथ ही जानेंगे कि कौन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं। इनके कृपा से जीवन के तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है, लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और दान करने से पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसके नियम आखिर क्या है।
3: पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। माना जाता है कि श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि जो भी साधक महाल्य पक्ष में अपने पितरों की निमित विधिवत संस्कार करता है, उनको मन, कर्म और वचन से भोजन प्रदान करता है, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। उसके पूरे परिवार पर पितरों की कृपा बरसती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गौर से देखिए और कीजिए इन सावधानियों का पालन।
1: सबसे बड़ा नियम होता है कि सात्विक भोजन करना। जब तक पिता की तिथि न बीत जाए, माता की तिथि अगर हो तो तब तक छौर कर्म न करावे, दाढ़ी बाल न कटवावे, धोबी को कपड़ा न दे, किसी को अप्रिय वचन न बोले, क्योंकि पितृलोक के समय हमारे पितृ हमारे मृत्यु लोक में रहते हैं और आपके आस पास ही रहते हैं, और जो अखाद्य वस्तुएं हैं उनका परित्याग करें।
3: पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतब वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व होता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाली सफेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भागवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें।
1: सादा जीवन उच्च विचार, यह जो हमारे यहाँ भाषा बताई गई है कि अपने पितरों के निमित्त जो तिथि जिस दिन हो, प्रातः काल में या संध्या के समय या रात्रि के समय श्राद्ध न करे, तर्पण न करे। जो अपराह्न काल बताया गया है 1 बजे के बाद वाला जो समय है, उस समय अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि करावे, गौ माता को, स्वान को माने कुत्ते को और कौए को बलि दे और भोजन करावे, लोगों को तृप्त करे, और अगर हो सके तो 15 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करे।
3: बहुत से लोगों को अपनी परिजनों की मृत्यु के तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। कौन सही अर्थों में श्राद्ध करने का अधिकारी होता है?
1: अगर पिता नहीं है तो पुत्र करे, पुत्र नहीं है तो पौत्र करे, पौत्र नहीं है तो प्रपौत्र करे, वह भी नहीं है तो जो रिश्ते में बताया गया है वो लोग भी कर सकते हैं। या इन सब लोगों के लिए जिनके कोई नहीं था आपके परिवार में, किसी आपके चाचा को, किसी बड़े पिता जो कोई संतान नहीं थी, उनके निमित्त भी आप कर सकते।
2: श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है। पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद जरूरी है। कैसे कुछ उपाय करके आप अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं, वो भी जान लीजिए।
3: आने वाले हैं पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के दिन, जब आप तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करके पितरों की अनुकंपा पाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होंगे, जिसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ होगा। कल पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। पितृपक्ष की अवधि में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अलग अलग श्राद्ध तिथियां आती हैं। परिवार में जिस पूर्वज की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, उसी तिथि के अनुसार श्राद्ध करने की परंपरा है। वैसे तो आप पंचांग में भी इन तिथियों को देख सकते हैं, लेकिन हम भी आपको ज्योतिषियों द्वारा बताई गई श्राद्ध की वो तिथियां बता देते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर को होगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर से किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 28 सितंबर को है। तृतीया तिथि का श्राद्ध कर्म 29 सितंबर को पूर्ण होगा। चतुर्थी और पंचमी तिथि के श्राद्ध का विधान 30 सितंबर को माना गया है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध कर्म 1 अक्टूबर को सम्पन्न होगा। सप्तमी तिथि का कर्म कांड की तिथि 2 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि के श्राद्ध की परंपराएं 3 अक्टूबर को निभाई जाएंगी। नवमी तिथि का श्राद्ध संस्कार 4 अक्टूबर को पूर्ण होगा। दशमी तिथि के श्राद्ध का अनुष्ठान 5 अक्टूबर को है। एकादशी तिथि के श्राद्ध की पूर्णता 6 अक्टूबर को की जाएगी। द्वादशी तिथि का श्राद्ध की परंपराओं का पालन 7 अक्टूबर को होगा। त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का कर्म कांड 8 अक्टूबर को है। चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का पालन की तारीख 9 अक्टूबर है, जबकि 10 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या है।
1: यह पितरों का पक्ष ही है। यह 15 दिन का जो पक्ष है, यह जो पितृ जिस दिन जिनका निर्वाण हुआ है उस तिथि को उस पितरों का श्राद्ध करने का हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जय मुंडी तय पिंडी, अगर जितने पुत्र हैं अगर सबकी रसोई अगर अलग अलग बनती है तो हर व्यक्ति को अपने पिता के लिए अपने पितरों के लिए यह कार्य करना चाहिए, यह ग्रंथों में हमें बताया गया है।
3: पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके घर में हमेशा कोई न कोई समस्या रहती हो और शुभ कार्यों के पूर्ण होने में बार बार विघ्न होता हो तो इसके पीछे पूर्वजों की नाराजगी भी हो सकती है। तो चलिए आपको वो ज्योतिषीय महा उपाय भी बताते हैं जिसको करने से आपके घर में शुभता होगी और संपन्नता का वास होगा।
1: तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करे, त्रिपिंडी श्राद्ध करे, तर्पण करे, ब्राह्मण को अन्न दान करे, भोजन करावे, गौ को खिलावे, कुत्ता को खिलावे, कौआ को खिलावे। इन 15 दिनों के भीतर अगर हमारे द्वारा कोई अपराध हुआ हो, परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर के जो रुके हुए कार्य हैं वह सब पूर्ण हो। ऐसा अमावस्या को करने से या पितृपक्ष में करने समापन के दिन सारे जीवन के रुके कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण हो जाते हैं।
3: दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं, रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, अमावस्या के दिन दान जरूर करें। माना जाता है कि तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है, साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना जहां बेहद अहम और आवश्यक कर्म है, वहीं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बेहद जरूरी हो जाती है। पितृपक्ष में किए गए ये उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: आस्था जब आसमान पर उतरती है तो नजारा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिल को भी सुकून देता है। गुजरात के अंबाजी में 450 ड्रोन ने रात के आसमान को भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया, कहीं त्रिशूल का स्वरूप, कहीं मां अंबा की छवि।
7: अंधेरे आसमान पर जब रोशनी की लकीरें दौड़ती हैं तो कुछ ही पलों में पूरा आसमान एक तस्वीर में बदल जाता है, कहीं त्रिशूल का दिव्य स्वरूप, कहीं मां अंबे की छवि, तो कहीं तिरंगे के साथ नजर आता भारत का नक्शा। आसमान में बनती इन तस्वीरों को देखकर नीचे खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें भी ठहर जाती हैं। खूबसूरत नजारा दरअसल गुजरात के अंबाजी का है, जहां भादरवी महामेला के दौरान आस्था के इस उत्सव में तकनीक ने भी रंग भर दिए हैं। दिन भर माँ के दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और रात के वक्त 450 ड्रोन से आसमान पर साकार होती भक्त की तस्वीरें। जैसे जैसे ड्रोन अपनी जगह बदलते हैं, वैसे वैसे आसमान पर बदलती तस्वीरें श्रद्धालुओं का ध्यान भी खींचती हैं। अंबाजी में इन दिनों आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि आसमान में भी अपना रंग बिखेर रही है।
8: ड्रोन शो दिखाया हुआ है, उसमें बहुत अद्भुत रहते माँ अम्बाना प्रकृति अने चाचर शौकना दिया गब्बर ने पर्वत पगपाल यात्रिका आते उनका रथ अने जो लोग लेके आते झंडा, ये सब चीज हमने इंक्लूड करके ड्रोन शो किया था। अने स्पेसिफिक चीज ऐसे है माँ अम्बा का पाथ अने माँ अम्बा का दिया, ये दोनों चीज हमको बहुत खुश लगे। पीपल लोगों को माँ भक्तों को भी बहुत आनंद रहते, दोनों दिन का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके सक्सेसफुली प्लान की हुई थी।
7: मंदिर परिसर और आसमान में रोशनी का ये संगम देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। लगातार दो रात हुए इस ड्रोन शो ने मेले के उत्साह को और बढ़ा दिया। मंदिर परिसर में की गई आकर्षक लाइटिंग ने भी पूरे माहौल को भव्य बना दिया। माँ के दरबार में शीश झुकाने के बाद जब नजरें आसमान की ओर उठी तो सामने था आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम।
8: लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ड्रोन शो देख के, एंड लास्ट ईयर पहली बार ड्रोन शो किया हुआ था एंड इस साल भी हमने कंटिन्यू रखा है। लास्ट ईयर से इस साल का ड्रोन शो बहुत अच्छी तरीके मैनेज हुआ है एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हम ज्यादा रखे ताकि पगपाला संघ आते उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इस साल हमने रखा है ताकि जो चीज को महत्व माना जाता है अंबाजी मेला में उस चीज को हम इसमें इंटरप्रेट की हुई थी। इसके वजह से लोग बहुत अच्छी तरीके माँ भक्तों का श्रद्धा के साथ साथ दर्शन करके अंबाजी मंदिर में दर्शन करके निकले थे।
7: आसमान में बनती तस्वीरें, नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ गूंजता माँ अम्बे का जयकारा। अंबाजी में इस वक्त सिर्फ ये मंदिर नहीं बल्कि पूरा अरावली क्षेत्र ही भक्ति रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात के अंबाजी से निकलकर अगर बिहार के गयाजी पहुंचे तो वहां भी आस्था को रोशनी और तकनीक के जरिए ही एक नया रूप दिया गया। बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेले से पहले फल्गु नदी का देवघाट भी रोशनी से जगमगा उठा। देवघाट पर शानदार लेजर एंड लाइट शो का उद्घाटन हुआ।
9: में आज लेजर लाइट के द्वारा एक अद्भुत सीता माँ की पूरा कहानी की जीवनी, गया सुर कैसे गया सुर बने, पूरा इसका कहानी इस लेजर के माध्यम से जितने भी देश विदेश से यात्री आएंगे उनको उनके लिए ये हम लोग नगर निगम के द्वारा व्यवस्था करवाए हैं।
7: लेजर और रोशनी के शानदार शो में गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया गया। माँ सीता के पिंडदान से जुड़ी कथा हो या गयासुर की पौराणिक कहानी।
10: गया जी में कल से पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पुलिस तत्पर है ताकि जो अनुभूति है अपने आप में एक दैवीय अनुभूति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सुखद हो, सहज हो। और किसी भी समस्या के लिए पुलिस के बहुत सारे हेल्पलाइंस भी बनाए गए हैं, अस्थाई थाना भी स्थापित किया गया है और सीसीटीवी से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी 24 घंटे की जाएगी।
7: अंबाजी में आसमान पर उड़ते ड्रोन हो या गया जी के देवघाट पर चमकती लेजर लाइट, तकनीक ने दोनों जगह आस्था की कहानी कहने का एक नया अंदाज जरूर दिया है। एक तरफ माँ अम्बा की भक्ति में रोशन आसमान तो दूसरी ओर पूर्वजों की स्मृति और पिंडदान की परंपरा को समर्पित गया जी। दो धाम, दो अलग अंदाज, लेकिन तस्वीर एक ही, आस्था की, जो अब रोशनी के माध्यम से भी दिखाई दे रही है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
11: क्या है पितृपक्ष की महिमा, पितृपक्ष का क्या होगा पूजा विधान और पितृपक्ष में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: मुंबई में गाजे बाजे के साथ निकल रही लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा, श्रद्धा भक्ति के माहौल में गणपति बप्पा मोरय के जयकारे, सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का मेला। पुणे में पांच मनाचे गणपति की मूर्तियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में भजन क्लबिंग का आयोजन। जेंजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। फिल्म हनुमानंच के कलाकारों ने बांधा समा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के लिए जोधपुर में जुटे 7 देशों के वायु योद्धा। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। आसमान में दिखेगा रणकौशल।

0: यूपी में बदला मौसम, चार राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के लिए अलर्ट, 27 सितंबर तक आसमान में छाए रहेंगे बादल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे बिना परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि यहां हर किसी के हाथ में कैमरा, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर हो। लेकिन ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की रेखा को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले वायरल हो रहे उस वीडियो की होगी, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ नाश्ते की टेबल पर बैठने नहीं दिया, उन्हें अलग दूर कुर्सी पर बिठाया गया। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय वॉरशिप INS कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज PNS हुनैन के बीच हुई टक्कर का यह वीडियो है। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: क्या राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में जाति को लेकर भेदभाव करते हैं? क्या राहुल बुजुर्ग नेताओं का अपमान करते हैं? सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तस्वीर वायरल हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि हाल ही में राहुल गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को नाश्ते पर बुलाया। उनके साथ ब्रेकफास्ट करते वक्त राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ टेबल पर बैठने नहीं दिया। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: यह तस्वीर इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लोग इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस का दलित प्रेम ढोंग है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ नाश्ता करते हुए नेता प्रति

0: गांधी वाड्रा और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम कुछ अधिकारियों के साथ बैठक कर नाश्ता कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे उन सबसे दूर कोने में एक अलग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नाश्ते के टेबल पर मौजूद क्यों नहीं है, ये लोगों को खटक रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने के कारण राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया और उन्हें पीछे बैठा दिया। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि दिन रात दलित दलित चिल्लाने वाले राहुल गांधी के नाश्ते की टेबल पर दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जगह ही नहीं है। तस्वीर तेजी से सर्कुलेट हो रही है, लोग सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: इससे पहले इन तस्वीरों का पूरा सच हम आपको बताएं, पहले ये समझ लीजिए कि ये तस्वीर आई कहां से है और ये कब की है। असल में दिल्ली में 12 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी शामिल हुए थे। इस दौरान अनवर इब्राहिम ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इस तस्वीर को उसी मुलाकात से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब मलेशिया के प्रधानमंत्री को होस्ट कर रहे थे तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने साथ बैठने नहीं दिया, उन्हें अपनी टेबल से दूर कोने में बैठने के लिए कहा। यह तस्वीर तेजी से फैली और इसके साथ ही ये नैरेटिव फैल गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं इसलिए उन्हें राहुल गांधी ने साथ में नहीं बिठाया। लोग कहने लगे कि कैमरों के सामने राहुल गांधी दलित प्रेम का नाटक करते हैं, उनकी असलियत अब सामने आई है। पर इस पूरी तस्वीर और इससे जुड़े दावों में बहुत कुछ ऐसा था जो हमें खटक रहा था, इसीलिए हमने तस्वीर की जांच शुरू की। इस तस्वीर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की दाहिनी और राहुल गांधी बैठे हुए हैं और सामने प्रियंका गांधी, टेबल पर कुछ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, कैमरे में खड़गे भी हैं पर वो इस टेबल से दूर एक कोने में बैठे हैं। तस्वीर को जब बारीकी से देखा गया तो हमें इसमें कुछ खामियां नजर आई। खड़गे जिस तरह से बैठे हुए हैं वो सामान्य नहीं है, आसपास और भी सोफे हैं लेकिन उन पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। खड़गे ऐसे अकेले बैठे रहे ये बहुत अजीब सा लग रहा था, इसीलिए हमने इससे जुड़ी खबरें ढूंढनी शुरू की पर कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में तस्वीर हमें नजर नहीं आई। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मिली। हम सोच में पड़ गए कि अगर राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष का ऐसा अपमान किया तो फिर खबर क्यों नहीं बनी, और यही हमारा पहला सवाल है कि अगर राहुल और प्रियंका ने विदेशी मेहमान के सामने कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान किया है तो फिर ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आई। तस्वीर में एक बात और हमें खटकी, हमें खड़गे के दोनों हाथ मिले हुए दिखे, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। जूम करके देखने पर उंगलियां अलग नहीं दिख रही हैं, एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं। ये साफ साफ एडिट हुई तस्वीर ही लग रही है। ऐसे में हमारे सामने दूसरा सवाल ही था कि क्या खड़गे इस मुलाकात के दौरान वहां मौजूद भी थे। इससे जुड़ा तीसरा सवाल कि क्या इस तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को अलग से जोड़कर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस रिपोर्ट में सच जानिए।
0: इस तस्वीर के सामने आते ही इसे जातीय रंग दिया जाने लगा। सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव फैलाया गया, ऐसे लोग जो झूठ का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते वो इस खबर पर कूद पड़े, कहने लगे कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा है। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम तस्वीर की जाँच में जुटी। सच कहने पर हमें ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से 13 सितंबर को नाश्ते पर मुलाकात की, लेकिन इस असली तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे है ही नहीं। यानी साफ है कि वायरल तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को इस तरह से जोड़ दिया गया ताकि ऐसा लगे कि उन्हें बाकी नेताओं से अलग बैठाया गया है। सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर प्रकाशित मिली। इस रिपोर्ट को 13 सितंबर को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर दिल्ली में हुए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने दिल्ली में दोनों के साथ नाश्ता किया था। तस्वीर में AI का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए हमने AI डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन की मदद से सर्च किया। इस टूल ने तस्वीर में करीब 100% तक AI के इस्तेमाल होने की संभावना जताई। साफ है सोफे पर अकेले बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वायरल तस्वीर एडिटेड है। ओरिजिनल तस्वीर में खड़गे है ही नहीं, इसमें सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी मलेशिया के प्रधानमंत्री और अधिकारियों के साथ नाश्ता करते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: बाद पाकिस्तान की गुस्ताखी की। 15 सितंबर को अरब

0: सागर में भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता और पाकिस्तानी जहाज PNS हुनैन के बीच टक्कर हुई थी। पाकिस्तानी जहाज की इस गलती से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो टक्कर के दौरान का है, पर जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
1: 15 सितंबर की शाम को उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता और पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज PNS हुनैन के बीच मामूली टक्कर हो गई थी। दरअसल भारतीय युद्धपोत नियमित निगरानी पर था, तभी पाकिस्तानी जहाज ने तेज गति से आते हुए असुरक्षित तरीके से पैंतरेबाजी की, जिसके कारण दोनों जहाजों में टक्कर हो गई। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय पोत ने उनके अभ्यास क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसके बाद इस गैर पेशेवर और अस्वीकार्य व्यवहार पर कड़ा विरोध जताने के लिए भारत ने 16 सितंबर को नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया। भारत ने इसे 1991 के द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया। अब इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 15 सितंबर का ये लेटेस्ट वीडियो है जब अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज भारतीय नौसेना के जहाज से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: खबर तो यही है असली, 15 सितंबर को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत और पाकिस्तानी जहाज के बीच टक्कर तो हुई थी, पर हमने कभी उस टक्कर से जुड़ा कोई वीडियो नहीं देखा। इसीलिए जब ये वीडियो देखा तो हमें थोड़ा सा शक हुआ। मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी सच्चाई सामने लाना जरूरी था। तो वीडियो में दो जहाजों के बीच मामूली टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस दौरान वहां पर कोई गहमा गहमी नजर नहीं आती है। वीडियो में हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, एक शख्स तस्वीर भी ले रहा है। अगर टक्कर का ये वीडियो होता तो फिर उस वक्त माहौल में एक बेचैनी होती, लोग हंसी मजाक तो नहीं कर रहे होते। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि महज कुछ सेकंड में ही एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक सामने से खतरनाक तरीके से गुजर रहा है। फैक्चर टीम की नजर जहाज के कोड नंबर यानी कि पताका संख्या पर गई। इस पर U-52 लिखा हुआ था। ये INS गोदावरी का कोड है, जबकि 15 सितंबर को अरब सागर में जो उस भारतीय जहाज की टक्कर पाकिस्तानी जहाज से हुई है, उस जहाज का नाम INS कोलकाता था, जिसका कोड नंबर है D-63। इस पड़ताल में हमें एक और अहम बात पता चली कि INS गोदावरी युद्धपोत 23 दिसंबर 2015 को रिटायर हो चुका है। ऐसे में हमारे सामने पहला सवाल यही था कि रिटायरमेंट के 11 साल बाद INS गोदावरी का वीडियो कैसे सामने आया। वीडियो में एक और गौर करने वाली चीज दिखी। पाकिस्तानी जहाज पर D-182 लिखा हुआ है। ये पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS बाबर है, जो कि 2014 में रिटायर हो चुका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल कि अगर टक्कर वाला वीडियो अभी का है तो फिर इसमें सेवामुक्त हो चुका PNS बाबर कैसे दिख रहा है। और तीसरा अहम सवाल ये कि जिन दो युद्धपोतों के बीच टक्कर हुई है, उनका एक भी फ्रेम इस वीडियो में क्यों नजर नहीं आ रहा है, सच इस रिपोर्ट में जानिए।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें ये क्लिप 16 अक्टूबर 2014 को एक YouTube चैनल पर अपलोड की हुई मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वीडियो हालिया टक्कर से एक दशक से भी अधिक पहले का है। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी नौसेना के PNS बाबर को एक भारतीय नौसैनिक पोत से टकराते हुए दिखाया गया है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन करने पर हमें 2011 की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें इसी घटना को एक अलग कोण से दिखाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस टक्कर में शामिल भारतीय पोत INS गोदावरी था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया था। पाकिस्तान के आचरण का औपचारिक रूप से विरोध करते हुए ये कहा गया कि PNS बाबर ने अपने जोखिम भरे युद्धाभ्यासों से INS गोदावरी और उसके चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों और सैन्य अभ्यासों की अग्रिम सूचना पर 1991 के भारत पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो काफी पुराना है। भारतीय नौसेना के INS गोदावरी और पाकिस्तानी नौसेना के PNS बाबर के बीच 2011 में हुई टक्कर का ये वीडियो है। इसका अरब सागर में 15 सितंबर को हुई टक्कर से कोई संबंध नहीं है और इसे हाल की घटना की फुटेज के तौर पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
0: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
1: कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। बप्पा की विदाई के लिए जाते नन्हे बच्चों को देखिए, जिनके चेहरे पर उदासी के बजाय प्यार और अपनापन नजर आ रहा है। बच्चे बप्पा को प्यार से चूमते और निहारते हुए विदाई दे रहे हैं। उनके मासूम चेहरे और सच्ची भावनाएं हर किसी का दिल छू रही हैं। शायद यही भक्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ उम्र छोटी है, लेकिन आस्था और प्रेम बेहद गहरा है।

छोटी उम्र और बड़ा कारनामा, इस नन्हे उस्ताद ने अपनी कला के दम पर पूरी महफिल लूट ली। सांस्कृतिक आयोजन में जहां बड़े बड़े ढोल वादक पारंपरिक ढोल और ताशा बजा रहे हैं, वहीं ये कान्हा कलाकार पूरी एकाग्रता और सटीक ताल के साथ ढोल पर स्टिक्स चल रहा है। जिस अंदाज और जोश में मासूम बच्चा ताशा बजा रहा था, उसे देखकर एक पल के लिए लोग हैरान रह गए। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो यकीन तक नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से ताशा बजा सकता है।

0: जहां आजकल बच्चों की फोन की लत अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, वहीं राजस्थान के अजमेर जिले में रहने वाले एक लड़के ने अपने दिमाग से लोगों का ध्यान खींचा है। छठी क्लास में पढ़ने वाले सिद्धार्थ कुमावत ने अपनी टेक्निकल माइंड और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी का इस्तेमाल करते हुए कार्डबोर्ड से कॉकपिट बनाया है। बच्चे ने जो मॉडल तैयार किया है वह बाजारों में नहीं मिलता, बल्कि उसके हाथों की मेहनत है। सिद्धार्थ ने जो बनाया है वह सिर्फ क्राफ्ट नहीं बल्कि उनकी समझ को भी दिखाता है कि वे कितने क्रिएटिव हैं और पेशेंस के साथ चीजों को करते हैं। अपने इस मॉडल को बच्चे ने इस खूबसूरती से तैयार किया है जिससे वे दूसरों को दिखाकर भी सिखा सकें। जिस रूबिक क्यूब को सुलझाने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, उसे चीन के 6 साल की बच्ची ने महज कुछ सेकंड में सुलझाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन की 6 साल की लियान युनजी ने 3x3 रूबिक क्यूब को बेहद तेजी से सुलझाकर महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह 3x3 रूबिक क्यूब में 4.5 सेकंड से कम औसत बनाने वाली पहली महिला स्पीड क्यूबर बन गई। जेंगडू की रहने वाली लियान को प्यार से जीजी भी बुलाया जाता है। बच्चों की मासूमियत ही उनके हर छोटे से काम को खास बना देती है। इस वीडियो में बच्चा प्लेट में रखी चीज को मोबाइल फोन समझ बैठता है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे उठाकर कान से लगा लेता है। बच्चे की यह मासूम हरकत देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस प्यारे से पल को देखकर लोग खूब खुश हो रहे हैं। बचपन की ऐसी छोटी छोटी शरारतें हमेशा यादों में बस जाती हैं। बेटे के विदाई के वक्त एक पिता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। कन्यादान की रस्म को लेकर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल छू लिया। पिता ने बेटी को कोई वस्तु नहीं बल्कि अपने दिल का टुकड़ा और राजकुमारी बताया। पिता की बातों में बेटी के प्रति प्यार, चिंता और एक पिता का गर्व साफ नजर आता है।
1: एक राजा बाप होता है, उस बाप के लिए बेटी एक राजकुमारी है जो सदा उसके दिल में वास करती है। उस अपने दिल के टुकड़े को दान नहीं कर सकता, उसे एक नई जिंदगी के लिए, नए आभास के लिए, नई शुरुआत के लिए अपने दिल से, अपने तन मन से शुभकामनाएं देते हैं।
0: एक माँ अपनी बेटी को लेकर चुपके से उसके नानी के घर पहुँचती है। नानी को उम्मीद नहीं होती कि उनकी बेटी उनकी नातिन को लेकर आई है। ऐसे में जैसे ही वह देखती है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये एक छोटा सा पल अब लोगों को भावुक करने का काम कर रहा है। ये

0: बुजुर्ग महिला साड़ी पहनकर बाजार के बीच सड़क पर लाठी लेकर उतरती है। जैसे ही वह लाठी को हवा में लहराना शुरू करती है, उनकी फुर्ती और लय देखकर वहां खड़े लोग दंग रह जाते हैं। सिर पर पल्लू और पैरों में बेजोड़ संतुलन के साथ महिला जिस आसानी और आत्मविश्वास से लाठी घुमाती है, वह साबित करता है कि हुनर और जज्बे के आगे उम्र एक मामूली संख्या है। वीडियो में केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा लड़कियां भी पूरी तत्परता और अनुशासन के साथ लाठी चलाने का अभ्यास करती नजर आ रही हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर लाठी के वार रोकना और सटीक प्रहार करना दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक इंसान अगर बंदर के बीच जाकर उनकी जैसा ही हरकतें करने लगे तो फिर क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले तो वह बंदरों को अपने पास बुलाता है और फिर जब बंदर उसके पास आते हैं तो वह बंदरों की तरफ अपना चेहरा करके उन पर स्मोक छोड़ता नजर आ रहा है। ये देख बंदर डर जाते हैं और डर कर वह पीछे हट जाते हैं। शख्स की हरकतों को पहली नजर में देख ऐसा लगता है जैसे बंदरों के बीच कोई दूसरा बंदर आ गया हो, लेकिन इस बंदर से दूसरे बंदर खौफ खा रहे हैं और अपनी जान के लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। उसकी चाल ढाल और अंदाज देख कर बंदर भी पीछे हटने लगते हैं। कुछ बंदर उसे देख कर दूर भागते नजर आते हैं जबकि कुछ हैरानी से उसे देखते रहते हैं। वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि जो शख्स बंदरों को डराने पहुंचा था उसने कुछ समय के लिए उन्हें पूरी तरह उलझन में डाल दिया। बंदरों को समझ ही नहीं आता कि उनके सामने आखिर कौन खड़ा है। कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा होने में सालों लग जाते हैं। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही एहसास कराता है। वीडियो में एक 80 साल के बुजुर्ग पहली बार अपनी आंखों के सामने हवाई जहाज देखते नजर आ रहे हैं। प्लेन को देखते ही उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है वह लोगों का दिल छू रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का हवाई जहाज देखने का सपना 80 साल बाद पूरा हुआ। उनके बेटे ने इस खास पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं और कई यूजर्स को अपने माता पिता की याद आ रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली इंसान और रोबोट फाइटर देखने को मिली है। एक रिंग के अंदर मशहूर इन्फ्लुएंसर फ्रैंकी लापेन 6 फीट लंबे रिमोट कंट्रोल रोबोट से भिड़े। इस अनोखे मुकाबले को ह्यूमन वर्सेस टर्मिनेटर मैच नाम दिया गया जिसे अमेरिकी रोबोटिक कंपनी आरीके ने आयोजित किया था। मैच शुरू होने से पहले रोबोट ने रिंग में वार्म अप किया और अपनी मूवमेंट दिखाई। फाइट शुरू होते ही फ्रैंकी ने रोबोट पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवाब में रोबोट ने भी पलटवार करते हुए जोरदार पंच और लाते मारी। रोबोट की किक इतनी ताकतवर थी कि फ्रैंकी उछलकर पिंजरे में दूर जा गिरे। इस मैच ने साफ दिखाया कि ये मशीन कितनी फुर्ती और ताकत से हमला कर सकती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।